ओम शांति। हम सभी को बाबा ने आते ही बहुत बड़े खजाने दिए हैं। उन खजानों को पाकर हम संतुष्ट हुए। हमारे अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। आपने हमें बहुत खजाने दिए, उन्हें पाकर हम संतुष्ट हुए। तो ये संतुष्टता ही हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई। जो मनुष्य हर हाल में संतुष्ट रहता है वो सचमुच बहुत बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। मनुष्य के जीवन में रोज अनेक बातें आकर उसके मन को थोड़ा थोड़ा, कहीं भी कभी बहुत सूक्ष्म असंतुष्ट करती हैं। कहीं मान न मिला, कहीं बैठने को ठीक जगह न मिली, कहीं बच्चों ने आज्ञा न मानी, कहीं पत्नी या पति ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, कहीं बिजनेस धंधों में कुछ हो गया, एक असंतोष की भावना बनी रहती है। दूसरों के व्यवहार के कारण भी, कुछ अप्राप्तियों के कारण भी मनुष्य असंतुष्ट होता है। परंतु बुद्धिमान समझदार वही है जो सदा संतुष्ट रहे। संतुष्टता सचमुच बहुत बड़ी चीज है। और विचार करें, यदि भगवान को पाकर भी कोई संतुष्ट न हुआ तो भला कब होगा। सोचा तो ये जाए कि यदि भगवान को पाकर, उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर, सर्व खजाने पाकर, उसका प्यार पाकर, उससे सुख शांति और शक्तियों की अनुभूति करके पवित्र आत्मा बनकर भी यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो द्वापर युग के बाद पुनः असंतोष की ज्वाला हमारे अंतर मन में धधकती रहेगी और हमें जीवन का सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं ही संतुष्ट करें। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही जब स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों की चर्चा की गई है तो कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है स्थित प्रज्ञ है। अर्थात जो आत्मानुभूति में संतुष्ट रहता है, जो आत्मा को भरपूर करके संतुष्ट रहता है, जो आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि हो सकता है। अन्यथा ये बुद्धि है जो भटकती ही रहती है। तो आइए हम सभी संतुष्टता से अपना श्रृंगार करें। ये श्रृंगार बहुत सुंदर है। यदि मन उत्तेजित रहता है, यदि मन अशांत रहता है, तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, श्रृंगारित हो, वो वास्तव में किसी को भी प्रिय नहीं लगता, किसी को भी आकर्षित नहीं करता। सच्चा प्यार और सच्चा आकर्षण मनुष्य के अंदर उसकी श्रेष्ठ स्थिति, चित्त की शांति, मन की संतुष्टता से ही प्राप्त होता है। तो जरा इस नशे में आ जाएं, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। वो श्रृंगार भी ऐसा, सद्गुणों से श्रृंगार, शक्तियों से श्रृंगार, महान संकल्पों से श्रृंगार, श्रेष्ठ पवित्रता से श्रृंगार, योग के सुख के द्वारा श्रृंगार, ये सब हमारे श्रृंगार हैं। हमें इन सब श्रृंगारों को खराब भी नहीं होने देना है, श्रृंगार को बिगाड़ना भी नहीं है, और निरंतर श्रृंगारे हुए ही रहना है। तो आइए आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहें, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। वो स्वयं आया है हमारे पास हमें सब कुछ प्रदान करने वाले, करने के लिए, और मैं हूँ संतुष्ट मणि। बहुत सुंदर ये स्वमान है, मैं हूँ संतुष्ट मणि जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। साथ साथ
एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे कि ये संसार का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ छोड़कर आत्मा बनकर निराकार बनकर बाबा के साथ घर चलना है, और अपने को आत्मा देखकर घर जाते हुए देखेंगे, मैं आत्मा पहुंच गई अपने घर, मुक्त अवस्था में, संपूर्ण शांत अवस्था में, संपूर्ण अवस्था में उसको वहाँ एंजॉय करेंगे। ये एंजॉयमेंट है मुक्ति का आनंद। ओम।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम। दोस्तों, कहा जाता है दुनिया का सबसे कठिन शब्द है वाह। दुनिया का सबसे कठिन शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं, तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं, और ऐसे ही अमृतधारा प्रोग्राम ने हम सब का दिल जीत लिया है। और जब दिल जीत लिया जाता है, तब मुख से शब्द निकलते हैं वाह। इसीलिए इस मंगल प्रभात में आप सब समय निकालकर खास अमृतधारा प्रोग्राम की डिमांड करते हो, तो इसलिए फिर से एक बार आपका इस प्रोग्राम में मैं भक्ति स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, जो हमें अमृत कण देने के लिए अपने विचारों को शेयर करते हुए हमारे साथ बहुत मीठी बातचीत करने के लिए आए हैं। पहले हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति जी, और गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर रेडियो मधुबन लिसनर्स। रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात और धन्यवाद।
0: ज्ञानेश्वर जी, जब हम भक्तों का सिलसिला देखते हैं, भक्तों के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, तो अगर मेल में देखा जाए तो नारद जी का नाम सामने आता है, और फीमेल में देखा जाए तो संत मीरा का नाम सामने आता है। लेकिन जब हम रामचरितमानस की ओर नजर डालते हैं, तो सबसे पहले याद आती है वो शबरी, जो जंगल में रहते हुए कई सालों से इंतजार कर रही थी कि प्रभु के चरण मेरे कुटिया को लगेंगे और मेरी कुटिया, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसी शबरी जो है, जो भक्तिन थी, जो बहुत ही भोली भाली थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और उसने हमारे जीवन के लिए क्या संदेश दिया है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये जो भक्त है, रामायण की जब कथा हम सुनते हैं, तब जैसे आपने नारद जी और मीरा बाई का उदाहरण दिया है, वैसे और एक भक्त है, वो शक्तिशाली है, वो है हनुमान जी।
0: जी,
1: और ये हनुमान जी भक्त है, लेकिन उनका गायन भी अलग तरीके से, भक्त के रूप में तो गायन है ही, लेकिन और शक्तिशाली रूप में भी गायन है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो भक्त है वो अहिल्या और शबरी अलग अलग किस्म के भक्त है। अहिल्या का हमने चर्चा की, अहिल्या के बारे में, वो पत्थर बन के राह देख रही थी प्रभु रामचंद्र जी की। और यहां आपने जो जिक्र किया है शबरी का, वो तो पत्थर नहीं बनी थी, लेकिन जंगलों में रहती थी और राह देखती थी आप प्रभु रामचंद्र जी का। वो कथा के तरफ जब हम देखते हैं, तब उसके ऊपर जब सोचना शुरू हो जाता है कि उसमें क्या संदेश होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कुछ ना कुछ संदेश हर कथा में, कहानी में महर्षि वाल्मीकि ने देने की कोशिश की होगी। वो संदेश हम ढूंढने का प्रयास करते हैं अपने तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने शक्ति अनुसार। तो मुझे ये लगता है कि ये शबरी का जो चरित्र है या शबरी की जो मिसाल है, वो मुझे लगता है कि हम अगर जो भक्त है, वो भक्त कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या देता है, ये मायना नहीं रखता। भगवान को जब हम कोई भी भोग चढ़ाते हैं या प्रसाद देते हैं या कोई भी वस्तु देते हैं, तो उसका भाव देखना जरूरी होता है। और इसलिए बोलते हैं, अगर भाव आपका अच्छा है तो आपका देव भी अच्छा है। मींस देवता जो है, जिसे आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जो इष्ट देवता है, वो वहां मौजूद है अगर भाव है तो।
0: सच्चा दिल चाहिए। अगर सच्चा दिल है तो वो दिल भगवान को भी जीत लेता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और यहाँ और एक मुझे बात नजर आती है, वो ये है कि जैसे अहिल्या हम युगों की बात करते थे, अहिल्या की जो मिसाल हमने ली वो युगों की बात करते थे कि जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई या बुद्धि ने सही निर्णय नहीं लिया या संशय आ गया और फिर पत्थर जैसे बुद्धि बन गई और हम उन्होंने राह देखी संगम युग तक, जब परमात्मा आके वो बुद्धि को चरण स्पर्श करे या परिस स्पर्श करे, पारस स्पर्श करे और फिर उनको जीवित करे। ये मिसाल मुझे ऐसे लगता है कि हम संसार को कभी कभी कांटों का जंगल भी कहते हैं। जब समस्याएं आती है तब हम कहते हैं कांटों का जंगल, जब खुशी रहती है तो बोलते हैं बगीचा है। तो जिंदगी कभी कभी बाग बगीचा बन जाती है और जिंदगी कभी कभी कांटों का जंगल बन जाती है। जब परमात्मा की स्मृति हमारे मन से निकल जाती है और फिर चुनौतियां हो या परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियां हो, जब सामने नजर आती है तब वही बगीचा हमें जंगल नजर आता है।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसे करते हुए जंगल में विचरते हुए जब हम गुजरते हैं तब हम परमात्मा की राह देखते हैं और शबरी ऐसे ही कुछ मिसाल होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए कहा जाता है कि चैन से जीने के लिए चार रोटी और दो कपड़े काफी है, चैन से जीने के लिए चार रोटी और दो कपड़े काफी है, पर बेचैनी से जीने के लिए चार मोटर, दो बंगले और तीन प्लॉट भी कम है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तो चैन जो है वो मनुष्य को तब मिलती है, आराम तब मिलता है जब उसका दिल बहुत बहुत सच्चा होकर प्रभु की राह देखता है। शबरी जो है अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कई भक्त जो है उन्होंने किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखी, एक ही आश मन में लगाकर वो लोग बैठते थे कि हमारे इष्ट देव हमें कब मिले।
1: बहुत सही कहा आपने। और देखिए शबरी का जो जब मैं कथा सुनता हूँ या कथा पढ़ता हूँ तो मैंने ये देखा कि शबरी के मन में ये भावना नहीं थी कि प्रभु रामचंद्र जी है, भले वनवास में आए हैं लेकिन है अयोध्या के राजा, तो उनसे मैं कुछ मांगू, मैं वहां झोपड़ी में रहती हूं तो कुछ महल बना दूं या घर बना दूं या प्लॉट ले लूं या ऐसे कुछ करूं, ऐसी लौकिक चीजें जो है वो मांगने की इच्छा उनके मन में नहीं थी।
0: संकल्प तक नहीं आया,
1: संकल्प तक नहीं आया। उन्होंने इतना ही देखा कि मेरा प्रभु, मेरे राम आ रहे हैं, सालों से मैं उनका इंतजार कर रही हूं और मुझे उनको कुछ देना है। वो देने की भावना ज्यादा थी, लेने की भावना नहीं थी।
0: और मुझे ऐसे लगता है ज्ञानेश्वर जी कि परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो भी गरीबों का साथ देता है। कभी कभी किसी अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास सच्चा दिल है, जिसके पास सच्ची आश है, शुभ आश है, उसके पास अपने आप चलकर भगवान आता है।
1: बिल्कुल। और ये जो भगवान जो है वो भूखा है, भगवान भूखा है भक्तों के प्यार का। भगवान को ना आपको पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कुछ बड़े बड़े मिठाइयां चाहिए। भगवान को चाहिए प्यार। और यही संदेश महर्षि कवि वाल्मीकि ने हमें दिया, ऐसे लगता है शबरी के माध्यम से।
0: जी।
1: और दूसरा मुझे ये लगता है कि शबरी का पहलू जो है, अनेक पहलू है, वो एक एक पहलू करके हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
0: बहुत सुंदर। और ये पहलू जब हम समझते हैं तो अलग अलग प्रकार की छटाएं कहो या रंगों की जो आतिशबाजी है, या कहो कि हमारे पहलुओं के द्वारा हमारे ही मन का हमें विश्लेषण करने का एक बहुत सुंदर चांस मिलता है। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ उपस्थित होते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका फिर से स्वागत है अमृतधारा में, और हम बात कर रहे हैं शबरी की। ज्ञानेश्वर जी, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि वो आदिवासी थी। मतलब क्या कि भगवान जात पात पंथ यह भेद नहीं देखते।
2: बहुत सही कहा आपने कि ये जात पात धर्म भेद ये सब इंसान ने खड़े किए हैं। भगवान जो है वो इंसानियत देखता है, भगवान जो है आपका मन देखता है, भगवान जो है वो आपका दिल देखता है
1: जी।
2: और इसलिए शबरी जो है, वो शबरी की जो मिसाल है, वो देखिए, शबरी कभी इम्पेशेंट नहीं हुई, शबरी कभी दुखी नहीं हो गई कि मैं कहां जंगल में पड़ी हूं, ये भगवान कब आएगा, मुझे मिलेगा, ये कुछ उसने उसके मन में संकल्प भी नहीं था। उसके मन में था कि मेरा राम आने वाला है, मुझे मिलने वाला है, और मैं उसकी मुलाकात जो है, उसके साथ जो परमात्मा मिलन का आनंद जो है, मैं ले लूंगी। ना उसने कोई संकल्प किया कि मैं उससे कुछ मांगू, कुछ ये करूं। उसके मन में यही संकल्प था कि मेरा राम कब आएगा और मैं उसे क्या दे दूंगी। उसमें मुझे और एक कहानी याद आती है कि ये पेशेंस जो है, या विश्वास जो है भगवान के प्रति कि भगवान मेरा आएगा जरूर और मेरी मदद करेगा, उसके ऊपर एक मुझे कहानी याद आई। कहानी ऐसी है कि एक युगल जो है, पति पत्नी जा रहे हैं समुन्द्र में सफर करने के लिए। काफी पैसा है, धनवान है, और परमात्मा के ऊपर उनका प्यार भी बहुत है, और वो सफर करते हुए जा रहे थे और उनका जो जहाज है वो कहीं ना कहीं बिखर गया, और फिर

0: तैरते तैरते एक आइलैंड में जाके आ गए. आइलैंड में गए, वहां सुनसान जगह थी, कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था. अभी वो अपने को कोसते रहे कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिंदगी में, भगवान ये क्या हो गया, और फिर भी हम यहां आके पड़े हैं, ना वहां कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना कोई आदमी है, कुछ नहीं है. फिर भी अभी उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने बताया तो हम आ गए, हमारे नसीब में शायद वही होगा, उसमें भी कुछ भलाई होगी. इतना निश्चय हो गया था. और फिर वो आइलैंड में आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया, वहां ही कुछ लकड़ियां वगैरह थी, उससे अपना झोपड़ा बनाया. फिर वहां के कुछ फल सब्जियां जो कुछ मिलता था वो खा के वो दिन गुजारते थे. ऐसे महीनों बीत गए. काफी उनके घर वाले जो है वो उनको तलाश उन्होंने शुरू की. उन्हें चिंता थी कि उन कहां चले गए, और वहां कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, तो वो बैठे हैं और घर वाले चिंता कर रहे हैं. तो घर वालों ने बहुत खोज की, विमान भेजे, ये भेजा, और कोशिश की उनको ढूंढने की. ऐसे महीने बीत गए, और एक दिन क्या हो गया, वो तो अपने दिल में सोचते थे कि हमने क्या गलती की, हमने हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसी कौन सी सजा हमें मिल रही है, इसके बारे में सोचते थे. और एक दिन क्या हो गया, उनका जो झोपड़ा उन्होंने बांधा था वो भी जल गया. अभी झोपड़ा जलने के बाद वो जो संयम था, उनका पेशेंस था, वो टूट गया. उन्होंने कहा, भगवान हमने कुछ नहीं कहा, जब हम जहाज से जा रहे थे हमारे पास इतना धन था, दौलत थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, हम ये आइलैंड पे आ गए, खाने को नहीं था, कोई इंसान नहीं था, फिर भी हम दोनों ने कुछ कोशिश की, जो फल मिले उससे गुजारा करना चालू किया, एक झोपड़ी बनाई और अपने ये झोपड़ी भी तोड़ दी, झोपड़ी जला दी. ऐसा क्या गुनाह हमने किया कि हम आप हमें उसकी सजा दे रहे हो. और तब तक क्या हो गया, ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, और फिर उन्होंने देखा कि कोई ना कोई हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए आ गया है.
1: शायद ऐसा है कि वो झोपड़ी जो जल गई, कुटिया जो जल गई, उसका धुआं और उस वो अग्नि की ज्वालाएं देखकर कोई उनको बचाने के लिए आ गया.
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि यही था कि जब वो तलाशते थे, तलाश कर रहे थे, और उस समय वो तलाश करते समय रात के अंधेरे में उनको ये उजाला नजर आया, ये आग नजर आई, और फिर उनको लगा कि वहां कोई ना कोई रहता है. और फिर उस तरफ जैसे चले गए, और सुबह उठने के बाद जब उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर ऊपर आ रहा है, तो उन्होंने इशारा किया और हेलीकॉप्टर नीचे आया. फिर उन्होंने भगवान को कहा, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने अगर झोपड़ी नहीं जलाते थे तो हम यहां से मुक्त नहीं होते थे. तो हर कोई चीज जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज होती है, हमें बुरी लगती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई रहती है.
1: बिल्कुल.
0: मुझे ये लगता है कि शबरी का भाव भी ऐसा था, इसलिए वो निश्चिंत थी.
1: बिल्कुल.
0: भले जंगलों में रहती थी, भले उसके पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन वो निश्चिंत थी, और एक विश्वास अपने भगवान के ऊपर था, अपने देवता के ऊपर था, और उनको ये विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और मुझे मिलेंगे,
1: और मैं उन्हें जूठे बेर खिलाऊंगी.
0: यस. और मुझे कुछ खिलाना है, पहले क्या है भावना, मुझे कुछ उनको देना है, मुझे कुछ उनको खिलाना है. और ये कहानी में इतनी दिलचस्प कहानी है कि वो जो बेर थे उसने क्या किया, टेस्ट किया, दांतों के नीचे दबाया और टेस्ट किया कि कहीं मेरे राम को बेर खट्टे ना दूं.
1: जी,
0: मीठे बेर देने हैं. और जब वो बेर लेके चली आई, रामचंद्र जी के पास चली आई, तब वो कहते हैं कि सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने देखा और पूछा कि शबरी ये बेर लाई है, ये दांतों के निशान कैसे हैं? तो शबरी ने कहा, मैया मेरा राम जो है उसको मैं बेर खिलाना चाहती थी और कहीं गलती से खट्टे बेर ना जाए, इसलिए मैंने खुद को उसको टेस्ट किया है। तो सीता मैया को बड़ा आश्चर्य लगा कि आप झूठे बेर दे रही हो भगवान को। प्रभु रामचंद्र जी हंसे और उन्होंने सीता मैया को कहा, सीता ये जो भक्त है उनकी भाव देखो, ये जो बूढ़ी औरत है लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है देखो, और वो रामचंद्र जी को कभी गलती से भी खट्टा बेर ना जाए इसलिए खुद ने टेस्ट किया और ये कहानी बन गई। तो मुझे ये लगता है शबरी कैरेक्टर जो है बहुत छोटा कैरेक्टर है, लेकिन ये कहानी जगमान्य है और जब रामायण हम पढ़ते हैं शबरी के बिना रामायण पूरा नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: तो आप भक्त जो है वो छोटे हो या बड़े हो, आप कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, कहाँ रहते हो, गरीब हो अमीर हो, कोई मायना नहीं रखता, भक्त भक्त रहता है।
1: बिल्कुल। और आप क्या दे रहे हो, किस प्रकार से दे रहे हो, यह मायना नहीं रखता, लेकिन आपकी भावना कितनी सच्ची है, आपकी भावना में भाव कितना भरा हुआ है, सेवा भाव कितना है, वो देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा का महत्व नहीं है किन से भाव का महत्व है। और शबरी या कई ऐसे भक्त है जिनके अंदर वो सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं रेडियो मधुबन।

0: मैं हूँ चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, भावना का भाड़ा जो है वो भगवान जरूर देता है, और इसी प्रकार से अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा हमारे अंदर की सच्ची भावना जागृत हो रही है, और इसी जागृति से हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ जरूर आने लगी है, जो अच्छाइयाँ सबको पसंद है, न केवल परमात्मा को, लेकिन जो भी हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार है उन्हें भी वो अच्छाइयाँ ही खींच लेती है। ज्ञानेश्वर जी, आपने शबरी का मिसाल बताया, और उस शबरी के मिसाल से आपने ये भी कहा कि रामायण जो है वो बिना शबरी पूरा ही नहीं हो सकता। ऐसी और कौन सी कैरेक्टर्स है जिन्हें हम फोकस कर सकते हैं, जो हमें संदेश देती है, जिनके संदेश से हमारे जिंदगी का तालमेल हो सकता है और हम कुछ न कुछ सीख लेकर अपनी जिंदगी को उसी प्रकार से बना सकते हैं। भले मिसाल बहुत छोटे हैं, लेकिन वो मिसाल जिंदगी बड़ी बनाने में, महान बनाने में बहुत बहुत मायने रखते हैं।
2: बहुत अच्छा पूछा आपने कि देखिए, जब मैं ये रामायण की कथा सुनता हूँ, दो औरतें अहिल्या और शबरी हमने देखी, वो जो बड़े भक्त थे, भक्त थे, इंतजार कर रहे थे और प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर नौछावर जाते थे। अभी तीसरा कैरेक्टर जब मैं देखता हूँ, वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है, और जब प्रभु रामचंद्र जी वनवाह में कुटिया में रहते थे, तब वो स्त्री जो रावण की बहन है और जिसका नाम है शूर्पणखा, तो देखिए कहानी ऐसी है कि शूर्पणखा जो है वो लक्ष्मण जी के ऊपर मोहित हो गई। कई लोग कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर मोहित हो गई, कई लोग कहते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर मोहित हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें देखना है। किसके ऊपर मोहित हो गई ये ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसका पीछे का भाव क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे लक्ष्मण जी के पास चली गई और उन्होंने रिश्ता लेके चली गई शादी का, अभी जैसे लक्ष्मण जी के पास चली गई तो लक्ष्मण ने उन्हें देखा और वो समझ गए कि वो कौन सी भावना से आ रही है, और उनको बहुत गुस्सा आ गया। शादी का प्रपोजल लेके गई थी तो उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा का नाक और कान काट दी,
1: और इसीलिए वो जो जगह है उसका नाम नासिक ये हो गया।
2: बिल्कुल, वो नासिक मीन्स नासिका, जहां शूर्पणखा की कटी है वो नासिक हो गया।
1: आज भी जब नासिक के लिए हम जाते हैं, नासिक देखने के लिए जब हम जाते हैं, तब वहां दिखाया जाता है कि पंचवटी जो है, नासिक जो है, जहां जैसे अभी आप कह रहे हो कि वहां शूर्पणखा के नाक को काटा गया, वो स्थान आज भी दिखाते हैं, उसका एक महत्व है।
2: क्यों, देखिए जो हर स्थान, जैसे अयोध्या है, अयोध्या में भी पवित्र स्थान माना जाता है, जहां जहां देवता, वो कथा में देवताओं का निवास है या कुछ ऐसे घटना घटी है तो वो पवित्र और प्रसिद्ध हो जाती है। तो जैसे सीता मैया की गुफा भी दिखाते हैं, और नासिक में जैसे महाराष्ट्र में वो जैसे शूर्पणखा का नाक कटा है, वो भी स्थान महत्वपूर्ण दिखाते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके मन में आशंका हो जाती है कि वो शादी का रिश्ता लेके चली गई, भले वो नाक उसका रिश्ता लेके राम जी के पास गई हो या लक्ष्मण के पास गई हो, गए वो या लक्ष्मण के पास गई हो, लेकिन शादी का रिश्ता किसी के पास तो लेके गई, और दोनों देवता स्वरूप है, राम जी भी जो है और लक्ष्मण जी भी है। और सिर्फ कोई अगर औरत शादी का रिश्ता लेके किसी के पास जाती है तो उनका कोई नाक और कान काटता है, और फिर जो ऐसे संशय जिनके मन में पैदा होता है, तो उनके मन में जब संशय पैदा होता है तो वो भ्रमित हो जाते हैं। आप कभी कभी सुनते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं या ईमेल पे देखते हैं या कभी कभी अखबारों में चर्चा होती रहती है कि ये अन्याय हो गया, शूर्पणखा के प्रति अन्याय हो गया, और फिर हम भ्रमित होते हैं कि ये वाल्मीकि जी को क्या कहना है। देखिए, ये वाल्मीकि जी ने जो कैरेक्टर खड़े किए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव जरूर है।
1: बिल्कुल।
2: और अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारा जो श्रद्धा का भाव है वो कमजोर हो जाता है और संशय जो है वो मन में उठ जाता है रामचंद्र जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में, क्योंकि शूर्पणखा जो है वो स्त्री है, अबला है, और उसके ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे कुछ मन में आ गया तो उल्टे सुलटे विचार मन में आ जाते हैं। और इसलिए हमने आज चर्चा के लिए शूर्पणखा का जो कैरेक्टर लिया है वो इसलिए लिया है कैरेक्टर बहुत छोटा, लेकिन पूरी रामायण की कथा जो है इसके ऊपर निर्भर है। रावण को प्रेरित जो किया है सीता मैया को उठाने के लिए, वो ये घटना उसके लिए निमित्त है। और इसलिए शूर्पणखा का कैरेक्टर भले वो छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे उन्होंने नाक और कान काट दिए, वो रोते रोते चली गई रावण जी के पास,
1: भाई के पास,
2: रावण के पास चली गई। और वो महाबली, उन्होंने कहा आप महाबली कहलाते हो और आपकी बहन को इतने बुरी तरह घायल कर दिया ये राम और लक्ष्मण जी ने, और वो राम और लक्ष्मण महाराष्ट्र में नासिक में बैठा है। बाद में कैसी घटना हो गई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर ये प्रसंग हमने देखा, जब तक अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे श्रोतागण के मन में भी ये संशय आ सकता है कि ये बात सही है, स्त्री के ऊपर अत्याचार हो गया, स्त्री के ऊपर अन्याय हो गया, सिर्फ एक प्रपोजल लेके आई शादी का। तो अभी हम अगर अलग तरीके से उसको देखेंगे, अलग पहलू देखेंगे, तो शायद मुझे विश्वास है कि उसके पीछे का भाव जब जानेंगे तब पता चलेगा कि वाल्मीकि जी को क्या कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम जब ऊपर ऊपर कोई भी कहानी का ऊपरी भाग देखते हैं या उसका भाव देखना चाहते हैं, तो हो सकता है उसकी गहराई तक न पहुंचने के कारण हमें उसका यथार्थ भाव मालूम न हुआ हो। और आपने कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं समझती हूँ कि हमारे श्रोताओं के भी मन में जो कुछ संदेह निर्माण हुआ होगा, उस संदेह का निवारण करने के लिए हम इस कथा को, उस भाव को और महर्षि वाल्मीकि का जो लिखने का प्रयास है उसको जरूर देखेंगे। लेकिन अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस कहानी का जो आगे का भाग है वो देखेंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ब्रेक के बाद आप सब दोस्तों का फिर से स्वागत है रेडियो मधुबन में। दोस्तों, आपके मन में जो भी संदेह निर्माण हुआ होगा, उस संदेह का निवारण करने के लिए हम इस कथा को आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ ज्ञानेश्वर जी?
3: देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे कि शायद किसी के मन में ऐसे संकल्प आए कि ये शूर्पणखा के ऊपर, स्त्री के ऊपर अत्याचार तो नहीं हुआ, अन्याय तो नहीं हुआ, और अगर अन्याय हो गया है तो ये देवता जैसे जिनका गायन है प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी, वो कैसे कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किया तो वो देवता कैसे हो सकते हैं। ऐसे कुछ कॉन्ट्रावर्शियल क्वेश्चंस, ऐसे कुछ संभ्रमित करने वाले प्रश्न मन में उठते हैं, और मैंने सुना है उसके ऊपर कई चर्चा भी होती है। तो इसलिए जब हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसका दूसरा पहलू देखने की कोशिश करेंगे, तब शायद हमारी बुद्धि खुल जाएगी। क्योंकि जैसे हमने आज तक चर्चा की कि ये कवि जो होते हैं, वो अपनी कविता में कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भाव छिपा हुआ रहता है। जैसे कोडेड लैंग्वेज है, उसको हम डीकोड करते हैं, वैसे ये कोडेड लैंग्वेज है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि शूर्पणखा का कैरेक्टर बनाते समय और उसका वर्णन करते समय उनको ये देखना है, जैसे हमने अहिल्या और शबरी का मिसाल देखी, वो भी स्त्री थी, लेकिन उनके मन में जो भाव था वो शुद्ध था, प्रेम था वो शुद्ध था, और इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार कर दिया। तो भक्तों के बारे में अगर, वो तो स्त्री और पुरुष, स्त्री प्रकृति है और पुरुष आत्मा है, ऐसे समझते हैं। वैसे परमात्मा के बारे में जब हम देखते हैं तो भक्त जो हो, भले आत्मा है, वो स्त्री रूप में देखा जाता है। तो दोनों स्त्रियां हैं, स्त्री का भाव अच्छा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अहिल्या का भाव अच्छा था, अहिल्या के भक्ति को स्वीकार कर दिया। शबरी का भाव अच्छा था, शबरी के भाव को स्वीकार कर दिया। भले उनकी परिस्थिति अलग थी, उनकी कैरेक्टर्स अलग थी, उनका इतिहास अलग था, उनकी बैकग्राउंड अलग थी, लेकिन शूर्पणखा के नाक काटे क्योंकि वो असुर योनि की थी। अभी वो मन में प्रश्न आएगा कि जन्म से थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये कहना है उसका जन्म कहाँ हो गया, वो कौन सी योनि की थी, वो महत्वपूर्ण नहीं था, उसका उद्देश्य जो है वो गलत था।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अशुद्ध भाव जो है वो भी परमात्मा तक पहुंचता है।
3: बिल्कुल सही,
2: भाव ही परमात्मा तक पहुंचता है, न कि कोई चीज पहुंचती है।
3: बिल्कुल।
2: और अभी हम मन और बुद्धि की जब बात लेते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि मनोवृत्ति या वाइब्रेशंस, तो परमात्मा को या किसी भी व्यक्ति को, न केवल उस परम शक्ति को, लेकिन कोई व्यक्ति को भी, हमारे मन में अगर कुछ कालापन है, अगर कुछ छिपा हुआ है, जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है, तो छिपा हुआ है तो जरूर वो किसी को भी नजर आता है या महसूस होता है। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि दोस्तों देखो, अगर मन में हमने कुछ भाव अलग रखा और जता रहे हैं अलग, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो इस प्रकार से अगर हमारा बिहेवियर है, हमारा बर्ताव है, तो उसकी सजा हमें ही मिलती है। क्योंकि जैसे हमारे कर्म है, जैसा हमारा भाव है, जैसी हमारी भावना है, उसी प्रकार से हम उसका फल पाते हैं।
3: बिल्कुल। और जब हम चर्चा कर रहे थे रामायण के ऊपर और लक्ष्मण के कैरेक्टर के ऊपर, तब हमने ये भी देखा कि लक्ष्मण बुद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मण बुद्धि का प्रतीक है। और इसलिए चर्चा करते समय हमने कहा, हमने देखा है कि वो इंद्रजीत का जब उनको शस्त्र लग जाता है वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये बुद्धि का अगर प्रतीक है तो कोई भी बुरा संकल्प, शूर्पणखा का कैरेक्टर जब मैं देखता हूं तब मुझे ये लगता है कि बुरा संकल्प है, बुरा विचार है, बुरी वृत्ति है, अगर ये कभी मेरे मन में प्रवेश करने की कोशिश करती है अलग रूप लेके,
2: और वही असुरत्व है,
3: वही असुरत्व है, और लुभावना रूप लेके उस समय ऊपर ऊपर से देखते हैं तो लगता है वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसका परिणाम जब देखते हैं तो वो परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है और बुद्धि उसे जज कर लेती है, बुद्धि उसे तय कर लेती है और परीक्षा कर लेती है कि ये क्या है, अच्छा है, दिखने में अच्छा है लेकिन उसका परिणाम बुरा है। और इसलिए उसकी एक नाक कान जो है, कथा में जो लिखा है लक्ष्मण ने जो काटे है
2: जी,
3: तो उसमें यह है कि अगर मेरे मन में कोई संशय आता है, अगर मेरे मन में कोई बुरा संकल्प आता है तो उसको वही काटना है, उसके ऊपर मैं दया करूं, उसको अंदर ले लूं, तो फिर वो क्या होता है, पलने लगता है, फूलने लगता है, बढ़ने लगता है और फिर उसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो उसको कहीं पूछा नहीं, कुछ नहीं, जो कथा में दिखाया है कि जैसे वो शादी का प्रपोजल लेके आ गई, उसको लुभाने की कोशिश कर ली, तभी उसने काट दिया, कभी बात नहीं की क्यों कर रही हो, कहां से आई हो, क्या किया है, कुछ नहीं है, उसने नाक और कान काट दिए। उसका मतलब ये है कि अगर मेरी बुद्धि लक्ष्मण है ऐसे समझो, और मेरे मन में कोई बुरा संकल्प आता है, बुरा ख्याल आता है, कुछ आकर्षण आ जाते हैं जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है, जिसका परिणाम मेरे लिए नुकसानकारक हो सकता है, तो वो संकल्प को मैं अगर वहां ही तोड़ दूं, वहां ही काट दूं, तो मेरे लिए भलाई है।
2: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बुराई जो है वो भी हम जितना उसकी भी आदत डालेंगे तो वो एक बीज अगर हो गया तो उसका वृक्ष होने में समय नहीं लगता। और उस बुराई को समझकर, महसूस कर उसी समय अगर समाप्त किया जाता है तो फिर उसके गलत परिणामों को, नतीजों को भुगतना नहीं पड़ता।
3: बिल्कुल। देखिए, अपना रेडियो मधुबन का जो कार्यक्रम है, अमृत धारा कार्यक्रम जो है, वो सुनने वाले श्रोता जो है वो अलग अलग जगह रहने वाले हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले हैं। वहां हमारे जो कई बांधव जो है वो रिमोट एरिया में बहुत दूर दूर तक रहने वाले हैं, जहां कोई ज्यादा आदमी रहते नहीं है, और परिस्थिति जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद वो गरीब हो सकते हैं, लेकिन व्यसनों के पीछे व्यसनों ने उनको पकड़ लिया होता। कभी कभी क्या होता है, यह व्यसनों के बारे में अगर ये शूर्पणखा और व्यसन उसका मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि शूर्पणखा का रूप है वो व्यसनों के आकर्षण है। कोई बच्चा है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और उसका कोई दोस्त है, वो उसको अगर कोई व्यसन जो तंबाकू कहो, बीड़ी कहो, शराब कहो, कुछ भी लेके आता है, और अगर उसके ऊपर दया मन में उत्पन्न हो गई और उसने उसको सहारा दे दिया तो क्या होगा, नुकसान उसका ही होगा। और वो उस समय लक्ष्मण बन के अगर उसको काट देता है, वहां का वहां काट देता है, तो उसका फायदा होगा। तो ये कथा जो है, मेरा नम्र निवेदन है, अलग तरीके से देखिए, हमारे बंधुओं, हम मेरे जो भाई बहने हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि व्यसनों के लिए यह कथा देखिए और कोई भी ऐसा बुरा संकल्प आ गया तो वहां ही पूरा उसको खत्म कर दीजिए।
2: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही। और इसीलिए दोस्तों, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। और इस अच्छाई को अपनाएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा और ही अच्छा बन जाएगा। अब समय है वाणी को विराम देने का, इसीलिए आपको अच्छा अच्छा कहते हुए ही वाणी को विराम दे रहे हैं, ताकि जिंदगी हमारी और सबकी अच्छी ही अच्छी हो। फिर से मिलते हैं अमृतधारा प्रोग्राम के द्वारा। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ।
1: मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका समाधान में। विद्यार्थियों की चर्चा बहुत गुह्य से गुह्यतम होती चली जा रही है और बहुत आनंद भी आ रहा है इन सभी चर्चाओं को करते हुए कि सचमुच किन किन बातों का यदि समावेश जीवन में हो जाए तो जीवन का पूरा ही स्वरूप परिवर्तित हो जाए। मूल्यों की चर्चा पिछले सत्र में हम सब कर रहे थे और हमने देखा कि बहुत सारे मूल्य यदि जीवन में आ जाते हैं तो जीवन मूल्यवान बनता चला जाता है, जिनमें सादगी है, स्वच्छता है, सम्मान है, सहनशीलता है। कहने में कितने सुंदर लग रहे हैं, तो यदि वो हमारे जीवन में आ जाएं तो कितना सुंदर हो जाएगा, पूरा ही समाज, पूरा ही देश परिवर्तित हो जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी थी कि हम बीड़ा उठाएं, ये ना सोचें कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन हम बीड़ा उठाएं क्योंकि एक महापुरुष अपने साथ परिवर्तन लेकर चलता है और जब वो चलता है कार उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्राता जी हमारे साथ हैं, आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: प्राता जी, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि मूल्यों का संबंध हमारी एकाग्रता से भी है और आज हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, तो एक बात जरूर उठकर सामने आती है कि आज एकाग्रता कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो पहले तो हम इस चीज को स्पष्ट करना चाहेंगे भ्राता जी कि वास्तव में एकाग्रता है क्या, किस चीज को हम एकाग्रता कहेंगे?
1: देखिए, शब्द ही एकाग्र
0: जी,
1: एक पर जब हम स्थिर हो जाएं,
0: हाँ हाँ,
1: किसी भी एक चीज पर
0: जी,
1: मान लो पढ़ाया जा रहा है हमें
0: तो हम पढ़ाई पर एकाग्र,
1: केवल पढ़ाई पर एकाग्र, हम खेल रहे हैं तो केवल खेल पर एकाग्रता। जैसे महाभारत में अर्जुन का दृश्य इसमें दिखाया गया, जब उनकी परीक्षा हो रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछ रहे थे कि सामने चिड़िया की आंख में तीर मारना, कौन क्या देख रहा है? तो कोई कहता पेड़ भी है, गुरुदेव भी हैं, सब पांडव कौरव भी हैं, लेकिन केवल अर्जुन ने कहा था मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है,
0: दे रही है।
1: तो वो हुई संपूर्ण एकाग्रता। तो किसी भी एक लक्ष्य में अपनी मन और बुद्धि को स्थिर कर देना
0: ये एकाग्रता है। मतलब जो भी, यदि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय पढ़ाई पे एकाग्र, खेल रहे हैं तो खेल पे एकाग्र। और वास्तव में यदि देखा भी जाए रहता जी, यदि बैट्समैन यदि बैटिंग कर रहा है और उस समय यदि वो वहां नहीं है, अर्थात एकाग्र नहीं है,
1: तो जल्दी
0: आउट हो जाएगा। या फिर कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, उस समय यदि वो एकाग्र नहीं है, उसका मन उसकी बुद्धि कहीं और है,
1: तो कैंची अंदर छोड़ देगा।
0: बिल्कुल, कई ऐसे केसेस देखने में भी आते हैं कि एकाग्रता की कमी के कारण ये सब होती हैं। तो एक चीज पर अपने आप को स्थिर कर देना, ये एकाग्रता है। महत्ता भ्राता जी इसकी क्या है, मतलब न केवल विद्यार्थी काल में बल्कि पूरे जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें?
1: बस सिंपली इतना ही समझें कि जहां एकाग्रता है वहां संपूर्ण सफलता है। और एकाग्रचित व्यक्ति अपने में बहुत संतुष्ट भी रहता है, उससे अपनी खुशी भी उसकी कायम रहती है, उसके मन में चिड़चिड़ापन भी नहीं होता, परेशानी भी नहीं होती, तो टोटल जीवन की भी ये सफलता।
0: और ये भी होता है व्रत जी कि जिस कार्य को वो कर रहा होता है वो बिल्कुल ही परफेक्शन के साथ करता है, उसमें समय भी संभवतः कम लगेगा
1: और उसमें उलझने कम आएंगी, उसमें समस्याएं भी कम आएंगी।
0: तो यही बात हो जाती है व्रत जी की, क्लास में लेक्चरर या टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे बैठे हुए हैं, सामने टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और है। मान लीजिए बाहर प्लेग्राउंड में दूसरी क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी वहां खेल रहा होता, मैं इस ढंग से खेलता। तो यहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, या फिर वो बैठा तो क्लासरूम में है लेकिन कल यदि कोई बात हो गई है वो चल रहा है, तो शायद ये उनकी एकाग्रता में कमी का कारण बन रहा है।
1: बिल्कुल, ये होता है। और उसमें विशेष रूप से बातों का इफेक्ट
0: जी,
1: खेल रहे हैं बच्चे उसका थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन जो उसके साथ हो गया है
0: जी,
1: किसी ने उसको कुछ कह दिया है, कहीं उसकी भावनाओं को हर्ट कर दिया गया, बच्चों की भावनाएं हर्ट होती हैं, कहीं उससे किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया है, कहीं उसकी कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तो उसका इफेक्ट उसकी एकाग्रता को नष्ट करता ही रहेगा और यहाँ उसका मन नहीं लगेगा, तो न वो यहाँ को एंजॉय करेगा पढ़ाई को और न वो उन चीजों से मुक्त होगा।
0: मतलब बातें उसके मन में चल रही हैं और जब मन बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि से ही उसे ग्रहण करना है जो भी मिल रहा है, और यदि मन में वो बातें चल रही हैं तो वो ग्रहण शक्ति उसकी कम हो जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो भ्रत जी, ये जो बातें चल रही हैं वो कैसे दूर हो?
1: अब इस रिलेशनशिप को भी पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो ये शक्तियां, पहले भी हमने चर्चा की थी, मन और बुद्धि, और इनको स्थूल रूप देने वाला जैसे कंप्यूटर है हमारा ब्रेन, तो मन जितना उलझनों से मुक्त रहेगा
0: जी,
1: मन जितना किसी भी बुरी बात के प्रभाव से मुक्त रहेगा, या सहज भाषा में कहें मन जितना शांत है तो बुद्धि उतनी एक्टिव है, बुद्धि की जो ग्रहण शक्ति है बहुत बढ़ी हुई, बहुत सेंसिटिव है उसके बारे में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ उसको ग्रहण कर रही है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेगी, कुछ भी बाहर नहीं फेंकेगी। तो फाइनल बात यही है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अब जैसा आपने पूछा, ये बातें कुछ हो गई हैं बच्चों के सामने, अब बच्चों के पास ना तो और तरह का ज्ञान है कि वो उसको अवॉइड करें, उससे मुक्त हो जाएं, लेकिन हम उन्हें कुछ अवेयरनेस देंगे और बच्चे इस पे ध्यान देंगे तो बच्चे उस बात से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। मान लो उन्हें कोई चीज चाहिए थी, उन्होंने बाजार में कोई चीज देखी और मम्मी से जिद की मुझे यही चाहिए, अब मम्मी के पास पैसा नहीं है या वक्त नहीं है कि वो उसको खरीद के लाके दे दे, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ धैर्यता धारण करनी है कि कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को अपनी इच्छा बता दी है और मम्मी तो मेरी बहुत अच्छी है, सदाई मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने का ख्याल रखती है, आज नहीं तो कल वो ला देगी, ठीक है मुझे वो चीज मिल जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा, इससे इससे मन शांत होगा और उसे वो चीज मिल भी जाएगी।
0: मतलब बातें कहीं पे भी हुई हो, चाहे घर में मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ कोई बात हो गई है, या स्कूल में अपने साथियों के साथ कोई बात हो गई है, तो उस बात को वो पकड़ के ना रखें, और यदि कोई नेगेटिव कमेंट दे भी दिया गया है तो उसी का चिंतन ना करते रहें, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव कर दें कि चलिए ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, अभी समय है स्टडी करने का, मुझे पूरी तरह फोकस करना है।
1: बड़े बच्चे हो गए, अभी 9th में, 10th में, 12वीं में आ गए हैं, अभी ये बच्चे समझदार हो गए हैं, अभी इनके ऊपर घर की बहुत सारी घटनाओं का भी इफेक्ट होता रहता है। मान लो बच्चा गरीब घर से आया है और आज स्कूल में किसी चीज की जरूरत थी, मान लो यही था कि बच्चे टूर पर जा रहे हैं और हर एक को 500-500 रुपए जमा करने हैं, लेकिन इसने जब घर में ये बात कही तो इसको उत्तर निराशात्मक मिला है। अब इसके मन पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हो गया है, वो भी जानता है मेरे माँ बाप के पास 500 रुपए इस समय नहीं है, लेकिन उसके मन में जो एक उलझन सी हो गई, एक परेशानी सी कि सब बच्चे तो देखो पिकनिक पे जाएंगे या कहीं टूरिंग पे जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊंगा, तो एक एक निराशा जो उसके मन की एकाग्रता को भटका रहे। ऐसे ही मान लो घर में कोई टेंशन की बात आ गई है, कोई विवाद चल रहा है, कब बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ गए हैं, या उसके माँ बाप के बीच में कुछ मन मुटाव है, तो वो भी उनके मस्तिष्क पर, उनके मन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है और इससे भी बच्चों की जो एकाग्रता है वो नष्ट होता है, इसमें भी उनको कुछ अच्छे ज्ञान की जरूरत होगी।
0: जी जी जी, तो परिवार में भी जब इस प्रकार की निगेटिव एटमोसफियर, जैसे आपने कहा, यदि पेरेंट्स के बीच ये चल रहा होता है तो भी बच्चे के मन में कहीं ना कहीं चलता है। तो भ्राता जी, एक बात तो ये हुई कि ये जो चारों तरफ या आजकल एक मास एक साल पहले की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उसकी एकाग्रता को भंग कर रही है, जिसके कारण से वो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थी की एकाग्रता को भंग कर रहे हैं?
1: इसमें ही मान लो उनकी नींद बहुत अच्छी नहीं हुई, रात को स्वप्नों से भरी नींद थी, या किसी कारण से उनको 2-4 बार जागना पड़ गया, कोई बीमारी थी, बाहर कोई आवाज थी, कोई अपने अंदर की ही उनकी आहट उनको साउंड स्लीप न लेने दे, तो इससे ब्रेन पर इफेक्ट आता है, इससे भी उनकी एकाग्रता भंग होती है। कई बार बच्चों के अपने हेल्थ में भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी हेल्दी तो रहे नहीं है, बचपन से ही कईयों को तो कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी उन्हें इरिटेट किए रखती है, और ये इरिटेशन उनकी एकाग्रता को नष्ट करता है। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं, कहीं उनके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही हो, अब बच्चे तो फ्रेंड शुरू से ही बन जाते हैं, लड़के लड़की सब होंगे, उनसे उनको धोखा मिल रहा हो, मिसबिहेव मिल रहा हो, एक दूसरे की जो अपेक्षाएं थी उस पर वो खरे न उतर रहे हो, बुरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, गाली गलौच भी दी जा रही हो, उसे मन उनका भटकता है अवश्य। अब बात यह है कि इनसे मुक्त कैसे होना है।
0: जी जी जी,
1: असली बात तो ये, तो वही बात मैं दो चार टिप्स देना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को।
0: जी।
1: एक तो सभी विद्यार्थी पास्ट के इफेक्ट को साथ साथ समाप्त करते चलें, जो बीत गया है 3 मास पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसकी जो छाया, उसका जो इन्फ्लुएंस इनके मन पे रहता है उसको हटाएं, और इस विचार से हटाएं कि जो पास्ट हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है।
0: जी।
1: जो पास्ट हो गया वो अब दोबारा भी नहीं होने जा रहा है, वो तो 1-2 मास पहले या 1-2 साल पहले की बात हो गई।
0: बहुत अच्छा सर्वे आया था भ्राता जी इस पे, और उस सर्वे में ये कहा गया था कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में, और केवल 5% ही वो प्रेजेंट में रहता है। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पास्ट का प्रभाव सचमुच बहुत ज्यादा शायद विद्यार्थियों पर,
1: और यही हमने भी सीखा और हम सबको सिखाते हैं कि एंजॉय योर प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। देखिए भविष्य तो हमारा उज्जवल हो ही जाएगा अगर वर्तमान हमारा सुंदर है, और ठीक है भविष्य का थोड़ा हम टारगेट भी रखें, उसकी प्लानिंग भी करें, लेकिन चिंताएं नहीं, उसको निगेटिव स्वरूप ना होने दे। लेकिन ये जो बात हो गई है विद्यार्थियों पर भी, क्योंकि कई विद्यार्थी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कोई बात अगर उनके मानस पटल पर एक बार छप गई तो उसको डिलीट करना उनको आता नहीं है, तो सुंदर विचारों से ही पुरानी छाप डिलीट हो जाती है। हम सुंदर विचार करेंगे, मान लो पास्ट के बारे में हमने यही सोचा कि भाई किसी ने हमसे बहुत बुरा व्यवहार किया था, हमें अपशब्द कहे थे 4 लोगों के बीच में, उससे हमारा ईगो भी हर्ट हुआ था, हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंची थी, उससे हमारी खुशी भी चली गई थी, हमारा मूड भी ऑफ हो गया था, लेकिन अब उसी में हमें थोड़ा ही रहना है, हमारा हर दिन बहुत सुंदर है, हम हर दिन को एंजॉय करेंगे, वो तो बीत गया, वो तो आने वाला नहीं है, तो उसी मूड को लेकर हम क्यों रहें। तो ऐसे सुंदर विचार कि मुझे तो वर्तमान को एंजॉय करना है,
0: वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो है ही नहीं, वहां से हम कोई चीज अच्छी चीज सीख लें, आगे बढ़ें और उसे लेकर के यदि चलते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट भी प्रभावित होगा, और प्रेजेंट प्रभावित हो रहा है मतलब फ्यूचर भी हमारा प्रभावित हो रहा है।
1: इस तरह उस हर बात के लिए जिसने मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट किया है
0: उसे हम

0: टीवी है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मूवीज देखी जा रही हैं, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा समय बिताया जा रहा है, तो वो चीजें जो वो देख रहा है, वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती हैं, इस कारण भी वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता।
1: हाँ
0: आप
1: नहीं, ये तो परम सत्य है।
0: जी
1: केवल टीवी की बात ही नहीं, बाजार से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड,
0: जी
1: होर्डिंग्स, उन सब में कुछ गंदे चित्र, ये उनकी दृष्टि को आकर्षित करते हैं।
0: जी
1: और एकाग्रता का संबंध मनुष्य की दृष्टि से भी है। जो कुछ वो देखता है उसमें भी उसकी एनर्जी जाती है, तो ब्रेन की एनर्जी डाइवर्ट हो रही है भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में,
0: जी
1: इससे भी एकाग्रता बहुत भंग होती है बच्चों की। तो कोशिश करें, चाहे टीवी चाहे और किस चीज पे, ऐसी चीजों को ना देखें। आपकी बात सुनकर मुझे एक अनुभव याद आ गया।
0: जी
1: एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि मुझे अनेक बार रोज ऐसा लगता है मेरा ब्रेन ब्लॉक हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते पढ़ने की इच्छा नहीं,
0: जी
1: मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ते पढ़ते मन में नीरस था, तो जैसे ब्लॉकेज हो गया है। तो मैंने उसे बहुत सारी चीजें पूछी, कितना सोते हो, मुझे
0: जी
1: लगा कहीं ये कम सोता हो, कितने बजे सोते हो। जब मैंने पूछा तो कहा 1 बजे सोता हूँ, उठते कितने बजे हो, 8 बजे उठता हूँ। मैंने
0: जी
1: कहा क्यों 1 बजे क्यों सोते हो भाई तुम, हाँ हूँ करते करते आखिर बता दिया मुझे आदत पड़ गई है, 10:30 बजे नेट खोल लेता हूँ, फिल्म देखने लगता हूँ, 1 बजे तक सोता हूँ। अभी जब जब सोता हूँ तो नींद में वही सीन आते हैं।
0: जी
1: अब मैं समझ गया कि न इसकी गहरी नींद होती है और जो ये गंदी फिल्में देखता है उससे इसका मन बिल्कुल डाइवर्ट होता जा रहा है,
0: जी
1: तो ब्रेन में ब्लॉकेज प्रारंभ हो रहे हैं। तो मेरे को कहने लगा क्या करूं मैं।
0: जी
1: मैंने उसको हंस के कहा कि अगर अपने को बचाना चाहते हो तो लैपटॉप पास के तालाब में फेंक देना आज ही जाके, ताकि क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है, अभी
0: हाँ
1: तुम चाहो ना चाहो तुम वही साइट पर जाओगे। तो ये ऐसी चीज विजुअल भी हो गई है
0: जी जी
1: जो बच्चों की एकाग्रता पर कम नहीं
0: बहुत
1: गहरी
0: ज्यादा
1: छाप छोड़ रही हैं।
0: जी।
1: इनसे उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो
0: जी
1: जहां ये चीजें विज्ञान की देन है, मनुष्य के लिए वरदान है,
0: जी
1: इस तरह मनुष्य इनको श्राप भी बना लेता है।
0: एक बहुत सुंदर बात भ्रता जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात मैं सुन रहा था उनके एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने अपने पूरे विद्यार्थी काल में कभी भी टीवी नहीं देखा,
1: हाँ
0: और आज ऐसा लगता है कि टीवी एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया और हमें ऐसा लगता है कि टीवी के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो भारत रत्न है, देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतने महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो यदि इतने महान कार्य बिना इनके कर सकते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग जो आज का है वो क्यों नहीं कर
1: देखिए, ये
0: सकता।
1: है कि उनके काल में टीवी थी भी कहाँ। हम जब पढ़ते थे, हमसे तो बड़े ही आयु के हैं, हमारे यहाँ भी टीवी दिल्ली में हम थे तो कहीं कहीं दिखाई देती थी। तो क्या होता है, जो चीज मनुष्य के सामने है उसको ही वो अपना साधन मान लेता है कि इससे ही मुझे सब कुछ मिलेगा, इससे ही मनोरंजन होगा, इससे इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेंगी, मेरी बुद्धि का विकास होगा। पर जब वो चीज नहीं है, तो देखिए मैं आपको एक बहुत गुहे बात और बता देना चाहता हूँ। मनुष्य का जो ब्रेन है ना, इसमें अनंत शक्तियां और अनंत ज्ञान समाहित भी है, इसमें भरा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमने हजारों साल में भी जो जानकारी प्राप्त की होंगी ना पास्ट में, वो हमारे वर्तमान ब्रेन में भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट है। हमारी जो एजुकेशन है वो तो उसको जस्ट एक्टिवेट कर रही है। तो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास एकाग्रता की शक्ति भी बहुत है। सच तो यही है कि अगर हम वेस्ट न करें अपने ब्रेन की शक्ति को, तो हमें हमें पढ़ने में तो बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आपने सुना हो कि बहुत सारे लोग संसार में अपने ब्रेन का 5% 10% यूज
0: यूज
1: करते
0: करते
1: हैं, इवन
0: हैं।
1: एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 30% यूज किया। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति 100% यूज कर ले तो ही
0: बिल्कुल
1: विल बिकम डाइटी,
0: डेफिनेटली
1: देवता बन जाएगा वो।
0: जी
1: तो इसका तरीका है एकाग्रता। व्यर्थ से अपने को मुक्त करना, तो ये
0: चीजें ही बेहतर जी। जैसे हम टीवी या इंटरनेट या मूवीज की बात कर रहे हैं, और बात हमारी हुई भी थी कि इसमें कहीं ना कहीं संयम बनाए रखें, क्योंकि जहां ये एक्सेस होता है वहां हमारी एकाग्रता को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। और यदि हम क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं तो अंदर वही चित्र चलते रहते हैं, वही मूवी चलती रहती है।

0: है वही सीरियल चलता रहता है कि आगे क्या होगा।
1: माँ एक चीज और मुझे कहनी
0: जी
1: है इस संबंध में
0: जी
1: कि देखिए, जो बच्चे लंबा समय टीवी देखते हैं, मान लो 4 घंटे रोज देखते हैं,
0: जी
1: अब कईयों को तो रुचि हो जाती है और भी ज्यादा देखते रहे, भोजन भी खा रहे तो टीवी देख रहे हैं, और भी कुछ सोने भी जा रहे तो टीवी देखते हुए, तो इससे एक बड़ा नुकसान हमारे विद्यार्थी वर्ग को हो रहा, हो तो सबको रहा है,
0: जी
1: पर हम विद्यार्थियों को इसके बारे में सावधान करना चाहेंगे कि क्योंकि वो 4 घंटे बहुत कुछ सुन रहा है,
0: जी
1: तो उसके अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जा रही है, क्योंकि उसकी चिंतन धारा वही है जो वो देख रहा है, जो वो
0: जी
1: सुन रहा है,
0: जी
1: तो उसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति दबती जा रही है, और हर मनुष्य के अंदर, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में
0: जी
1: बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, उसको हम खो रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो एक
0: जी
1: दिन वो हमारा साथ छोड़ जाएगी, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन चीजों से सीखने की बजाय, हमारे ब्रेन में ही बहुत कुछ है, हम नया क्रिएट करें, क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें, तो
0: जी
1: ये हमारे लिए कहीं भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा।
0: जी तो उसमें ज्यादा समय ना दे करके, एक सीमित समय दे
1: सीमित
0: करके, जितनी
1: समय,
0: आवश्यकता है अपने आप में रहें, अपने चिंतन को बढ़ाएं, अपने अध्ययन को बढ़ाएं, तो हमारे पास की आपने जैसे एक बात कही कि ब्रेन में हमारे पास इतनी एनर्जी है, उसको हम यूज कर पाएंगे, और हमारी एकाग्रता भी जहां भंग हो रही है वो भंग नहीं होगी। तो जी, और कुछ ऐसे स्थान हैं, बातें हैं जिनके कारण आज के विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता भंग हो रही
1: देखिए
0: है?
1: मुझे जो दिख रहा है, जो फोन कॉल मुझे आते हैं
0: जी
1: और बच्चे जो कुछ बातें सुनाते हैं, उसमें इनके अंदर वासनाओं का प्रकोप, रिलेशनशिप में निगेटिविटी, शुद्ध प्यार का बहुत ज्यादा अभाव, एक दूसरे को धोखा मिलना, तो ये जो रिलेशनशिप चल रहा आजकल, इसके कारण बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है,
0: आपने
1: और
0: जो
1: ये
0: बात कही दाता जी,
1: हाँ
0: आप बढ़ाएं तो उससे पहले मैं बीच में, मुझे एक बात याद आ गई। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमारे एक टीचर मित्र पढ़ा रहे थे, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, वो मुझे सुना रहे थे कि जब उन्होंने कोई होमवर्क दिया तो किसी लड़की के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि इसका बॉयफ्रेंड ये है, या किसी लड़के के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि 7th स्टैंडर्ड में ये
1: हाँ
0: हाल है। उन्होंने
1: हाँ
0: ये भी कहा कि 11th में एक लड़का क्लास से बंक करके वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। तो ये एक सच्ची, एक
1: हाँ
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस विद्यार्थी काल में यदि ये स्थिति रही कि हम अपने आप को वासनाओं की ओर ले चलेंगे, तो शायद एकाग्रता की
1: बिल्कुल,
0: बात तो
1: हाँ
0: बहुत दूर
1: बिल्कुल,
0: है।
1: इससे एकाग्रता भंग हो रही है, और
0: जी
1: मुझे ये बढ़ता नजर आ रहा है, प्रकोप के रूप में नजर आ रहा है, कहीं
0: जी
1: ना कहीं माँ बाप भी इससे बहुत दुखी भी हो रहे हैं, इसी कारण कई बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं जब उनके अफेयर्स पूरे नहीं होते,
0: जी
1: तो इससे विद्यार्थियों को बचाना, इसकी अवेयरनेस देना कि इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है,
0: जी
1: तुम्हारे संबंधों में न मिठास रहेगी, न उनमें प्योरिटी रहेगी, न तुम एक दूसरों को अपना प्यार और स्नेह और सम्मान दे पाओगे,
0: जी
1: इसकी अवेयरनेस उन्हें देकर उससे मुक्त करना, ये एक्चुअली हर व्यक्ति का, चाहे गार्जियन है चाहे शिक्षक है, अवेयरनेस दी जाए।
0: शायद ये उस
1: हाँ
0: समय का उनका एक शारीरिक परिवर्तन का दौर
1: हाँ
0: होता है, तो
1: नहीं
0: ये
1: ये भी ठीक
0: आकर्षण
1: है,
0: उनमें लाजमी
1: हाँ
0: है
1: ये
0: संभवतः।
1: आजकल बच्चों में होने लगा है,
0: जी
1: जो प्राचीन चीज थी, जो मेडिकल हमें कहता था कि बच्चों में 15 साल के बाद, 16 साल के बाद कन्याओं में परिवर्तन होगा, अब ये उससे बहुत जल्दी होने लगा है,
0: जी
1: 10 साल में भी होने लगा है, तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन उनमें हो रहा है, लेकिन अगर उनको एजुकेट किया जाए इस संबंध में
0: जी
1: कि महत्व तो इसका नहीं है, महत्व तो किसी और चीज का है,
0: जी
1: तुम्हारी पढ़ाई का
0: पढ़ाई का
1: है,
0: है,
1: तुम्हारी कंसंट्रेशन का है, तुम्हारे
0: बिल्कुल
1: सुंदर विचारों का है, ये चीज तो चलती रहेगी, तुम बाद
0: जी
1: में भी कर सकते
0: जी
1: हो,
0: जी
1: तो यहाँ भी हम केवल इस चीज को स्वीकार न कर लें कि ये हो रहा है और ये बढ़ रहा है, ये तो सत्य है कि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट बहुत बहुत प्रभावशाली रूप से
0: जी
1: भारत के जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी, उनके मानस पटल पर छाता जा रहा है,
0: जी
1: परंतु हमें इसकी अवेयरनेस उन्हें देना, इसके जो
0: लाना
1: कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनके बारे में जागरूकता लाना, ये
0: जी
1: बहुत आवश्यक है, क्योंकि विदेशों में जो कुछ हुआ
0: जी
1: स्वतंत्रता के नाम पर, लेकिन वहां के लोगों की मानसिक स्थिति अब इतनी दयनीय है कि डिप्रेशन के केस, अनिद्रा के केस, साइकेट्रिक पेशेंट,
0: जी
1: इनकी संख्या
0: बहुत
1: वहां
0: बढ़ती
1: इतनी
0: जा
1: ज्यादा
0: रही है।
1: है,
0: जी
1: हमारे एक शहर के और उनके पूरे देश के बराबर है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस एजुकेशन देना परम आवश्यक है।
0: बहुत सुंदर चर्चा भ्राता जी आपने की है कि किस प्रकार एकाग्रता बहुत आवश्यक है हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए और किन किन कारणों से ये नष्ट हो रही है। आज समय का यही समाप्ति हो रही है, समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। भ्राता जी एकाग्रता पे इतनी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपने देखा कि एकाग्रता वास्तव में विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बहुत बहुत आवश्यक है। एकाग्रता सीधे ही हमारी सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी हम में से नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं असफल रहूं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मार्क्स कम हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लोग उस पे कमेंट्स करें इस कारण कि वो विफल हो गया, असफल हो गया। लेकिन सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। इसलिए हम ये ठान लें कि जैसे अर्जुन केवल पक्षी के नेत्र को देख रहा था इसलिए वो सफल हुआ सभी कौरवों और पांडवों के बनिस्पत, वैसे ही हम अपने विद्यार्थी काल में अपने आप को पूरी तरह एकाग्र रखेंगे अपनी पढ़ाई पर। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

प्रोग्राम सुप्रभात सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आपू क्षमा चाहेंगे कि थोड़ी देर से पहुंचे और उम्मीद है कि आप सभी बहुत बहुत बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज पंचांग के अनुसार दिन विशेष के बारे में जान लेते हैं। 3 अक्टूबर 2026 का दिन है। शक संवत 1948 अश्विन कृष्ण सप्तमी शनिवार है। विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 3 अक्टूबर सन 2026। सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु है। राहु काल सुबह 9:10:30 तक है और सप्तमी तिथि है प्रातः 7:59 तक उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ है। आद्रा नक्षत्र अगले दिन मध्य रात्रि के बाद 1:29 तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ है। बरियान योग दोपहर 3:21 तक उपरांत परिद योग का आरंभ है। भवकरण 7:59 तक उपरांत बालवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात मिथुन राशि पर संचार करेगा। और आज 3 अक्टूबर के दिन हिजरी 20 जुमेरात सूर्या है। आज के दिन बंगला 17 है। तो आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हुए बहुत अच्छा गाना सुनते हैं, फिर मुलाकात होगी इस अल्पविराम के उस पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। अभी वक्त हो गया है मौसम जानकारी जानने का, हमारे आसपास के मौसम का हाल जानने का। तो चलिए वेदर रिपोर्ट की ओर जानते हैं कैसे रहेगा मौसम, तापमान और कितना रहेगा और क्या बारिश के आसार होंगे वो भी जानते हैं। राजधानी जयपुर की ओर चलते हैं, यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उधर उदयपुर के अंचल में 22 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। आबू रोड में 20 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पाली जिले में जा सकता है। और वहीं पर जोधपुर में 22 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 38 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 22 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकता है। मेहसाना में 24 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 39 डिग्री। राजकोट में 23 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकते हैं। गांधीनगर में 24 डिग्री तक न्यूनतम तापमान और 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में। वहीं पर राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें, यहाँ पर 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता में थोड़ा बहुत बारिश हो सकती है, बाकी राजधानी दिल्ली तक जितने भी वेदर रिपोर्ट्स हमने जाना यहाँ पर बारिश होने की कोई आसार नहीं दिख रहा है। कोलकाता में 35 डिग्री अधिकतम तापमान, 27 डिग्री तक क्षमा करें न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है। बेंगलुरु में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। और मुंबई में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकते हैं। बादल छाए रहेंगे लेकिन आसमान साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। चेन्नई में भी 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। जिला सिरोही में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। फिलहाल भारत में जितने भी अंचलों के बारे में हमने जाना पूरे भारत में, तो आसमान साफ रहेगा हर जगह। कोलकाता में थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। तो हमने जाना मौसम की ताज़ा जानकारी। उम्मीद है कि आपका दिन खुशनुमा रहेगा और मौसम भी आपका साथ दे। मौसम चाहे जैसा भी हो, अंदर के मौसम अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका दिन खुशियों से भरा होना चाहिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है 8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। इस मोड़ पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे श्रोता पालनपुर से फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: तो आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी का और सभी रेडियो मधुबन परिवार को। तो ऐसे देखने को जाओ तो अभी बच्चों के अंदर भी एकाग्रता कम हो रही है। और हाँ, और आपने जो एक जो आपने जो प्रोग्राम सुनाया हमको, ये हमने सुना, और दूसरा के ये बच्चों के अंदर इतनी माता पिता को देख रेख करते, पढ़ाई लिखाई करते कि नहीं करते, किसी अपने फैशन में किसी कपड़े नए नए, जो नहाने के फैशन ही इतना बढ़ गया है कि मतलब एकाग्रता कम है, एकाग्रता कम हो गई इनकी। और दूसरा ये आ गया एंड्रॉइड का भी इस्तेमाल गलत तरीके करते, पढ़ाई लिखाई में ये लोग ध्यान नहीं देते। तो माता पिता को भी देखना चाहिए कि फिर अपना बच्चा क्या कर रहा
0: है। जी जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए फिरोज भाई, शुक्रिया।
1: तो एक साथी बोलता हूँ कि सदा भवानी सहाय करो, सन्मुख रहो श्री गणेश, पंच देवो मणि रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु ने वो सामने नवरात्रि भी आ रही है।
0: जी जी जी जी धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, ये सारे बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो, शुभ।
1: ओम शांति।
0: आइए यहाँ पर ले लेते हैं एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है 8:09 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आइए चलते हैं हम रेलवे इन्फॉर्मेशन की और आबुरो रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां अब से 4 घंटे तक। आगरा कैंट से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1, 2, 5, 4, 7 8:28 पर पहुंचने वाली है, 3 मिनट की मामूली देरी से चलती हुई। वहीं पर 8:30 पर आरावली एक्सप्रेस 1, 4, 7, 0, 2 पहुंचने वाली है। ट्रेन ऑन डिमांड 04174 संख्या वाली गाड़ी जो वेरावल से प्रयागराज तक जाती है, ये 8:45 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 1, 2, 4, 6, 1 9:05 पर पहुंचने वाली है। अजमेर एक्सप्रेस 1, 6, 2, 1, 0 9:10 पर पहुंचने वाली है। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1, 9, 2, 2, 4 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2, 0, 6, 9, 3 10:10 पर आबुरो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। 10:30 पर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2, 0, 4, 9, 6 पहुंचने वाली है। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 11:05 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 22965। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 1, 9, 4, 1, 2 11:30 पर पहुंचेगी। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 1, 4, 8, 2, 2 ये गाड़ी 11:40 पर पहुंचने वाली है। 57 मिनट देरी से चलती हुई योगा एक्सप्रेस 1, 9, 0, 3, 2 11:47 पर आबुरो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियां हमने जाना।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयों बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहां से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। और आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे शेयर मार्केट के साथ, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। वैसे 8 हफ्तों की लगातार गिरावट में निफ्टी करीब 8.7% और सेंसेक्स करीब 8.4% नीचे आ चुका है। सितंबर में भी सेंसेक्स निफ्टी में करीब 6% की गिरावट दर्ज हुई थी और सितंबर में भी विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार के खिलाफ रहा है। और बाजार पर सबसे बड़ा दबाव विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का है। 1 अक्टूबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भारतीय शेयर बाजारों में करीब 9,484 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, और इससे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो उनकी कुल बिकवाली करीब 34,965 करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। इसकी घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 1 अक्टूबर को करीब 10,042 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को सहारा देने की कोशिश की थी। ताजा जानकारी के मुताबिक सेंसेक्स वर्तमान समय 71,909.70 पर बंद हुआ है कल कारोबार बंद होने के समय, और गिरावट है -70.5 माइनस 0.05।

लगभग 7-9% की गिरावट दर के साथ। और अगर एनएसई निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी 22,421.95 के स्तर पर बंद हुआ है, -198.50 की गिरावट दर के साथ, यानी कि -0.88% तक के गिरावट दर के साथ। और एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसीज का हाल जानते हैं, 96.15 रुपए है वर्तमान समय, एक यूरो के मुकाबले 108.19 रुपए, एक जीबीपी के हिसाब से 127.29 रुपए हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो 111.21 रुपए है पेट्रोल हमारे देश में प्राइस, मुंबई के बारे में बात करें तो, लेकिन देखते हैं क्या कुछ है। राजधानी जयपुर में 113.19 रुपए यहाँ पर पेट्रोल प्रति लीटर है। डीजल के बारे में बात करें तो डीजल है राजधानी जयपुर में 98.25 रुपए, इसके आसपास हमारे आसपास भी दरें होंगे, रेट्स चल रहे होंगे। और एलपीजी 941.50 रुपए हैं घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं देश भर में, और थोड़ा बहुत इधर उधर प्राइसेस होगा, 945.50 रुपए है राजस्थान में, और 2,839 रुपए है कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं सिलेंडर, उसके 19 केजी का रेट है।

आइए सोने और चांदी के भाव के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। सोना है 24 कैरेट गोल्ड 1,73,571 रुपया 10 ग्राम के हिसाब से, 22 कैरेट है 1,59,093 रुपये, 18 कैरेट है 10 ग्राम के हिसाब से 1,30,270 रुपये। और वहीं पर चांदी के दामों के ऊपर नज़र डालते हैं, 1 किलोग्राम के हिसाब से चांदी का क्या कितना रेट्स चल रहे हैं, 2,34,900 रुपये है चांदी पर किलोग्राम। प्लैटिनम प्राइसेस पर 10 ग्राम है 53,510 रुपये। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पेट्रोल डीजल के साथ, सोने चांदी के साथ, और इसके साथ साथ हमने एलपीजी के बारे में, भारतीय मुद्रा जगत के क्या कुछ हालचाल है इसके बारे में भी हमने जाना। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत. मैं हूँ आरजे शुभा. एशियन गेम्स की बात करें तो 14वें दिन यानी कि 3 अक्टूबर को आज भारत का अभियान क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, गोल्फ और इसके साथ साथ अन्य गेम जैसे वॉलीबॉल समेत कई खेलों में जारी रहेगा. भारत के खिलाड़ियों के पास दिन में कई पदक जीतने के मौके होंगे. आज क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगी, जबकि पुरुष हॉकी टीम गोल्ड के लिए मलेशिया से भिड़ेगी. तीरंदाजी में कुमकुम मोहोड़ ने धीरज बमदेवरा और नीरज चौहान व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे और वहीं पर कुमकुम ने गोल्ड जीत लिया है. उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है और सलाम करते हैं. हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं जब हमारे खिलाड़ी भारत के लिए पदक जीतते हैं. और वहीं पर आज कुश्ती में दीपक पुनिया, सागर जगलान, मनीषा और अंतिम और अमन जैसे पहलवान चुनौती पेश करेंगे. गोल्फ में अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्ष और वीर अलावत सप्तक तलवार और युवराज संधू अपना चौथा और अंतिम राउंड खेलेंगे. दिन की शुरुआत गोल्फ से होगी. महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के साथ चौथे और अंतिम राउंड में अदिति अशोक और दीक्षा डागर और प्रणवी उर्ष उतरेंगे और यह मुकाबला रात 2:40 पर शुरू हुआ है. और पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और टीम स्पर्धा का चौथा राउंड भी 4:45 पर शुरू हो चुका है. तो ये कुछ बातें जो आज के साथ जुड़ी हुई है एशियन गेम्स के साथ. और शाम को 3:30 आप पुरुष स्वर्ण पदक मुकाबला भारत बनाम मलेशिया देख सकते हैं हॉकी के लिए. और तीरंदाजी 10:15 पर भी है. और इसके साथ साथ कुश्ती के मैचेस भी है, ताइक्वांडो के मैचेस भी है, गोल्फ भी है. तो इस प्रकार से आप शेड्यूल भी देख सकते हैं भारत क्या क्या आज खेलेगा. अमर उजाले के वेबसाइट पर भी आप हिंदी में इसे देख सकते हैं. तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी एशियन गेम्स के साथ. आइए लौटते हैं, हम कुछ जॉब्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. अगर बात करें टेक्नीशियन और असिस्टेंट समेत 112 पदों के बारे में, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी में नॉन एग्जीक्यूटिव के 112 पदों पर भर्ती निकली है. और इसमें टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, मशीन टेस्ट के साथ साथ मैकेनिक, जूनियर ड्राइवर समेत 16 पद शामिल हैं. आवेदन 11 अक्टूबर तक है और टोटल 112 पदों पर भर्ती होगी. अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है. www.mecl.co.in पर आप करियर सेक्शन में जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो आप MECL के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं. चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और पद के अनुसार स्किल स्टेट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. और वहीं पर संघ लोक सेवा आयोग UPSC के जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ ऑफिसर और इसके साथ साथ स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 सहित कुल 13 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2026 को. upsconline.nic.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन पद के लिए शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर आयोग भर्ती परीक्षा भी आयोजित कर सकता है. पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक संबंधित विषय में डिग्री या फिर निर्धारित स्नातक तौर योग्यता होना चाहिए. पद के अनुसार अधिकतम आयु 38 से 48 वर्ष निर्धारित है. सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए
₹25 महिला SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क छूट कर दी गई है। UPSSC भर्ती लॉ ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पद के लिए वैकेंसी है। और वहीं पर IBPS के लिए लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। हिंदी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने हिंदी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन शुरू किया है। 23 सितंबर से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2026 है। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी व अंग्रेजी में निर्धारित विषय संयोजन के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। और आयु सीमा है 1 सितंबर 2026 के आधार पर न्यूनतम 23 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। www.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹1000 है। इसके साथ साथ लास्ट डेट 3 नवंबर 2026 से इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर आवेदन शुरू है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप सी के तहत स्टोर कीपर और इंजन ड्राइवर, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा है 18 वर्ष न्यूनतम आयु, पद के अनुसार अधिकतम आयु 27 से 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। और joinindian यानी कि join indian फिर -coastguard.cdsc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है आवेदन करने की, अंतिम तिथि है 3 नवंबर 2026। और वहीं पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कुल 1285 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इनमें कांस्टेबल के 1075 और हेड कांस्टेबल के 210 पद शामिल हैं। कांस्टेबल के लिए 1075 और हेड कांस्टेबल के लिए 210 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 है। 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच अगर आपका आयु सीमा है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, ट्रेड स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। www.crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और वहीं पर लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2026 से इंजीनियरिंग की डिग्री पा चुके युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका है। UPSC ESE 2027 के लिए 480 पदों पर भर्ती है। 6 अक्टूबर तक कर सकते हैं अब आवेदन। upsc.gov.in पर जाकर के इसके बाद ESE 2027 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए और इंजीनियरिंग शाखाओं में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ESE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है। लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2026। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी जॉब्स के साथ। लेते हैं यहाँ पर अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के बाद और जानते हैं आसपास के घटनाक्रमों के बारे में, सूचनाओं के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अपन आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम। बात करें अगर रेवदर के बारे में, छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना के आवेदन शुरू है। केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 30 नवम्बर। अगर चुनावों के बारे में बात करें, पंचायत चुनाव तो कालंद्री, मंडार और भावरी नई पंचायत बनने से 5 के बजाय 8 बनेंगे प्रधान और इसमें भी 4 महिलाएं होंगी प्रधान। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, 109 महिला सरपंच और 991 महिला पंच करेंगी प्रतिनिधित्व। अगर रेवदर के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत कुल 31, 15 महिला सरपंच, 323 वार्ड में 148 वार्ड पंच महिला। वहीं पंचायत समिति सिरोही में ग्राम पंचायत 21 और 10 महिला सरपंच, 193 वार्ड में 87 वार्ड पंच महिला। शिवगंज में पंचायत ग्राम पंचायत 28 महिला सरपंच 14 और 292 वार्ड में 128 वार्ड पंच महिला हैं। तो इस प्रकार से इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में पद आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ साथ आइए कुछ बातें जान लेते हैं। जिला स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता 6 अक्टूबर से पोलो ग्राउंड में होगी। आबू रोड में रोजगार शिविर आज और 17 से ज्यादा कंपनियों देंगी नौकरी का मौका। 8वीं से स्नातक ITI और डिप्लोमा पास युवाओं को सीधी भर्ती। जिले के शिक्षित और तकनीक योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3 अक्टूबर को आबू रोड स्थित आदर्श कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में 1 दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट और रोजगार सहायता शिविर आयोजित होगा। जिला रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में होने वाला शिविर सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसमें राजस्थान और गुजरात की 17 से अधिक निजी कंपनियां और औद्योगिक इकाइयों युवाओं को सीधी भर्ती और प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के अवसर दिया जाएगा। रोजगार माला 2026 आदर्श कॉलेज में है। 3 अक्टूबर आज सुबह 10 बजे से। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। आइए यहाँ पर हम सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। फिर मुलाकात होगी कल गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
3: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
1: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
6: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
7: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
8: मेरा नाम पूजा जागा, मैं ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
7: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: अरे रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरण उपरांत हजारों दान पुण्य पूजा पाठ से

विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछते हुए नियति किचन से निकलकर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था उसका। सितंबर अक्टूबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। बस थोड़ी देर पहले पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण करके घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की बहुत प्रशंसा की थी, विशेषकर उसकी बनाई हुई खीर सबको बहुत पसंद आई थी। सभी अतिथि तृप्त होकर गए थे, इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी नीति के चेहरे पर। कहते यदि पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाए तो समझ लीजिए आपके पितर भी तृप्त हो जाएंगे। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर। तो सब इतनी प्रशंसा कर रहे थे खीर की। बुदबुदाते हुए नियति एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को मीठा अधिक पसंद नहीं था, पति और बच्चे भी मीठे से अधिक चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे, वो थे नियति के ससुर जी स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते और उमा जी भी बहुत प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद तो सब कुछ बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत मन कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना घर में आपके अलावा और कोई भी खीर नहीं खाता, अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत काम रहते हैं घर में, मेरे बहुत जिम्मेदारी है और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। बहुत से इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करके बहुत रोए। बस उस दिन से उन्होंने नियति से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मन पसंद भोजन यदि ब्राह्मणों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी, उनकी मन पसंद खीर जो बनाई थी आज। नियति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार यह आवाज नियति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज थी। नियति थरथर कांपने लगी। उसने सुना था कि पितृ पक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे नियति के हाथ से खीर की कटोरी छटक कर भूमि पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उससे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उसके आंखों से पश्चाताप के अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी, सब कुछ एकदम शांत। अशांत था तो बस नियति का मन। वो अब ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से भी कभी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों की जीते जी सेवा करिए, मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत ही बेहतर रहेगा जीते जी सेवा करना। तो ये सिर्फ एक नियति की बात नहीं है, ये हम सभी पर लागू होता है कि हमारे भी जो बुजुर्ग हमारे घर में है, जो हमारे पूर्वज हमारे घर में है, जो बुजुर्ग है, उनका कभी दिल नहीं दुखाए और उनके भी मन पसंद को ध्यान में रखा जाए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए सुनते हैं फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: वनी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में, जी हाँ, अभी आपने एक लाइन गीत की सुनी है। तो बिल्कुल आज मैं आपको घरेलू उपाय हल्दी पर ही देने जा रही हूँ कि हल्दी कैसे फायदा करती है, कौन सी बीमारियाँ ठीक करती है जानेंगे आप। देखिए, अगर पेट में गैस बनता हो, ये अक्सर शिकायतें बढ़ती जा रही है लोगों की, क्या करें गैस्ट्रिक समस्या है, क्या करेंगे इसकी समस्या है, तो पीसी हल्दी और नमक दोनों ही बराबर मात्रा में लीजिएगा, ठीक है। और फिर उन्हें मिला करके पानी के साथ फाकी ले लीजिएगा। हल्दी पाउडर और नमक दोनों ही बराबर मात्रा लीजिए, समान मात्रा लीजिए, पानी के साथ इसकी फाकी ले लीजिएगा, तो गैस की समस्या, आपके जो पेट की गैस की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। अगला उपाय भी ध्यान से सुनेंगे। आंखें दुखती हो तो पीसी हुई हल्दी में आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके सफेद पतले कपड़े को रंग लीजिए। ये कपड़ा दुखती आंखों पर बांध दीजिए। अगर आंखें दुख रही है तो पीसी हुई हल्दी में आवश्यकता के अनुसार पानी डाल दीजिए और इसका लेप बना करके सफ़ेद पतले कपड़े को इससे रंग लीजिए। फिर यह कपड़ा दुखती आंखों पर बांध लीजिए तो दर्द में राहत मिलेगी। और अब मैं अपनी बहनों के लिए सुना रही हूँ, अगर स्तनों का दर्द है तो हल्दी की गांठ पानी में घिस लीजिए, इसका लेप करिएगा स्तनों पर, तो ये दर्द समाप्त हो जाएगा। भाई बहनों के भी बहुत समस्या रहती है, तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है। और भी सुनेंगे, अगर पुरानी खांसी है तो 250 ग्राम बकरी के ताजे दूध में 10 ग्राम हल्दी का चूर्ण पका करके ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इसमें 5 ग्राम शहद डाल करके लीजिएगा, पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 250 ग्राम बकरी के ताजे दूध में 10 ग्राम हल्दी का चूर्ण पका करके इसको ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इसमें 5 ग्राम शहद डाल करके लीजिएगा, मतलब पी जाइएगा, तो पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर गठिया के शिकायत है तो हल्दी के लड्डू बनाकर खाइएगा, गठिया का दर्द दूर हो जाएगा। गठिया वाव है तो हल्दी के लड्डू बनाकर खाने से गठिया वाव ठीक हो जाता है। चोट लग गई हो तो 1 चम्मच हल्दी फाक करके ऊपर से गरम गरम दूध पी लीजिएगा, ठीक है, चोट और सूजन ठीक हो जाएगी। अगर चोट लग गई है तो 1 चम्मच हल्दी फाक करके ऊपर से गरम गरम दूध पी लीजिए, तो चोट की सूजन और दर्द दूर हो जाएगा। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मधु जी,
1: हाँ जी, ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार, कैसे हो आप?
1: नमस्कार जी, बढ़िया जी। हाँ, वो चालू हो गई।
0: चलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अब घरेलू नुस्खे पूरे हुए हैं और आपसे शुरुआत कर लेते हैं, सुना दीजिए।
1: फिल्मी गाने हैं ना आज?
0: हाँ जी, फिल्मी गीत।
1: हाँ, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती

0: अब सच्चा लगता है वो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
1: बहुत बहुत आभार मधु जी, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया इसके लिए। हाँ जी, तो ये थे मधु जोशी, आबू रोड से। अंताक्षरी की आगाज हो चुकी है, अब यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो जरूर जुड़िएगा आप आशियाना कार्यक्रम में, अंताक्षरी में। तो आइए सुन लेते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: और रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
1: सुनो।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
1: आज मौसम बड़ा बहिमान है, बड़ा बहिमान मौसम आला, कोई तूफान है, कोई तूफान है मौसम।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज की थीम है पुराने पिक्चर के गीत, ठीक है, साफ सुथरे शब्दों वाले गीत आप सुनाइएगा। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे, और वडगांव के बस स्टैंड पे खड़ा हूँ अभी।
0: अच्छा, वडगांव जाना है? नहीं, वडगांव बस स्टैंड पर है, बाहर जाना है आपको?
2: गाँव है, वहाँ जाना है मेरे को, गाड़ी चलाना है वहाँ पर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो एक गीत गाता हूँ मैं।
0: हाँ जी जरूर।
2: आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, इस देश

0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है, आराम है हराम भाई, जो सो रहे हैं वो उठ जाइएगा, है ना। ये गीत सुनने के बाद तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी कि हम सोए रहे। खैर अभी इतनी ठंड नहीं है कि इतने लेट तक कोई सोए रहे, हाँ बच्चों की बात अलग है। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुटना चाहेंगे। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सुई चार बहुत ही अच्छा लगा, और सभी को नमस्कार। और पहला गीत मेरा ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही
0: सुंदर है,
1: जागो उठ कर देखो, जीवन जो उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी को नमस्कार, ओम शांति
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया है। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है, सत्यम शिवम सुंदरम, सचमुच सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। हेलो हेलो, नमस्ते। जो भी जुड़ते हैं बात करने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज की थीम बहुत सुंदर है, पुराने पिक्चर के गीतों की थीम है। हेलो,
2: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते, ज्ञानेंद्र जी बोल रहे।

0: जी, अलीगढ़ यूपी से।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप ज्ञानेंद्र जी?
0: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं।
1: हाँ जी, हम अच्छे हैं। तो आज पुराने पिक्चरों के गीत के थीम है, आप पुराने पिक्चरों के गीत सुना सकते हैं।
0: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है दीदी।
1: हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी अलीगढ़ यूपी से, बहुत ही सुंदर आपने देशभक्ति गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हो। यहाँ मैं कोई अक्षर नहीं दे रही हूँ आपको। हेलो हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई,
2: गीत गाता हूँ मैं।
1: हाँ जी।
2: काशी देखी मथुरा देखी, देखे तीरथ सारे कहीं न

0: जोगी, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, तेरी द्वार खड़ा एक जोगी, क्या बात है। आप देखते हैं रेडियो मधुबन में जुड़ने के लिए कौन तैयार है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी मधु जी।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी, सुनाइए।
1: हाँ,

0: होता हो।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मधु जी, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है मधु जी ने। फिल्मी गीत और बना दोनों मिक्स कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत ही सुंदर गीत सुनाने के लिए आभार। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। थोड़ी देर सिंपल चलेगा, उसके बाद अंताक्षरी को थोड़ा चेंज करेंगे, इसलिए देखते हैं कौन जुड़ते हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: हाँ जी, ओम शांति। नमस्ते सुरेश भाई। अरे मैं आपका सच्ची में आपका मतलब इस डेयरिंग का सलाम करती हूँ कि आप कहीं पर भी जाओ लेकिन जुड़ते जरूर है।
2: अभी मैं बस में देता हूँ, हमारी बस पिकअप फिर भी मैंने कार्यक्रम छोड़ तो नहीं सकता कभी।
1: पैसेंजर भी बहुत पूछते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं।
2: हाँ, वो तो देख रहे हैं सामने आसपास वाले।
1: अच्छा,
2: हमको तो मजा ही लेना है, चाहे
1: जी जी जी
2: कोई हमको क्या फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है।
2: चलो ये भी कुछ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं भी एक गाना दे दूँ।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: फूल फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुझे चला तुझे चला। नमस्ते।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, क्या बात है। देखिए सफर कर रहे हैं, सफर में आप कह रहे हैं कि बस फुल भरी हुई है, यात्री लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, फिर भी वो रेडियो से जुड़ रहे हैं, इसे कहते हैं रेडियो के प्रति प्रेम। हेलो
3: हेलो।
1: हाँ जी मधु जी, नमस्ते।
3: हाँ नमस्ते जी।
1: हाँ जी
3: हाँ,
1: सुना दी।
3: लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके में, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके में, तुझको पिया ने
1: देख लिया हाय रे धोखे से,
3: मेरी जान जाती है झोंकता है।
1: थोड़ी सी गड़बड़ हुई है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की है। बहुत बहुत आभार आपका मधु जी। तो ये थे मधु जी आबू रोड से। वो कहते हैं ना कि देखिए थोड़े से शब्द इधर उधर स्लिप हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंताक्षरी में नहीं जुड़े। मैं तो इसको हिम्मत समझूंगी कि भाई हिम्मत है तभी आप खा के सुना रहे ना। देखो कितने श्रोता बंधु तो पहले ही डर के हार स्वीकार कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, जुड़ते नहीं है। हेलो।
4: हाँ जी दीदी, नमस्ते, ओम शांति।
1: क्या बात है सगुना बेन, नमस्ते, कैसे हो आप?
4: अच्छे हैं, अभी तो देखो मौसम का थोड़ा असर भी हो जाता है।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गई, नहीं जुड़ पा रहे तो कुछ तो शारीरिक व्याधि है भाई। देखो घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है।
4: हाँ
1: जी, तो तबीयत ठीक है अब आपकी?
4: सुनवा देती हूँ।
1: हाँ जी।

0: मेरा साथ है
1: तो मेरे बाबा का साथ मिल गया है तो अंधेरों में भी रोशनी मिल जाती है, मेरे ईश्वर का साथ सबको मिले।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ईश्वर का साथ सबको मिलता रहे, यही शुभ कामना हमारी भी है, शुभ भावना हमारी भी है। देखते हैं अब कौन जुड़ रहे हैं और अंताक्षरी में भाग ले रहे। भाई आज की थीम बड़ी अच्छी है, पुराने पिक्चर के गीत। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मधु जी नमस्ते। क्या बात है, आज तो लॉटरी आपकी लग गई भाई हाँ जी सुना दीजिए।
1: मेरे हाथ

0: है मैं लहूंगा अभी एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन रेडियो में जुड़ने की कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं बिंदास होकर के और अपनी पसंद का गीत सुना सकते हैं। अब देखते हैं कौन जुड़ रहे हैं और अंताक्षरी में भाग ले रहे हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और आज की अंताक्षरी की थीम बड़ी अच्छी है, पुराने पिक्चर के गीत, इन गीतों को आप सुना सकते हैं। अगर आप नए भी गीत सुनाने जा रहे हैं तो सुना सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे शब्दों वाले, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी हमारे श्रोता बंधु बहुत अच्छे गीत सुना रहे हैं, पुराने पिक्चर के बहुत ही अच्छे अच्छे साफ सुथरे शब्दों वाले, और कोई देशभक्ति गीत तो कोई किस तरह का, बहुत अच्छे चल रहा है। हेलो,
2: ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी, ओम शांति ज्ञानेन्द्र जी, कैसे है आप? अच्छा चलिए सुना दीजिए।
2: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।

0: से जाना है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। भाई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? पहले कहाँ कहाँ से फोन आते थे, आज भी याद आता है कि कोई कहाँ से दूर दूर से भी जुड़ते थे तो पास पास से भी। हेलो
1: हेलो जी।
0: हाँ जी मधु जी, सुना दीजिए।
1: हाँ जी, हाँ

0: tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna
1: nikle gais ka diwala aa mera sasura bada paise wa ala tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna tuntuna hat jao mat shor karo sutre ko mat bor karo sutra acha banda hai ana kala danda hai ऊंचे मिल का मालिक है छोटे दिल का मालिक है इतना धन कैसे आया मैं बोलूं ऐसे आया लेकर नाम नसीबों का लेकर नाम नसीबों का चूसा कौन गरीब का साधु बन कर ये डाला आ मेरा ससुरा
0: बड़ा पैसे वाला तुंतना तुंतना तुंतना क्या बात है मधु जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी आबू रोड से। बहुत सुंदर गीत सुनने के बाद अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-14-14। हेलो,
2: हाँ नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते।
2: बहुत अच्छा, सभी का एक संदेश हो रहा है
0: जी।
2: लगा रहे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: क्या है दीदी, जुना जो पुष्कर का गाना है बहुत अच्छा लगता है, पुराना गाना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: मेरा भी सुना दो गाना।
0: हाँ जी हाँ जी।
2: राम करे क्या हो जाए तेरी दुनिया
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, 10 बजे तक ये थीम रहेगी, उसके बाद हम थीम को चेंज करेंगे। इसलिए जो भी जुड़ना चाहते जुड़िएगा, जो भी लाभ लेना चाहते हैं लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये उषा दीदी कहीं डिफिकल्ट थीम नहीं दे दे रहे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इससे भी सरल रहेगी, ठीक है। हेलो,
3: हाँ जी दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी सगुना बहन, नमस्ते, ओम शांति।

0: करे।
1: बाबा बिना कोई दिल नहीं लगता है, हम क्या करें बाबा, आप बताए बाबा हम क्या करें।
0: बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, और देखते हैं अब कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो लिमिटेड श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं लेकिन बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़ जाइएगा भाई, हम तो सभी को इन्वाइट करते हैं, अब आपकी मर्जी। हेलो, हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: बहुत दिन से बोले तो ट्राई करके कोई फोन ही नहीं लग रहा था कि मेरे ख्याल से लाइन खराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा
0: था। नहीं नहीं, लाइन भी सही थी और फोन भी चालू है।
2: क्या मालूम, मैं आज 6-7 दिन से ट्राई करता, फोन ही नहीं लग रहा था।
0: अच्छा, तो फोन तो खराब नहीं हो गया?
2: क्या मालूम मेरा फोन खराब है क्या मालूम, आज तो लगा है।
0: चले चलो, अच्छी बात है, फोन लग गया।
2: कोई बात नहीं, मेरे सब मधुबन भाइयों को मुलाकात भी बहुत 6-7 दिन से नहीं हुई थी, सबको राम राम बोलने का। और आपको भी राम राम। और
0: जी राम राम आपको भी।
2: आज तो अंताक्षरी की थीम रहेंगे।
0: हाँ जी, पुराने पिक्चर के गीत, आप पिक्चर के गीत सुना सकते हैं।
2: पुराने तो कितने भी बोलो तो सुना देंगे आपको।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुनाइए।
2: तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल रहा वो संगम होगा कि नहीं।
0: नहीं, बहुत अच्छा गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे भूरा राम जी ओर से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है, तेरे मन की जमुना और मेरे मन की गंगा का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। और अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। हेलो,
3: हाँ नमस्ते जी।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई। हाँ जी,
3: चाहे कहीं
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर गीत आपने भी सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी है, पुराने पिक्चर के गीत। हेलो
4: हेलो,
0: नमस्ते मधु जी।
4: नमस्ते जी।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
4: हाँ,

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मधु जी। तो ये थे मधु जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। और क्या बात है, आज हमारे श्रोता बंधु लगातार जुड़ रहे हैं, इसलिए हम ब्रेक लेने का भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बोला तो फिर से फोन आ गया है, तो बात कर लेते। हेलो, आइए यहाँ पर अभी एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, आप थीम चेंज कर देंगे, ठीक है। हेलो
1: जी, नमस्ते, सुरेश भाई।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई। सुरेश भाई आप सुना दीजिए, उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़े से थीम को चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ जी सुना दीजिए। हाँ जी,
1: अजमेरे जाएंगे प्यारे को, ला ला ला ला।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और यहीं पर अब एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, ओए क्या पहुंचा दोगे हैं, ओए कहां पहुंचा दोगे, ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहां मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं। कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या, और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
4: हाँ जी, नमस्ते।
3: हाँ जी सुरेश भाई, ओम शांति। अब आप सुना दीजिए, उसके बाद मैं थीम बताती हूँ, सुनाइए आप।
4: अच्छा।
3: हाँ जी।
4: भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे
3: दोस्ताना हमारा।
4: भले चाहे दुश्मन। नमस्ते।
3: बहुत सुंदर। तो सुरेश भाई ने जो गीत सुनाया है आप भी सुन लीजिए सुरेश भाई। इस गीत में से अब आप जो भी गीत सुनाएंगे उसमें बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो आपके गीत में अब या तो दोस्ती आनी चाहिए या दुश्मन आना चाहिए या सलाम आना चाहिए। ठीक है, अब आप ऐसा गीत सुनाइए जिसमें या तो दोस्ती या फिर दुश्मन या फिर सलाम। हेलो।
5: हाँ जी।
3: हाँ जी मधु जी, नमस्ते।
5: नमस्ते जी।
3: हाँ जी मधु जी, सुनिए अब थीम चेंज कर दी है। अभी सुरेश भाई ने एक गीत सुनाया है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। ठीक है, अब इसमें से आप जो गीत सुनाओगे उसमें या तो दोस्ती आनी चाहिए या सलाम आना चाहिए या दुश्मनी आनी चाहिए।
5: मतलब
3: अब आप ऐसा गीत सुनाइए जिसमें या तो दोस्ती के ऊपर गीत हो या आपके गीत के अंदर दुश्मन शब्द हो या फिर सलाम शब्द हो।
5: जी जी जी जी।
3: हाँ
5: अच्छा, अच्छा।
3: नहीं तो मैं हिंट के लिए अभी आपको एक गीत सुनाई दूंगी, लेकिन अब आपको दिख रहा हो तो आप सुनाइए, आपको याद आ रहा हो तो आप सुनाइए, या तो दोस्ती पर सुनाइए या दुश्मनी पर या सलाम। आपके गीत में इन तीनों में से एक आध आना चाहिए शब्द, भले जमाना, जमाना भी आ सकता है।
5: अच्छा।
3: हाँ, इन दो में से एक शब्द को पकड़ करके आपको बोलना है गीत, आपके गीत के बीच में या स्टार्ट से आना चाहिए।

0: और हाँ, क्या बात है मधु जी,
1: जी
0: आपने कैच कर लिया गीत हो। हाँ, तो इसी तरह सुनाना है, ठीक है? तो हाँ जी, बहुत बहुत आभार मधु जी। तो मधु जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो आपके गीत में या तो दोस्त आना चाहिए या प्यार आना चाहिए। अब देखिएगा, और भी इन्होंने आगे की भी लाइन सुनाई है, तो उसमें से भी कोई भी आप शब्द पकड़ सकते हो, लेकिन गीत में वो शब्द आना ही चाहिए, ठीक है? या तो प्यार शब्द, प्यार को आप प्रेम में भी बदल सकते हैं, और दोस्त, ठीक है? तो इनमें से तो कोई शब्द आपको लेना ही है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। मधु जी ने तो गीत को कैच कर लिया, अब इस गीत को कौन कैच करता है? अरे भाई, दोस्ती पर ही सुना दीजिए, बहुत सारे गीत है। चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: अरे
0: अरे मधु जी, अभी कोई जुड़े नहीं है, अभी आपके गीत को किसी ने पकड़ा नहीं है। हाँ जी, ठीक है। फिर
1: अच्छा
0: नहीं, अभी किसी को जुड़ने दीजिए, फिर आपको लेते हैं, ठीक है?
1: इसके
0: क्या करेंगे?
1: बाद फिर मेरा ले लेना है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी
0: हाँ जी। तो अब देखते हैं, आप जुड़िएगा जरूर और इस गीत को पकड़ने की कोशिश करिएगा। आपका गीत, उसमें दोस्ती होनी चाहिए। भाई, दोस्ती को यार भी कहते हैं, ठीक है? तो होना चाहिए, या फिर प्यार, प्यार को प्रेम भी कहते हैं, ठीक है? हेलो,
1: हाँ जी दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्ते सगुना बहन, ओम शांति।
1: ओम
0: तो
1: शांति।
0: आप रेडियो सुन रहे हैं?
1: हाँ
0: हाँ, तो आपने समझ लिया होगा कि अब कैसे बोलना है।
1: हाँ प्यार के ऊपर कोई गाना आना
0: हाँ जी,
1: चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ जी,

0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: हाँ
0: क्या
1: इसलिए
0: बात है
1: ज्यादा मैं गाती थी क्योंकि समय भी थोड़ा समय का भी ख्याल करना चाहिए,
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: थोड़ी सी
0: जी
1: गाती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: ओम
0: हाँ जी,
1: शांति।
0: ओम शांति जी। तो देखिए, ये थे सगुना बहन, इन्होंने भी गीत को कैच कर लिया। बहुत सुंदर आपने भी गीत सुनाया है, जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो या तो आपके गीत में गाना आना चाहिए, या फिर जिंदगी आनी चाहिए, या फिर प्यार आना चाहिए। हेलो।
1: दीदी नमस्ते, सुरेश जी।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश
1: सर
0: भाई।
1: मैं सुना तो जिंदगी पर, क्योंकि जिंदगी पर तो कई सारे गाने, बहुत गाने हैं, तो सुना भी मैं
0: हाँ
1: गाना।
0: जी, जरूर।
1: जिंदगी की ना टूटे मेरी, प्यार कर ले हो, जिंदगी की ना टूटे मेरी,

0: जिसकी कोई कहानी न हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो बहुत ही सुंदर गीत आपने सुना है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो आपके गीत में या तो जिंदगी या प्यार या फिर घड़ी आना चाहिए, ठीक है, घड़ी दो घड़ी। और आंखें भी ला सकते हैं आप, उन्होंने आपने सुनाया ना, जिन आंखों में पानी नहीं, तो आंखें भी आप ला सकते हैं। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और इस गीत को कैच करते हैं। आपके गीत में या तो जिंदगी आना चाहिए या प्यार आना चाहिए या घड़ी आनी चाहिए या फिर आंखें आनी चाहिए या फिर जवानी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो कहानी भी ला सकते हैं, जवानी भी ला सकते हैं। अरे भाई, इतने सारे शब्द आपको मिल गए हैं तो और क्या चाहिए। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ, बुरा राम बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम।
1: अच्छा, आंखों के ऊपर बोलूं क्या?
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
1: तेरी आंखों के सिवा दुनिया मेरा का क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। ये
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कैच किया आपने भी गीत को, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भुराराम जी ओर से, बहुत सुंदर आपने भी गीत सुनाया, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। तो आप अपने गीत में आंखें ला सकते हैं, दुनिया ला सकते हैं। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी सुरेश भाई, नमस्ते।
2: मैं सुना तो दुनिया से।
0: हाँ जी,

0: समझ गए कि ये थीम किस प्रकार की है। हेलो हेलो, नमस्ते। चलिए, बात नहीं हो पा रही है, फिर से आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर थीम चल रही है अंताक्षरी की। हेलो, क्या बात है भाई, जो भी जुड़ रहे हैं बात करिएगा। देखिए, बात नहीं करते हैं तो आप ही समझ सकते हैं कि समय आपका और हमारा वेस्ट हो जाता है। हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते दीदी। मैं सुरेश भाई धानेरा से
0: हाँ जी,
1: आपको सभी
0: नमस्ते
1: दोस्तों को
0: नमस्ते
1: नमस्कार।
0: सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बहुत अच्छे हैं और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और कुछ न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे। तो दीदी, मैं थोड़ा सा बताओ कि जो हमारे भारत के जो समित मच्छर ने जो कई 180 के करीब जिंदगी बचाई, तो भारत और सभी गौरवान्वित थे और बहुत सुन के बहुत अपने आप को खुशी भी मिली कि चलो हमारे देश के एक नौजवान ने इतना अच्छा कदम उठा के लोगों के जीवन बचाया। दीदी, और
0: जी जी
1: शायद
0: जी
1: आपने विश ना होगा।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल।
1: हाँ जी, तो
0: वो कहते हैं अच्छाई
1: चलो।
0: अभी खत्म नहीं हुई है, तभी तो यह धरा टिकी हुई है।
1: हाँ वही तो दीदी, तो
0: जी
1: ये बात है दीदी। तो उन पर मैं एक गीत गाता हूँ। चलो, ये
0: सुनिए।
1: अंताक्षरी के जो थीम में है या नहीं पता नहीं, तो मैं गीत गाता हूँ।
0: देखिए, मैं आपको
1: देते
0: शब्द,
1: जहाँ की सजा में गीत वही का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काफी बुरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हो भारत।

0: बहुत सुंदर, आपने दुनिया पकड़ ली, फिर भी आपके गीत में दुनिया आ गया.
1: तो
0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने. ये थे सुरेश भाई धानेराव से. बहुत ही अच्छी बात भी आपने कही है और गीत भी सुनाया है. और सोचा था स्टार्टिंग की दो लाइन में नहीं आया, लेकिन बाद में आपने सुनाया उसमें दुनिया आ गए. तो अब आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और इस गीत को कैच करते हैं. हेलो
2: हेलो.
0: हाँ जी मधु जी, नमस्ते.
2: नमस्ते जी.
0: हाँ जी, अब आपको, आपने गीत सुना पहले तो ये बताइए.
2: हाँ सुना था ना, तो दुश्मन के इसका ही बोलना है ना अभी, अभी भी.
0: हाँ
2: अच्छा,
0: हे प्रीत जहाँ की रीत यहाँ. हाँ सुनाइए.
2: अच्छा हाँ, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी दुश्मन न करे
0: दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर कदम हमें इनाम दिया है.
2: दुश्मन न करे ओ.
0: चलिए बहुत बहुत आभार आपका. तो अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं. दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है. इनमें से आप दुश्मन, दोस्त, उम्र, गम, आप अपने गीत में कोई भी एक शब्द को पकड़ सकते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं. नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं. हेलो.
3: हेलो.
0: हाँ जी नमस्ते. हाँ जी सुरेश भाई. दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है. अब इनमें से आप कोई भी शब्द एक ले सकते हैं अपने गीत में.
3: गम आता है इसमें.
0: हाँ, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है.
3: हाँ,

0: दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। नमस्ते जी,
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो सुरेश भाई ने गीत को अच्छी तरह कैच किया है और बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। भाई दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी ए तेरा एतबार ना रहा। तो इनमें से एक शब्द को आप पकड़ सकते हैं, जिंदगी पकड़ सकते हैं, एतबार ले सकते हैं, दोस्त ले सकते हैं, प्यार ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और इस गीत को पकड़ते हैं। नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415। पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के गीत को आप बोल करके सुना सकते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते मधु जी।
2: ये तो जैसे सुनाया ना मैंने, उन्होंने कहा दोस्त ना रहा है, तो मैंने गा दिया था।
1: आपने सुना दिया था?
2: हाँ मैंने गा दिया ये वाला तो।
1: अच्छा चलिए, फिर भी इसमें से अब आप शब्द पकड़ के बोलिए।
2: हाँ जी, अब कौन सा गाना है?
1: अब भले दोस्त भले दुश्मन, भले एतबार भले गम भले प्यार।
2: गम, अच्छा प्यार हाँ। भी चलेगा ना?
1: हाँ हाँ चलेगा।
2: प्यार

0: करो।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार
0: जी
1: मधु जी। तो ये थे मधु जी आबू रोड से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन इस गीत के अंदर से शब्दों को पकड़ते हैं। हेलो, तो ओ राम जी प्यार करो। राम जी आप ला सकते हैं अपने गीत में, प्यार ला सकते हैं, फिर दर्द ला सकते हैं।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, मैं बाबूराज
1: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
0: खड़ी। जी
1: ओहो बाबूलाल जी, बहुत समय के बाद जुड़े, क्या बात है। स्वास्थ्य बढ़िया आपका?
0: हाँ,
1: आपकी तबीयत अच्छी है?
0: लग
1: बहुत समय के बाद जुड़े आप।
0: नहीं रहा था फोन में, माँ जी लग नहीं रहा था, अभी लगा ये।
1: अच्छा, और बाकी सब
0: हाँ
1: बढ़िया?
0: हाँ बढ़िया मैम।
1: हाँ जी, तो अंताक्षरी चल रही है। अंताक्षरी में गीत की थीम है, इसमें आपको या तो आपके गीत में राम जी आना चाहिए, या फिर दर्द आना चाहिए, या प्यार आना चाहिए, या गम आना चाहिए। हाँ
0: जी मैम, बोलता हूँ
1: जी,
0: मैं।
1: हाँ जी,
0: राम रणुजे वाला, रणुजे चुरिंदी वाट जोबू, राम रणुजे वाला, वे
1: सुनिए
0: लाया
1: बाबूलाल
0: लियो
1: जी,
0: राम
1: बाबूलाल
0: रणुजे।
1: जी सुनिए, आज है पिक्चर के गीतों
0: हाँ
1: की थीम, तो आप पिक्चर के गीत में से
0: पिक्चर का।
1: सुनाइएगा। हाँ जी,
0: हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे बाबूलाल जी खराड़ी उदयपुर से, बहुत ही सुंदर आपने गीत सुना दिया है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हेलो, तो जिंदगी भर का ये संगम है, तो आपके गीत में बंधन आना चाहिए, प्यार आना चाहिए, या फिर संगम आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और गीत को पकड़ते हैं। हेलो,
0: अभी भी नमस्ते सुरेश भाई, बुलता है जैसा नाते।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
0: हाँ मैं सुनाता हूँ।
1: हाँ जी,
0: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,
1: हमारा
0: तुम्हारा हमारा,
1: हमारा,
0: जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,
1: तुम्हारा हमारा।
0: तुम्हारा
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये थीम देखो, हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, मतलब ये थीम आपको पसंद आ गई है। तो बहुत ही सुंदर गीत सुरेश भाई ने सुनाया है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ठीक है, तो अब आपके गीत में या तो जन्म आना चाहिए, या फिर संबंध आना चाहिए बंधन, या फिर लेते जन्म दोबारा। हाँ, तो अब इस तरह का आना चाहिए, देखते हैं अब कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ते हैं। जन्म जन्म का साथ है, या तो आपके गीत में साथ आना चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो, नमस्ते जी,
0: हेलो।
1: मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कौन बोल रहे हैं?
0: बबला खाड़ी,
1: हाँ जी बाबूलाल जी, सुनाइए आप। जन्म जन्म का साथ है
0: बोलो।
1: तुम्हारा हमारा, तो आपके गीत में या तो
0: हाँ
1: जन्म आना चाहिए, या साथ आना चाहिए, या फिर लेते जन्म दोबारा, तो इस तरह का शब्द आने चाहिए, या तो जन्म या साथ। हाँ
0: हाँ अगर नहीं आएगा, अगर
1: जी,
0: पे नहीं आएगा दूसरी लाइन वाला। हाँ
1: हाँ ले लीजिए। हाँ
0: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना जमाना छोड़ देंगे हम।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार बाबूलाल जी। तो ये थे बाबूलाल जी उदयपुर से, बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब आपके गीत में या तो जमाना आना चाहिए, मिल जाओ आना चाहिए, या छोड़ना आना चाहिए। हेलो हेलो, जो भी जुड़ते हैं तो कोशिश करिएगा ऐसी जगह से बात करने की जहां तुरंत हमारी बात हो सके, नेटवर्क पकड़ सके। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी मधु जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
1: हाँ जी सुना दीजिए।
2: प्यार बोला है ना आपने,
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
2: अच्छा
1: हाँ, तो जमाना आना चाहिए या फिर छोड़ना आना चाहिए या मिलना आना चाहिए।
2: प्यार भी, प्यार का भी बोला था ना आपने।
1: ठीक है, प्यार को ले लीजिए।
2: हाँ जब

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका मधु जी। तो बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है मधु जी ने, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब आपके गीत में प्यार आना चाहिए या फिर डरना आना चाहिए, जब प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप आहें भरना क्या, तो आपके गीत में आहें आनी चाहिए। आप मतलब इन शब्दों को ले सकते हैं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आंखें भरना क्या, तो आंखें आने चाहिए या फिर चुप चुप के आना चाहिए। हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी मधु जी, अभी तो आप रख दीजिए, कोई एक बार जुड़ने दीजिए किसी को, फिर आपको लेंगे, ठीक है?
1: ठीक है,
0: हाँ जी, थैंक यू। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। कोशिश करिएगा आप अल्फिराम में भी जुड़ सकते हैं और ऑफ एयर ऑन एयर दोनों में ही जुड़ सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सगुना बहन जुड़ चुके हैं। नमस्ते सगुना बहन।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी, ओम शांति। सुना दीजिए।

मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सगुना बहन। तो अब आपके गीत में या तो गाना या फिर मम्मी या फिर लड़ना,

0: यह शब्द आना चाहिए। ठीक है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है जो अंतिम चरण पर है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जाते जाते चांस ले लो। बहुत अच्छी थीम है और गीत बहुत ही सुंदर सुनाया है सगुना बहन ने। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो आपके गीत में आप ठंड को ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, मम्मी को ला सकते हैं, गाने को ला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, क्या सोच रहे हैं? चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मधु जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी, तो सुना दीजिए।
1: कंकरियां मार के जगाया, रात शुरू में रे सपनों में आया, बाल माँ।
0: मधु जी रुके, आपके गीत में सुनिए, आपके गीत में देखो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो आपके गीत में या तो मम्मी आना चाहिए, या ठंड आनी चाहिए, या फिर पानी आना चाहिए, तो ऐसा गीत सुनाइए।
1: अच्छा।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कंकड़िया वाला नहीं चलेगा?
0: कंकड़िया तो आई नहीं है ना, कंकड़िया मार पिचकारी नहीं, कंकड़िया। अच्छा। तो आई नहीं है। ठंड ला सकते हैं आप, मम्मी को ला सकते हैं और पानी को ला सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी। अच्छा, से नहाना, नहाने।
1: अच्छा,
0: को ला
1: सकते हैं। पानी आ सकता है ना? पानी।
0: हाँ जी बिल्कुल, पानी आ सकता है।
1: अच्छा अच्छा

0: रुकिए रुकिए रुकिए माधु जी, ये भजन में आता है, कोई पिक्चर का गीत हो तो
1: अच्छा,
0: सुना ही है ना?
1: ऐसा नहीं, अच्छा पिक्चर के नाम देना है।
0: हाँ जी, आज थीम पिक्चर की है, ठीक है?
1: अच्छा,
0: हाँ जी, तुरंत ही सुना दीजिए आप।
1: जी जी,
0: भले आप पानी को
1: पानी से गा दिया क्या किसी ने?
0: नहीं गाया।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी।
0: सुनिए सुनिए मधु जी, इसी पर तो आप बोल रहे हैं ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, मम्मी को तो लड़ने का बहाना, इसी गीत में से शब्दों को पकड़ना है आपको, ठीक है?
1: टिप टिप टिप

0: टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई।
1: चलिए बहुत बहुत आभार आपका मधु जी। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाया, तो आपके गीत में अब या तो पानी आना चाहिए या आग आना चाहिए या टिप टिप आना चाहिए। हेलो, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम जो इस अंतिम चरण पर है। आपके पास 7 मिनट है, जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, और 5 मिनट के बाद थीम भी चेंज कर देंगे फिर से, ठीक है? तो देखते हैं कौन इस गीत को पकड़ता है। टिप टिप बरसा पानी, बरसा बरसा मतलब बरसात, बरसात को भी आप ला सकते हैं, टिप टिप को ला सकते हैं, पानी को ला सकते हैं, आग को ला सकते हैं। अरे भाई इतने सारे ऑप्शन है, क्या सोच रहे हैं? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये भी तो गीत है ना, बहुत सारे गीत है, याद करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग को प्रेशर देने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है कौन से गीत होंगे, तुरंत जुड़िएगा आप। तो आप पानी, आग, टिप टिप ला सकते हैं। हेलो
2: दीदी नमस्ते, सुरेश भाई जताना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: मैं गाना गाना था, आपने गा लिया
1: जी।
2: पानी रे पानी मिला दो लगे उसे जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जी दीदी
1: बहुत सुंदर। जी नमस्ते, तो चलिए इसी में से लीजिएगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिला दो तो रंग जैसा। तो अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब थीम चेंज कर देते हैं, मेरे को लगता है कि आप पर भारी पड़ रही है, जबकि बहुत सरल है, लेकिन अगर आप सुना सकते हैं तो सुनाइए, नहीं तो फिर अपने पसंद का गीत सुनाइए, ठीक है? क्या बात है, अरे भाई कार्यक्रम अंतिम चरण पर है, बस आपके पास 5 मिनट ही है, 5 मिनट में जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं और अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। शेर शायरी, दोहे, छंद, दोहे तो आज नहीं, छंद भी नहीं, आप शेर शायरी सुना सकते हैं क्योंकि आज है भाई पिक्चर के गीत। हेलो हाँ जी सुना दीजिए,
3: कौन सा सुनाऊं?
1: आपकी पसंद का सुना दीजिए या फिर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अगर रंग पर कुछ आ रहा है तो सुना दीजिए, नहीं तो आपके पसंद का गीत सुनाइए।
3: तो नहीं जैसे रंग के ऊपर कोई आए तो रंग के ऊपर सुना दो,
1: सुना दीजिए।
3: ओ रंग मत डाले,
1: भजन नहीं, भजन नहीं, भजन नहीं,
3: भजन में नहीं आना चाहिए।
1: हाँ जी हाँ जी,
3: तो कोई अपनी पसंद का सुना दो,
1: सुना दीजिए।
3: जी जी जी जी जी, पंखरिया मार के जगाया रात तू मेरी।

0: थी मैं सपनों में खोई थी मैं, ओ सोई थी मैं सपनों में खोई थी मैं, नींद टूटी तो बड़ा बड़ा रोई थी मैं, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, बाल माँ
1: तू बड़ा वो है, तू बड़ा वो है। क्या बात है मधु जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है मधु जी ने। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आपके पास 4 मिनट है, अब तो 3 मिनट ही रहे। देखते देखते समय भाग रहा है और आप क्या सोच रहे हैं। अरे जिसने एंट्री नहीं की हो अंताक्षरी में वो भी कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 मिनट है और आपके पसंद का गीत सुनाना है आपको। अब इतनी सारी छूट दे दी, फिर भी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमारे श्रोता बंधु भले आज कम जुड़े लेकिन बहुत ही अच्छी तरह जुड़े। कंटिन्यू प्रोग्राम चला और बहुत ही उमंग उत्साह से गीत सुनाया सभी ने। तो देखते हैं आपके पास है 2-3 मिनट, अगर 2-3 मिनट में आप कोई जुड़ते हैं और सुनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सुना देंगे क्या। आप कहेंगे आज तो उषा दीदी ने सुना ही नहीं, आज मुझे अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि आज हमारे श्रोता बंधु लगातार जुड़े हुए थे। तो अच्छा है ना, हम तो चाहते हैं कि आप जुड़िए और आप बोलिए, बाकी हमारा क्या, हम तो बोलते रहते हैं। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं। चलिए हम सुना देते हैं यहाँ पर। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,

0: मियाँ लमिया के घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
1: हाँ जी हेलो नमस्ते।
2: हाँ दीदी नमस्ते, ओम शांति।
1: हाँ सगुना बहन, अब कोई नहीं छुड़ेंगे तो फिर हम ही शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमने शुरू कर दिया।
2: मेरी पसंद का सुना दो दीदी।
1: हाँ जी सुना दीजिए।
2: गोरे

मैं समा हूँ तुहे परवाना, इसके एक लाइन अलग है, उस समय याद आई थी आप बोल रहे थे तब, अभी मैं भूल गई। हाँ, मुझसे पहले तू ढल जाएगा, ऐसा कुछ है। चलिए, बहुत बहुत आभार सगुना बहन, बहुत सुंदर। तो अब आपके पास एक मिनट है, अब देखते हैं एक मिनट में कौन चांस लेता है, उसके बाद दी एंड। हेलो, एक मिनट। वो कहते हैं ना कि जब चुनाव होते हैं तो एक वोट का सवाल होता है, एक वोट में। अभी हमने सुना है चित्तौड़गढ़ जिले में एक वोट से एक पार्षद जीत गए, सिर्फ एक वोट ही उनको ज्यादा मिला, उससे वो जीत गए, नहीं तो आज सोचिए आप बरोबर हो जाता, फिर से चुनाव होता। तो एक गीत का सवाल है, एक गीत बोलने से आप जीत सकते हैं, आगे जा सकते हैं, विनर बन सकते हैं, और एक गीत की कमी से आप रुक सकते हैं, हार सकते हैं। अब देखिए, हो गया समय समाप्त, अब कोई नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, अंताक्षरी कार्यक्रम। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां दी है, और बहुत ही सुंदर साफ सुथरे शब्दों वाले गीत सुनाए। खुशी तो इस बात की होती है कि जो रॉयल्टी में गाते हैं, जो रॉयल गीत सुनाते हैं, अच्छे साफ सुथरे शब्दों वाले गीत सुनाते हैं, तो वो खुशी सचमुच अद्भुत होती है। तो आज का विचार भी बहुत ही अच्छा था, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए, तो अंताक्षरी कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छी तरह चला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतने उमंग उत्साह से जुड़ते हैं, तभी तो ये हो पाता है ना, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा। भाई, रेडियो की कदर तब होती है जब आप जुड़ते हैं। तो चलिए, मैं नाम सुनाना चाहूंगी, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने दो बार प्रस्तुतियां दी है, फिरोज भाई पालनपुर से आप भी दो बार जुड़े हैं, सुभाष भाई महाराष्ट्र से आप एक बार जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपने भी दो बार प्रस्तुतियां दी है, सगुना बहन झोटाना से आप पांच बार जुड़े हैं, भूरा राम जी ओर से आप तीन बार जुड़े हैं, सुरेश भाई धानेराव से आपने एक बार प्रस्तुति दी है, बाबूलाल जी खराड़ी उदयपुर से आप दो बार जुड़े हैं, और आज के विनर है मधु जोशी आबू रोड से और सुरेश भाई झोटाना से, आप दोनों 13-13 बार जुड़े हैं। तो आप दोनों के लिए ढेर सारी, दोनों प्रथम आए हैं, क्या बात है, दोनों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे आप सभी जो श्रोता बंधु जुड़े हैं अंताक्षरी में, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े हैं, तभी तो विनर सेलेक्ट हुए हैं। भाई, मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़े ना पता चलता है, हार जीत कोई मायने नहीं रहती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बस एंजॉय करिए, रेडियो मधुबन से जुड़ करके आप इसका आनंद लीजिए। जो भी थीम आपको देते हैं, जो भी विषय आपके समक्ष रखते हैं, जो भी प्रश्न जवाब आपके समक्ष रखते हैं, जो भी पहेली सुनाते हैं, जो भी टंग ट्विस्टर सुनाते हैं, सबका आनंद लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, आप सभी के लिए भी ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती है, परमात्मा को अपना साथी बना लो तो चिंता की रेखाएं चेहरे पर नहीं आएगी। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे एक अच्छे से ही प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमे तेरी गुजरिया न तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साह, आज शनिवार की सुप्रभातम, कैसन है सब? बहुत नीक चंगे होंगे और सभी कहीं ना कहीं अब भाई गणपति जी तो विसर्जन हो गए और शुरू हो गई हमारा पुरखों का कहते हैं वो श्राद्ध। तो सभी अपने अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का श्राद्ध जरूर मनाएंगे, जरूर उनके लिए भोग लगाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और आप सबका स्वागत करती है प्रभा पंडिताइन, आपका अपना प्रोग्राम पंडिताइन में। आज शुरू करते हैं आज की बात। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है, उनके पास सब्जी खरीदे के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार बार आग्रह करे पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोनो कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, कहे कि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और कुछ देर सोचे के बाद वो एक थोड़ा मुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिख कर तराजू पर रख देती है। दुकानदार देख कर हंसे लगता है, फिर भी वो थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य, कागज वाला पड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है पर कागज वाला पलरा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार वो कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त आश्चर्य मत करो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो एक घंटे की हो या एक मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, मगर सच तो ये है कि परमात्मा को याद करे का कोनो समय नहीं होता,

कोई भी समय आप उनको याद कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना की जाए, जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसे आपका अंदर का अहम नष्ट होता है और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखिए और फिर देखिए प्रार्थना का कैसा असर होता है। जैसे वो भोली भाली माई ने भगवान पे डाल दिया तो उसकी तो पेपर ही से वजन कम नहीं हो रहा था। यानी भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। सकारात्मक सोच कोई परिस्थिति नहीं, एक शक्ति है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाती है। परिस्थितियों को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपने विचारों को बदलने की शक्ति हमेशा हमारे पास होती है। वाणी में मधुरता और व्यवहार में नम्रता, ये तो ऐसे गुण हैं जो किसी भी कठिन दिल को जीत सकते हैं। मौन कभी कभी मन को सबसे गहरा उत्तर देता है। क्रोध के एक पल में संयम रख लो, पश्चाताप के हजारों पल बच जाएंगे। जीवन में समय, भरोसा और जुबान बहुत संभल कर इस्तेमाल करिएगा। काहे कि एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। काका, समय, भरोसा और जुबान। आशा करते हैं आप इन बातों पर गौर करेंगे और इन बातों को जीवन में उतारेंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो बीते हुए कल को बोझ नहीं, सीख बनाकर साथ रखिए। समय बदलने का इंतजार मत कीजिएगा, अपने विचार बदल दीजिए। समय स्वयं सुंदर अनुभव होने लगेगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। लेट गो चलेगा। अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, समाधान खोजने में लगाइए। यहीं से बदलाव शुरू होता है। सकारात्मक सोच हर दिन को विशेष बना देती है। कामयाबी सिर्फ कदम बढ़ाने से नहीं मिलती, सोच के दायरे भी बढ़ाने पड़ते हैं, तब हमें कामयाबी मिलती है। तो देखिए भाई, कितनी अच्छी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कन रस के लिए मत सुनिएगा, मन में भी उतारिएगा ताकि ये जीवन में हमारे प्रैक्टिकल नज़र आए जो उन बातें हम करते हैं। आशा है इन बातों पे ध्यान रखिएगा। और ये बात पर चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। वापस सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।

सौ ना की ताकत, एक सच्ची सीख। कल मेरी बिटिया संस्कृति का फोन आया, जिसे मैं संस भी कहता हूँ, वो आजकल अमेरिका में है। उसने मुझे एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर मैं देर तक सोचता रहा और लगा कि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, हम सबके लिए एक आईना है। संस्कृति एमस्टर्डम में कोस्टको स्टोर गई थी। बाहर हल्की ठंड थी, लोग जल्दी जल्दी अंदर बाहर आ जा रहे थे। गेट के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था, मुश्किल से 5 साल का होगा। हाथ में चिप्स के कुछ पैकेट और गले में एक छोटा सा बोर्ड लटका था। बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, स्काउट चैरिटी के लिए सिर्फ $20 में। लोग उसके बगल से गुजर रहे थे, किसी को जल्दी थी, कोई फ़ोन कर रहा था, कोई देखकर भी अनदेखा कर रहा था, लेकिन वो बच्चा वो हार नहीं मान रहा था। वो हर आने जाने वाले के पास अपनी छोटी छोटी टांगों से चलकर जाता, ऊपर देखता और बड़ी मासूमियत से पूछता, क्या आप एक पैकेट खरीदेंगे? कोई खरीद लेता, कोई मुस्कुरा कर कहता, नहीं बेटा थैंक यू। पापा, मैंने सोचा इतना छोटा बच्चा इतनी बार ना सुनकर से भी रो देगा, उदास हो जाएगा, अपने टीचर के पीछे छिप जाएगा, लेकिन नहीं, वो हर ना के बाद मुस्कुराता, हल्के से सिर हिलाता और अगले व्यक्ति की तरफ मुड़ जाता। उसके चेहरे पर न शर्म

0: कह देते तब तक। संस्कृति हैरान हो गई। उसने बगल में खड़ी टीचर की तरफ देखा। टीचर मुस्कुराई और बोली, हमारा मकसद पैकेट बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये बच्चा इस उम्र में ना सुनना सीखे, ना को सुनकर उसे स्वीकार करना सीखे और फिर भी अगले इंसान से पूछने की हिम्मत रखे। सुनकर संस्कृति चुप हो गई। मैं भी ये सब सुन चुप हो गया। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? खूब पढ़ो, फर्स्ट आओ, कंपटीशन जीतो, सिलेक्ट हो जाओ, सबसे आगे निकलो। हम उन्हें जीतना सिखाते हैं लेकिन हम उन्हें हारना नहीं सिखाते। हम उन्हें सफलता का रास्ता दिखाते हैं लेकिन असफलता से गुजरने की हिम्मत नहीं देते। जबकि जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी हिम्मत की पड़ती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हाँ नहीं कहेगी। कुछ एग्जाम छूट जाएंगे, कुछ इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे, कुछ बिजनेस फेल होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने देर से पूरे होंगे। उस दिन जो ना मिलेगा वो हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमने बचपन में ना से दोस्ती की है या दुश्मनी। वो 5 साल का बच्चा कोस्टको के बाहर चिप्स नहीं बेच रहा था, वो हिम्मत बेच रहा था, वो ना इकट्ठा कर रहा था, वो रिजर्वेशन को गले लगाना सीख रहा था, वो जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, गिरकर उठने की परीक्षा। हम अपने बच्चों को ऐसा हेलो
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ बोलिए ना
1: हेलो।
0: उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। तो हम अपने बच्चों को कितना समय ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं और जब बचपन से ये प्रैक्टिस पड़ जाती है। हेलो
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग भैया। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जीवन में हार भी स्वीकारना बहुत
0: जरूरी है,
1: ना बोलना, ना सहन करना, वो भी बहुत जरूरी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपको और अच्छे गीत सुनाने के लिए शुभाजी और रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति दीदी।
0: नमस्कार। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू। तो भाई हम कह रहे हैं कहानी सिर्फ कनरस के लिए नहीं है, कहानी मनरस के लिए है, कहानी जीवन में उतारने के, अपने बच्चों के आगे बढ़ने के लिए। हेलो। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है। बचपन में ऐसी प्रैक्टिस दीजिए कि 100 बार भी कोई ना बोले तो भी तुम्हारा आत्मविश्वास ना डोले, तो भी तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए। आज हम बच्चों को नहीं देते हैं ऐसी ट्रेनिंग करके आज हताशा, निराशा, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। छोटी सी कोई परीक्षा में फेल हो गए बस सुसाइड करना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया अनबन हो गई सुसाइड करना या तो डिप्रेशन में चले जाना, क्योंकि हमने बचपन से उनको ना सुनने की या छोटी छोटी हार में भी अपने आत्मबल को बनाए रखने की वो प्रैक्टिस ही नहीं कराई होती है। अपने बच्चों को कराइए। वो 5 साल का बच्चा कहता है जब तक 100 लोग मुझे ना नहीं बोलेंगे तब तक मैं खड़ा रहूँगा, पैकेट बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, 100 लोगों की ना सुनना और उसके बाद फिर मुस्कुराना। हमारे को भी आज आवश्यकता है अपनी नई

0: मेरी में ये आत्मबल, ये सच्चाई डालने की कि जिंदगी है परीक्षा, पेपर कब किससे आ जाए, कब कौन क्या कर जाए, कुछ कह नहीं सकते। हर परिस्थिति में हम अपने आप को संवार ले, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। शिकायत करने वाला कभी कमी देखता है, शुक्रगुजार इंसान कृपा देखता है कि परमात्मा की इसमें भी कुछ कृपा है, ये काम नहीं हो रहा है इसमें भी। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: ओम शांति।
0: कैसे हो? एकदम ठीक है। आप कैसे भैया?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: हाँ बिल्कुल अच्छे ही रहना चाहिए। और रेडियो मधुबन सुन रहता हूँ और जरूर अच्छे हो जाएंगे।
1: नहीं, काफी दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है।
0: जी जी जी, नहीं वैसे तो मैं सैटरडे संडे आती हूँ, कभी
1: सैटरडे संडे आते हैं, मगर रेडियो बंद था ना इसमें।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज चालू है।
1: आज चालू है और आपकी बहुत ही मधुर, मोर से भी मीठी आवाज, कोयल से भी मीठी आवाज सुनाई दी।
0: ओह थैंक यू भैया, परमात्मा की देन है।
1: परमात्मा की देन तो है ही है
0: जी,
1: जो खास को मधुर आवाज दी है
0: जी।
1: और रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: थैंक यू।
1: मैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी जी।
1: और बस आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं
0: जी,
1: तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा दीदी को बता देता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है
0: जी। थैंक यू भैया, थैंक यू।
1: इसी तरह बताते रहिए, हमारे दोस्तों के जीवन में उजाला करते रहिए।
0: श्योर, करता तो परमात्मा है, हम नियमित है।
1: नहीं मगर आपको, हमको तो नियमित बनाया है ना।
0: हाँ जी हाँ जी जी जी,
1: तो बस प्रसाद उनकी है, बाकी बांटने का काम तो अपन को सौंपा है ना।
0: जी जी जी,
1: तो आप प्रसाद बांटते रहिए।
0: जरूर जरूर, जब तक है दम तब तक ये आपसे है प्रण कि हम रेडियो मधुबन में हर सैटरडे संडे आते रहेंगे।
1: हाँ वही तो प्रभु शिव बाबा का तो प्रसाद है।
0: हाँ जी,
1: बाकी बांटने का काम तो हमको सौंपा हुआ है ना, वो थोड़ी बांटेंगे।
0: जी जी जी जी,
1: बस आप बांटते रहिए बस।
0: जरूर जरूर जरूर, आप सबकी दुआएं हैं तो जरूर बांटते रहेंगे।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति भैया। मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और कर्म श्रेष्ठ हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखे के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। दो चीजें कभी मत छोड़ना, उम्मीद और प्रयास। एक रास्ता दिखाती है, दूसरा मंजिल तक पहुंचाती है। कीचड़ का कारण भी जल है। हेलो,
2: नमस्कार दीदी,
0: ओम शांति। नमस्कार भैया, शनिवार की सुप्रभातम।
2: और जीवन के अंदर कहीं भी अपने को जो अपने को नकारात्मक सकारात्मक बोले तो हार जीत, लेकिन इसमें हार मानने से अपने को कबूल करना पड़ रहा है कि आज नहीं जीत, आप ना भले हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारना।
0: जी जी,
2: हिम्मत से मरना तो मगर एक खुदा।
0: एकदम एकदम, हमारी हिम्मत होती है तभी परमात्मा भी और 100 कदम बढ़ा के हमारी मदद करते हैं।
2: तो सही बात है
0: जी।
2: और नवरात्रि जो अभी आ रही है, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं।
0: हाँ, 11 तारीख से नवरात्रि आ रही है जी, उसकी भी आपको एडवांस में सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत
2: शुभकामनाएं।
0: ओम शांति भैया। तो देखिए भाई, कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। कीचड़ का निवारण भी जल है। उसी तरह मन को। हेलो
3: हेलो दीदी, नमस्ते। ओम शांति।
0: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हैं आप?
3: अभी तो बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए बहुत अच्छे ही रहे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो थोड़ा सा मन ऐसा लगता है कि बाबा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे।
3: अभी भाई जी ने बताया, छिंदवाड़ा वाले भाई जी है, सुरेश
0: भाई जी,
3: उन्होंने बताया आपकी आवाज बहुत मीठी है, कोयल है ना। तो हमारे बाप ही सीट का पहाड़ है
0: जी,
3: है ना,
0: बिल्कुल
3: हमारे बाबा सीट का पहाड़ है, तो उनके बच्चे तो ऐसे ही
0: मीठे ही होंगे। और फिर मुरली शुरू करता है तब भी मीठे बच्चे कहता है, अंत में भी मीठे बच्चे कहता है, रोज मीठे मीठे बोल के मीठे बना ही देता है।
3: हम तो देने कितने कड़वे थे,
0: हाँ, कोई करेले के जैसा कड़वा था, कोई नीम के जैसे कड़वा था, लेकिन उसने मीठा मीठा बोल के अपने बच्चों को मीठा बना दिया।
3: नीम तो देखो कड़वा होता है, लेकिन वो दवाई में कुछ
0: काम आता है,
3: दवाई में उपयोग करते हैं तो बहुत असर अच्छी करता है
0: जी।
3: लेकिन हमारा तो जीवन ऐसा था, कड़वा एकदम, तो जैसे किसी को दो शब्द बोले तो उनका भी जीवन
0: दुखी हो जाए।
3: अभी उसने बाबा ने आके हमको ऐसा मीठा बनाया है, स्वीट का पहाड़ बाबा कहता है मैं हूँ, और आप भी मेरे जीव से बनाओ।
0: बिल्कुल
3: बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है, देखो सब लिस्नर भी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे भाई ने भी जुड़े थे
0: जी,
3: तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू,
3: ऐसे ही सुनाते रहिएगा,
0: जाते
3: रहिएगा।
0: जरूर जरूर,
3: ओम
0: शांति। तो हम कह रहे थे कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। उसी तरह मन को दूषित करने वाला भी मन है, ध्यान से सुनिएगा, मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। समझ गए, वो पार हो गए। प्यार सम्मान और अपमान, प्यार सम्मान और अपमान तीनों एक प्रकार का निवेश है। जितना आप दूसरों को दीजिएगा आपको उससे कई गुना अधिक वापस मिलेगा। समझ गए, का चाहिए जो चाहिए वो देते रहिए, कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए भाई, इस बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, फिर आपसे बताएंगे। बहन जी, कौन एक वैसा गीत सुना दीजिए। तो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो श्राद्ध के ऊपर से बताते हैं कि श्रद्धा ही श्राद्ध है। अपने पूर्वजों अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने की क्रिया का नाम ही श्राद्ध है। हमारे पूर्वज अपने माता पिता में अपने बड़ों में अथवा पारिवारिक जनों में इतनी श्रद्धा रखते थे कि उनके मरने के बाद भी उनकी स्मृति और सम्मान में यथा योग्य दान पुण्य भोजन पंचबली क्रिया करते थे, सत्कर्म क्रिया करते थे। अपने पितरों के प्रति यही श्रद्धांजलि ही कालांतर में श्राद्ध कर्म के रूप में मनाई जाने लगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा मृत जो हमारे पूर्वज गए हैं मृत हो गए हैं माता पिता में तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि मूर्त माता पिता में भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वही फलदायी होती है जो जीवित माँ बाप के प्रति हो, अन्यथा उनके मरने के बाद किया जाने वाला श्राद्ध एक आत्म प्रवंचना से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो मूर्त माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखता है वही मृत माँ बाप के प्रति श्राद्ध कर्म करने का सच्चा अधिकारी भी बन जाता है। श्राद्ध के इन दिवसों में हम अपने पूर्वजों का तो स्मरण करें ही, साथ ही आजीवन अपने घर में जो माता पिता हैं वह बड़े हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। मरे के बाद कौन देखता है आए कि नहीं, जियत दे न चौरा मरे बनाए चौरा, जान जीते जी तो दो का रोटी नहीं दी, मरने के बाद बड़ी समाधि बनाते काहे कि दी, समाज को दिखाना है कि हमका हमारा कितना प्यार था, जबकि जीते जी नहीं की तो वो कोई श्राद्ध या श्रद्धा नहीं कहलाते। चलिए एक और कहानी सुना देते हैं। एक शादी में किशोर ने देखा कि दो बुजुर्ग भाई साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अधिक वृद्ध था, इसलिए छोटा भाई बड़े लाड़ से उसे अपने हाथों से निवाला खिला रहा था। ये मंजर देखते ही किशोर का दिल भर आया। उसे अपने बड़े भाई की याद आ गई जिनसे पिछले 10 सालों से जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। किशोर ने तुरंत भाई को फोन मिलाया। उधर से कड़क आवाज आई, फोन क्यों किया, जो कहना है परसों कोर्ट की पेशी में कहना। किशोर अपने आंसू रोकते हुए बोला, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज ही अपना केस वापस ले रहा हूँ। जमीन दुकान सब आप रख लो, मुझे बस मेरा वो भाई लौटा दो जो बचपन में मेरी एक खरोंच पर दुनिया से लड़ जाता था। इतना कहकर वो फफक फफक के रो पड़ा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बड़े भाई की सिसकियों की आवाज आई। उभरे गले से बोले, पगले इतने प्यार से पहले बोल देता तो मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता। चल सब छोड़ और अभी घर आ जा, मैं तेरी भाभी से तेरा पसंदीदा खाना बनवाता हूँ। 10 साल की कड़वाहट एक ही पल में घुल गई। कहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, कहाँ हम अपने दिल को ऐसा बना सकते हैं। आजकल ईगो क्लैश चलता है, अरे वो अपने आप को का समझता है, हम कम है का, और इस ईगो के चक्कर में ही हमारे संबंधों में कितनी कड़वाहट आ रही है, और बाद में हम पछताते हैं कि काश हमने सॉरी बोल दिया होता, काश उस समय हमने ये नहीं बोला होता, लेकिन अब पछताए का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए आज भी आपके पास समय है, अगर किसी से आपकी अनबन हुई है उससे आप बोल नहीं रहे लेकिन मन में हर बार करता है कि काश उनसे बातें कर लिया होता तो अच्छा था, उनसे सलाह ले ली होती तो अच्छा था, लेकिन उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा। किशोर भाई के जैसे आपको अपने भाई से दिल से सॉरी बोलना होगा और बोलना होगा हमको कुछ नहीं चाहिए, वो पहले वाला सिर्फ प्यार चाहिए। और कौन ऐसा पत्थर हृदय होगा जो नहीं मानेगा।
इसलिए बीता हुआ समय सीख है और आने वाला समय नई संभावना, ये बात याद रखिए। जिंदगी में जो है उसकी कद्र करना सीखो, काहे कि वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। जो स्वयं को जीत लेता है वो जीवन की हर चुनौती जीत सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर पल को संयम, सत्य और आत्म कल्याण में लगाओ। सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर व्यवहार करो। ये व्यवहार से हमारे संबंधों में कहीं कड़वाहट तो नहीं आ जाएगी, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। अपने आप को रख के देख लीजिए ना, ये शब्द हम जो बोल रही, हमको कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा, हमारा दिल टूट जाएगा। हम उस कभी भी बात नहीं करेंगे तो सामने वाला भी तो वही करेगा। भाई जौन दिल आपको भगवान दिए हैं वो सामने वाले को भी दिए हैं। परमात्मा का सच्चा प्यार वही महसूस कर सकता है जिसका दिल आईने की तरह साफ और हर प्रकार के छल कपट से दूर हो। हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती, हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती। कभी कभी वही हमें मिली हुई खुशियों की कीमत समझाती है कि हमारे पास जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, वरना इंसान इसी उधेड़ बुन में पूरी जिंदगी गुजार देता। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हम तो ये चाहते थे, हम वो चाहते थे। तो इच्छा जवान होते जाती है, इंसान बूढ़ा होते जाता है, लेकिन कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो समय रहते जो है उसको एंजॉय करिए, उसके लिए परमात्मा जी का शुक्राना अदा करिए कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिया वो तो कई लोगों के पास नहीं है जितना हमारे पास है। फिर देखिए जीवन कितना आपका अच्छा होता। चलिए फिर एक गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे और बताएंगे। सुनेगा गीत

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अंजनी पुत्र, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। रोज अपने हनुमान बाबा से ऐसी प्रार्थना करिएगा। देखिए वो आप सुने होंगे ना, वो पायलट को मारा, वो भी है उस समय हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसलिए बच गया, और बच गया और पूरी दुनिया का हीरो बन गया। कहे हनुमान बाबा हम बचा लेते हैं, लेकिन मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। जब हमारी अपनी आत्मा हमको सम्मानित करती, यानी हमें गर्व महसूस होता, घमंड नहीं, गर्व और घमंड में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन गर्व सकारात्मक शब्द है और घमंड नेगेटिव है। रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जोड़ने से पहले दो बार सोचे और तोड़ने से पहले 100 बार। किसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं दो बार सोचिए, लेकिन किसी से तोड़ना है तो 100 बार सोचिए। जब कुछ ना हो तो धैर्य की धैर्यता, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। सब कुछ है, वेल टू डू है, भगवान सब कुछ दिया, उस समय कहीं आपका अभिमान तो नहीं आ जाता है, तो उस समय आपकी व्यवहार की परीक्षा होती है। जब कुछ नहीं हो तो धैर्य कि भगवान ने जो हमने शुरुआत में पहली कहानी कही, 100 बार ना सुनने की आदत पड़ जाए। हमारे पास का है ये महत्वपूर्ण ही ना है, लेकिन हमारे साथ कौन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात पर विचार करते हैं कभी? व्यर्थ का खर्चा, जीवन की व्यवस्था को और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों चीजों के कारण आई है लोगों में गिरावट। समझ गए? तो बनावट, सजावट और दिखावट, इससे आती है गिरावट। जो है वो है, ओवर दिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सजने की जरूरत नहीं है, फिर देख रहे हैं बहुत कुछ होता है। पैसा उधार लेकर अमीर बनने का दिखावा करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि जमाने वाले उसकी असलियत पहले से ही जानते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश करिए, कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए उधार लेके कुछ नहीं करिए। जो आपके जेब में है उसमें संतुष्ट रहिए। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ तन करीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। मन को गरीब तो मत बनाइए भाई, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मन तो अच्छा रखिए, मन से प्रेम से चार बोल बोल लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हर एक के पास रोटी कपड़ा मकान है, मत सोचिए कि हम कुछ किसी को दे रहे हैं। अरे नहीं, वो तो एक फॉर्मलिटी होती है ना भाई, मेन तो होता है आपका व्यवहार। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, कहे कि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है कि नहीं? सही बात। इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना, कौनों भी परिस्थिति में। काहे कि परिस्थिति तो कभी भी कैसी भी आती जाती रह सकती है, लेकिन आप मन को शांत रखें। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालत चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है। दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं, और सुझाव सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, का पता। तो इन चीज को ध्यान रखिए। मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस उम्मीद में इंसान पूरी जिंदगी बहुत प्रयास करता है। कोई उपवास करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कुछ लोग भगवान से मन्नतें मांगते हैं। स्वर्ग जैसे कोई नई हाउसिंग सोसाइटी जैसा लगता है, जहाँ एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य के अंक पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। लेकिन एक पल ठहर कर ये भी सोचिए, का पता शायद हम पहले से ही स्वर्ग में ही जी रहे हों। सुबह उठते ही एक बार अपने आसपास ध्यान दीजिए। एक बटन दबाओ तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, दूसरा बटन दबाओ तो पंखा घूमने लगता है, तीसरा बटन दबाओ तो ठंडी हवा पूरे कमरे में भर जाती है, नल खोलो तो पानी बह लगता है, गैस चलाओ तो कुछ ही मिनटों में खाना तैयार, जेब से मोबाइल निकालो तो पूरी दुनिया आपकी हथेली में आ जाती है, हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले आपके प्रिय लोग भी कुछ ही सेकंड में आपके सामने दिखाई देते हैं। इतनी सारी अद्भुत सुविधाएं, लेकिन हम इसे बहुत सामान्य समझते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। एक बार कल्पना कीजिए, 200 साल पहले का कोई राजा आपके घर आए तो शायद वो अपने राजमहल में वापस भी न जाना चाहे। वो आश्चर्य से पूछेगा, ये का गर्म पानी और ये का ठंडी हवा, ये का पूरी दुनिया की जानकारी, ये का 10 मिनट में घर आने वाला खाना। तब वो हंसकर कहेगा, मैंने पूरी जिंदगी राज किया, युद्ध जीते, बेहिसाब संपत्ति हासिल की, लेकिन ऐसी सुविधाएं मुझे कभी नहीं मिली। बिल्कुल सच है। आज एक आम इंसान की कई सुविधाओं के मामले में पुराने जमाने के सबसे शक्तिशाली राजाओं से भी ज्यादा अमीर है, फिर भी हम खुश नहीं है। काहे? काहे कि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। एसी चालू है, आनंद नहीं है, बंद होता है तभी तकलीफ होती है, मोबाइल वहाँ है आनंद नहीं है, नेटवर्क चला जाए तो लगता पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अपना घर है, अपना घर है संतोष नहीं है, पड़ोसी का घर बड़ा है इसका दुख है, अपनी गाड़ी है तृप्ति नहीं है, दूसरे की गाड़ी बड़ी है उसकी चिंता है। यानी इंसान अपने स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करके दुखी होता है। लेकिन यही पृथ्वी पर एक दूसरी दुनिया भी है। आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: वाह दीदी वाह, आपने तो हमारे बुद्धि का ताला ही खोल दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है, और हम भी सफर करके आए थे।
0: जी, मैं भी सफर करके आई रात को।
1: कर दिया आपने ये सब बातें कह के, और ये सब बातें हम पूरे देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा आपको
0: जी।
1: और थैंक यू दीदी, सुनाते रहिए, हम सुनते जाएंगे
0: जी,
1: और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक्स है आपको, आपका स्वागत अच्छा रहे, और हमारे सब दोस्त खुश हो रहे हैं
0: जी,
1: और भी सुनने वाले खुश हो रहे हैं, और रेडियो मधुबन को और आपको सलाम करते हैं, नमस्कार, लाखों लाखों
0: नमस्कार, ओम शांति। तो आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। लाखों परिवारों के पास पक्का मकान तक नहीं है, दिन में दो वक्त का खाना भी तय नहीं है, बच्चों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं, शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। हम जिसे सामान्य समझते हैं, वे सुविधाएं ही दूसरों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। हमें एसी का रिमोट ना मिले तो गुस्सा आता है, उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव तक नहीं मिलती। हम डाइट चार्ट ढूंढते हैं, वो लोग अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा ये सोचते सोचते सो जाते हैं। तब समझ आता है, स्वर्ग और नरक मौत के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, ये यही है, इस पृथ्वी पर, इसी शहर में, इसी सड़क पर, कभी कभी एक ही दीवार की दो तरफ एक घर का बच्चा अपना नया मोबाइल थोड़ा स्लो होने पर चिड़चिड़ाता है, सामने के घर का बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल ना होने पर रोता है, एक आदमी गर्म पानी 5 मिनट देर से आने पर शिकायत करता है, दूसरा आदमी आज पानी मिल गया बस यही काफी है कहकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। फर्क सिर्फ परिस्थिति में नहीं, फर्क दृष्टिकोण में भी है। कुछ लोग खराब परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख गए हैं तो कुछ लोग तमाम सुविधाएं होने के बावजूद शिकायतों से बाहर नहीं निकल पाते। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि उसके पास जो नहीं है उसका हिसाब वो रोज करता है, लेकिन उसके पास जो है उसका हिसाब वो कभी नहीं करता। आशा करते हैं आप इन बातों पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।

0: राम राम रतन भाई राम राम।
1: अरे राम राम भाई कंचन, आओ भाई राम राम।
0: तो आज तो तू मिश्री को बाग लगवा की बात कह रही है।
1: अरे भाई अब कई करा, नीम की निम्बोली खारी लागे तो पचे मिश्री को बाग लगावा और कई वे।
0: देख क्यान क्यान के गीत बनेड़ा अपने राजस्थान में भी है।
1: सही बात है। तो पहले तो अपना सगला श्रोता बंधुओं स्वागत करा है गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो यो गीत केड़ो अजीब है ना कंचन।
0: हाँ, सुना मैं तो अजीब लागे। हाँ। पर देख साथ साथ राजस्थान की सौम्यता, राजस्थान को अदब इमें झलके।
1: हाँ बिल्कुल भाई, हस्बैंड वाइफ में बात वेरी भाई। तो भाई क्यों भाई, नीम की निम्बोली तो मने खारी लागे, मैं तो कौन ही खाऊं। क्योंकि देखो आपने तो राजस्थान का महीना है चैत्र महीना में, यूं कहवे भाई लिमड़ा को पानी पियो जूस पियो।
0: हाँ,
1: कहीं नहीं तो लिमड़ा का पत्ता खाओ। हाँ चैत्र महीना में अच्छो रहे लिमड़ो, कहते चैत्र महीना में आप खा लो तो साल भर आप
0: बीमार नहीं,
1: बीमार को नहीं, बुखार को नहीं आवे। हाँ तो बुखार को नहीं आई जो ले लो भाई। तो पचे वाइफ क्यों देखो भाई, मने तो नीम की निम्बोली तो खारी लागे। तो पचे वे क्यों जदि कहीं मिस्त्री को बाग लगावा कही तो यो गीत बन गयो।
0: और देख पुरानो गीत है।
1: हाँ
0: और कतरो अदब है,
1: कतरो अदब है।
0: तो इन्हें कही है कि साहित्य हो यो, संगीत हो यो, ज्ञान की रिश्ता हो, संबंध हो, तो बड़े में ललित भाव हो गए।
1: हाँ
0: बड़ो ही मिठास सुहापड़ी बात के बाकी भावना हुआ है।
1: बिल्कुल। तो देखो आनी वास्ते आनीवा जो भी जोड़ियो के भाई वा पहले नीम की निम्बोली को मतलब है, निम्बोली को तो नाम ली दो भाई। निम्बोली तो देखो पाक्या बात तो अच्छी लागे,
0: अच्छी लागे,
1: याद आवे था ना कभी आपको बचपन में खाई।
0: अभी थोड़े दिन में देख अभी बरसात में।
1: हाँ।
0: नीम की निम्बोली पक जावे
1: पीली पीली हो जासी
0: तो
1: अच्छी लाग सी,
0: अच्छी लाग सी। और एक कैरी के जाना पर चूसन खाता।
1: अरे कदी कदी तो गुटलियो एड़ो अच्छो लागतो मैं तो पेट में उतार देती। बचपन केड़ा होवे है कंचन,
0: हर चीज डाइजेस्ट हो जावे।
1: हाँ, अपन ये चीजा को नॉलेज ही नहीं हो।
0: हाँ,
1: तो बीज नहीं खानो, अरे बीज गणो अच्छो लागतो तो बीज नहीं उतार देता,
0: बीज नहीं खा लेता,
1: बोर खाता आपा, बोर का बीज ही उतार देता कतरी बार गुटलिया।
0: हाँ।
1: तो नीम की निम्बोली के मने याद आवे कोई कोई तो एड़ो अच्छे लागतो मिठो उतार देते।
0: और देखो बचपन में हर चीज पच जावे।
1: हाँ पच जावे। देखो आज तो यो उतार दे दो तो था गए पत्री वे जाए, यो वे जाए, वो वे जाए। बचपन में कभी सुने आप पत्री?
0: सही बात है।
1: कई भी
0: और चीजा खावा की भी पच जावे और बाता भी पच जावे।
1: बाता भी पच जावे बिल्कुल।
0: हाँ।
1: बात आज थाने क्यों वो तो थारा तक ही रे वे।
0: हाँ।
1: बात पची कटी लीक नहीं वे, वे
0: लीक नहीं हो वे। और कोई माइंड करे कई
1: नहीं करे,
0: पेट में कोई उथल पुथल मचावे कई
1: नहीं, बिल्कुल नहीं मचावे।
0: मान ले भी तू और मैं देख लारा लारा पड़िया साथे साथ रहा बचपन से, कतरी बार एक दूसरे ने कह देता पागली।
1: हाँ बिल्कुल
0: बड़बोली।
1: हाँ
0: कतरी बार आपा यहाँ नहीं छटपट छटपट।
1: हाँ
0: कह देता
1: वेंडी
0: है।
1: हाँ।
0: पर कते एक दूसरे बुरी मानिया?
1: अरे कई मान लो बुरो
0: है,
1: ये तो एक नॉर्मल शब्द है ना,
0: नॉर्मल शब्द है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो बचपन है।
1: हाँ
0: तो वही है कि बचपन में बातें भी पच जावे, खावो पीवो भी पच जावे। तो
1: सही बात
0: तो
1: है, यही बड़ा व्या बात कह दो।
0: हाँ
1: पागल है कई।
0: हाँ।
1: भाई मने पागल के दी दो
0: बस। ईगो हट हो जावे,
1: ईगो हट हो जावे। तो कंचन अटे याद आ रही जैसे अपने चैत्र महीना में जूस पावे लीमड़ा को, ठीक है। तो भाई अब कड़ो कड़ो मुंडो तो हो जावे। तो बचे वाको पति देव क्यों भाई मुंडो कड़वो हो गयो भाई, तो ये थोड़ी मिश्री ले लो और मिश्री ने चूस लो तो मुंडो पाचो मीठो हो जाए।
0: मीठो
1: तो ये यो गीत बन गयो, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की नीम बोली
0: मने खारी लागे। और देख राजस्थानी भाषा को मिठास कड़वी नहीं बोलियो है।
1: हाँ बिल्कुल नहीं बोलियो, सही है।
0: अठे कही है खारो बोलियो है।
1: हाँ सही है।
0: तो
1: निम्बोली ने भी कड़वा नहीं बोली।
0: हाँ अठे तो देख मोटी मोटी बात यह है अके एक लोक कथा है यान की अखबी राजस्थान में भी तो कोई लड़ाई भी हो जावे नहीं तो काई करे थे यान क्यों करो सा।
1: हाँ
0: हैं सा सा सा कह
1: लगा
0: हैं।
1: तो देखे कंचन अटे भी यो कैटेगरी वाइज भाषा होवे।
0: हाँ
1: गणा जना साई लगावे, गणा जना तू तड़ाका पे भी आ जावे।
0: हाँ वो तो देखो वो हर जगह
1: आप आपका संस्कार है।
0: हाँ।
1: पर बाकी आज आप राजा रजवाड़ा की बात करा, आज भी है रावड़ा है, राजा रजवाड़ा तो है ही है, भली वो प्रजा को राज्य हो गयो, लेकिन राजा रजवाड़ा तो आज भी है,
0: आज भी है।
1: तो आज भी बाकी बोला की शैली वही है।
0: सही बात,
1: हुकम पधारोसा, हुकम
0: पधारोसा,
1: आज भी अत्रि उच्च भाषा। और वहां का साथ में जो भी रहे बाकी भी भाषा तो देखो संको रंग तो लगे ही लगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज वहां के दास दासिया आज भी है। अबे आज वे अधीनता नहीं है, अधीनता में नहीं रहे,
0: अधीनता में नहीं रहे,
1: अधीनता में नहीं रहे, पर वे रिस्पेक्ट देवे मां का राजा सा,
0: मां
1: का ठाकर सा, ये ठुकरानी सा
0: बस। और वही फिर कहिए कि धीरे धीरे करके संस्कार बन जाए,
1: कवर सा और कोरानी सा। तो आज ही सम्मान वो ही देवे, तो आज भी बाकी भी भाषा देख लो, घनी खमासा, हुकम पधारोसा, वही भाषा तो खेड़े अच्छी लागे। एडी उच्च भाषा सुन मन एडो हो जावे के सचमुच भाषा वो तो क्या इंसान आप तो इंसान की भाषा तो हमेशा उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
0: सही बात है,
1: है ना। कोई जानवर तो हाँ नहीं, जानवर बेचारा बोली को नहीं,
0: जो चाहे बोल दे माँ।
1: हाँ, और भगवान आपा ने इंसान बनाए तो अच्छा बोलो नहीं, यही आपा हल्को शब्द बोलना और यही आपा रिस्पेक्टफुली भाषा बोलना।
0: प्राणियों में सर्वोच्च है मनुष्य।
1: हाँ, मनुष्य है
0: क्योंकि वो भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सोच समझने कर सके।
1: बिल्कुल विवेकशील है,
0: विवेकशील है, और शब्द को प्रयोग और भाषा पर अधिकार है वाको।
1: हाँ, वही तो। आज एक या भाषा सुनो और ए ए काय कर रही थू, ए रे कटे गयो रे मतलब वह भाषा सुना खेड़ो लागे। देख मने एक बात याद आ रही कंचन, मारी एक सहेली है तो वह मतलब सहेलिया तो आपने देखो शादी के बाद भी कतरी सहेलिया हुए, पहली भी कतरी सहेलिया हुए, तो वह भी घनी पुरानी सखी है, घनी पुरानी सखी है। और वह एड़ा गांव में बड़ी हुई जटे रावलो,
0: रावलो
1: तो भाषा अच्छी सिकोड़ी ही, अबे बिना पर नहीं ससुराल भी को एडी जी गया है जटे भाषाओं के लेनो देनो ही कोनी।
0: ओ
1: मतलब यू तुच्छ भाषा।
0: हाँ, तुच्छ भाषा,
1: तोतड़ी भाषा। आप केणो भी बटे
0: भारी सपाट।
1: हाँ, सीधो सपाट, तो भी वही लागे मैंने कट्ठे दे दी थे,
0: कट्ठे दे दी।
1: एक तो भाषा अपना संस्कार झलके,
0: बस वही मैं कहूँ कि मुख कदी कदी कही है कि आदमी परिधान वगैरह जब पैर बैठा हो ना तो यहाँ लागे भी बहुत रॉयल, बहुत उच्च कोटि को, बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही परिष्कृत परिवार को। पण कही है जब वो मुख खोले नी तब जो बाटा पड़े, था पड़े
1: वो कंचन भाषा उज इंसान की पहचान हो गए तो यह कणी खानदान का है।
0: बस बस बस,
1: आपने बड़ा बुजुर्ग क्या पहचान करता।
0: हाँ,
1: यार ऐसा नहीं करता ना।
0: सही बात,
1: तो भाई वहां का कतरा भी सुटेड बुटेड वो।
0: हाँ,
1: लेकिन आपकी भाषा कटे इन कटे वो शब्द पकड़ में आ जावे, ठा पड़ी जावे,
0: ठा पड़ जावे,
1: ये सब दिखा हुआ है।
0: सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वाह, अभी का माँ बाप ने क्यों, मैंने तो भले आप थोड़े पैसा वालों घर है वाकई, पर अब पैसा वालों घर है पर पूरा गांव की भाषा ऐसी तो घर वाला की भाषा एडी है।
0: सही बात,
1: अबे वाह सबने हुकम पधारो सा, तो वे समझी को नहीं ये कई हुकम हुकम लगा रखे,
0: कई लगा रखियो
1: देख कंचन मने वन टाइम पे यू लागे सच में कह तो थोड़ा बहुत लोग ही समझता वे भाषा ने और एडी अच्छी भाषा वाले घनी घर में परी जावे तो विकी वैल्यू है। सभी एड़ा हो वाका बच्चे जो एडी इंसान आ जावे ना तो बेचारे विको तो कचरो ही हो जावे,
0: कचरो ही हो जावे और मजाक को पात्र और
1: मजाक को पात्र हो जावे। खास तो यार अरे कई बोले का जाना कई बोले। अब आपका हस्बैंड समझे कि भाई हाँ यहाँ के भाषा ऊंची है,
0: ऊंची है।
1: अबे वो बोले तो देखो देखो ये तो लुगाई का पक्ष भर रहे हो, देखो ये तो बाइलो हो,
0: वो तो बेचारो बोल ही नहीं सके,
1: बोल ही नहीं सके,
0: अपनी संस्कृति नहीं।
1: हाँ एडी अपनी संस्कृति नहीं क्योंकि वो देखियो
0: बड़ा के बीच में बोलवा की।
1: हाँ, अब भाई छोरी ने देखवा वाला आवे जदी भले ससुर जी जेठ जी कुटुंब वाला सभी आवे, पर शादी का बात तो वो जो दामाद ही जाए ना सासरे में।
0: सही बात,
1: घड़ी घड़ी के सब थोड़ जाए,
0: कई बार तो भी वो कोई वास्तु पड़े वही हिले मिले वही अच्छी तरह से परिवार। हाँ,
1: अवे पत्नी ने लेन जानो ससुराल में के कटे चाचा ससुर के कटे मामिया ससुर के बुआ सास के कटे भी शादी ब्याह तो पूरा खानदान उठन थोड़ जाए।
0: सही बात,
1: तो लड़को ही जावे तो मैंने ठा पड़ेगा अच्छा आटा की भाषा ही अड़ी है, ऊंची भाषा है। लेकिन वह मजाक का पात्र वेगी बोले हस्बैंड मजाक नहीं करते पर परिवार का अन्य सदस्य फिर भी वो समझावा की कोशिश की देख भाई इन्हें एक अपना हंसो मत बटा की भाषा ऊंची है, अपनी भाषा ओछी है,
0: अपनी
1: तो पढ़ने बाद ओछी लाग रही भाषा बेचारे। વિકી ટાંગ ખીચ લીધી,
2: વિકી ટાંગ ખીચ લીધી.
1: હવે તને તો પન્યા બાદ ઓછી લાગી, ચૂપ રે તું, જન્મે અટી જાય, જો ભી સુને વો ચૂપ કર દે.
2: ઓછી વાત હે, સહી વાત હે. કઈ બાર પ્રેક્ટિકલ મે કઈ જ્ઞાન કા ઉદાહરણ આપણને દેખવા ને મિલે
1: મિલે કંચન ઓર વન ટાઈમ જી કે ઉડાર્યા વે ને વેને પૂછો વે કે કઈ
2: સ્થિતિ હોવે.
1: હા, કઈ સ્થિતિ હોવે.
2: બિલકુલ, આપા હાસ રહ્યા હે પણ વો દર્દ કમ નહી હે,
1: વો દર્દ કમ થોડ હે. ઓર
2: ક્યુંકિ જી મે જો ગુણ હે વો વાકી ગુણ કી માનતા તો આપા કરા નહી, ઓર બલ્કી વો હસી કો પાત્ર બને રહ જાવે, તો ભઈ વો બહોત દર્દનાક બાત હે.
1: હોય તો
2: પણ કોઈ બાત નહી, મેં તો યાન કહું કઠે યાન કો ભી જાવે તો આને થોડું ધીરે રાખે તો કઈ આગલી તો પીડી વાકી હાથ મેં બનાણી.
1: વો તો હે હે, પર સેન કીધો ધીરે ધીરે થોડા શબ્દ વાકા લીધા, થોડા ખુદ કા રાખ્યા, ધીરે ધીરે પરિવાર વાળા ભી સમજવા લાગ્યા કે ભાઈ યાકી ભાષા એડી હે, પાછો જાવા કો કામ તો પડે હે, ઓર વાકા હસબન્ડ ભી સમજદાર હો, તો વે મતલબ ભણી ઘાવ નીકળ ગયા. ધીરે ધીરે દો તીન સાલ તો રહ્યા, પછી બહાને જોબ કરવા પડા ગયા. પહેલી મહિના દો મહિના અકેલી રહી, પિયર અને સુસરા લાતી જતી રહેતી, પછી લઈ ગયા. પછી ખુદ સાસ સસુર ને કહ્યું ભાઈ તું એકલો રેવે લે જા ભાઈ નની ને ભી, તો એડો કામ હે. તો આપણે કતરી બાર સમજ નહીં પાવા કે ભાઈ દેખો યો તો યો હી ગયો, બહુ નહીં લે ગયો, અને દેખો પેલી તો જોબ નહીં કરતો. દેખો સમય કા અનુસાર પરિવર્તન જરૂરી હે.
2: બિલકુલ. પત્ની કઈ ભાઈ હે, માન લો ભાઈ હા માતા પિતા ને સંભાળવા કે વાસ્તે વો બેઠે રહે રહ્યો,
1: બિલકુલ એની
2: અત્રી મોટી વાત ભી નહીં હે.
1: હા, હો નિકલ રહ્યા, અચ્છા અચ્છા હી નિકલ રહ્યા. પર ચાલો કંચન, ટેમ હો ગયો એ ગીત સુણવા કો, તો યો હી ગીત સુણા આપા. મિસ્રી કો બાગ લગા દે રસિયા, નિમકી નિમોલી મને ખારી લાગે. तो सुनता रहो,
2: मुस्कुराता रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM.
3: प्यार में हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है. पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है, तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है. यही तो प्यार है.

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: गाँव गाँव में फरसा में गावरी बाता कर श्यामे गाँव गाँव में फरसा में गावरी बाता कर श्यामे राजस्थानी भाषा है देखो केड़ी आछी है चाल कंचन चाल आपी गाव गाव में चला हा गाव गावरी बाता देखो सगला ने बताशा गाव गावरी भाषा देखो सगला ने बताशा में तो कंचन आपा बात कर रहा हा देखो भाषा की
2: हाँ
1: तो वो थाने ठावे चार कोस में पानी बदले आठ कोस में वाणी तो भाई आप एक हो दूसरा गांव जाओ तो थोड़ा तो आपने भाषा में भिन्नता लागी
2: बिल्कुल सही है
1: आप आ कहीं थोड़ी भाषा की यू बात कर रहे हैं कोई अदब वाली भाषा वे अच्छी वे उच्च क्वालिटी की कोई मध्यम भी हो वे कोई लो कैटेगरी की भी हो वे
2: सही बात लेकिन देखो हर भाषा की और हर बोली की जाना अपनी राजस्थानी भाषा है राजस्थानी भाषा में कतरी बोलियां है ढूंढाड़ी है जो जयपुर में जयपुर कोटा बूंदी अठे बोली जावे ढूंढाड़ी
1: कोटा की पाची थोड़ी अलग है जयपुर की पाची अलग है जोधपुर की अलग है
2: मेवाती मालवी हर एक भाषा
1: नागौर में जाए तो वटा की थोड़ी भिन्नता नजर आई
2: बिल्कुल
1: उदयपुर चित्तौड़ थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़े शब्द में फर्क ही है एक दूसरा गांव में भी परी जाए ना भले एक ही तहसील में गांव है तो गांव की भाषा देख और कस्बा की भाषा देख और सिटी की भाषा देख
2: सही बात है देखो और भाई बोली का ही है एक बहुत बड़े समुदाय की नहीं हुआ है जान भाषा तो कई राजस्थानी भाषा में

0: कई बोलियां हैं,
1: बिल्कुल। तो कंचन,
0: बोली बदली जावे।
1: हाँ तो कंचन अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा है गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 एफएम,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो बिल्कुल कंचन, बोलिया तो बदला भी है,
0: हाँ
1: पर यदि भिन्नता नजर आवे तो थोड़े एडजस्ट हुए में टाइम लागे।
0: वो तो है, खैर
1: बाकी एडजस्ट तो सब हो गई है,
0: हो गई है। और देखो भाई, भाषा में एडजस्ट होना घनो मुश्किल है। बोली एक बोली वालों तो दूसरी बोली ने समझ ही लिया कर।
1: हाँ
0: जान आपने भाई जोधपुर में जो बोली बोली जावे वो जयपुर की भाषा समझ ही ली,
1: हाँ समझ ले,
0: बोली
1: भाषा
0: ने समझ
1: में आ जाए, पर अमुक चीज की ठानी पड़े। अब मैं एक जगह पे देखी, एक बहू आई, ठीक है, अब बहू ने क्यों जा बेटा हंजवारी लेना,
0: हंजवारी।
1: हाँ अबे वह तो बिचारी हो छे, एक हंजवारी गई हो,
0: हंजवारी गई वो। हाँ। सही बात, मैं भी पूछती।
1: हाँ तो अबे वह के अबे अटिन उटिन मुंडो देखे, तो घर वाला समझ गया कि समझ नहीं आ रहे।
0: हाँ।
1: तो कह अरे आप आई कचरो नहीं काड़ा गई,
0: अच्छा
1: हंजवारी हंजवारी
0: बुहारी
1: समझ गई। हाँ कि भैया बुहारी का लिए कह रहा तो बचे बुहारी लान दीदी या तो कह हाँ पाचे के थू कही बिलाए तू आई कही जो अपनी भाषा नहीं समझ रही। पाचा बड़ा पाचा टोकता भाई, पहला तो टोकता और छोटा सेन भी कर लेता, आज तो बड़ा भी सोच समझन टोके, टोकी को नहीं कहा कि छोटा तपाक देन जवाब देवे।
0: सही बात है। और देख भी वो भी मध्यमी बीच की जो वो बुआरी भी समझ गई।
1: हाँ
0: नहीं तो आजकल के टाबरा ने तू देख बुआरी कहने देख।
1: हाँ
0: कोई समझे कही।
1: सही है, आज तो फिर भी झाड़ू ही कहवे,
0: झाड़ू ही
1: कहवे। पहले तो झाड़ू के ने कहता जो कांडी वाला झाड़ू के पचे वे आता ने वहां का बनीवड़ा कनी पेड़ का।
0: हाँ जो आपा चलता फिरता कठे उससे भी तोड़ लिया टहनी और कठे बैठना पड़ गयो तो आपा थोड़े झाड़े जुड़ कर बैठ जाता।
1: बैठ जाता।
0: हाँ
1: मैंने झाड़ू कहता,
0: मैंने झाड़ू
1: और
0: कहता,
1: इन्हें पा बुहारी कहता,
0: बुहारी कहता।
1: अबे तो सब
0: सब
1: एक
0: एक
1: ही
0: हो
1: चीज
0: गया।
1: हो गया।
0: बुहारी कोई समझे को नहीं।
1: हाँ अरे गामड़ा की भाषा इवा ही कस्बा हूँ तो कई बात निकले तो क्या, और तो दांत कई काढ़ी रही, उभी उभी दांत कई काढ़ी रही, हवा विचार के दांत कई काढ़ी रही कई होवे भाई। देखो फरक पड़े कंचन, एक दूसरा गांव जावा भाषा में घणो फरक पड़े,
0: घणो फरक
1: वह कतरी
0: पड़े।
1: चीजा नहीं समझते। आज सब समझा लागी पर वाके होम आई जती तो मारे दिमाग खराब है गयो, कभी कई करू बेंडा की न्यान देखनो पड़े मुंडो।
0: सही
1: बच्चे यू
0: बात,
1: के वे वो इन्हें तो ठाई नहीं पड़े।
0: ठाई नहीं पड़े।
1: हाँ
0: और देख भाई अठे जो है एडजस्ट हुआ में कतरी तकलीफ हो जाए।
1: कतरी तकलीफ
0: एक
1: हो
0: तो
1: जाए,
0: विने यानी नहीं ठा पड़ रही है और एक वाक को ठा नहीं पड़वा को मजाक को रो रही है।
1: मजाक और हो रही हो, अब मुंडा आगे चीज है पर अभी भी ने कई बोले बटे या ठाको नहीं।
0: अठे काई है कि एक आधा रिश्ता तो फालतू का जो बड़ा जना चलो भैया अधिकार सो या प्यार सो जो भी मजाक कर दिया, पर जो भी इधर उधर का जो रिश्ता हुआ ना वो भी मजाक बना वाला आग जावे,
1: मजाक बना
0: वाला
1: वाला
0: भी
1: जावे।
0: मौको मिल जावे।
1: हाँ तो वह घनी चीजा नहीं समझते भाई, खूब शब्द जदि सुने ही नहीं, जदि
0: सही
1: भाई
0: बात,
1: झटा तक बड़ी हुई वे शब्द सुनवा ही नहीं आया तो क्या ठा पड़ते। तो कई भी चीज मंगाता जब इंदनिया लेना अब घूम घुमेन पाचे आ जाती, अब चीज है पर लादी को नहीं,
0: लादी को नहीं।
1: वो शब्द के ठाई को नहीं।
0: सही बात है।
1: पाचे आओ जी अतरे अकराते हो या तुम्हारे भली आई भाई, या तो काम ही ने जो भराओ जो काम ही इन्हें,
0: कोई काम नहीं
1: चीज
0: आवे।
1: मुंडा आगे पड़ी हुए तो इन्हें दिखे ही को नहीं। तो कंचन या स्थिति एडी होवे के ससुराल वाला की नजर में यू गणी ने तो कहीं आवी को नहीं।
0: बेवकूफ कहलावा लग
1: हाँ
0: जाए।
1: बेवकूफ कहलावे।
0: और मैं बतायो नहीं भी बड़ा जना बेवकूफ समझे तो चलो वो माने आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ तो देसी भी नहीं तो वो सहन भी कर लेवे,
1: बिल्कुल
0: है ना, दुआ
1: सही
0: भी
1: है,
0: देवे प्यार भी देवे तो थोड़ी हल्की फुल्की फटकार भी लगा दे तो वो तो पछे भी सहन कर लेवे।
1: हाँ
0: पर जद अठे बैठे का जो आजू बाजू का जो रिश्तेदार हुआ है वो भी ज्ञान के माहौल से फायदा उठान उन्हें बिल्कुल ही पागल सिद्ध कर देवे
1: पागल सिद्ध
0: तो वो
1: कर
0: बड़ी
1: देवे।
0: दर्दनाक बात
1: हाँ
0: हो।
1: हाँ और घर वाला नहीं समझना चाहे भाई अपनो गांव छोटो है या थोड़ा बड़ा शहरों आई है,
0: हाँ
1: वाका सामने एक तो तहसील और एक पंचायत फर्क तो पड़े ही है ना।
0: फर्क तो थोड़ा पड़ा ही है।
1: और अणी जिज्ञा पे हस्बैंड समझदार होना चाहिए जाए, थोड़ा सा आप बता दो कि भाई ये चीजा नहीं हो कहे तो एड़ा काम है वाके वो अत्री होशियार हो, हमारे पियर में सब तारीफ करे पर अटान वो असी डफर के बहू के ये सब यूज के इन तो कहीं आवी को नहीं तो छाप ही अड़ी जमगी,
0: सही
1: क्योंकि
0: बात।
1: पहली बहू है घर में। और अबे जो चलो एक दो वे तो भाई थोड़ा एक दूसरा को सपोर्ट मिल जावे,
0: हाँ
1: और पहलू यू कहते इन्हें तो ठाई पड़ी कोई नहीं जा बिंदनी थू जा तो दूसरा नहीं भरावे। अब एक तो भी नहीं भरावा को रेवे और बिना हर चीज गामड़ा की भाषा अलग कस्बा की भाषा अलग जो सुने को नहीं वे भाषा सुनवा में आवे तो अब मुंडो ही देखे
0: और कतरी बार इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए।
1: एक आधी बार क्यों भी हो कि भाई आप मैंने एक बार चीजा को बता दो पचे दूसरी बार में याद रखू खूब चीजा
0: तो बेचारे ने वर्ड मीनिंग याद करने वाली बात होगी मैं दूसरी भाषा ने समझ लो पर मैंने पहले वर्ड मीनिंग तो आवे
1: बिल्कुल हिंदी बोला वाला अंग्रेजी बोला वाला घर में परे जाओ तो विकी कई हालत है वह हालत हैगी विकी तो वहां के अभी यू कहवा तो समझदार देखो एक तो एज डिफरेंस वेवे ना तो लोग वहां की भावना ने समझ सके तो बस आंखों दिन बड़बड़ करते है इन्हें तो कहीं आवी कोई नहीं तो कहीं भी काम भराओ तो मुंडा देखे तो एडी इमेज होगी वह क्यों मैंने आप एक बार बता दो मैंने ये शब्द की ठाकुर तो थोके विदेश आई गई अरे भाई विदेश नहीं पर आप जान देखो सेरा में भाषा थोड़ी चेंज है कि नहीं है पर कटे कटे यह हालत वे जावे
0: यह हालत तो हो जावे और देख जटे थोड़ी शिक्षा की अभाव है बट और
1: ज्यादा हालत क्योंकि शिक्षा का अभाव तो है बट ज्यादा पढ़ियोड़े है ही कोई नहीं सासू जी अनपढ़ ससुरा जी अनपढ़ और छोटा छोटा एक दो एक आधो देवर तो पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई करवा वाला तो ध्यान देवी को नहीं घर में कई
0: हो ध्यान देवी को नहीं और वे भी कई है टाबर तो टाबर ही हुआ है
1: टाबर हो
0: बड़ा लाइट लेवा बाता ने अठे कई गुजर रही है वो थोड़ी समझे
1: सही बात है और एडो हो कंसर्न के गामड़ा में तो कही है कि हस्बैंड वाइफ है ना तो आप बोल नहीं सको बात नहीं कर सको नहीं तो परिवार वाला कहते हुए वो देखो ये तो मका हम ही बात कर रहा तो आप बात नहीं कर सको
0: बात नहीं कर सका
1: तो अब आको दिन आप बात ही नहीं कर सको तो किने पूछो
0: सही
1: आका दिन बचे कतरी समस्या आवे किने पूछो
0: किने पूछो
1: तो कटे कटे यह हालत भी वे जावे पर चलो भाई ये गांवारी बात तो वो कहे कि भाई थोड़े सोला कर ला संपूर्ण तो कोई होवे को नहीं
0: सही बात
1: कहीं कहीं तो
0: कमी रहे
1: कमी रहे ही है तो गांव में अच्छा ही भी है और कटे कटे एड़ी रही तो समझदारी नहीं वे तो थोड़ा बुराई भी है पर चलो भाई कंचन चला आओ जे राम राम
0: राम राम भाई राम राम
1: खूब बता कर कड़ी आपा मिश्री का बाग लगाता लगाता आपा तो ठेठ अटीना आ गया पर चलो बात में ही बात निकले
0: बात में बात निकले और एक दूसरा ने समाधान भी मिले
1: तो वाह भाई राम राम
0: राम राम भाई राम
2: ओम शांति मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति ओम शांति ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पे बातें की थी, तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है। कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह, और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं?
1: जी, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं, वो हमारे संस्कार ही हैं, वो हमारी आदतें ही हैं। और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही,
2: माइक थोड़ा आगे ले लो,
1: एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आदतों के आधार से ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं, और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं। लेकिन आदतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे, या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे। तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, जितनी भी साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, तो उसका तो यही आधार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी, आनंद, शांति, प्यार, आराम। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति को पानी पीना प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है, वो ठंडा पानी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, ठंडा पानी के लिए क्या किया, बर्फ का आविष्कार हुआ। बर्फ पहले कारखानों में बनती थी, फिर मुश्किल लगा कि नहीं, कारखाने में जाना पड़ता है। फिर साइंसदान ने कहा नहीं, आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए, तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, फ्रिज खोल के अभी बर्फ डालनी पड़नी है, इसके लिए क्या बना दो, कूलर बना दो। तो अभी पानी डालो तो बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें हमारी आवश्यकता हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारी फिजिकल बॉडी भी है ना। तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। वी हैव फिजिकल नीड्स, वी हैव मेंटल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स, वी हैव स्पिरिचुअल नीड्स, वी हैव सोशल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फिजिकल नीड्स क्या हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं, हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। हमारी सोशल नीड्स क्या हैं, हमें समाज से क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं, हमें अपनी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ वापस जाना है, ये मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत हमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर पड़ती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन सुख शांति की बात तो बाद में आती है ना, पहले हमें रोटी कपड़ा मकान मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। जब ये चीज़ें हमारे हमें मिल जाती हैं, फिर व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे समाज में इज्जत भी चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है, अरे इज्जत तो मिली लेकिन सच्ची सुख शांति नहीं मिली। फिर वो सोचता है, मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सच्ची सुख शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया, इज्जत भी मुझे समाज से मिल गई, लेकिन वो केवल बाहर से है, लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले। तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को बनाने का।
0: जी राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है, जैसे हमें नीड हो जाती किसी चीज़ की चाहत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं। शायद आज से 50 या 100-200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पर बदलती है क्या?
1: हाँ, ह्यूमन नेचर भी बदलती है, क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम
0: मोल्ड नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है।
1: चेंज, हाँ, ऐसी कुछ होते जो अपने आप, जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं। उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए, लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सुबह उठने की आदत है, अमृत वेला उठने की आदत है, तो अमृत वेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सुबह आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा, तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए। माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो, लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस चीज़ की उस एज पे ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा, तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं। दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं भी होती, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संस्कार कई में होते हो नेचुरली, जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने बीटेक में टॉप किया था, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गाँव में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, उनके गाँव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था, लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था, इंटरेस्ट था, और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं। तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा, ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर, वो एक विधि है, वो एक तरीका है। लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के सम अपने आप सॉल्व तो करेंगे, ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे, क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन उसको बोलो कि, और वो मैथ में अच्छा नहीं है, उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ हमारे में होते हैं। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं, कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं, और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया तो मान लीजिए पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इस जन्म में अगर वो नॉन वेज फैमिली में बाई चांस चले गए तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बनाए होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं, उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाई चांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना है। और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपने आदतों में परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं और जब टीचर शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है, हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है, समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं, जैसे बहुत सारे

0: लोग हैं, आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं, मना नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं। जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रायोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया है कि 90% लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो जबरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता है, और जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स माना वापस आ जाते हैं अपने घर में, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पर?
1: देखिए, जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है, पहली बात तो ये कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसका कारण क्या है, क्यों वो ड्रग्स में गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहां पे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें, उनके साथ वो मिल सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए, अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज नहीं है। उनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, ताना मार दिया है, दुख हो गया है, किसी को गम पहुंचा है, या कोई किसी का हक मार लेता है, तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी चिंता को भूल जाएंगे, परेशानी को भूल जाएंगे। तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं। जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है, जिस मुश्किल का, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें, उनका मन टूट गया। जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो दोस्त हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग। तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं। तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसिल करें,
2: बिल्कुल
1: उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया या आपने सही नहीं अपनाया था, कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती, चिंता को दूर नहीं करती, परेशानी को दूर नहीं करती, बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे। तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी, जिस विधि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा, देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन प्यार तो अंदर से आता है, खुशी तो अंदर से आती है। तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, खुशी मेरे अंदर है, अगर किसी को गम है, दुख है, तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब का एक, जो हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, राजयोग एक ऐसी विधि है, जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम राजयोग मेडिटेशन भी, हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर है, वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं, उनके ऊपर विजिलेशन होती है, ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं, और उसके बाद उनको वो दवाइयां भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविजन छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए उनको लगता है कि मैं ड्रग लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अपने अंदर से वो खुशी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर से ड्रग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें, ध्यान सिखा दें, योग सिखा दें, रिलैक्सेशन सिखा दें, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा कर के उस खुशी को, आनंद को, प्यार को ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी
0: जी
1: कि हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं वो राजयोग को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स, काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से जब उनके जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं, तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो सकता है, और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे। और ये अगर उनको वहीं पे सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने रास्ते पे द्वारा वापस आ सकते हैं।
0: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है, और जैसे कि आखिरी में आपने डी एडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया, और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है। कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जाती हैं, ये भी आपने बताया। और साथ में राजयोग का अगर प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं, तो उनका जो वापस गिव अप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा, एक एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: राघव, तुम्हें पता है मैं तो बहुत कार्टून्स देखती हूँ। तुम देखते हो कार्टून्स?
1: हाँ, मैं भी देखता हूँ।
0: शिक्षा, तुम देखती हो?
2: हाँ, मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है।
0: कौन कौन से पसंद है?
2: मुझे तो सभी कार्टून पसंद है।
0: कुछ नाम तो बताओ।
2: डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है।
0: राघव, तुम्हारा?
1: मेरा भी सब फेवरेट कार्टून है।
0: अरे नाम तो बताओ।
1: डोरेमोन, ऐसे ही।
3: ये क्या बातें हो रही हैं? आप लोग को सबको लग रहा है कार्टून देखने का मन कर रहा है।
0: हाँ जी दीदी,
3: कार्टून्स को याद कर रहे हो इसीलिए?
0: हाँ दीदी।
3: वैसे बच्चों को तो कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं, बट सबके फेवरेट अलग अलग होते हैं ना। की है,
0: कई कई बार एक फेवरेट हो जाता है, मतलब
3: फिर चेंज हो जाता है।
0: हाँ
3: ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, सबकी मेमोरीज को ताज़ा करते हैं और कार्टून्स के बारे में ही बात करते हैं आज बच्चों की दुनिया में। ठीक है, करेंगे बात?
0: हाँ जी।
3: तो बहुत मजा आने वाला है आज तो, मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्टून्स तो बहुत इंजॉय करते हैं हम सब। बचपन में हमने भी किया, अभी आप लोग भी करते हो। तो कौन कौन है हमारे साथ, एक बार हमारे दोस्तों को आपका नाम तो बता दीजिए।
1: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
2: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
0: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ओके, तो शिवांशी, शिक्षा और राघव, कार्टून सुनते ही क्या याद आता है आपको?
0: डोरेमोन।
3: ओके,
2: शिनचैन।
1: डोरेमोन और पोकेमोन।
3: पोकेमोन, पोकेमोन तो हमारे बचपन में भी आता था
0: दीदी। उस टाइम तो ना उसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी थी, मैं भी देखती थी। बट अब ना इतनी गंदी ग्राफिक्स करी, जैसे खिलौने होते हैं ना, और सब खिलौने चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है। हर एक अब कार्टून की, पहले जिनकी ग्राफिक्स जितनी अच्छी थी ना, अब उतनी गंदी कर दी है, देखने में भी मजा नहीं आता।
3: मतलब पहले ज्यादा अच्छा लगता था आपको?
0: हाँ जी, अब नई वाली ग्राफिक्स में ना ऐसे लगते जो डॉल्स होती है ना, बस चल रही हैं,
3: वो डॉल्स को चला रहे हैं।
0: हाँ, और आवाज भी इतनी अलग अलग कर दी है।
3: अच्छा, ओके। हाँ राघव।
1: दीदी, मैं तो जब टीवी पे चलाता हूँ तो मेरी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए पुराने वाले आते हैं।
3: आपको पुराने, मतलब कितने पुराने वाले अच्छे लगते हैं?
1: मतलब ज्यादा पुराने नहीं अच्छे लगते,
3: मतलब 2-3 साल पुराने, पहले वाले ये और पुराने,
1: मतलब जब उनकी ग्राफिक्स अच्छी थी तब अच्छे है।
3: ओके,
1: वो वाले
0: मतलब 2020 से पीछे वाले जितने भी ना, सारे अच्छे। 2020 के बाद ग्राफिक्स उन्होंने चेंज कर दिया, पहले उन्होंने ज्यादा हाई ग्राफिक्स करी, तो उसके बाद और हाई करने के चक्कर में सारे खिलौने ही बन गए।
3: तो मतलब वो फिर इतना मजा नहीं आता
0: पहले वाले में, बहुत
3: पहले वाले में
0: जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लर होता था ना, तो देखने में मजा आता था।
3: अच्छा,
0: कब ठीक होगा, तो ऐसे इंटरेस्ट भी आता था पीछे। अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता,
3: टॉयज जैसा लगता है अभी।
0: हाँ।
3: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
2: दीदी, मुझे तो कार्टून अभी भी अच्छे लगते हैं।
3: कार्टून अच्छे तो लगते हैं क्योंकि उसमें स्टोरी भी होती है, वो फनी भी होते हैं।
2: हाँ।
3: है ना, और एक्शन भी होता है किसी किसी कार्टून में तो। हाँ
1: दीदी, वो पोकेमोन में है ना, कभी पहले तो ऐसे मतलब जब गिरते थे ना, और जब कोई थंडर शॉक मारता तभी बेहोश होते थे, अब तो ऐसे ही वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाते हैं,
3: खड़े खड़े बिना कुछ ऐसे किए हुए।
1: हाँ दीदी,
3: उसमें वो भी होता था ना, पिका पिका पिकाचू।
1: हाँ दीदी।
3: हाँ, तो वो एक दूसरे को फाइट करते हैं ना।
1: हाँ,
3: कौन सा वाला फेवरेट लगता है पोकेमोन आप लोगों को?
0: चार्लीजार्ड।
3: ओके,
1: पिकाचू।
3: पिकाचू, राघव को कौन सा अच्छा लगता है? इतने सारे देखते हो आप?
1: मुझे सब अच्छे लगते हैं, बस पिकाचू और सब लेजेंडरी पोकेमोन।
3: लेजेंडरी पोकेमोन,
0: पहले लेजेंडरी पोकेमोन का कुछ पता ही नहीं था पोकेमोन में। अब तो गॉड पोकेमोन, मून पोकेमोन, स्पेस पोकेमोन, इतने पोकेमोन है
1: दीदी। पहले ना पता नहीं होता था, जब ऐसे छोटे छोटे पोकेमोन के सामने वो बड़े आ जाते थे ना, तो लगता था ये कौन से आ गए, मतलब हमको लगता था कि वो इनके एनिमीज हैं, फिर हमको बाद में पता चला कि वो लेजेंडरी पोकेमोन थे।
3: ओके, तो अच्छा अच्छा ये बताओ मुझे, इतने सारे कार्टून्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना दिन भर में, तो उसमें से किसी का कोई एक डायलॉग है जो आप बोल सकते हो, जो बहुत बार बोलते हैं?
2: दीदी, शिनचैन में एक डायलॉग है, वो बोलता है जब भी उसकी मम्मी उसको डांटती है ना, तो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो।
3: अच्छा, जब डांट पड़ती है तब बोलता है। अरे बाप रे।
0: अरे दीदी, जब वो घर पे आता है ना, तो वेलकम होम बोलता है अपनी मम्मी को।
3: अच्छा,
0: शिनचैन जब घर पे आ रहा है, वो कहता है वेलकम होम मम्मी।
3: अच्छा मम्मी को भी वेलकम होम कर देता है, मम्मी तो पहले ही होम में होती है। ओके आपको याद है कोई शागुफ? नहीं याद आ रहा, अभी बाद में याद करके बोल देना ठीक है।
1: मैं इतना शिनचैन नहीं देखता ना।
3: नहीं, कोई भी और कार्टून, कोई भी एक ऐसे लाइन आपको याद हो तो।
0: दीदी टीटू में ना जो उसके पापा है, वो उसके पापा कहते हैं कि इस घर में मेरी चलती है, बस ऐसा मुझे ही लगता है। हर बार इतने भी एपिसोड है उनमें ये लाइन तो हमेशा आती है,
3: इस घर में मेरी चलती है ऐसा मुझे ही लगता है।
0: हाँ
3: मतलब उनकी चलती नहीं है।
0: और उसकी मम्मी कहती है मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना।
3: ओके हाँ शिक्षा
2: दीदी, सभी कार्टून में ना डायलॉग सुन के मजा आ जाता है और हाल याद हो जाते हैं। अब टीटू के दोस्त भी अपना अपना डायलॉग बोलते हैं। अब उसमें उसका दोस्त है एक, उसका नाम गन्ना प्रसाद है। अच्छा। नाम ही उसका ऐसा, उसके सिर पे बस मक्खी घूमती रहती है
3: हमेशा।
0: जब भी वो बोलता है ना मधुमक्खियां आ जाती है
3: जब भी बोलता है। अरे बापरे
0: क्या
3: नाम भी बड़े फनी फनी होते हैं। कोई बात नहीं, भी बोलोगे तो चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं। तो ये नाम भी बड़े फनी फनी होते हैं ना।
2: हाँ दीदी।
3: तो मतलब आप लोगों को फनी कार्टून्स अच्छे लगते हैं।
2: हाँ।
0: दीदी मोटू पतलू में भी है एक, मोटू का है खाली दिमाग, मेरे दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती।
3: ओ बाप रे।
1: दीदी घसीटा राम का है कि ना 24 साल का तजुर्बा है मुझे,
3: ऐसा बोलते है।
0: ऐसे वो तो मुझे तो इस काम में
1: 20 साल का तजुर्बा
0: है।
3: ओके और वो होता है सच में कि नहीं होता है?
0: नहीं वो उससे काम कभी नहीं होता, बस तजुर्बा है,
3: केवल तजुर्बा होता है।
2: दीदी कोई भी काम हो ना, बस मुझे तो इस काम में कोई भी काम हो, जैसे गड्ढा भी खोदना हो, मुझे तो 20 साल का तजुर्बा है, अभी गड्ढा खोद देता हूँ।
3: हाँ, और कर नहीं पाता उसके बाद।
2: कर पाता नहीं है।
3: इसीलिए हंसी आती है ना।
2: हाँ
0: और दीदी डॉक्टर झटका भी ऐसे, ओ मेरे प्रा दिलदारा।
3: उसके स्टाइल में हंसी आती है ना, उसके बोलने के तरीके में।
1: दीदी
3: हाँ जी,
1: नोबिता रोज आके बोलता है डोरेमोन जियान ने मुझे मारा।
0: दीदी दीदी दीदी मोटू पतलू का भी है एक, वो इंस्पेक्टर चिंगम का, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, रुको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं
1: जी, फिर
0: जब भी वो गन शूट करता है नारियल गिर जाता है जहाँ पर पेड़ ना हो।
3: अच्छा
1: दीदी वो फिर ऐसे हाथ
3: कहीं से गिर जाता है नारियल,
0: कहीं से भी।
1: दीदी वो ऐसे हाथ आगे करता था, उसके एकदम हाथ पतले हो के उस चोर को पकड़ के इधर ले आते हैं पास में।
3: वाह कानून के हाथ है ना। बहुत ही लंबे हो रहे हैं लग रहा है। अच्छा आप लोगों ने कुछ बहुत और पुराने कार्टून्स देखे हैं, जैसे पहले कौन से आते थे? ऑसवर्ल्ड आता था, नॉडी आता था, ऐसा कुछ देखा है कभी आप लोग?
1: ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा है।
3: उसमें क्या होता है?
1: मतलब एक कैट होती है और 3 कॉकरोच होते हैं, वो कॉकरोच है ना वो कैट को परेशान करते रहते हैं।
3: ओके कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच तो ऐसे देखते हैं बाहर तो अच्छे लगते हैं ना, या बाहर ठीक लगते हैं इंसेक्ट?
0: वो रंग बिरंगे कॉकरोच है।
3: अच्छा
0: पिंक येलो और ग्रीन,
3: तो वो अच्छे लगते हैं। ओके
2: दीदी उन तीनों का नाम भी है
3: क्या?
2: छगन मगन गगन।
3: छगन मगन गगन
2: तीनों कॉकरोच का नाम है।
3: वाह तो वो लोग भी क्या मतलब कुछ फनी फनी बोलते रहते हैं?
2: नहीं वो परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम, खाना चुरा लेते हैं फ्रिज में से।
0: ओगी को परेशान करते हैं, ओगी जो काम कर रहा होगा ना उसका काम खराब करके आएंगे।
3: अच्छा
1: दीदी मैं एक और कार्टून देखता हूँ, उसका नाम है ओ बचम, वो जब कान के मैल निकालता है ना तो उसके अंदर से भी सोना निकलता है।
0: अरे उसमें ऐसे बता रहा है कि उसके पापा बहुत बिलियनर मिलियनर है, मतलब उनके घर में जो खाना बनता है वो भी मिलियंस का आता है।
3: अच्छा।
0: तो पैसों वाला थोड़ा वो है।
3: अच्छा बहुत रिच
0: फनी,
3: है।
0: फनी भी है।
3: हाँ, ओके।
0: मतलब जो बच्चा है वो पैसे वाला भी है और फनी भी है, हर बात कछुओं पे चलता है वो। कछुओं पे चढ़ के उनकी राइड करता है,
3: कछुए की राइड करता है। हाँ कछुओं की राइड तो करना वैसे तो।
1: दीदी उसके साथ एक और बच्चा अमीर है, वो है ना मतलब वो दोनों कंपटीशन करते रहते हैं, मेरे पापा ज्यादा, फिर लास्ट में वो ही जीतता है।
3: कौन?
1: ओबजामा।
3: वो ही सबसे ज्यादा होता है रिच। उसके जैसा कुछ करने का मन करता है क्या, जो वो करता है वो कार्टून्स में ऐसे कछुओं की राइड और पता नहीं क्या क्या, कभी कुछ करने का मन करता है?
1: दीदी उनका एक गरीब दोस्त है, मतलब वो ना चप्पल नीचे से घसी होती है वो डालता है, आधे कपड़े डालता है।
3: तो कुछ
0: और एक बार तो ऐसा था कि ओबो चामा कहीं घूमने चला गया अपने पापा को बिना बताए. उसके पापा ने मिलिट्री कर दी खड़ी, मेरे बच्चे को ढूंढ कर आओ, मेरे बच्चे को ढूंढ कर. उस सीन पे बहुत हंसी आई. बच्चा घूमने गया, उसको घूमने जाने दो, उसके पीछे मिलिट्री लगा रखी कि हाँ वो क्या क्या कर रहा है मुझे बताओ, कहाँ जा रहा है मुझे बताओ. उसके पापा भी बहुत फनी.
3: पापा भी फनी है ना, और डर गए, डर जाते पापा कि क्या मतलब मेरे बच्चे.
0: वो एक लौता ही बेटा है ना उसका,
3: इसलिए. तो ऐसा कोई कार्टून है जो जिसकी तरह आपको लगता है कि ये काश हम भी कर पाते तो बड़ा मजा आता?
1: दीदी डोरेमोन है, पोकेमोन है, बेंटन है, ऐसे ऐसे ही हैं.
3: तो क्या करने का मन करता है जो वो करते हैं, वो रियल लाइफ में आपको करने का मन करता है ऐसा कुछ है?
0: दीदी निंजा हथौड़ी है, उसमें जैसे रात को बच्चे नाइट से करते हैं ना अपने दोस्तों के घर, वो करने का मन करता है कभी कभी.
3: अच्छा ओके.
0: जैसे वो एक दूसरे के घर जाते हैं, उधर रह के खाना खुना खा के आते हैं,
3: मस्ती करते हैं.
0: मस्ती करते हैं एक साथ रात को, वैसा कभी कभी लगता है. हाँ हम भी कभी करें,
3: वैसा करने का मन करता है. हाँ होता है. ओके और
1: दीदी निंजा हथौड़ी में जैसे वो क्राइम पकड़ाता है ना निंजा बनके, तो वो भी हमको अच्छा लगता है. वो कभी कभी करने का मन करता है, जैसे कोई क्राइम करता है तो हम उसके पीछे ऐसे तेजी से जाए और उसको पकड़ लें.
3: कोई ऐसे कुछ गलत कर रहा है तो उसको पकड़ लेना, इतनी पावर पावर होनी चाहिए ऐसे, ऐसा मन करता है करने का. वेरी गुड. ये तो वैसे पावर, आप तो किसी को क्राइम करते हुए पकड़ना है तो आप बड़े होकर पुलिस भी बन सकते हो. क्या लगता है राघव? बनना है? सोचना पड़ेगा अभी, अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, है ना? है राघव? ठीक है, बड़े होकर सोचना. आपको
2: दीदी डोरेमोन देखती हूँ ना तो उसमें वो बैम्बू कॉप्टर से उड़ता है, मेरे को तो उसी से उड़ने का मन होता है. किसको सिर पर लगा के पूरे में घूमू मैं उड़ती हुई.
3: अच्छा वो सर पे गैजेट फिट करते थे ना, उससे उड़ सकते हैं.
1: दीदी डोरेमोन के पास कई सारे गैजेट्स होते हैं पर उनमें से कई ज्यादा डेंजरस, मतलब वो अच्छे नहीं लगते. जो मतलब थोड़े कम डेंजरस होते हैं वो अच्छे लगते, जैसे बैम्बू कॉप्टर, एनीवेयर डोर. एक उसके पास दो पैन होते हैं, वो ब्लैक होल और व्हाइट होल, तो उससे अंदर जा सकते हैं. जब तक कोई व्हाइट पैन से ना होल नहीं बनाएगा तब तक अब बाहर नहीं आ सकते. तो
3: उसके अंदर करते क्या है लेकिन? फिर
1: उसके अंदर अपन सामान भर के फिर दूसरा व्हाइट होल बनाते, उधर से सामान वापिस. पर कभी अगर हम उसके अंदर चले गए और अपने पास व्हाइट पैन नहीं है तो कोई हमको बाहर ही नहीं निकाल सकता.
3: बाप रे, तब तो मुश्किल हो जाएगी
1: क्योंकि पैन तो अपने पास है ना.
3: ओके
0: दीदी फनी कार्टून तो देखने में मजा आता है पर जब उनके हॉरर एपिसोड्स आते हैं ना उनको देखने में तो बहुत ही मजा आता है.
3: फनी के हॉरर भी होते हैं?
0: हाँ जी, डोरेमोन का है, शिनचैन का है. और मतलब अभी तो मैंने इन दोनों के ही देखे और किसी के नहीं देखे.
1: दीदी मैंने निंजा हथौड़ी के देखे हैं
3: हॉरर एपिसोड्स. तो उसमें डर नहीं लगता फिर आप लोगों को ऐसे देखने में?
1: नहीं दीदी, पर उसमें मैंने निंजा हथौड़ी का एक एपिसोड था उसमें वो सब मतलब अफवाह फैली थी कि रात को उधर भूत आता है. तो ना उन चार दोस्तों ने जाने का प्लान किया तो वो सब गए. तो वो ऐसे गिनते रहे फिर
0: उसमें ऐसे था कि सीढ़ियाँ गिननी थी.
3: अच्छा.
0: कह रहे थे कि दिन में सीढ़ियाँ 11 होती है पर रात को 12 होती हैं.
3: अच्छा.
0: तो रात को फिर एक सीढ़ी किसी ने एक्स्ट्रा लगा दी, जिसकी एक बिल्ली थी ना, एक जो उसका फ्रेंड था उसकी बिल्ली थी, वो बिल्ली ने ऊपर अपने वो रख लिया और 12 सीढ़ियाँ हो गई.
1: दीदी 12 नहीं थी,
0: 12 नहीं हुई, वो 13 ही हुई. फिर उसके बाद ऐसे और कुछ था कि रात को पियानो बजता है, भूत घूमता है. फिर वो बाहर आए स्कूल के तो उन्होंने एक फोटोग्राफ खींची और फिर जब सुबह फोटोग्राफ मिली तब पता लगा उनमें से एक दोस्त तो बीमार थी, वो तो घर पे थी. और लास्ट वाला रिचुअल ये था कि वो दोस्त बन के आता है वो भूत.
3: अच्छा.
0: तो फिर ऐसा था वो.
3: ये तो काफी खतरनाक था.
0: और डोरेमोन का भी ऐसा था कि ऐसा आया था कि जिस दिन डोरेमोन के क्रिएटर की डेथ हुई थी उस दिन रात को 12 बजे के करीब ऐसा एक एपिसोड आया था कि ग्लोब है, ग्लोब के अंदर से खून निकल रहा है, नोबिता और डोरेमोन जा रहे हैं, उनके चीखने की आवाजें आ रही हैं.
3: अच्छा.
0: और जिस दिन डेथ हुई थी ना उसके बाद ये चला था, बल्कि एपिसोड बनाया भी नहीं था ये.
3: अच्छा.
0: और दीदी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, 21 सितंबर 1961 को उसकी डेथ हुई और 21 सितंबर 2010 को मैं हुई.
3: डेट सेम है आपकी?
0: हाँ.
3: ओके तो ये जो कार्टून्स है, हाँ
1: दीदी ये भी हो सकता है कि इसके अंदर वही वाला डोरेमोन का कैरेक्टर हो.
3: अच्छा शिवांशी के अंदर लगता है आपको ये डोरेमोन जैसी?
0: मेरे पास भी दीदी एक पॉकेट होगी, मैं निकालूंगी बैम्बू कॉप्टर.
1: दीदी वो जो था ना जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके रूम में कोई उसको परिवार को देने के लिए उसकी आखिरी वो कोई चीज होती है ना वो देखने गए थे, तो उनको मतलब टाइम मशीन दिखी थी वो बिग लाइट और स्मॉल लाइट एनीवेयर डोर ये सब उधर गैजेट्स पड़े थे डोरेमोन के तो सबको लगता है कि वही नोबिता था.
3: अच्छा मतलब वो कार्टून के एपिसोड की बात कर रहे हो आप?
1: कार्टून के एपिसोड के नहीं असली की बात है.
3: अच्छा
1: मतलब उसने एनीवेयर डोर पकड़ के उसने बोला मैं अपने घर चला जाऊं तो उसने खोला और वो अपने घर पहुंच गया सीधा.
3: तो ये सारी बातें लेकिन सुनने सुनने में आती है ना, अभी कुछ ऐसा कंफर्म तो नहीं होता है.
1: दीदी कंफर्म है.
3: कंफर्म मतलब कंफर्म किसको बोलते हैं?
1: दीदी उसका नाम भी हिंदी में नोबिता ही है.
3: अच्छा ओके.
1: दीदी उसने मिस्ट्री बताई थी अपनी कि डोरेमोन अच्छा. मेरे साथ ही रहता है ये बचपन में वो मेरे साथ ही था.
3: ओके ठीक है. देखो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको कई बार क्या होता है कोई सिर्फ किसी के कहने पे हम सच है पूरी तरीके से नहीं मान सकते, लेकिन उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे लोग प्रूफ्स इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं. तो इन सब बातों को हम कभी भी जब तक प्रॉपरली रिसर्च

0: हीरो ही जीतेगा। अगर मान लो कभी हार गया तो दूसरी बार वापस लड़ाई करने जाएगा तो वापस
1: फिर जीत जाएगा।
0: पता है हीरो ही जीतेगा, तो देखने का क्या फायदा,
1: क्या फायदा।
2: दीदी मैं ऐसी चीजें नहीं देखता फालतू की। उसमें क्या होता है कि ना वो पहले हीरो के पास कुछ नहीं होता तो वो ऐसे पंच से लड़ता है, फिर वो हार जाता है, फिर उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है, फिर वो मर भी जाता है। उसके बाद उसको किसी ने जिंदा किया तो उसने बोला कि अब मेरे को इससे बदला लेना ही पड़ेगा वरना ये पूरी। ऐसे ऐसे कार्टून देखता हूँ मैं।
1: ऐसे वो वापस से आते हैं,
2: मतलब वो कार्टून नहीं होते, वो एनिमे होते हैं।
1: एनिमे होते हैं, ओके। और शिक्षा आप देखते हो ऐसे फाइटिंग वाले?
3: नहीं दीदी मुझे मजा नहीं आता ज्यादा।
1: मजा नहीं आता ना,
3: वो तो बस फनी कार्टून में मजा आता है।
1: हाँ फनी तो बहुत इंजॉय करते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। क्या अच्छा लगता है उसमें?
2: दीदी मैं गन्स वाले नहीं देखता। जैसे कि किसी के पास वॉच होती है और वो उसे किसी भी एलियन के डीएनए मिला के वो कोई भी एलियन बन सकता है।
1: ओके। मतलब उसमें बहुत सब वो होता है ना कि क्या होगा आगे, सस्पेंस होता है।
3: हाँ दीदी ये वाला कार्टून देखने में तो मजा आता है। उसमें एक कैरेक्टर है गोयन, मेरे को तो वो अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को वो कार्टून पहले देखती थी, अब तो नहीं देखती, अब तो बस फनी कार्टून ही ज्यादा पसंद है।
1: कभी कभी किसी कैरेक्टर की वजह से भी कार्टून अच्छा लगता है।
3: हाँ।
1: कि उसमें ये है तो बहुत मजा आता है। ओके तो आप लोग को क्या अच्छा, कोई ऐसा कार्टून है जिससे आपने कुछ सीखा हो, आपको लगा हो कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये मैंने सीख लिया इससे, कोई ऐसी बात कभी लगी या नहीं भी सीखा तो बता सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है
2: दीदी, मतलब मैं डोरेमोन का एपिसोड देख रहा था, उसमें मतलब वो कोई जादू कर रहे थे कि अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर में पानी डालेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, तो वो उसमें कुछ लगाना भूल गए थे तो उसने लगाया तो उसके बाद सच्ची पानी नहीं गिरा था। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मुझे लगता है कि वो सच है।
1: ओके ठीक है
0: जी। मैंने भी सीखा था
1: क्या
0: कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो जब हमारे साथ बुरा होगा तब हम और लोग हमारी हेल्प करेंगे। उस एपिसोड में ऐसा था कि नोबिता ने ऐसा सोचा था मैं सबकी मदद करता हूँ तो भी मेरे को डांट पड़ती है, तो नोबिता ने सोचा मैं सबका बुरा करूँगा, तो फिर डोरेमोन ने उसको एक ऐसा मतलब बेल्ट दिया कि उसको लगाने से सारे बुरे काम करेंगे, ऐसा नोबिता को बोला। पर ऐसा था जो बुरा काम करेगा उसको ठीक करने का है वो, तो बेल्ट।
1: अच्छा तो उसको बताया
0: वो सारा बुरा काम करने जा रहा था पर अच्छा हो रहा था। उसने क्या करा, एक क्रेन थी उसका जो मुंह था उसको दूसरी तरफ कर दिया।
1: अच्छा
0: तो किसी और के ऊपर वो लोहे का रॉड गिरने वाला था, तो उसी टाइम उसको अपने आप हुआ कि मैं 90 को धक्का मार देता हूँ, तो उसने उन आंटी को धक्का मारा तो रॉड फिर वो आंटी बच गई। फिर ऐसे उसने किसी और की हेल्प करी। फिर रात को जब घर पे गंदे कपड़े करके आया ना तो उसकी मॉम उसको डांट रही थी, तो जिस चीज की भी उसने हेल्प करी थी ना वो सारे लोग आए उसको गिफ्ट दिया और उसकी मॉम को कहा इसने हमारी मदद की। तो इससे मेरे को ये सीख मिली कि हाँ कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो जब हमारे साथ बुरा होगा तब वो भी हमारी मदद करेंगे।
1: सही बात है, और ये चेन ऑफ गुडनेस होती है, ये जरूर कनेक्टेड रहती है कहीं ना कहीं। पर एक बार शिक्षा से भी पूछ लेते हैं उसने क्या सीखा।
3: दीदी मैं तो है ना सिंचाई नहीं देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें वो तो 5 साल का छोटा सा बच्चा है जो अपने है ना प्ले ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, बाकी वो किसी का बुरा तो नहीं करता पूरे टाइम, उसमें हंसी हंसी होती रहती है। और वो उसमें एक चीज तो है, उन लोगों में लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा साथ रहते हैं।
1: हाँ ये एक अच्छी चीज है ना।
3: हाँ वो एक दूसरे को तंग करेंगे परेशान करेंगे पर साथ में कोई दूसरा अगर परेशान करे तो वो दूसरे से लड़ जाते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है इसको परेशान नहीं करना।
1: ये वो यूनिटी, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा कोई फनी वर्ड्स सीखे हैं क्या आपने कभी कार्टून से?
2: दीदी शिनचैन के कार्टून्स में तो सब फनी फनी होता है, पर जब उसकी मूवीज आती है ना तो वही हीरो होता है।
0: सारी बहादुरी दिखाता है,
1: बहादुर होता है वो। अच्छा
2: दीदी मतलब इतना बड़ा मॉन्स्टर था उससे मतलब सब डरते थे, तो उससे ना बड़े बड़े बंदे भी डरते थे, पर शिनचैन है ना उसने बोला मैं 5 साल का नोहारा फैमिली का बच्चा हूँ मैं नहीं डरूंगा, तो उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया।
1: अच्छा
2: बीच से काट दिया उसको।
1: मतलब डरा नहीं।
0: उस मॉन्स्टर ने उसके पेरेंट्स को पकड़ लिया था तो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसने ये सब करा था।
1: ओके
0: तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है वो,
1: मम्मी पापा के लिए कुछ भी।
3: दीदी उसकी एक छोटी सी बहन है जो पैरों से नहीं चलती, मतलब घुटने घुटने से ऐसे चलती है और कुछ नहीं बोलती, पूरे टाइम की करती रहती है।

0: हीवा वारी नाम है उसका, उसको स्पेस से लोग आए थे ना, उसको पकड़ के ले गए थे, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ की स्पेस की रानी है ये, हमारी रानी बहुत पहले खो गई थी, उसको वो पकड़ के ले गए। सिंचैन भी स्पेस में चला गया उसी स्पेस वाले यूएफओ पे लटक के, वो वहां पे गए ना, उसने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरे स्पेस में ढूंढा, महल वगैरह पता चला, उसने अपनी बहन को बचा के दोबारा स्पेस से लेके आ गया। मतलब वो 5 साल का बच्चा है पर मूवी में एक्शन इतना करता है कि बिल्कुल हीरो है वो, 5 साल का,
1: 5 साल का हीरो है वो।
0: हाँ
1: तो आपको अच्छी अच्छी बातें भी, मतलब आपको लगता है कोई फनी वर्ड्स है ऐसे लगता है जो आपने कार्टून से सीखे हो, कुछ ऐसा बोलते हो?
2: दीदी वो शिनचैन है ना, मतलब वो, मतलब ऐसे किसी भी, मतलब किसी भी कीड़े के ना कपड़े, इंसेक्ट कपड़े डाल के फिर सबको डराता है, उसके बाद है ना वो, मतलब जो भी क्राइम कर रहा होता है ना ऐसे उसके पास उड़ के चला जाता है वो इंसेक्ट्स के, क्योंकि उनमें विंग्स लगे होते हैं ना, तो वो ऐसे कूदता है और आराम आराम से उनके पास पहुंच जाता है और उसकी कमर पे लटक जाता है।
1: अच्छा,
2: तो फिर वो क्राइम भी पकड़ लेता है और फन सबको हंसा भी देता है।
1: ओके ठीक है, चलो कार्टून्स तो मतलब बहुत सारी चीजें सिखाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल हमें अच्छे कार्टून सिलेक्ट करके देखना बहुत जरूरी है जो हमारे अंदर यू नो वैल्यूज या कुछ अच्छी चीजें दे, हंसते हंसते मजे करते करते, ऐसा नहीं है कि ऐसे बोरिंग देख रहे हैं हम, कुछ मजा भी आए और अच्छे वैल्यूज भी आए, है ना, क्योंकि जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है नहीं पड़ता है, क्या लगता है आप लोगों को?
0: पड़ता है।
1: हाँ या नहीं?
0: पड़ता है।
1: पहले हाँ या ना बताओ।
2: पड़ता है।
1: पक्का पड़ता है? ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं पड़ता और ऐसे बोल दिया कि पड़ता है?
2: नहीं पड़ता है।
1: पड़ता है। आप लोगों को पता है एक ना थ्योरी है जो मीडिया की थ्योरी है, उसको कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी में ये रिसर्च किया गया, जॉर्ज गर्बनर करके एक सोशल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये रिसर्च किया, बच्चों को कार्टून्स दिखाए और जो वायलेंट वाले होते हैं ना, बहुत मार धाड़ वाले कार्टून्स होते हैं, बंदूक से मारना, ऐसे तलवार से मारना, ऐसे वायलेंट वाले कार्टून्स, तो जो बच्चे ऐसे कार्टून्स ज़्यादा देख रहे थे, उन्होंने रिसर्च किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे बाहर निकलने में थोड़ा डरने लगे, उनको लगने लगा कि कोई मार देगा या कोई कुछ कर देगा, तो उनके वो पहले नहीं डरते थे, पहले वो इंजॉय करते थे अपनी लाइफ आराम से, लेकिन बाद में उनके अंदर डर अंदर तक बैठ गया कि वो अकेले भी जाने में डरने लगे और लगने लगा कोई मार ना दे, और कोई कुछ गुस्सा भी करता था ना तो उनका हाथ ऐसे ऊपर हो जाता था कि मुझे भी मारना है या वो मुझे मार देगा, तो इसलिए उन्होंने ये फिर रिसर्च लिखी और एक थ्योरी बनाई जिसको कहा कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? कल्टीवेशन जनरली क्या कल्टीवेशन का मतलब होता है?
3: तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खाना जो उगाते
1: हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप जिस तरह की चीजें देखोगे, जिस तरह के कार्टून्स देखोगे, उस तरह के ट्रेट्स, उस तरह की जो चीजें हैं आपके अंदर उग जाएंगी। पहले आप नहीं भी डरते होगे लेकिन धीरे धीरे आप डरने लगोगे, पहले हो सकता है आप बहुत ऐसी चीजें, किसी को सरकास्टिक या चिढ़ाना या बुली नहीं करते होगे, आप अच्छे बच्चे होगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप मजाक मजाक के उसमें बुली करने लगोगे, उसको चिढ़ाने लगोगे, किसी की हाइट पे, किसी के वेट पे कमेंट करने लगोगे, किसी को प्रैक्टिकल जोक्स, आप जो होते हैं ना जो किसी को नुकसान भी जिससे पहुंच सकता है, हार्मलेस जोक्स तो कर सकते हैं, ऐसे करने लगोगे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हम वैसे ही बड़े होके बन जाते हैं, तो फिर लोग हमसे फिर बचते हैं, हमारे दोस्त कम बनते हैं फिर धीरे धीरे, और दोस्त तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए?
3: चाहिए
1: चाहिए ना, तो इसलिए आपको जो चूज करना है कंटेंट, जो कार्टून्स है वो देख के चूज करना है ना, एंजॉय तो करना ही है, मजा तो आना ही चाहिए, लेकिन वैल्यूज भी होने चाहिए, ठीक है? चलो अभी फिलहाल करें गुड बाय,
4: बाय बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

भाग 11। अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि शांतिवन की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा है, एक दिन प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय के थोड़ी देर बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, पिकेटिंग शुरू कर दी। यह पिकेटिंग दिनांक 7 अगस्त 1938 को हुई थी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई बहन ज्ञानामृत पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उपद्रवियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी लौट आईं। उन्होंने अचानक देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञानामृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी पंक्ति में खड़ी हो गईं। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं माताओं तथा भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे। और दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं अथवा भाई बांधव, अथवा आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ओर खड़ी थी अन्यायकारी, धर्म विमुख, ईश्वर विमुख कौरव सेना या आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना अथवा शिव शक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी, वे संख्या में बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे, अथवा शक्ति दल की गिनी चुनी कन्याएं माताएं थीं। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थीं, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी ना किसी युक्ति से निकल आईं। इन्हीं में से एक का नाम था गोपी। वे शहर के एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थीं। वे चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे कि वे अपनी पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दें। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पौत्रियों को 13 तालों के भीतर ऐसा बंद कर रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। वे सेठ जी इस पिकेटिंग अथवा प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहां आ गई है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और संताप भी। ये सेठ एंटी ओम मंडली को बहुत धन देते थे, इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और लेते। सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष से भी छोटी थीं, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया, वे वहां से हिली नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते, अच्छा आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती कि हम तब जाएंगी जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर जाएंगी, वरना हम भी यहीं धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। हम चाहे धरती पर पड़ जाएं, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। आखिर धरना मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और ये अपने मंतव्य में अटल हैं, तो वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम तो होती ही गई थी, आखिर वे भी अपने डेरे कूच कर गए। धर्म परायण पांडव दल की विजय हुई, क्योंकि जिधर श्री हरि है अर्थात पतित पावन परमात्मा है, विजय तो उस ओर निश्चित ही है। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। एक ओर वे सब खड़े थे और दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिव शक्ति सेना थी। परंतु उस दिन भी कुछ ना हो सका। आखिर सायकाल 7 बजे तक खड़े रहकर
वे लोग वापस घर लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ लाए। अब सिंध की सरकार यानी कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है, वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख लिख दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उधम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने तोड़ा और जुलूस निकालकर पथराव भी उन्होंने ही किया। अतः उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्याय संगत बात थी, परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया और जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही था। अतः ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर तथा एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही है, शांति तो दूसरों ने भंग की है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसे ही किया जाने लगे तब तो कोई भी पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक देंगे। अतः ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है, इनके साथ तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा वो तो प्राय कराची में रहने लगे। ओम मंडली ने सभी को यह स्पष्ट कह दिया था कि कराची में वही चल सकते हैं जिनके पास पिता या अभिभावक का स्वीकृति पत्र हो। अतः जिन माताओं बहनों को अपने अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले हुए थे, अब वे भी कराची में रहने लगी। अब कराची में ओम बाबा ने सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी। वहां छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे अच्छे बंगले ले लिए गए। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा वॉइस भवन, चौथा प्रेम भवन और 5वां राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। कराची में भी दिनचर्या पहले की ही तरह चलती थी। वैसे ही प्रातः 3:30 बजे उठना और वैसे ही शांति समाधि, ज्ञान मुरली आदि आदि का सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं आदि बस में कहीं जा रही थी तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। उनकी बस उलट गई, कई एक को चोटें भी आईं, कुछ एक के शरीर से थोड़ा रक्त भी निकला। कुछ लोगों ने यह देखा, परंतु उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि छोटी छोटी कन्याएं भी रो नहीं रही थीं, उनके चेहरे पर भी दुख के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। यदि बस में और कोई होते तो रोने चिल्लाने का वातावरण होता, परंतु यहां तो सभी कह रहे थे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप हूं। सभी को अस्पताल में ले जाया गया। वहां उनकी मरहम पट्टी हुई। जिन्हें अधिक चोट आई थी उन्हें दाखिल किया गया, परंतु अस्पताल की नर्सें तथा डॉक्टर आदि सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इन्हें जरा भी दुख नहीं है। एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई। बाबा ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता या दुख के चिन्ह नहीं आए। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भावी थी सो हो गई, चलो अब मैं अस्पताल चलता हूं। पहले तो बाबा वहां गए जहां दुर्घटना हुई थी, फिर वे अस्पताल पहुंचे। अपनी मुस्कुराहट से, मधुर दृष्टि से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्षित किया। बाबा ने देखा कि सभी शांतिपूर्वक, सहनशील और आत्मा निश्चय है। यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों ने भी इसकी भूरी भूरी सराहना की, इसकी चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी
आत्मा निश्चय में स्थित हो जाते हैं और सहनशील भी हैं, तथा इनकी धारणाएं बड़ी ऊंची हैं। अब हैदराबाद में ज्ञान की प्यासी माताओं कन्याओं से बाबा की अनुपस्थिति सहन न हो सकी। वे ज्ञान और ज्ञानदाता को याद करके विलाप करती रहती। घर वालों के बंधन में पड़ी हुई वे श्रीमद भगवत प्रसिद्ध गोपिकाएं जब आपस में मिलती थीं, तो परमपिता परमात्मा के लिए और ज्ञाना अमृत के लिए उनकी विरह वेदना का दृश्य बड़ा मर्म स्पर्शी होता था। वे रो रो कर एक दूसरे से पूछती, ओ जमुना, ओ जसोदा, ओ राधा, बता दे कहां गए हो मेरो घनश्याम। सखी मैं इधर देखूं, मैं उधर देखूं, मेरो कहां गयो घनश्याम। एक दिन यही कोई 15 कन्याएं मिलकर अपने बंधनों को तोड़कर कराची में जा पहुंची। उस समय उनके मन में पवित्रता का यह पाठ चलता होगा। नवल नवेली न्यारी, हम कुमारी ब्रह्मचारी, बचपन अलबेली न्यारी, हम कुमारी ब्रह्मचारी, काम नहीं कोई क्रोध नहीं, हम सरल सहज मतवारी, लोभ नहीं कोई मोह नहीं, हम सो सो हम गतवारी, ब्रह्मा ज्ञान की नित्य ही बोली बोले, विज्ञानी बन ज्ञान अविनाशी खोले, हम गोकुल की अनसुईया, अम्मी तुम पिंजरे की मैना, हम मधुबन की गोपियां, फसी तुम भूषण और गहना, तुम पिंजरे की मैना। वहां से ओम मंडली ने उनके संबंधियों को सूचित कर दिया कि वे कुशल पूर्वक यहां पहुंच गई हैं, आप उनकी चिंता न करना। अब एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने तथा उन लोगों ने देखा कि इतना प्रयत्न करने पर भी ज्ञान अभिलाषी कन्याएं माताएं हमारे बंधन को तोड़कर मुक्त हो गई हैं। एक के बाद दूसरी रीति से हंगामा करने के बाद भी

कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अतः मुखियों ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डालना शुरू कर दिया और तत्कालीन अल्लाह बख्श मंत्रिमंडल के हिंदू मंत्रियों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे मुख्यमंत्री को धमकी दें कि यदि उन्होंने ओम मंडली पर प्रतिबंध न लगाया तो वे त्याग पत्र दे देंगे जिससे कि उनका मंत्रिमंडल टूट जाएगा। वे मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर जोर डालकर कुछ बालिग माताओं और नाबालिग कन्याओं को भी ले गए और उन पर उन्होंने चौगुना अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक कन्या का तो अंदर वियोग में रहते रहते और सितम सहन करते करते देहांत भी हो गया। दूसरी ओर उन्होंने समाचार पत्रों के संपादकों को भड़काया और उन पर अपने पैसे तथा पद का दबाव डालकर उनसे मुख्य लेख लिखवाए। तीसरी ओर उन्होंने शरारती लोगों को उकसा दिया कि उन्हें ओम मंडली की कन्याएं माताएं जहां कहीं मिले वे उन्हें अपमानित करें तथा उनके विरुद्ध हल्ला गुल्ला करें। चौथी ओर उन्होंने कुछ लोगों से कहकर न्यायालय में सहवास अधिकार के लिए मुकदमे चालू कर दिए। एक बार एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया था क्योंकि माताओं कन्याओं के इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए दिव्य गुणों की मूर्ति ओम राधे ही निमित्त थी। लोगों ने सोचा कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सीधे प्रश्न किए जाएंगे और इससे हम इस संस्था को बदनाम करेंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। उस समय न्यायालय के विचित्र दृश्य और उसमें मजिस्ट्रेट से हुए प्रश्न उत्तर का उल्लेख ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने इस प्रकार किया है। ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची से हैदराबाद उस न्यायालय में आई थी। कोर्ट का कमरा लोगों से भरा हुआ था, उनमें काफी संख्या में मुसलमान लोग भी थे। वहां पुलिस के इंस्पेक्टर आदि भी मौजूद थे। जब हमारी कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी थी तो वहां भी भीड़ को काबू में रखने के लिए काफी पुलिस का प्रबंध था। ओम राधे जी के साथ हम 5 ईश्वरीय बहनों ने कोर्ट के कमरे में जब प्रवेश किया तो सभी लोग उत्साहपूर्वक हमारी ओर देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। हम लोग बिल्कुल निर्भय अवस्था में थीं, क्योंकि हमें यह ज्ञान मिला हुआ था कि संसार जीत और हार का खेल है। इसमें एक की जीत तो दूसरे की हार तो है ही। अतः हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे कि हम खेल देखने आई हो। बाबा के द्वारा हमें जो इतना उच्च ज्ञान मिला था उसके होते हुए हम डरती क्यों? फिर हमारे मन में कोई बुराई भी तो नहीं थी, तो हमें किस बात का संकोच अथवा डर होता? कोर्ट में सन्नाटा सा छाया हुआ था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम 5 बहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियां दिलाई। फिर ओम राधे जी को गवाही के कटघरे में आने के लिए कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ति जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कहीं आकाश से वह उतरी हो। ओम राधे जी के वहां ठहरने पर जज साहब ने क्या कहा, यह अगले भाग में सुनिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अक्सर हम जानते हैं बात होती है बदलाव की, बात होती है उन्नति की, और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे भारत में जन्मे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन भारत माँ को समर्पण कर दिया बल्कि समाज सेवा में दूसरों का जीवन खुशनुमा और उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए अपना हर एक क्षण लगा दिया। उन्हीं में से एक ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है जिनका नाम है भीखू राम जी इदाते, या उनको सब दादा इदाते के नाम से भी जानती है। पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित है और भारत की एक जानी मानी हस्ती है, और उनके बारे में उनका परिचय मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो के शो।
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री भीखू राम जी इदाते यानी दादा इदाते विमुक्त घूमतू एवं अर्ध घूमतू समुदायों के लिए केंद्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा कई जातियों के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। 2 जून 1949 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव में वे जन्मे। एक शिक्षक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया और कैसे कैसे उनका जीवन, जो कहें कि 55 वर्षों से भी अधिक उन्होंने सिर्फ अपने समाज सेवा को अर्पित कर दिया, लोगों को अर्पित कर दिया, इस देश को अर्पित कर दिया। आगे की जर्नी उन्हीं से सुनेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपकी जुबानी आपकी कहानी।
1: मैं बताया कि नाम है भीखू राम जी इदाते
0: जी,
1: दादा इदाते इस नाम से परिचित हो
0: जी।
1: महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में दापोली तहसील है, उस तहसील में चेटोली नाम का एक गांव है
0: जी।
1: उस गांव में मेरा जन्म, एक नॉमेडिक ट्राइब जिसको हम कहते हैं
0: जी,
1: ऐसे सरोदे नाम की एक कम्युनिटी वहाँ है, उस कम्युनिटी में वो जन्म हुआ। उस कम्युनिटी में कोई शिक्षा नहीं थी
0: जी,
1: कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई बहुत बड़ी हुई ऐसा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक कोई 2-3 लोग पढ़े थे, और पहली बार मैं 8वीं कक्षा में गया
0: जी। कौन से साल की बात है
1: ये? सामान्यतः 1964 की बात है।
0: ओके।
1: जब मैं उस समय 8वीं में जाना, 8वीं कक्षा में जाना तय हुआ था
0: जी,
1: क्योंकि उस समय मेरे स्कूल में गोपाल विट्ठल भागवत करके हमारे एक शिक्षक थे
0: जी,
1: मुख्याध्यापक, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी। उन्होंने हमारे गांव में एक संघ की शाखा शुरू की और उन्होंने मुझे वहां लाया। वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत मैं लिप्त हो गया। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि अभी 7वीं के आगे थोड़ा शिक्षा तो करनी चाहिए। मैंने कहा कैसा करेंगे, घर की स्थिति तो कुछ नहीं है, देखो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा करने। इसलिए मैं मेरे घर में बताया कि मुझे शिक्षा करने। मेरे माता पिता जी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी शिक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा अभी ऐसा करो, आप अपना देखो, मैं मेरा देखता हूँ। इतनी बात हो गई। मैं वहां से 50 किलोमीटर दूरी पर एक विद्यार्थी आश्रम था, वहां मामा महाजन करके आर्य संघ के प्रचारक भी रहे थे, उस गांव में एक उन्होंने विद्यार्थी आश्रम खोला था।
0: अच्छा।
1: उस विद्यार्थी आश्रम में मैं दाखिल हो गया। मेरे माता पिता ने मेरे 3 उस समय बहने थी उनको ले लिया, और दोनों मुंबई में एक फुटपाथ पर रहने। और फुटपाथ पर रहकर धीरे धीरे मेरे मामा थे वहाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी झोपड़ी उनको कहीं ना कहीं मिला दी, उसमें रहने। लेकिन काम तो कुछ नहीं था, बहुत परेशानी में थे
0: जी।
1: तो किसी ने बताया यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, एक छोटा था उस समय मंदिर है, वहाँ दुर्वा फूल जो है
0: जी
1: वो उसकी वो बेचो, बहुत लोग करते हैं काम। वहाँ मेरे माता पिता लगे, वो काम करने लगे। मैं यहाँ आठवीं कक्षा में आ गया, क्रमशः नौवीं तक दो बरस में वहां था
0: जी।
1: उस समय मुझे नाइन्थ क्लास में 92% मार्क्स मिले।
0: वाह क्या बात है।
1: वार्षिक परीक्षा में, एनुअल में
0: जी।
1: वहाँ के लोगों ने, मामा माजन वगैरह बैठे, उन्होंने कहा अरे आप जरा वो तहसील की जो स्कूल है वहाँ जाओ, हमारे आपके आपकी कोई कुछ बातें हुई है नहीं लगता है मुझे। मैं ठीक है, तो मैं दापोली शहर में आ गया, एजिया स्कूल नाम का स्कूल था, उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया
0: जी।
1: इस तरह चलते चलते एक बार मैं मुंबई गया माता पिता को मिलने के लिए, देखा तो फूल माला बेच रहे हैं। माता जी रात को दूर दूर तक जा रही थी, वहां से वो दुर्वा वो लाके गणेश जी को तो बहुत लिया मालूम है।

0: वो लाते थे, उसका मजदूरी करते है छोटे, उसकी फूल और माला करके। मेरे तीन बहनें माता पिता जी ये बेचते थे। मैं जब गया तो मैंने देखा तो मैंने भी दो तीन दिन था तो मैंने भी फूल वगैरह बेचते उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा जरा यहाँ एक सिनेमा लगाए, ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सिनेमा है,
1: अच्छा
0: तो आप देख क्या जाओ। तो मैंने कहा मैं सिनेमा नहीं देखू, देखियो लोग तो क्या क्या करते हैं सिनेमा देखने के लिए। मैंने कहा नहीं मुझे ना किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, जो पैसे दिए है उसके मैं फुटपाथ पर कुछ किताबें देखता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं गया, चार आठ आने तो थे, उसमें से दो तीन छोटी छोटी किताबें फुटपाथ पर
1: जी
0: लेके मैं आ गया। मेरे माता पिता को बहुत दर्द हुआ कि बेटे ने किताबें मांगी थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, बोले कुछ नहीं। फिर से जब मैं दो चार महीने के बाद आ गया था, उन्होंने दो बॉक्स मेरे सामने रखे, 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे ऐसे रखकर उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मुझे कहा आपको पैसे चाहिए थे ना, कुछ किताबें चाहिए ना, ले लीजिए। 400 रुपये मिले उसमें।
1: अच्छा।
0: अभी उस समय 228 रुपये तोला सोना था, 400 रुपये ने लगभग 2 तोले का सोने की कीमत हो सकती थी। पूरे दिन में मैंने मुंबई में जैकब सर्कल, किंग सर्कल, वहां जाके मन चाहे किताबें पद पर ले, तो आगे चलकर मुझे छंद ही लगा उसका। और आगे बहुत आगे चलकर
1: जी
0: महाराष्ट्र में कोकण मराठी साहित्य परिषद का निर्माण हुआ था
1: जी,
0: मधु मंगेश कर्णिक करके बहुत बड़े साहित्य उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक पुरस्कार जाहिर किया था उत्तम ग्रंथ संग्रह और वाचक।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे दिए, तो उस समय मेरे पास 10,000 किताबें,
1: 10,000
0: उस समय हुई थी मेरे पास। साहित्य सम्मेलन उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मैंने मेरे माता पिता को समर्पित किया था कि जो तो नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे चाहिए थे इसलिए उन्होंने क्रेडिट गोज टू दे। इस तरह होने लगा, संघ में लिप्त उस कार्यक्रम में जाने लगा। संघ का प्रथम द्वितीय तृतीय शिक्षा वर्ग होता है, तीसरा नागपुर में होता है। तो 8वीं 9वीं और 10वीं 3 बरस में मैंने पूरा कर दिया। उस समय 11th SSC थी उस समय। SSC में जब था मैं तो एक शिक्षक करके संघ शिक्षा वर्ग पर आया इतने स्मॉल एज में, लेकिन जब मैं पुलथरी में गया था
1: जी
0: तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ, मैं पढ़कर क्या करूँगा, आपके साथी कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वहाँ एक संगठन शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 14।
1: अच्छा।
0: जब मैं 8वीं कक्षा में था
1: जी,
0: सर्वोदय समाज शिक्षण सुधार मंडल।
1: अच्छा।
0: आगे 15 बरस उसमें मैंने बहुत प्रयास किया, अभी 100% शिक्षा है उस कम्युनिटी में, 100% शिक्षा।
1: क्या बात है।
0: और पहला 8वीं कक्षा वाला मैं था, अभी 10-20 डॉक्टर्स है, 10-20 इंजीनियर्स है, 50 से ऊपर कोई नर्सेस है, 200 करीबन टीचर्स है
1: जी,
0: कोई अभी मामलेदार हो गए हैं, कोई हर क्षेत्र में अभी वहाँ वो नेतृत्व कर रहे हैं वो कम्युनिटी, जिले के हर क्षेत्र, राजनीति से लेकर शिक्षा संस्थान तक, किसी ने शिक्षा संस्थान खोला, किसी ने हॉस्पिटल्स खोले, इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखा, आपके सामने
1: जी
0: हम जो परिवर्तन जिसको कहते हैं, जिसका जहाँ उनका बहुत ही तुच्छता से उनका उल्लेख करते थे कम्युनिटी के भिखारी जिनको कहते हैं सामान्यतः, वो अभी वो श्रीमंत वाड़ा हो गए।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह का परिवर्तन उस कम्युनिटी में देखने मिला, वैसा संघ का काम मेरे सामने आ गया
1: जी।
0: तो धीरे धीरे वो गांव, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत और अखिल भारत
1: जी,
0: सलग 50 बरस ये काम करता रहा। और समरसता का जो विषय है
1: जी,
0: अखिल भारत पहला प्रमुख मैं था।
1: अच्छा, क्या बात।
0: और वो पूरे देश में मैंने वो संगठन के लिए बहुत काम किया था
1: जी।
0: तो इस तरह का एक छोटे शहर जिसको कहते हैं, तो भूमि से लेकर रहने के लिए भी ठीक जगह नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा मकान था उस समय
1: जी,
0: मेरी माता जी ने बनाया था कष्ट से। उसकी कीमत उस समय 88 रुपए थी, 28 रुपए में वो मकान बनाया था। ऐसी स्थिति थी। आज आप वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़े बंगले हुए हैं। मुझे एक साइकिल लेने के लिए हरक्यूलस की 300 रुपए नहीं थे मेरे पास, तो 30-30 रुपए देके 10 महीने में मैंने एक साइकिल ले ली। अभी से 100-200 फोर व्हीलर्स उस कम्युनिटी में है। तो भौतिक में भी, शिक्षा में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति के छोटे रूप, और इसका भी बड़ा रूप आगे चलकर पूरे देश में एक काम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला
1: जी।
0: इन शॉर्ट इतना ठीक है सर।
1: मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आप जो बता रहे हैं, हर क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, हर रूप से वो आया, और इसकी शुरुआत शिक्षा से हुई
0: जी।
1: जी,
0: शिक्षा के सिवा कोई अन्य चारा नहीं है।
1: कोई परिवर्तन लाना है तो शिक्षा,
0: शिक्षा
1: सबसे पहले। दोस्तों, हम अभी बहुत जो ये कहानी सुन रहे थे दादाई दादी जी की, वो एक एग्जाम्पल है कि क्या संभव नहीं है जीवन में उसका। और अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2005 में स्वामी विवेकानंद सेवा सम्मान सामाजिक पुरस्कार, 2006 में कर्मवीर, 2010 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, और ऐसे न जाने कितने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी दादा दादी जी, कि जो भी आपने ये बदलाव लाया, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा विमुक्त जातियों के प्रति हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं है, हम विमुक्त जातियों को, उनकी संस्कृति को भारतीय दृष्टिकोण से ना देखकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसका अर्थ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी।
0: सामान्यता हमारे देश में तो बहुत बड़ा संघर्ष हो
1: जी,
0: जो मुगल आए थे उस समय से, अंग्रेज आने के बाद डच, फ्रेंच, पुर्तगीज वो भी आए थे, शक, हुन, कुषाण वो भी आए थे, उन्होंने पूरा हमारा जनजीवन उद्ध्वस्त किया। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक नई शिक्षा पद्धति, उसके बारे में उन्होंने अपने एक खत लिखा था घर में, उसमें लिखा था मैं यह इस तरह की एक शिक्षा पद्धति लाना चाहता हूँ, यह इससे पढ़ाई करने वाले लोग रंग और रक्त से भारतीय रहेंगे, आचार विचार उच्चार संस्कार अंग्रेजों जैसा होगा, और उनके आधार पर हम इस देश पर राज करेंगे, उन लोगों के आधार। ये उन्होंने तो सिद्ध करके दिया। और 1837 में उन्होंने इस देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो एक जार निकल कर रद्द कर दी, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई
1: जी,
0: और हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी। तो उस समय ब्यूटीफुल ट्री नाम का धर्मपाल जी का एक किताब है, महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, 10 खंड में उन्होंने लिखा है हमारे देश की एक हिस्ट्री, उसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ट्री नाम का एक किताब,
1: ब्यूटीफुल ट्री
0: जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि हर गांव में पाठशाला थी, सब प्रकार के लोग आते थे, ये नहीं आता वो, ऐसे कोई बात नहीं थी, विद प्रूफ, विद संदर्भ, रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं। लेकिन

0: दूसरे स्त्री मंदिर तो उद्ध्वस्त कर दे
1: जी,
0: तोड़फोड़ कर दे, और स्त्रियां कुछ भी किया उन्होंने, बोल भी नहीं सकते इस तरह का सब उन्होंने किया
1: जी।
0: जैसे वायुमंडल में जो बचा बचा था मंदिर नहीं तो जाएगा था, नहीं जा सकता था। यदि यदि छोटा फोटा कोई है और जाना ही है तो जिजिया कर लगाया था, और जिजिया कर गरीब लोगों को ज्यादा था, श्रीमान लोग को कम था, क्योंकि यदि जिजिया कर नहीं देते तो उनका धर्मांतरण कर दे, तो गरीब लोग धर्मांतरण में आ गए, थोड़ा ही दिया उन्होंने। उस समय हमारे देश में जो कम्युनिटी
1: जी
0: विविध प्रकार की सामने आ गई, उन्होंने मंदिर जो है नहीं है, ऑल राइट, मंदिर में कौन है, कौन सा देव है, कौन सी देवी है, वो उन्होंने लोगों के घर तक जाकर उनको बताया।
1: अच्छा,
0: मानो मरिया वाले नाम का एक कम्युनिटी है
1: जी,
0: वो चाबुक के पटके ऐसे मारते हैं, लेकिन उनकी जो महिला रहती थी उनके माथे पर एक बहुत एक पेटारा रहता था।
1: ओके।
0: वो तो नाचते वगैरह सब होता है, अंत में क्या करते थे, वो नीचे रखते थे और धीरे धीरे बाजू करते थे अगले सामने वाले दरवाजे, और उसमें सब देव देवी था, हमारे दैवत हमारी देवी वो सब दिखते थे, तो सब बहुत खुश होते थे।
1: अच्छा,
0: तो उनको देव धर्म किसी ने सिखाया? आज जिनको हम विमुक्त घुमंत बोलते हैं उनको, मेरे पिताजी अपने काक में एक भवानी देवी की मूर्ति रखकर, उनका जो गांव एक सातारा जिले में था, वहां जाते थे मल्लारपेट नाम के स्थान पर, और वहां 9 दिन नवरात्र में 9 दिन रहते थे। कोई मंदिर, अभी मंदिर हुए थे अब बाद में
1: जी,
0: उसमें कोई कीर्तन मनन वगैरह करते थे, और बाद में अपने काक में जो रखी हुई जो देवी है वो सामने उनके रखते थे, यह हमारी देवी है, यह हमारा धर्म है, इसका गीत गाना है, इसका भजन करना है, ये करके आते थे। आराधी, गोंदड़ी, गुते, गोपे, सरोदे, दोषी, इस तरह के जो लोग है मरिया वाले, अभी मैंने बताया, ये लोगों ने हमारा धर्म और संस्कृति जीवित रखा। कल्चर सेवर्स
1: हैं बिल्कुल,
0: हम उनको करते हैं भिखारी, घुमंतु, और दूसरी ओर जो आक्रमण आया था
1: जी,
0: उसका संघर्ष जिन्होंने किया
1: जी,
0: वो 1034 में राजा सुहेल देव राजभर नाम के कम्युनिटी है विमुक्त में
1: जी,
0: वो राजा थे,
1: राजा सुहेल देव
0: बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया, वहां से इतने लोग संघर्ष करते रहे। यूपी में हम जाएंगे तो हरदेसाय करके 1940 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया, 1826 में महाराष्ट्र में उमाजी नाईक
1: जी,
0: तो रामोशी कम्युनिटी युक्त तो आज हम कहते हैं उनको, उनमें से आज आ जाए, लेकिन उन्होंने संघर्ष शुरू किया और स्वातंत्र का जाहिरनामा लोगों के सामने रखा, आज हम उनको एक्स क्रिमिनल कहते हैं, स्वतंत्र का जाहिरनामा रखा, और उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया, परेशान हो गए सब, करेगी क्या इसका, वो मिलता ही नहीं है, कहाँ से आता है मालूम नहीं, तो आप ध्यान रखने लायक एक बात है
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, मैसूर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, यहाँ से पुलिस प्रमुखों को बुलाया।
1: अच्छा जी,
0: देश में से, और उनको भाई क्या करे इसका,
1: को समझ ही नहीं आ रहा था
0: कुछ, समझ आप कल्पना करें कि कितना बलशाली होगा वो। अभी वहाँ हमारा मल्लारी मारकरण करके जेजुरी में स्थान है
1: जी,
0: वहाँ वो आते थे, अभी उनके तलवार जो है जिससे वो लड़ते थे
1: जी
0: वो रखी है, इसका वजन

0: आयु कीजिए
1: 65 करो।
0: मैं दो हाथ से भी उसको उचल नहीं पाया, हाथ में लेकर लड़ते थे। ऐसा था, अभी वो को हो गया तो गुनेगार हो गया। उसकी बता दो मैं
1: जी,
0: लेकिन है कौन हो? वो स्वतंत्र सैनिक, वो फ्रीडम फाइटर,
1: फ्रीडम फाइटर
0: राजा रणजीत सिंह। आपने सुना है शेरे पंजाब लाहौर के थे
1: जी,
0: बाद में जम्मू कश्मीर में जम्मू तावी नदी का जो संगम है
1: जी,
0: बहुत बड़े टिकड़े है वहाँ, वहाँ उनका एक बंगला था ऊपर, वहाँ बैठते थे और सब देखते थे समोर। आने जो लोग आते थे उनका न्याय करते, कुछ कुछ समस्या जो सुलझाते
1: जाते थे
0: जी। उस सोने का उनका वो जो बैठने का जो सब साहो सुवर्ण का था, अभी केवल लोड जो है वो सुवर्ण का है। मैं देख के आया हो, जाके आया हो, एक आग नहीं था उनको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उन्होंने वहां से क्या किया उस समय देखो, अभी 350 बरस के पहले की बात मैं बता रहा हूँ
1: जी।
0: तो उन्होंने वहां से तो सुवर्ण मंदिर जो है पंजाब में वो उन्होंने बनाया।
1: अच्छा।
0: हमारा जो काशी विश्वेश्वर है
1: जी,
0: वहाँ अहिल्या देवी होलकर ने मंदिर बनाया था
1: जी जी,
0: लेकिन उस पर सोना नहीं था, कलश सोने का नहीं था, वो उन्होंने भेज दिया। पूरे देश में ऐसा उनको ध्यान में आता था, वो तो करते थे। अभी वो जो समुदाय है
1: जी,
0: जो आज हम देखते हैं सासी समाज कहते हैं, सासी समाज
1: जी,
0: तो विमुक्त में है,
1: विमुक्त में
0: एक्स क्रिमिनल मानते हैं। आज बहुत चोरी करने वाले, डकैत निकालने वाले ऐसे लोगों को लगते हैं, लेकिन कौन थे? राजा थे,
1: वो इतिहास,
0: वो इतिहास है
1: जी।
0: और उनका पराक्रम शेरे पंजाब था उस समय, अहिल्या देवी होलकर महाराष्ट्र में
1: जी,
0: तो धनगर कम्युनिटी में थे, शेफर्ड कम्युनिटी में थे, वो इंदौर की रानी थी
1: जी जी।
0: और उन्होंने क्या किया, बाकी तो उनकी बहुत बड़ी कहानी है
1: जी जी,
0: ये विषय के संदर्भ में केवल बताना
1: जी।
0: उस समय का जो खजीना था 16 करोड़ का था
1: उस समय जी,
0: 350 बरस पहले। वो जो गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तो उनका स्वयं का था
1: जी,
0: उसमें से उन्होंने सब प्रकार के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। काशी विश्वेश्वर
1: जी,
0: सोमनाथ, नीचे रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ मंदिर है उसका पुनर्जीवित किया, जहाँ नदी है वहाँ घाट बनाए लोगों को जाने के लिए, आने के लिए
1: जी।
0: तो एक दृष्टि से देखे पुण्य श्लोक हम कहते हैं उनको, पुण्य श्लोक ही थी, इसी राज्य करती थी हमारे देश में, इस तुलना में और कोई राज्य
1: कोई नहीं।
0: लेकिन वो कौन है? नॉमिनल ट्राइब में, कुछ राज्य में कुछ शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन है कौन? वो राज्य करते।
1: ये बड़ी आश्चर्य की बात है सच में।
0: तो ये है फ्रीडम फाइटर्स। अभी इनका प्रॉब्लम हो गया अंग्रेजों
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, 1857 का जो युद्ध हुआ
1: जी,
0: उन्होंने बंड कहा सिपाहियों का बंड, लेकिन वो तो स्वातंत्र सावरकर ने 1800 उनका स्वतंत्र युद्ध
1: जी,
0: ये 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में एक किताब लिखा और उसके आधार पर यह हमारा स्वतंत्र युद्ध था। पहली बार उन्होंने कहा है कोई बंड वगैरह नहीं था, और पूरे देश व्यापी वो संघर्ष था,
1: वो पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है,
0: माना जाता है
1: जी।
0: लेकिन उसमें जो अनुभव आ गया अंग्रेजों को, उन्होंने एक बात की, सबको शस्त्र विहीन किए, जिनके हाथ में शस्त्र था वो उन्होंने निकाल दिया, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जाति जाति में संघर्ष शुरू किया,
1: आपस में
0: बड़ा श्रेष्ठ ये वो इस तरह का। उन्होंने ब्राह्मण द्वेष वो निर्माण किया हमारे देश में, पूरे देश में उन्होंने जिस तरह के लोगों का निर्माण करने का प्रयास किया, आगे कुछ बताएंगे नहीं उनका, सवार करेंगे हम, इस तरह की स्थिति आ गई
1: जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल
0: कर दिया। लेकिन आगे चलकर उनके ध्यान में आ गया तो भी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ नाम आपको बताएं, अवंतिकाबाई लोधी, झांसी की रानी जैसी उनका प्रस्ताव है, झलकारी बाई
1: जी
0: जो यूपी में से, ऐसा सोचे आज सोचे तो सी बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में से रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति, लेकिन हम अभी उनको क्या बताते हैं, मैंने बताया आपको
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: इस तरह संथाल जो विद्रोह हमारे देश
1: संथाल
0: आदिवासियों का विद्रोह, संथाल जो है वो एक आप बिहार से लेकर उड़ीसा तक पूरा एरिया हाँ उन्होंने संघर्ष में डाल दिया संथाल लोगों
1: जी।
0: आज हम देखते हैं उसी संथाल में से हमारे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो जिनका बहुत जब संघर्ष कर रही थी
1: जी,
0: उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क आया था
1: जी,
0: उसमें से उनको शांति मिली, गया पुत्र गया स्नुषा गई
1: जी,
0: इस तरह के बहुत बातें हो गई
1: जी।
0: लेकिन मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि कितना संघर्ष करते थे, आज भी उसमें से एक राष्ट्रपति,
1: बिल्कुल
0: दो राष्ट्रपति तो ऐसे हो गए
1: ऐसे है।
0: तो ये कम्युनिटी दे आर फ्रीडम फाइटर्स, तो अंग्रेजों ने क्या किया 1871 में CTA एक्ट, सिटी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 हाँ उन्होंने निकाला, और उसके आधार पर जो जो इस तरह के जो लोग थे
1: जी,
0: उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया
1: जिनके लिए खतरा हो सकते थे
0: हाँ, दूसरा शब्द है उसको नोटिफाई किया, और नोटिफाई करके उनको 52 सेटलमेंट पूरे देश में लगाकर जेल में उनको डाल दिया। कहा यदि सेटलमेंट नहीं होती तो तार का कुंपल होता है ना, तीन के फेजिस रहते थे के अंदर वो रहते थे लोग, दिन में तीन बार उनको हाजिरी देना पड़ता था, अटेंडेंस रात दोन को भी देना पड़ता, और उनको बताया कि आप कौन है, आप गुनहगार है, आप क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल है, 140 बरस उनको लोग कहते हैं कि आप क्रिमिनल है, उनकी पीढ़ी आ गई अगली, उन्होंने कहा कि आपकी जो अगली आ जाएगी नहीं नहीं अच्छा। आपका बच्चा हो जाएगा वो क्रिमिनल ही पैदा हो जाएगा, बॉर्न क्रिमिनल दुनिया में है ऐसा कोई,
1: बिल्कुल बॉर्न क्रिमिनल कह दिया पहले से
0: कर दिया
1: घोषित कर दिया,
0: और 100-150 बरस यही मानसिकता रही तो लोगों में हम ही क्रिमिनल है ऐसा ही आ गया,
1: ये मानसिकता ही बन गई सब
0: बन गई
1: जी।
0: लोगों ने संघर्ष किया
1: जी,
0: अभी वो एक उनका जेल एक्ट आया था 1915 में
1: जी,
0: एक जेल कमीशन बैठा था
1: जी,
0: उसमें कुछ बातें कर दिया उन्होंने 1924 में, और एक रिपील किया था उन्होंने एक्ट 1930 में, एक स्टार्ट कमेटी उसके लिए बिठाई थी
1: जी,
0: स्टार्ट कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सदस्य थे
1: ओके।
0: आगे चलकर हर एक तरह की संबंध आ जाएगा तो मैं बताऊंगा
1: जी।
0: तो इस तरह का संघर्ष करते करते क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल, अभी स्वतंत्र भारत हो गया
1: जी,
0: भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन ये नहीं हुए
1: सोच में रहे
0: वैसे ही रहे, तो 1952 में 31 अगस्त 1952 में
1: जी
0: एक लोकसभा में बिल लाकर उनको उसमें से निकाला उन्होंने, और क्या किया उनको तो नोटिफाई किया था ना उनको
1: जी,
0: तो डी नोटिफाई किया, डी नोटिफाइड ट्राइब कहते हैं DNT ऐसा जो शब्द है
1: जी,
0: तो डी नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड क्यों, नोटिफाई करके उनको बंधक बनाया था
1: ब्रिटिशर्स ने,
0: डी नोटिफाई किया इसलिए हिंदी शब्द उसको इसके लिए आया विमुक्त।
1: अच्छा तो ये यहाँ से आया
0: डी नोटिफाइड ने विमुक्त, तो इस तरह की एक जो परिस्थिति पूरे देश में थी, तो देशभक्त थे फ्रीडम फाइटर थे, हो गए जो संस्कृति रक्षक थे, कल्चर सेवर थे, वो तो भिखारी बन गए। इस तरह की मानसिकता उनकी हो गई, समाज की हो गई। अभी आजीविका लिए तो कुछ नहीं था, वो करेंगे क्या? काम कोई देता नहीं था
1: जी।
0: एक क्रिमिनल है वो कुछ चोरी करने लगे, पैकेजिंग लगाने लगे, तो एक अलग रास्ते में जाना जाने के लिए बाध्य कर दिया लोगों ने। और वही ढब्बा उनको लगने के कारण पूरे देश में स्थिति ऐसी है
1: जी।
0: मैं महाराष्ट्र में 1997
1: जी
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
1: जी
0: हमारे मुंडे जी, गोपीनाथ जी मुंडे, उन्होंने एक खास और संशोधन कमेटी बनाई, उसका मुझे अध्यक्ष कर दिया
1: जी।
0: तो मैंने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, जेल में गया, 7 जेल में गया।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ इतने कच्चे कैदी जो है सब विमुक्त घुमंत दो, कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ FIR नहीं, वैसे ही लाया वैसे ही रखा, काम कर,
1: उनका कोई डेटा नहीं, कुछ
0: डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने सामने लाया। करीबन हमारे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आज करीबन 20 करोड़ लोग है विमुक्त घुमंत, 1658 जनजाति है पूरे देश में
1: जी।
0: वो है, कोई अपवाद है जैसा लक्षद्वीप जैसा कोई है वहाँ, ऐसा कोई अपवाद तो है। अंडमान निकोबार में है वो तो प्रिमेटिव आदिवासी, ऐसा उनको कहते हैं, ये तो बात है। ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें केवल आदिवासी है
1: जी,
0: जैसा हम सिक्किम की ओर जाएंगे
1: जी,
0: तो इस तरह मैं गया हूँ सिक्किम में
1: जी।
0: मैंने 36 out of 36 स्टेट का मेरे कमीशन ने प्रत्यक्ष प्रवास किया, हर स्टेट में जाकर 3 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने मुझे बनाया था नेशनल कमीशन चेयरमैन
1: जी,
0: और वो रिपोर्ट मैंने विद इन 3 इयर्स 100% काम करके दिया था, एक भी छुट्टी मैंने नहीं ली थी, नॉट इवन सैटरडे संडे,
1: संडे भी नहीं।
0: 3 बरस में वो हो गया। तो हमारे जो मोदी जी है तो बहुत ही अभ्यासु है, संवेदनशील है, वंचित पीड़ित के लिए तो उनके मन में अपार करुणा है। तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, उसके पहले अटल जी ने शुरुअत की इसकी।
1: अच्छा।
0: अटल जी जाने के बाद एक बीच में रेणके कमीशन भी हो गया, मोतीलाल नाम का न्यायमूर्ति मोतीलाल नायक, 1 बरस था, 2 बरस का कमीशन रेणके का था, 3 बरस का मेरा था
1: जी।
0: रेणके का 8 बरस उन्होंने लेन देन कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और बाद में एक नए कमीशन की आवश्यकता बताया, इसलिए नए कमीशन इदाते कमीशन आ
1: जी।
0: उसके आधार पर
1: जी
0: नरेंद्र भाई मोदी ने केवल 7 महीने में उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, वो लागू करने पहली बार हमारे देश में हुआ
1: जी।
0: लोगों को ध्यान में भी नहीं आता क्योंकि उसकी चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और वो इम्प्लीमेंट के लिए दिया। मेरे 20 सिफारिशें थी, उस 20 सिफारिश में से उन्होंने 12 सिफारिशें थी रिकमेंडेशन, वो कल्याण और विकास के लिए संदर्भ थे
1: जी।
0: उसके आधार पर उन्होंने विकास और कल्याण बोर्ड बनाया, DWBDNC
1: जी,
0: डेवलपमेंट। उसका चेयरमैन फिर से मुझे बुलाया, उसका भी 3 वर्ष में
1: चेयरमैन रहे आप
0: जी। और वो समाप्त करते करते इनके विकास और कल्याण के लिए एक बजट हेड आ गया
1: जी,
0: करीबन उन्होंने 200 करोड़ रुपए तो दिए थे, लेकिन मैंने 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे उनको
1: जी।
0: लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा होता है कभी कभी। और तो उसके लिए उन्होंने एक गूगल पर एक पोर्टल बनाया
1: जी,
0: पोर्टल के आधार पर उसकी जानकारी आ जाए, इसके आधार पर उनको 4 स्कीम दे दिया। एक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए क्या कि कोई स्पर्धा परीक्षा में जाना चाहता
1: जी,
0: जा ही नहीं सकते, फीस भी नहीं दे सकते। तो हमने एक प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट, वो अप्रूव हो गया कि ऐसे जो लोग हैं वो जहाँ कोई शिक्षा करेंगे उसका सब पैसा भारत सरकार दे देगी, ये पहला
1: जी।
0: दूसरा, उसमें जो हर हाथ को काम जो कहते हैं
1: जी,
0: विशेषतः महिलाओं के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
1: जी,
0: हाँ तो उनके लिए भी देना है। मकान के लिए आ गए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना तो है अलग
1: जी जी जी,
0: फिर वो डीएनटी के लिए एक अलग
1: अलग
0: मकान योजना भी उन्होंने बनाया और वो पोर्टल पर उनकी जानकारी आ जाए तो उसके आधार पर वो
1: उनको मिलता है बेनिफिट।
0: और चौथा था उसमें
1: जी
0: हेल्थ के बारे में
1: जी
0: कि इन लोगों को कोई बीमारी होती है कहाँ जाएंगे, पैसा ही नहीं है हॉस्पिटल में कौन लेगा। भारत सरकार ने ऐसा किया है कि इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उनका हर कुटुंब का यदि संभव हो तो 5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार करे। ये 4 स्कीम्स लाई है और इतने में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी इम्प्लीमेंटेशन का अभी शुरू होना थोड़ा
1: अच्छा बाकी
0: बाकी।
1: मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक बड़े रूप में एक देश में पूरा जैसा आपने बताया 20 करोड़ लोग हैं और वो पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन क्या क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई थी और क्रिमिनल या फिर इस तरह की बातें कही जाने लगी, विमुक्त जातियां घुमंतू कहा गया, तो आपको कुछ उस समय अगर ये बदलाव लाने में क्या कुछ चैलेंजेस महसूस हुए, किस तरह के महसूस हुए, या आपने शिक्षा पे तो काम किया साथ में और कौन सी चीजें थी जिन पे आपने काम किया?
0: नहीं नहीं केवल शिक्षा में, शिक्षा ये बेसिक आधार है
1: जी जी,
0: कहा भी कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यही बताया, तो एजुकेशन पहले
1: जी।
0: सावित्री बाई फुले
1: जी,
0: अभी यदि शिक्षा नहीं है तो आप पशु ही है, शिक्षा ही इसके लिए चाहिए
1: जी।
0: कोई भी जो आता है, महात्मा फुले ने शिक्षा के लिए प्रयास लड़कियों के शिक्षा के लिए किया
1: जी,
0: तो जिसको कुछ करना है तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं रहने का, अभी जो घुमंत तो लोग हैं एक जगह पर रहते नहीं, कुछ लोग रहते हैं जिसको शिक्षा मिली
1: वरना तो नहीं रहते हैं,
0: वो तो काम में लगे नौकरी करने लगे उद्योग करने लगे अपना अपना मकान गाड़ी ऐसा बहुत सुविधाएं वो आ गई
1: जी।
0: उन्होंने शिक्षा में प्रयास किया था, हमारे महाराष्ट्र में वंजारी कम्युनिटी है
1: जी,
0: गोपीनाथ मुंडे जिस कम्युनिटी में से है
1: जी जी,
0: उस कम्युनिटी में वसंतराव नाईक जो चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं, उस कम्युनिटी में के वसंतराव नाईक 1936 में वो एमएलए थे, वहां से उन्होंने तो शिक्षा संस्थान शुरू कर दिया मराठवाड़ा में इतना बड़ा, गोपीनाथ मुंडे वहां पढ़े है।
1: अच्छा
0: अभी देखो पिछली बार 50 यूपीएससी के नंबर आ गए, उसमें 15 नंबर केवल एक कम्युनिटी के थे मंदारे कम्युनिटी। आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट इस सप्ताह में हुए है पूरे देश व्यापी, क्यों? क्योंकि शिक्षा से शुरुआत हुई थी ठीक ढंग से हुई थी वो आगे चले, जो उस समय जिन्होंने शिक्षा ली वसंतराव नाईक का हमारे चीफ मिनिस्टर
1: जी
0: महाराष्ट्र के, वो बंजारा समाज में से 11 बरस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में
1: सिर्फ
0: उनके सिवाय, बाद में उनका जो भतीजा वो 2 बरस था चीफ मिनिस्टर, तो जिन्होंने शिक्षा ली और आंदोलन में आ गए उसका कुछ तो हो गया
1: जी।
0: तो इस तरह करना पड़ता है, तो कोई मानसिकता सामाजिक एक रहती है वो हम अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है
1: जी।
0: हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते तो छुआछूत का तो इसमें नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग है हम अलग है, तो हमें एक ऐसा करना पड़ा कि हम संपूर्ण समाज एक है, लेकिन आपको यही भाषा समझते हैं तो जितने उपयुक्त तो घुमंतु जो है वो सब मिलकर एक उनका अपने वर्ग क्या करना चाहिए। अच्छा। एक यूनिट करना चाहिए
1: जी।
0: इसलिए मैंने 2015 में जब मैं कमीशन का चेयरमैन था उस समय विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद नाम की एक संस्था मैंने शुरू कर दी।
1: अच्छा।
0: रजिस्टर्ड है मुंबई में रजिस्ट्री से
1: जी,
0: और उसके अभी देश में करीबन 20 स्टेट में उनका कार्यकलाप शुरू हुआ है। और वहाँ ये जो विमुक्त घुमंतों के जो जो निर्णय होते हैं केंद्र स्तर पर होते हैं
1: जी,
0: तो सबको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो हम इमीडिएट कोई बजट पेश होता है वो बजट में वंचित लोगों के लिए क्या क्या रखा है, उसमें विमुक्त घुमंतों के क्या मिल सकता है, कौन सा कैटेगरी आता है, कितने पैसे आवंटित, इमीडिएट हम उस पत्र पूरे देश में फैलाते हैं,
1: कम्युनिकेट करते हैं,
0: कम्युनिकेट करते हैं। कोई आता केंद्र सरकार है, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर में इस लोग विलंब करने वाले कितने मिनिस्टर है, तब हमने 8 मिनिस्टर की लिस्ट दी थी कितने मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा जहां जहां चलता है
1: जी,
0: तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए करते हैं
1: करते हैं।
0: एक महत्व की एक बात हमने की मेरे कमीशन के कालखंड में कि कोई जाति का दाखला नहीं मिलता, जहाँ रहते हैं वो एक तो जंगल में रहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जहाँ रहते हैं उनकी जगह नहीं रहते, कभी भी कोई 10-15-20 बरस में आता है, अरे मेरी जगह है उठो यहाँ से, वहां से गंद करते हैं। इस तरह के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं
1: जी,
0: तो कैसा सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे उस समय के मेरे MS थे
1: जी,
0: मेंबर सेक्रेटरी अग्निहोत्री मैडम, तो उन्होंने पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था
1: जी,
0: कि ये जो प्रश्न है विमुक्त घुमंतों के बहुत क्रिटिकल है
1: जी,
0: कहाँ घूमते मालूम नहीं रहता स्थिति है, तो इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में एक रिड्रेसल कमेटी बना।
1: ओके,
0: वो अंतिम अध्यक्ष रहता है, इसको दाखला देना है, जमीन का कुछ करना है, वही करते थे, तो वो हमने पहुंचा है, लेकिन इसका अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ हर जगह ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में हमने वर्धा जिले में ये प्रयोग किया भी, वो प्रयोग करते करते अभी उन्होंने रिड्रेसल कमेटी बनाई, इसका कारण इसके लिए ऐसा हो गया कि उस रिड्रेसल कमेटी ने कलेक्टर ने हर तहसील में उनको दाखला लेने का प्रयास शुरू कर दिया, एक मेला बनाना, लोगों को साथ लगाना, अधिकारियों को बुलाना, उनका सर्टिफिकेट देना,
1: ये जागरूक भी करना पड़ेगा सबको,
0: करना पड़ता है,
1: कार्य हो रहा है,
0: नहीं तो इसलिए वो तो संगठन बनाया ना,
1: इसीलिए संगठन है वो,
0: और इसलिए ये सब बात वहां तक जाते हैं ना
1: जी
0: सबकी। तो इस तरह के बहुत प्रश्न जो है एक्चुअल उसका कुछ तो कुछ करना पड़ता है
1: जी।
0: जनगणना हमारी अभी शुरू हो गई
1: जी,
0: इसके पहले 11 में हुई थी जनगणना, तो विमुक्त घुमंतों की नहीं थी ऐसा उनका कहना है, हमारी जानकारी ऐसे है कि हुई है उस समय अच्छा। भी लेकिन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किए, तो मानो नहीं ऐसा मानो
1: जी,
0: 21 की होने वाली थी, तो मैं तो उस समय बोर्ड का चेयरमैन गया था, तो मैंने जो कमिश्नर रहते हैं
1: जी
0: हमारे, उनको मैंने बुलाया जनगणना आप करने वाले है तो इनका क्या करे, इनका तो अभी नहीं होने वाला, करेंगे क्या, इनको आप स्कीम कैसे देंगे यदि आपको उनकी पॉपुलेशन मालूम नहीं, तो स्कीम कैसे देंगे,
1: बिल्कुल
0: वो क्या करें, तो उन्होंने कहा एक कर सकते हैं समाज कल्याण विभाग
1: जी,
0: ये कर सकते हैं, तो ये यदि करेंगे तो उसका सब खर्चा भारत सरकार देगी, वो दिया है
1: जी।
0: लेकिन अभी तो वो शुरू नहीं हुआ है,
1: वो होना बाकी है,
0: बाकी है
1: जी।
0: ऐसे जो जो प्रॉब्लम मुझे लगते थे
1: जी,
0: उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है, लेकिन एक लोगों की एक मानसिकता, एक संगठन चलाना, इसका लीडर बनना, भाषण करना, हम मैं लीडर हुए करना, इसलिए उनका जो मूल प्रश्न है इसके लिए जो करना चाहिए वो करने में जरा
1: देरी
0: डिले लगता है
1: जी,
0: इसलिए कुछ प्रश्न आगे नहीं आ रहे
1: जी।
0: तो मेरा आह्वान पूरे देश के इस विषय में काम करने वाले लोगों को है, संगठन को है, कि इदाते कमीशन के कारण 20 में से 14 उसकी सिफारिशें जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए थी। मैंने पहले 12 का उल्लेख किया था, 13 था, मैं 265 कम्युनिटी का एक लिस्ट दिया है भारत सरकार को और बताया कि ये कम्युनिटी
1: जी
0: है, लेकिन उस राज्य में उनका कोई नाम नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करो और क्लासिफिकेशन करो इसका, मैंने बताया था। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में उसकी कमेटी बनाई है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ।
1: okay.
0: और करीबन उन्होंने सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के लाया है। और 14वां था उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, जो सीटीए जो आया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1952 में
1: जी,
0: उसमें से उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया और वो निरस्त कर दिया। यानी जो क्रिमिनलिटी में हैबिचुअल है
1: जी,
0: तो उसको लगेगा इस तरह का। लेकिन गवर्नमेंट, प्रशासन, पुलिस, ये सबको इतनी आदत पड़ी थी
1: जी,
0: कि उनके मन में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो तो सिटी एक्ट ही मानते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट।
1: अच्छा,
0: इस तरह का वर्तन आज भी करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि यह निरस्त करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, तो वो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है
1: जी।
0: अभी उसका क्या हुआ है अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल छह बातें हैं, छह सिफारिशें, वो अलग रखी है
1: जी।
0: उसमें से तो पहला मेरा कहना था कि इनके लिए एक परमानेंट कमीशन चाहिए
1: जी,
0: कि जो कोई भी समस्या आ जाए इसके लिए वो बातें बताएंगे, और इसका उनको अधिकार भी रहते हैं, कलेक्टर भी बुला सकते हैं क्यों नहीं हुआ क्या, इस तरह का अधिकार भी आना चाहिए। नीति आयोग ने भी वो सपोर्ट किया इसके लिए, इधर कमीशन की सिफारिश लागू करने चाहिए, और वो जो विशेष मैंने कमीशन जो बताया था
1: जी,
0: वो भी करना चाहिए
1: जी।
0: 22 डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने बताया था, उसमें केवल शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट ने एक अलग भूमिका ली। उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे में आ जाएंगे, हमारे में से कुछ जाएगा, उन्होंने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। तो मेरा कहना है कि माननीय पंतप्रधान जी को कि उन्होंने इतने संवेदनशीलता से इन लोगों के लिए किया है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे
1: जी,
0: तब उन्होंने गुजरात में 2,00,000 मकाने घुमंतुओं के लिए बनाई।
1: क्या बात, और ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत लंबे समय तक, जैसा आपने कहा कि एक कमीशन होनी ही चाहिए उनके लिए लगातार, तभी और हर तरह के मामले जहाँ आ सके एड्रेस हो सके। दादाजी दादी जी, एक बहुत लंबी जर्नी है, 55 वर्षों से भी अधिक आपकी, और जो एक स्कूल से शुरू होती है और धीरे धीरे वो देश के 20 करोड़ लोगों से भी अधिक, जैसा आपने कहा, उनको उनका सम्मान भी, उनका जीवन भी, सब कुछ वो वापस मिलने का पूरा अधिकार है, और उस पर आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मैं अंत में आपसे संक्षिप्त में एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड की बात होती है, हम जानते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। उस समय आपकी क्या महसूसता थी या क्या फीलिंग थी जब इसकी घोषणा हुई या जब आपको प्राप्ति हुई?
0: जब मैंने मेरा कमीशन का रिपोर्ट गया था
1: जी,
0: तो माननीय पंतप्रधान जी ने वो डिटेल से देखा था, इसलिए उनके मन में भी कुछ बातें थी
1: जी।
0: तो 2023 को मुझे पद्मश्री मिली, लेकिन 2022 को
1: जी
0: उन्होंने मुझे पद्मश्री के सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया।
1: अच्छा जी, क्या बात,
0: इसलिए मुझे तो जानकारी थी
1: जी,
0: कैसे 1,000 लोगों का एनालिसिस मैंने किया था
1: जी,
0: उसमें वो जानकारी तो थी जिस तरह के थे। और ये गवर्नमेंट का विशेषता और नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है, वो पुराना जो है ये हटके अलग
1: जी,
0: कि वही ढूंढते हैं कहाँ है लोग, वो ढूंढ कर लाते हैं और उनको पद्मश्री देते हैं। वे अपने जगह पर 30-40 भर काम करता है, उनको ढूंढ कर देते हैं। कोई केवल शहर का सुशोभीकरण, कोई चित्र उसको निकालते हैं, बोलना नहीं आता, चर्चा नहीं करते, ये चित्र निकालते हैं। ऐसे एक महिला को उन्होंने बुलाकर उनको भी सम्मानित किया था
1: जी।
0: तो ये मुझे मालूम था। तो 2023 को
1: जी
0: एक्चुअल मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया
1: जी। अच्छा,
0: अन्य लोगों ने किया, कोई मित्रों ने किया, और उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया। 2023 को उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया मुझे मालूम थी
1: जी,
0: कि कितना सूक्ष्म विचार कर है, हम एनालिसिस करते हैं कोई अर्जे का, एप्लीकेशन का, कितनी बातें उसमें करनी पड़ती है। तो मैंने उसका एक देखा था
1: जी जी
0: एज अ परीक्षक, मैंने
1: हजार से भी ज्यादा
0: देखा था
1: जी।
0: इसलिए पहले तो भावना थी ठीक है
1: जी,
0: हमने जिसको दिया था ऐसे लोग थे, वो जो काम था ऐसा काम था उनको देना चाहिए था
1: जी।
0: ये काम भी ऐसा है कि एक काम करने वाले को देना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे जो सोशल वर्क के लिए दिया है
1: जी,
0: लेकिन उसमें भी उन्होंने विमुक्त घुमंतों के काम के लिए ये पद्मश्री दिए
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जिस काम के लिए गत 50 बरस सोशल एक्टिविटीज में मैं 50 बरस हूँ, केवल विमुक्त घुमंतों नहीं, एससी एसटी ओबीसी वंचित कोई भी इनका काम के 50 बरस में कर रहा हूँ, तो इनमें किसी को कोई राहत मिलती है
1: जी,
0: तो बहुत आनंद भी होता है। और पहली बार
1: जी
0: विमुक्त घुमंतों में काम करने के कारण मुझे वो मिला है, ये तो विशेष बात है
1: बहुत।
0: तो इसके लिए बहुत आनंद हो गया, जो काम हमने किया, जो कमीशन में चलाया, जो बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, ये सब ध्यान में लेकर तो ठीक है, उन्होंने तो दिया, इसका बहुत आनंद भी हुआ
1: जी।
0: और आश्चर्य तो नहीं लगा क्योंकि मुझे इसकी जानकारी किस तरह का है विषय तो मालूम थी
1: जी,
0: इसलिए आश्चर्य तो नहीं हुआ
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में अगर मैं आपका ही नाम लूं, ये भीकू राम जी दाते जी, तो आप कौन है या आप अपने बारे में कौन से दो शब्द कहेंगे जो हम आप...
0: एक थोड़ा इसका एक्सप्लेन में करता हूँ
1: जी।
0: मेरे माता पिता को मेरे पहले 5 संतान थे, 5 भी नहीं रहे, तो एक अलग गांव में रहते थे हम। हमारे जो इधर थे घराने के जो लोग थे, उन्होंने वापस हमें लाया टेटोले हमारे मूल गांव में, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने परमेश्वर का ऐसे प्रार्थना की थी कि अभी ऐसा करो, हमें एक भीख दे दीजिए, भीख डालो हमारे, क्योंकि हम कोई संतान नहीं है
1: जी।
0: अब मेरा जन्म होने के बाद उन्होंने मेरा नाम भिक्खू रखा, क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई भीख है, इसलिए इस नाम से मैं किसी को छेड़छाड़ करना नहीं देता। मेरे माता पिता की जो भावना है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन माता पिता शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन वो उनके उन्होंने जो संस्कार दिए, जो कष्ट उन्होंने झेले, मैंने आंखों से देखे है, तो वही मेरे जीवन की एक प्रेरणा रहती है। और संघ में आने के कारण
1: जी
0: पूरा जीवन मेरा बदल गया
1: जी।
0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण पूरे देश में मैं इस विषय के आधार पर गया, पूरा देश देखा, असहित हिमाचल मैंने प्रवास किया है
1: जी,
0: 6 बार देश का प्रवास मैंने किया है। एक गांव में एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहाँ छोटे छोटे लोगों के साथ खेलने बागड़ने वाला एक छोटा लड़का, केवल एक संस्कार के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार के कारण, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये मेरा देश है, ये भावना मन में आ गई और धीरे धीरे उन्नत हो गई और आज मैं इस पायदान पर आया हूँ, ये मेरा मैं उल्लेख कर सकता हूँ
1: जी। ऐसे माता पिता को भी हम नमन करते हैं
0: जी,
1: और क्योंकि जैसा आपने कहा उनका जीवन, उन्होंने बहुत कष्ट देखे, परंतु जो शिक्षा के प्रति आपने जैसे कुछ इंसिडेंट सुनाए और बहुत भावुक करने वाली बातें हैं कि आपके लिए जो किताबें उन्होंने कहा कि आप खरीदिए, ऐसे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी ये कार्य हुआ है संपूर्ण भारत में आज, उसके लिए आपका और उनका भी मुझे लगता है पूरा भारत आभार मानेगा और मानता ही है। सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए आज हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें जो भी इतिहास आपने बताया, जो भी बातें बताई, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद हमें संक्षिप्त में मालूम है लेकिन उसकी गहराइयां नहीं पता, और आज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। तभी वो उन्नति की ओर हम भी अपना योगदान दे पाएंगे एक भारतीय होने के नाते। आपका हृदय से आभार यहाँ आने के लिए।
0: आपका भी धन्यवाद क्योंकि आपने बुलाया और व्यक्त होने का एक एक संध्या आपने दे दी, इसलिए आपका भी आभार।
1: धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य जीवन का श्रृंगार है संगीत। न केवल मनुष्य परंतु पशु और पंछी, जो इस प्रकृति की विशिष्ट रचना है, उनकी पसंद भी है संगीत। सभी प्राणी मात्र संगीत की धुन में झूमने लगते हैं। तो आइए, संगीत के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज फिर से हमारे साथ श्यामली जी मौजूद हैं। श्यामली जी, आपका संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: श्यामली जी, हमने कहीं पढ़ा था कि जिस प्रकार भाषा का मूल आधार वर्ण या अक्षर है, उसी प्रकार स्वर भारतीय संगीत का मूल आधार है। जैसे आप भोपाली राग हमें अभी सिखाने जा रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: तो उसमें लास्ट एपिसोड में हमने स्वर लिपि सीखा।
1: हाँ जी।
0: आज आप हमको क्या सिखाने जा रहे हैं?
1: आज तो बंदिश जो है शास्त्रीय संगीत का, भोपाली राग के ऊपर जो बंदिश है वो आज हम सिखाएंगे।
0: माना पहले स्वर लिपि होता है, फिर हम बंदिश सीखते हैं।
1: स्वर लिपि अगर नहीं होता है तो उसके बाद जैसे ए बी सी डी, तब तो उसके बाद तो कोई वर्ड्स आएंगे, उसके बाद सेंटेंस आएंगे, सब कुछ आते हैं ना।
0: जी,
1: पहले
0: जी।
1: तो ये पहलू है सारे गमा, उसको कैसे हम बांध कर एक सूत्र से बांधते हैं, स्वर मालिका जैसे हम माला में थोड़ा सजाते हैं। तो अभी स्वर लिपि दे दिया, अभी उसको बंदी साज सिखाएंगे।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता मित्रों को फिर से रिवाइज करके सुनाएंगे?
1: हाँ, रिवाइज भी उसके साथ भी चलेंगे ना। स्वर लिपि को बोल के बाद तो बंदी वर्ड्स बैठाएंगे ना, सजाएंगे ना।
0: क्योंकि सीखने वाले हमारे सभी श्रोता मित्रों ने अपनी नोट और पेन भी ले ली होगी, रिवीजन भी हो जाएगा और अभ्यास भी।
1: हाँ जी, जी। तो आज हम स्थाई अंतरा जो है, पहले तो बताया कि भोपाली राग है, सारे गापा धासा माँ और नी नहीं है, कड़ी माँ और नी है, कल्याण ठाट की है। तो ये औरब औरब जाति का है और तीन ताल की है। तो हमने जो पिछले एपिसोड में स्थाई और अंतरा का जो स्वर लिपि दिया है, उसके ऊपर हम आज थोड़ा बोल बैठाएंगे, सजाएंगे, बोल से सजाएंगे। तो बंदिश अगर लिख लेते हैं तो अच्छा है लिसनर। झनक झनक मोरी पायल बाजे, बहुत सुंदर ये जो बंदिश है। झनक झनक मोरी पायल बाजे, बाजे घुंगरवा मोरा, बहुत सुंदर है, स्थाई का है। अंतरा जो है, बाज बिछुआ बाज घुंगड़िया, बाज बिछुआ बाज घुंगड़िया, झनक झनक झन झन, बहुत सुंदर बंदिश है। तो आप अभी इसको सजाएंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में जो दिया है उसको फिर से हम सजाएंगे। अच्छा। बोल से कैसे, वही स्वर जैसे सासा धासा धापा जैसे हमने सिखाए थे, उसके ऊपर ये जो बोल कैसे बैठाना है।
0: अच्छा।

0: ये जो है ये तो हमने बंदिश इसको सुर में जो है सुर में सजाया है, झनक झनक मोरी पायल बाजे, भूपाली राग की है, बहुत सुंदर है। अभी थोड़ा से हम क्या करते, बच्चे हैं ना, सब लिसनर्स थोड़ा पहले सीखते हैं,
1: सीखने वाले
0: जी, हैं जी। तो इसको थोड़ा क्या करते, थोड़ा सा छोटा छोटा बिस्तर कैसे करना है हमको, ठीक है। जैसे देखो हर टाइम इसको पहले हमने बताया कि मैथमेटिकली करना है, आठ मात्रा, चार मात्रा, आठ मात्रा। देखो चार मात्रा कितना अच्छा है, चार

ये जो चार मात्रा नहीं हमने किया है, तो अगर आठ मात्रा करे, बारह मात्रा करे, सोलह मात्रा करे, जो भी करते हैं तो ताल अनिजोई करना है, सोलह मात्रा में यो करना है, जो कुछ करना है सोलह मात्रा में। थोड़ा हम थोड़ा विस्तार थोड़ा सिखाते हैं।

0: सासा था पगड़ सा जाने के मोरी पायल बाजी। अभी पहले पहले अगर छोटा छोटा बिस्तर सीखेंगे तो और भी आगे जाकर बिस्तर जब करना है तब जाके वो भी कर सकते हैं। छोटा छोटा पहले बिस्तर करते हैं ताल के साथ साथ।
1: मेरे को लगता है इसीलिए स्कूल में भी जब पढ़ाते हैं तब छोटी छोटी टेस्ट लेते हैं, हाँ, पहले सेमिस्टर और फाइनल के पहले छोटी छोटी टेस्ट लेके उनको तैयार करते हैं, करते फिर है, फाइनल हाँ, के लिए।
0: ये जो बिस्तर जो हमने किया, जैसे देखो सारी गा प धा प गा सा धा प गरी सा। ये जो बिस्तर हमने किया है अगर पहले से वो करते हैं ताल के छोटे छोटे ताल के साथ करते हैं वो भी सीख भी जाएंगे अच्छा से, उसको भी उठाएंगे
1: माना वो एंजॉय भी कर
0: एंजॉय भी करेंगे जी, एंजॉय भी करेंगे। तो अभी क्या करते हैं स्थायी कतन अंतर कीर्तन भी करना है, अभी थोड़ा स्थायी कीर्तन करेंगे।
1: स्थायी कीर्तन हम आपसे जरूर सीखेंगे मगर इसके पहले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।
0: हाँ जी,
1: सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। श्रोता मित्रों, आप भोपाली राग के अंतर्गती या उसके आधारित एक सुंदर सा गीत का आनंद लीजिए। हम पुनः पधारते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने श्यामली जी से बंदिश सुनी।
1: हाँ जी,
0: ऐसे तो मुझे लगता है संगीत मनुष्य को रूप रस और छंद में सुषमा मंडित करती है।
1: हाँ जी,
0: आनंद भी प्रदान करता है। जैसे भोपाली राग में जो आपने हमको छोटे छोटे विस्तार सिखाकर उसके लिए और इंटरेस्ट पैदा किया, यह अभ्यास करने के लिए मुझे लगता है बहुत आसानी हो जाती है।
1: एकदम,
0: है ना?
1: हाँ जी।
0: तो अभी आप आगे हमको क्या सिखाने जा रहे हैं?
1: अभी हम तान वगैरह सिखाएंगे। तान तो जरूरी है ना शास्त्रीय संगीत। जितना तान करेंगे उतना आपको कंठ भी क्लियर हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: जितना हम तान करेंगे, जैसे इसमें भी जो गीत है, गीत में भी पापा सारी का पाधा सा सा सा धा पा गरी सा मोड़ा, एक तान भी जैसा है।

0: ये जो हम किया है खाली इसमें अगर बिस्तर भी हो सकता है, बोल की जो बिस्तर होता है वो भी होता है, लेकिन अभी अभी लिसनर तो नहीं सीख पाएंगे क्योंकि अभी अभी सीख रहे हैं ना। बहुत सुंदर ये जो राग है वो भी बिस्तर कर सकते हैं। हमने अभी जो दिया है बंदिश सिखाया, तान दिया है, थोड़ा बिस्तर भी सिखाया है।
1: माना भोपाली राग का अभी पूरा हो गया।
0: हाँ, भोपाली राग
1: है ना। स्वर लिपि सिखाया, बंदिश और तान तीनों हो गए।
0: हाँ, हाँ जी।
1: अब जाते जाते आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, जिसका हमको हमेशा बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कुछ गीत सुनाते हैं जिसमें या तो बचपन याद आ जाता है या तो कुछ ऐसी बातें याद आ जाती है जो हमारी पसंद के गीत जो बहुत समय से हमने कभी सुने नहीं है, और ऐसी कुछ रचना आप लेकर आते हैं
0: वो भी आप सुनो।

0: होगे तो अच्छा लगेगा। एक रुदाली फिल्म का गीत है।
1: अच्छा।
0: रुदाली फिल्म जो है उसमें मैं सोचती हूँ जितने सारे है, भोपाली तो मिक्स भोपाली भी है, भोपाली अच्छा। बहुत सुंदर
1: मानो मिक्स भी है जी।
0: लेकिन भोपाली राके थोड़ा मिक्स भी है
1: हाँ, मानो मैक्सिमम उसमें भोपाली
0: भोपाली है। और ये जो प्योर भोपाली है दिल हुम हुम करे
1: अच्छा।
0: जो गीत है बहुत सुंदर है, लता जी का है कॉम्बिनेशन
1: रुदाली फिल्म का।
0: हाँ, इसको अच्छा। जो धुन जो है भूपेन हजारिका उन्होंने इसको धुन
1: दिया है। जी जी।

बहुत बहुत सुंदर, सच में जैसे कि वो गीत में ही हम खो गए थे। मुझे तो ऐसा लगा। हमारे श्रोता मित्रों को, संगीत प्रेमियों को भी जरूर ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ होगा। श्यामली जी, इसी गीत के साथ अब हम आज के लिए इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो संगीत के अंतर्गत या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। रिपीट करती हूँ, 9414151415। आप हमें SMS कर सकते हैं और आपके जो भी मन में प्रश्न हो या सुझाव हो आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: लिए हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी से पूछते हैं, बच्चों से, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, शायद कोई ऐसा होता होगा, बड़े होके मुझे सन्यास बनना है या फिर मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसे देश के लिए मैं सेवा करूं, या फिर मैं ऐसा जीवन जीऊं जो सारे विश्व के लिए मेरा जीवन का कोई मकसद हो। लेकिन जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और हम कई बातें ऐसे सीखते हैं, फिर अनायास ही हमारा लक्ष्य जीवन का कब बदल जाता है हमें भी पता नहीं चलता है। जिस दिन उस लक्ष्य को हम समझ जाते हैं और उस मंजिल पे पहुंचने के लिए जो यात्रा होती है वो कभी सुकून वाला होता है तो कभी बहुत सारी रियलाइजेशंस की बातें होती हैं, कठिनाइयों से भी गुजरता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, आज की जो हमारे मेहमान हैं या आज की हमारे जो योगी हैं, उनका जीवन कैसा रहा और वो ऐसा योगी जीवन जीने के लिए क्यों चुना, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है राजयोगी आदरणीय शरद भाई जी। आप मूलतः कटक उड़ीसा से हैं और वर्तमान समय में आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटक से राजस्थान की यात्रा और एक बाल्यकाल में अध्यात्म को चुनकर के एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए जो निर्णय लिया है, ये सफर कैसा रहा और इस सफर में आपने क्या सीखा है, आइए जानते हैं। उसके लिए हम स्वागत करते हैं आदरणीय शरद भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में। नमस्कार भाई।
3: नमस्कार।
2: जी ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप वर्तमान समय में तो शांतिवन ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस परिवार में रहा, क्या माहौल रहा आपके बचपन का और आपके परिवार का, उसके बारे में कुछ बताइए।
3: हम एक्चुअली एक गांव के रहने वाले हैं और जिस माहौल में हम पले बढ़े बड़े हुए, माहौल उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे आज समाज में हर जगह शिक्षा की बातें हैं, कला प्रदर्शन की बातें हैं, वो नहीं थी। फिर भी माताजी पिताजी की जो तत्वावधान जो पालना थी, वो पालना हमको बहुत आकर्षक माने जाते, क्योंकि हम घर और स्कूल के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।
2: ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं?
3: ये हमारा जन्म स्थान जो ब्रह्मपुरा गांव है
2: जी,
3: वहाँ की बातें कर रहे हैं।
2: ब्रह्मपुरा कटक डिस्ट्रिक्ट में।
3: हाँ जी, हाँ कटक डिस्ट्रिक्ट। तो उस माहौल में हम सिर्फ इतना जानते थे स्कूल और हमारा घर, उसके सिवाय हम दुनिया के बारे में कुछ इतना नहीं जानते थे।
2: ये कौन से सन की बात रही होगी जो आप?
3: ये जो है 89 माना बाबा का ज्ञान प्राप्त होने का पहले की बात,
2: 89 से पहले की बात।
3: तो पिताजी जितना पढ़े हुए थे, घर की अवस्था जितना थी, खाने पीने का घर का हो जाता था, बाकी इनकम और एजुकेशन का जो बातें थी हमारे लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि हम 10th तक चप्पल भी पाँव में नहीं पहना था। जब हमारा 10th का एग्जाम हुआ, घर से हम 25 किलोमीटर दूर किसी हाई स्कूल में हमारा एग्जाम हुआ, तब हमने एक चप्पल पहनने का मार्जिन हमको मिला था। उसके बाद हम ये जो बात है 84 की बात, 10th हम जब कह दिया, फिर 85 में हमारा कॉलेज हुआ। तो कॉलेज में हमारा जो पास तो नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा ज्यादा कमजोर था इंग्लिश, उसके कारण हमको फेल होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम दे के पास किया।
2: आप कितने भाई बहन थे?
3: हम भाई 3 है, सबसे बड़ा मैं हूँ,
2: कोई बहन नहीं।
3: बहन नहीं, तो इसीलिए बाबा ने इतना सारी बहन दिया है। तो फिर उस समय जब हमें एग्जाम दिया था प्लस टू का, उस समय बाबा का परिचय मिला। भुवनेश्वर से भाई बहने सब आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी लगाए थे उसको हमने जाके देखा सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक चित्र था जो 4 स्तंभ का चित्र है, तो उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य सुधरना
2: राज्यों की आधार।
3: तो उसमें ये लगा कि चारों स्तंभों को अगर हमारा जीवन में हम मजबूत करें, उनको उन्होंने जो समझाया था, तो आप एक देवता बन जाए। हमारा बुद्धि में ये आया, देवता बनने की बात तो अलग है, कम से कम एक अच्छा इंसान बन जाए, ये हमारा बुद्धि में। तो फिर रात्रि का उनका प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको आना पड़ेगा। फिर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र साप्ताहिक का कोर्स हुआ।
2: तो उस कोर्स में आप अकेले गए थे?
3: नहीं, वहाँ उस कोर्स में हम 150 करीब भाई बहन गए थे। उसमें
2: आपकी परिवार से आप अकेले थे?
3: हमारा परिवार से हम अकेले थे। तो उसमें से 75 लोग क्लास किया, शुरू किया, लेकिन कठिनाई ये थी उस समय कि खान पान के ऊपर जो उनका सिस्टम था कि राजयोग अभ्यास करने के बाद प्याज लहसुन ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया था, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो, ये नहीं सोचो कि हम मच्छी वगैरह सब खाते हैं वो कैसे होगा क्या, उसके बारे में आप सोचो नहीं, आप सोचो कैसे करके हम दोनों टाइम ही राजयोग अभ्यास करें। राजयोग अभ्यास करते करते करते आपको अच्छा फीलिंग्स होगा और उस फीलिंग्स के आधार पर ये सारे चीजें आपसे दूर हो जाएंगे, संग दोष और ये खान पान, क्योंकि हमारा उस समय पान सिगरेट मद जो शराबी वगैरह ये हमारा अभ्यास में नहीं था, क्योंकि घर की थोड़ा पिताजी की स्ट्रिक्ट, चाय तक पिया नहीं था हमने और आज तक हम चाय नहीं पीते।
2: अच्छा
3: जी। क्योंकि एक बार पिताजी के पास हम गया था चाय पीने के लिए, कुछ मेहमान आए हुए थे तो कटोरी लेके चला गया, पिताजी हमको मुरमुरा थोड़ा थमा दिया, चाय की बात जब आया तुम जब इनकम करेगा तब चाय पिएगा।
2: अच्छा।
3: तब से आज तक हमने चाय पिया नहीं। तो ये हमारा बुद्धि में था नहीं कि हमने ज्ञान में चलेंगे, बाकी इच्छा था, सत्संग करना जीवन में अच्छा है, तो ये चीज हमको बहुत आकर्षित किया, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, जैसे चलता है आज ही चलने दो, वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाए। तो फिर हम बोला ठीक है, हम क्यों इतना मेहनत कर, जब वो अपने आप छोड़ के जाएंगे हमें कोई मेहनत करना जरूरी नहीं। लेकिन तब
2: मतलब
3: से
2: हमारी कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
3: अब हाँ, हमारा कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
2: तो फिर परिवार में पता था कि आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं?
3: परिवार में पता यहाँ तक था दीदी कि पिताजी को लोगों ने ये बता दिया कि इस संस्था में जो जाता है वो मैरिज नहीं करता है।
2: अच्छा।
3: तो ये पिताजी को तब पता चला और पहला दिन कोर्स में हमने घर पे बता दिया कि आज से मच्छी वगैरह जो होता है मैं नहीं खाऊंगा। सेकंड दिन का कोर्स में जब आया फिर माताजी को बोल दिया कि ये प्याज लहसुन मेरे लिए नहीं करने, अलग से कुछ भून लेना मैं खा लूं। तो उस समय पिताजी को माताजी ने बोले ये क्या दो चार दिन से बोलता है मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उनको ये बोले ये ओम शांति कुछ सत्संग हो रहा है, गाँव के कुछ लोग जा रहे हैं, ये वहाँ जाता है सुनने में आया, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर उनका नेचुरल जैसे चलता था ऐसे चलेगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये
2: जाने वाले
3: और इस लाइन में पक्का हो जाएंगे। लेकिन माताजी का एक था आशीर्वाद कि वो चाहती थी मेरा कोई एक संतान अगर इस मार्ग में जा रहा है तो ये हमारा भाग्य की बात है। जो लौकिक में सुना करते हैं कि अगर अपना लड़का या अपना परिवार में कोई साधु संन्यासी बनता है तो ये पूर्व भाग्य की ही बात है, ये जो विश्वास था घर पे गांव पे भी आज तक है
2: जी।
3: तो हर कोई घर से या परिवार से साधु संन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा, गांव में जो 75 लोग आ रहे थे रेगुलर क्लास करने के लिए, जो भाई निमित था उनका ट्रांसफर हो गया, फिशरी डिपार्टमेंट का अच्छा एक भाई मैंने गांव का था, ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे जो दायित्व लेकर के कर रहे थे तो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन हमने जो 5-6 महीना रेगुलर क्लास किया था तुरंत जो बंद हुआ हमको बहुत कष्ट हुआ, उतना कष्ट हुआ कि इसके लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं है। फिर गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था तुलसीपुर, तो वहां फिर जाने के लिए हम सोच, तब हमारे पास सिर्फ साइकिल था कॉलेज वाला साइकिल।
2: मतलब जब 89 में आपको इस राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला उस समय आपकी क्या उम्र रही?
3: 23।
2: अच्छा।
3: 12वीं में था, उसके बाद एक जो एग्जाम हुआ एग्जाम के बाद हमने बाबा का परिचय प्राप्त, मतलब ये है 89 की। तो फिर जो साइकिल था उसको लेकर के हम गाँव से रोज 8 किलोमीटर दूर जो गीता पाठशाला हमारे था, रात को भोजन करने के बाद फिर हम चले जाते थे, रात को वहाँ रुकना, फिर अमृत वेला वहाँ करके मुरली क्लास करके फिर गांव में आना, ये सिलसिला हमारा 89 से लेकर 91 तक चला। फिर 91 में मधुबन से एक न्यूज गया कि 91 का जो ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास में जो होता है योग तपस्या और 91 में जो तपस्या मास चला तो यहाँ से मैसेज गया था कि दादियों ने जो बाबा के साथ 14 साल तपस्या किया था, अगर इस महीने में हम लोगों वो तपस्या करते हैं तो 14 साल का जो बाबा का बच्चों को जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति जो होगा आपको वो मिलेगा। तो पिताजी को बोल के फिर हमने उसी गीता पाठशाला में एक महीने तक वहाँ रहा था और योग भक्ति का प्रैक्टिस हमने वहाँ किया था तुलसीपुर गांव। फिर पिताजी से जब हमने छुट्टी लिया, पिताजी बोले कि तुमने यहाँ गांव में क्लास करता था, सत्संग करता था, अभी यहाँ से फिर दूर 8 किलोमीटर दूर कौन इतना सत्संग से क्या प्राप्ति होता है जो तुम वहाँ जाते हो, और फिर अभी बोलते हो कि वहाँ मुझे एक महीना रहना है, फिर आगे का क्या। मैंने बोला आगे का क्या तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आपका छुट्टी हो तो एक महीना जाके थोड़ा योग तपस्या अभ्यास करेंगे, फिर आगे का जब होगा तो आपको बताऊंगा।
2: पढ़ाई की प्रेशर नहीं थी, अभी तो 12वीं किया है, अभी आप ये सब कर
3: तो रहे हो। बुद्धि में यही था कि बहनें भाई लोग जो सफेद ड्रेस में गांव गांव गली गली में सेवा कर रहे, मैंने उसमें ये आकर्षण था मैं जाकर लोगों को सत्संग सुनाऊंगा, ये बुद्धि में था। फिर ये लोगों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद संसार विनाश हो जाए।
2: अच्छा,
3: मैंने 2000 उनका टारगेट था कि जो अपना गांव में सब बोलते हैं ना, अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग जो कुछ भविष्य ज्ञानताकारी जो जानकारी वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से बुद्धि में था कि 2000 अगर विनाश हो जाएगा कुछ पुण्य कर ले तो काम आएगा, इसी हिसाब से हम चल पड़े। तो पिताजी बोले ठीक है, फिर हमने वहाँ एक महीना जनवरी मास का पूरा कंप्लीट किया था। तो उस समय में भुवनेश्वर में दादी प्रकाशवाणी को आना था जनवरी 26 को, तो सभी ने बोले हमारा भट्टी चल रहा है और भट्टी को कैसे ब्रेक करके हम चले, लेकिन हमारा बुद्धि में था कि दादी बड़े मुश्किल से राजस्थान से यहाँ आए हुए।

0: कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए दादी का दर्शन हम कर ले। तो उस गीता पाठशाला से चार पांच भाई हम फिर आए थे भुवनेश्वर दादी से मिलने। तो वहाँ के आकर्षण और बहुत था कि देखो दादियों ने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ। जब यज्ञ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम हुआ फिर ये चीज और गहरा होता गया। फिर वहाँ से आकर फिर जैसे योग भट्टी चालू था ऐसे किया, बाकी वहाँ से एक नया चीज हमको आभास हुआ। हमारे गाँव से एक भाई जिसका फैमिली टोटल आके भुवनेश्वर में रह रहे हैं और टोटल फैमिली उनका ज्ञान में चल रहे, तो उस भाई के साथ जब हमारा परिचय हुआ और वो योग कैसे करते हैं, अनुभव कैसे होना है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे होना चाहिए और कुमार जीवन और लौकिक जीवन में क्या अंतर है, वो डिटेल से उन्होंने बताया कि हम नए नए थे और उन्होंने जितना भी बताया हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ये सारा पूछने के बाद क्वेश्चन किया कि आप ज्ञान में क्यों चला, क्या कारण है जो आप ज्ञान में चलते हो। फिर मेरे को एक शक लगा क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ज्ञान में चलो, जब नहीं चलते थे तब बोले कि ज्ञान में चलो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर जब
1: ये किसने बोला ज्ञान में चलो,
0: जो भाई जो गांव का था जिन्होंने भुवनेश्वर में पिताजी के साथ रहा करते थे, टोटल फैमिली उनका था भुवनेश्वर में, उनका पिताजी भुवनेश्वर में कहीं नौकरी करते थे, तो ये भाई बहन सब ज्ञान में चलते थे। और वो भाई जब ये पूछा मैंने, भाई साहब आप लोग तो बोलते हो ज्ञान में चलो, फिर ज्ञान में चलने के बाद बोलते हो ज्ञान में क्यों चला, इसका क्या
1: अर्थ है?
0: अर्थ है
1: जी।
0: नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो मन में आया होगा तो आपने ज्ञान में चला। मैंने इतने उनको थोड़ा रुक के बोला कि देखो सभी बोलते हैं ज्ञान, माने दुनिया 2000 को विनाश हो जाएगा, तो विनाश होने के पहले कुछ पुण्य कर दे ताकि कुछ काम में आएगा। फिर उन्होंने पलट के फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो अगर 2000 को विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान छोड़ दोगे? तो हमारे मन में एक धक्का आया, अगर ज्ञान इतना दिन चलने के बाद छोड़ देंगे कैसे? तो उन्होंने बोले आपका उत्तर ही बोलता है कि 2000 तक चलेंगे, उसके बाद गारंटी कुछ नहीं, तो ये तो फिर आपको ज्ञान में चलने नहीं देगा। उनका कहना था कि ज्ञान माने 2000 को विनाश नहीं होगा तो ज्ञान छोड़ दोगे। इसी हिसाब से हमने बोला कि नहीं, फिर हमने बोला कि नहीं, अब जब इतना दिन चल पड़े हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे ना, ना ये पूरा निश्चय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा ऐसे कहा कि तुम्हारा
1: ज्ञान की तर्क वितर्क की बातें की।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने बताया कि आपका बुद्धि में ये रहना चाहिए और आज से रखो कि विनाश कब होगा उसका कोई मूल ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है, जब विनाश होगा होगा, तो मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है,
1: परमात्मा का हाथ नहीं
0: छोड़ना है, तो ये बुद्धि में रखो तो आपका विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ठीक है,
1: लेकिन समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया?
0: फिर समर्पित की बात जब आई, वो भाई की ये जो बात हुआ, फिर उनसे थोड़ा दोस्ती जैसा हो गया एकदम नजदीक, और ये फीलिंग हुआ कि हमारा एरिया का भाई है, तो उनसे फिर नजदीक होकर के ज्ञान की कुछ बातें हुआ, फिर माउंट आबू की बातें हुई, फिर हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते ये सारी बातें, क्योंकि सेंटर की इच्छा नहीं थी और हेडक्वार्टर में रहने का अगर चांस मिलता है तो आगे बढ़े। और उस समय हमारे एरिया का एक भाई था जो दिल्ली में रहा करते, तब हम उसको देखा नहीं था, तो ये बुद्धि में आया जब वो भाई दिल्ली में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर भाई जी से उसी समय बात कर लिया कि मेरा इच्छा है माउंट आबू में जाके परमानेंट सेवा कर। फिर वो भाई ने अच्छा नोट किया था क्योंकि हम जब यहाँ घर से जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर स्नान करके अमृत वेला करना, फिर मुरली पढ़ना, और दीदी आज तक हमने जब से ज्ञान में चले, जो बीच में जो बंद हुआ था वो भाई के कारण, उसके अलावा हमारा आज तक यज्ञ में जब से है मुरली एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। नहीं क्यों, मुरली के समय में हमारा सारे काम बंद करके हम सीधा चले जाते मुरली क्लास में, यही हमारे पास एक ही ताकत है, बाकी तो परिवार संगठन भाई बहन की आशीर्वाद ऐसे हम अभी तक चल रहे।
1: तो समर्पित का संकल्प कैसे आया और मधुबन कैसे पहुंचे?
0: फिर वो जो भाई से हमने मिला था, वो भाई को हमने बोला कि घर पे हम 3 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और घर का जो जमीन है लौकिक खेती बाड़ी, वो साल के लिए हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा
1: जिम्मेवारी
0: नहीं है। तो ये भरोसे से भाई से हमने बात किया, वो भाई ने हमको भरोसा दिलाया कि ठीक है हम दादी से बात करते हैं। फिर दादी से बात करके उन्होंने मैसेज दिया, दादी ने उनको बोला था कि भाई वो कहीं गांव का रहता है, ज्ञान योग कैसे करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, संगठन में कैसे चलेगा, किसका संस्कार कैसे, ये संस्कार मिला के चल पाएगा नहीं पाएगा वो मैं नहीं जानता, जब तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे भरोसे ऊपर मैं राजी होता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो भाई को बुलाओ ओम निवास, ये वो मेरे सामने ज्ञान योग करेगा, संगठन में रहेगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये कैसे ज्ञान में चल सक या नहीं चल सक। फिर एक भाई के पास मैं रहा, उन्होंने सेटिंग किया, एक महीना दादी के सामने ज्ञान योग सेवा जो मिलता था सेंटर का, वो सेवा करने के बाद उस समय शांतिवन का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो महेंद्र भाई आज है नहीं, तो उन्होंने दादी को मैसेज दिया कि हमको दो भाई चाहिए, वो भी उसमें हमारी नाम नहीं था, जो भाई दिल्ली गया था वो भाई, वो जिसको चुनेगा दूसरा भाई। तो वो भाई ने भेजा मेरे को गांव कि वो भाई को बुला के लाना कि वो माउंट आबू आए। तो वो भाई को जब हमने मिला और उन्होंने लौकिक में बाबा का प्रचार प्रसार, बाबा का सेवा करूंगा, इस हिसाब से मैं अभी मधुबन नहीं आ सकता, ये दादी को आप बताएं। फिर उस समय हमारे पास जितना बुद्धि था उसी हिसाब से उनको समझाया कि भाई मधुबन जैसा स्थान नहीं मिलता है, अगर ऑफर मिलता है और आप तो दिल्ली में कुछ दिन रहा फिर वहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन उनका एक जिद्दी था कि लोकल में हमारा बाबा का सेवा करें, ये तो उनका विचार था। फिर हमने चुपचाप आ गए, लेकिन ये ठान के आए कि अब वो भाई नहीं जा रहा है, उसके साथ जो दूसरा भाई जाना था वो भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर पक्का है। तो उस हिसाब से हमने दादी को मैसेज दिया और वो मैसेज देने के बाद फिर हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, टिकट दादी करवाई, फिर ड्रेस भी कुछ नहीं था, ड्रेस भी बनवाए, टिकट भी बनवाए, हमको गाड़ी में छोड़े। तो इसी हिसाब से हमने मई 25 मेरा जन्मदिन था, मई 25 को ट्रेन में बैठा वहां से और यहाँ 27 को पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद हमको सेवा मिली कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन के, और इतना धूप होता था उस समय
1: शांतिवन का
0: कंस्ट्रक्शन महेंद्र भाई के अंडर में, बड़े मधुकर जो आज कारपेंटर में है, रमेश भाई कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ हमको सेवा मिला।
1: मगर आप तो सिर्फ 12वीं पढ़े थे।
0: जी जी जी, कंस्ट्रक्शन का इतना कोई कुछ ज्ञान नहीं, बाकी सेवा करे, जो सेवा के मिलेगा वो करेंगे, उसी हिसाब से हमको वहाँ यहाँ शांतिवन में सेवा मिला और सेवा में लग गए। इस तरीके से शांतिवन पहुँचना आसान हुआ और वहाँ 96 तक हम जो सेवा किया कंस्ट्रक्शन में, तो बुद्धि में उस समय ये आया था, हम नहीं जानते थे कि प्याड ऑफिस में एक फाइट बनता है, ये होता है वो होता है, हमारा बुद्धि में नहीं था, हमारा बुद्धि में ये था कि हम समर्पित हो गए, बाकी ये जो फाइल बनाना ये चीज हमको
1: नहीं पता।
0: तो फिर जब ये पता चला कि इसे फाइल बनता है और वह रजिस्ट्री वगैरह बनता है, फिर हमने ये डिसीजन कर लिया जब तक हमारा फाइल नहीं बनता तब तक हमको घर जाना नहीं है।
1: अच्छा,
0: 91 से लेकर के 96 तक हम घर नहीं गए थे, 96 के बाद हमारा जो यहाँ के हिसाब से जो फाइल बनना था बनना, हमारा नंबर आया, उसके बाद हम घर गए।
1: अच्छा, बीच में आप जो बोल रहे थे कि संन्यास मतलब ऐसे भिखारी वाला संन्यास नहीं बनना है, तो वो बात कहाँ से आई?
0: क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल में जितने साधु संत महात्मा हमने देखा है, गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव में आके लोगों को भिक्षा देही करके जो मांगते थे,
1: भिक्षा लेते,
0: हाँ, ये हमको कष्ट होता था, क्योंकि जो भी हमने जिन जिन को देखा है एजुकेटेड पर्सन देखा है, लेकिन ऐसे मांगते है, कई लोग बोलते थे उनको कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप मांग के क्यों खाते हो, सन्यासी बन गया ठीक है, लेकिन मांग के खाना ये कौन सी सन्यासी की, और जब लोगों से मांग के खाते हो तो सन्यासी किसी बात की रहा, पिताजी माताजी को छोड़ा यहाँ आकर के मांग के खाते हो, ये चीज हमको बड़ा अकड़ता था कि ये सन्यासी हमको फिर पसंद नहीं।
1: तो जब आपको समर्पित होने का ख्याल आया, लेकिन आपको ये क्लैरिटी थी कि आपको सन्यास बनना मतलब भिखारी वाली सन्यास नहीं बनना है, भिक्षा लेने वाली सन्यास नहीं बनना है, तो आपको समय क्लैरिटी थी कि मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित होऊंगा तो मेरा एक रॉयल लाइफ होगा और मुझे इस तरीके से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं?
0: तो बुद्धि में ये था, जो बहने भुवनेश्वर से आए हुए थे वो लोगों जो खाना खाते थे और भुवनेश्वर सेंटर में रहते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, बाबा का भंडारी से जो मिलता था, जैसे पालना मिलती थी उसी हिसाब से वो चलते थे, भाई जब वो चल रहे हम क्यों नहीं चल सकते, ये बुद्धि में पक्का था, क्योंकि ज्ञान को समझाना और खुद समझना, लोगों तक उस बात को प्रैक्टिकल रखते थे वो लोग, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उनके पास उत्तर नहीं था, तो हमने उस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने जो पूछा था कोर्स करने के समय, हर चीज के ऊपर उनका क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन,
1: उनके पास जवाब,
0: उनके पास वो जवाब। दूसरा आकर्षण था, जब हमारा गांव में कोर्स चला उसमें इंजीनियर प्रोफेसर ये सब थे, किंतु लौकिक में हमने नहीं देखा था जो साधु संत महात्मा और जो लोग सत्संग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग कभी सत्संग करते हुए हमने नहीं देखा, सत्संग कराने के लिए भी ऐसे एजुकेटेड पर्सन नहीं देखा था। वो चीज थोड़ा हमको और आकर्षित किया कि इस ज्ञान में जरूर कुछ है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर थे, होम डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, एक बड़ा इंजीनियर भाई था जो हमको कोर्स कराया था। तो हमने देखा मतलब इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ये पढ़ाई पढ़ते हैं, और जब इतने पढ़े लिखे लोगों इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जरूर इसमें कुछ अंधविश्वास की बात नहीं होगा। तब वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं, गांव वाले भी इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते जितना क्वेश्चन वो लोग। ऐसे गांव में था कोर्स के समय, सभी लोगों ने हर चीज को माना, लेकिन सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष है उस चीज को कोई नहीं माना। फिर जो कोर्स करने वाले भाई थे, हम उनसे डायरेक्ट पूछा, मतलब भाई साहब एक बात पूछो, कोई बात नहीं पूछ। फिर हमने पूछा था उनको कि ये लोग सभी बात को मानते हैं, आत्मा को माना, परमात्मा को माना, सृष्टि चक्र में जब सृष्टि चक्र की समय सीमा 5000 वर्ष कहा गया वो नहीं माने। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो हम 10 किलोमीटर रास्ता जब तय करते तो उस रास्ते में जब हम 90% सिग्नल देते कि ये चीज है, लास्ट सिग्नल को अगर कोई मानता नहीं है और हम कहते हैं कि लास्ट सिग्नल यही होगा, अगर वो नहीं मानते 90% चीज को उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर ये जरूर 100% सत्य है। अगर वो लोग नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बाबा जाने और हो जाए। फिर हमारा बुद्धि में ये हो गया कि ये लोग कुछ बोले या ना बोले इसमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात, जब 6 महीने वो लोग ज्ञान में रेगुलर सुने और उसके बाद सिर्फ खान पान के कारण चले गए, प्याज लहसुन नहीं खाना है, माछ मंदिर ये नहीं करना है, फिर मैंने बोला ये लोगों का निश्चय नहीं है।
1: जब आप समर्पित होने के लिए आए और ये सारी बातें, तब तक फिर आपके परिवार मान गई थी आपकी इस तरह?
0: परिवार वाले माने थे कुछ, बाकी कुछ नहीं माने थे, क्योंकि उनको जब बोला गया पब्लिक से कि संस्था में जो जाते हैं मैरिज नहीं करते, और घर पे घर का बड़ा होने के कारण सास से कोई पूछ नहीं पाते थे। फिर एक दिन हमारा बुआ जो होगा तो उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात हम सुन रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कोई बात नहीं, अगर वहाँ मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है फिर वहाँ वो सत्संग करने हम जाएंगे, तो उनको ये जवाब हमने दिया था। तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और घर पे उसमें भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। अच्छा, जो बंदे को हम लाएंगे घर पे उसका खाना पीना रहना ये सारी सिस्टम करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, इनकम सोर्स कुछ होगा, उसके बाद सोचेंगे कि मैरिज करना है नहीं। फिर उनके बुद्धि में क्या है, नहीं हमारा लड़का ठीक समझा है, अभी पढ़ता है, नौकरी या चाकरी जो भी बिजनेस करेगा उसके बाद मकान उसके लिए बना के फिर मैरिज कर, मतलब फिर उन्होंने ये छुट्टी दिया, बेटा तुम जिस रास्ते में जाते हो वो रेगुलर जाओ।
1: फिर खान पान का भी छूट मिल गया।
0: हाँ, फिर अब क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारा लड़का ज्ञान ठीक समझा है,
1: ठीक समझा,
0: क्योंकि नौकरी करेगा,
1: फिर भले वो फॉलो नहीं करते है, वो सेंटर नहीं जाते, लेकिन आपको छुट्टी मिल गई।
0: छुट्टी मिल गई,
1: बहुत अच्छा। सो भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं संस्था में?
0: संस्था में यहाँ जितने भाई बहन हम लोग रहते हैं, दुनिया के हिसाब से हम लोगों सभी अपने अपने जो सेवा स्थान मिला है, जैसे हमको पीने का पानी का सेवा मिला है वहाँ हम सेवा दे रहे, उसके साथ जब पब्लिक में कभी सेवा का चांस मिलता है वो करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सेवा में हमको 10-12 घंटा से ज्यादा समय हो जाता है।
1: मतलब इतने बड़े कैंपस में जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है
0: उस सेवा में हम अपना समय
1: जगह जगह पे उस समय पे उपलब्ध रहे, वाटर मशीन चलाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग वाटर करो, और मशीन का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप संभालते हैं
0: जी।
1: बहुत अच्छा है भाई जी। आपको जीवन में कब ये महसूस हुआ कि इसे जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? वो क्या पल था, क्या मोड़ था वो?
0: ये तो हमने इतना नहीं सोचा, बाकी ये सोचा कि जैसे कोर्स के समय जो भाई बोला था ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाएगा आप एक देवता बन जाओगे, तो हमारा लक्ष्य वहाँ था कि हम देवता बनने की बात छोड़ो, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये हमारा बुद्धि में था। तो ये था जब हम कोर्स करने के पहले जो मैसेज था कि अच्छा इंसान बन जाएंगे समाज के अंदर। आज समाज में ये देखा जाता है कि लोगों कितना एजुकेशन लिया हुआ हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन चरित्र नाम का चीज उनके पास नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैरेक्टर इज गुड लिखा जाता है, लेकिन आज के समय अगर उनको पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है तो उसका जवाब नहीं दे सके। और उसका जवाब सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन है वो लोग उसका जवाब दे सके, तो ये चीज ज्यादा हमको प्रभाव।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आप अपने अमूल्य समय लेकर के आए और हम सभी को आपकी जीवन के उन चंद पलों से अनुभव कराया कि बाल्यकाल में हमारे मन में जो चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा बनाती हैं। भले उस समय हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बने क्या बने, लेकिन मूलभूत जो हमारी संवेदनशीलता या भावनाएं जो होती है वो हमारी जीवन की दिशा बनाती है।
0: जी थैंक यू,
1: धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों ये था आज के इस योगी की कहानी, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जीवन के उन पलों को या फिर हर एक के जीवन के कुछ नया दृश्यों को आप सुनते हैं और ये प्रेरणा लेने की हम कोशिश करते रहते हैं कि क्यों हमें इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन या हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान होता है। दोस्तों यही पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।
2: अभी बचे हैं दोपहर के चार, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम, आज
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलिथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था
0: जी।
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको जो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेके देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेके भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं अकेला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती है। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, एक वृक्ष बनाना और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके इको वृक्ष बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भाग जाते थे वहां से। तो इधर उधर काल पे फोन लगा के, और वो क्यों नहीं भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रही, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात करी यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे, पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईंट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईंट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: कि किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलिथीन, सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल
0: प्लास्टिक।
1: जो, हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े इकोब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन घर
0: जी
1: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईंट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है मैडम, मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे उपयोग कर सकते
1: अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुद्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक्स
0: यस
1: की 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने, वो उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बोतलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने का एक मुद्दा बना सकते हैं। हमने बनाया अभी एक मुद्दा उसको बैठने के लिए, तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: के
0: लेकर
1: बनाने में अपन
0: के
1: काम कर
0: ढक के।
1: सकते हैं। हाँ
0: जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समझ
0: बाद उसको
1: सकते,
0: चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या
1: हाँ
0: ऐसे ही ढक के उसको स्टूल बना सकते हैं।
1: ये कवर बना के उसका बढ़िया अच्छा है।

0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बेचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे जो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई। तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़ी जुनून भी था। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें। तो उनका भी कुछ जो उसके मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा। ऊपर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण
0: जी
1: प्रेमी करके। तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा। तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बॉटल से इको वृक्ष बना के इनको अंदर बॉटल के अंदर पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है। तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने। तो
0: जी
1: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
0: जी क्या बात है सर। जी ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
1: मेरा
0: महिलाएं
1: जी,
0: भी शामिल है अभी। जी बताइए
1: जी
0: सर
1: मतलब
0: आप।
1: मैं सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
0: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। ये सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर आपके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
1: जी
0: व्याबरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
1: जी
0: अनुभव कैसा था?
1: अब क्या इतना एक आत्मविश्वास में था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का वो, तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता। आप जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई है उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
1: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
0: जी बहुत बढ़िया सर। आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी, और उनकी क्या भूमिका है आप बता सकते हैं?
1: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या एक मेरे दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है एक पिंकी दीदी करके। तो
0: जी
1: मेरा क्या है, जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए। तो उन्होंने की भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट दिया आपसे। तो उन्होंने की बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने किसको क्या, मैंने कि इसको इकोब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
0: क्या
1: वो
0: बात है
1: लेके
0: जी।
1: आए, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आए, तो 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इकोब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं। मैं तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
0: जी
1: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना महिलाओं का, तो 15-20 महिलाएं सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई, तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी हैं, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही हैं। वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की वाटर लगा चुकी हैं पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रिज चाहिए। तो उन्होंने 9 वाटर मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रिक्स की।
0: क्या बात है सर जी।
1: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है।
0: राइट,
1: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में है, तो ऐसे महिलाएं जुड़ते गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में है युवाओं के साथ।
0: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
1: जी
0: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से, तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को।
1: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवाहा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
0: जी
1: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज बर्थडे बनाते थे, और ढेर लगने लगा। तो हमने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है। तो
0: जी
1: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
0: जी
1: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
0: जी
1: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
0: जी
1: इसका
0: सर
1: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
0: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये पेन बॉक्स भी ये हमने इसका तख्ती का बनाया, सीट बनती है इसकी। तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
0: जी
1: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
0: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
1: बहुत अच्छा
0: वो किस
1: प्रश्न था
0: आइडिया कहाँ से आया?
1: ये, क्या
0: जी
1: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, तो बाटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने क्या बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने क्या रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने क्या एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। तो लोगों को बताया, वहां के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी पानी वगैरह बॉटल बेचते थे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि भैया कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बॉटल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बॉटल बैंक में कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भैया ये क्या है बॉटल बैंक। मैंने बोला ये बॉटल को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है ये, एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500-1000 वर्षों तक ये धरती पर पड़ी रहती है, अपन
0: जी
1: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया, 3 4 दिन थोड़ा सा

0: एग्जैक्टली
1: ये हमने बनवाया, मतलब वो बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से एक सेप देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
0: जी
1: सब
0: हाँ
1: लोग भी अलग जगह पे बनवा सकते हो, कोई नहीं जाता।
0: जी सर, बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
1: हाँ वो जो बोटलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया। जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं, तो ढक्कनों को भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में, हमने कहा आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को, तो
0: जी,
1: अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया हमारी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
0: आपसे इंस्पायर होके।
1: जी
0: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
1: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम,
0: जी
1: तो धीरे धीरे धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया है काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा, तो फिर इसे विचार चला, काना ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई, तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी
0: जी
1: पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया, तो उसका निर्माण करा एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव ब्यावरा हमारे लिए बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
0: एब्सोल्युटली जी सर,
1: जी
0: बहुत खूब सर। सर आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
1: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा, तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं, तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है शादी है या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाएं और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाएं, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा, क्योंकि कुछ
0: जी
1: चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना, अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो अब वो तो पैकेज में आएगा,
0: जी सर,
1: इसलिए बर्तन
0: तो
1: बैंक का
0: बर्तन,
1: शुभारंभ।
0: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
1: बोल क्या है उनको मान लो ऐसे बात हो गया 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन टीम के ले जाना जो उनको आवश्यकता है, मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच जैसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, तो गिन के ले जा वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके उनको दे जाते हैं।
0: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल लोग
0: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो वापस आपको रीयूज करने के लिए
1: वापिस
0: देते
1: जी
0: हैं। जी, बहुत खूब। तो सर अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
1: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, और छोटे
0: ओके,
1: स्तर से भी कर सकते हैं इसे भी, हमने इको ब्रिज का एक बढ़िया ऐसे मतलब किसी को गांव में करना है, तो बढ़िया जो भी अब गांव में छोटे 50 को परिवारों की एक बस्ती रहती है तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गांव में।
0: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
1: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को, आज जिस गति से

0: मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई तो जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, आवश्यकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
1: जी सर। सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
0: हाँ,
1: करके
0: कर
1: ये
0: सकते
1: कार्य
0: हैं
1: कर सकते हैं?
0: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना MRF प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं। जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते हैं।
0: ले सकते वो नगर
1: जी
0: पालिका भी
1: सर।
0: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
1: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी, तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
1: जी बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़े, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी, जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनवाइटी मेंबर हैं, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बहन।
1: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
2: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
1: जी।
2: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रकृति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
2: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
2: आर्थिक मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से
1: जी,
2: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
2: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
2: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
2: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी, जी।
2: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
2: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी।
2: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
2: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
2: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते
1: जी।
2: तो उसका शोषण नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना, और धरती माता का भी, फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
2: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
2: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो, और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी, हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा।
2: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है, वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा, और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
2: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में, दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं की बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए, और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है, 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
2: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
2: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए, ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशाला में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए। आने वाला समय कृषि का है, तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है
2: जी? जब से ये कार्य लिया तो दिनचर्या का अता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
2: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
2: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
2: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे, नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
2: तो 10 रोग है जिन्हों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते
1: जी।
2: हैं, स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
2: उसी का उपयोग हम करके जी। तो गाय का उपयोग, जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं। दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापिस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
2: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाएं निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम में और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, घी बनाने की परंपरा
1: जी।
2: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बेटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देशी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी।
2: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना। इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है।
1: जी,
2: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
2: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहली एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदी घर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
2: जी, नंदी घर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
2: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है
1: अच्छा।
2: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
2: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकते, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया, नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है, हमें डबल ट्रिपल तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्रों, आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है। तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
2: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
2: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम करें तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए, और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
2: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग जो विषय है थोड़ा सा यूनिक आपको बताने वाले हैं, कला और मीडिया में करियर कैसे बनाए। जी हाँ साथियों, रचनात्मक से रोजगार तक का सशक्त सफर है कला और मीडिया। आज का युग सूचना संचार और अभिव्यक्ति का युग है। मोबाइल, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी के केंद्र में कला और मीडिया है। ये क्षेत्र केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने, विचार बदलने और लोगों को जीवन छूने की अद्भुत शक्ति रखता है। कला और मीडिया में करियर उन युवाओं के लिए है जो रचनात्मक सोच, संवेदनशील दृष्टि और अभिव्यक्ति की कला को अपना जीवन बनाना चाहते हैं। साथियों, आइए आज कला और मीडिया जगत के बारे में बातें करेंगे और इसमें करियर कैसे आप बना सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आज सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कला और मीडिया क्या है? कला आर्ट वो माध्यम है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाएं, विचार और कल्पनाएं व्यक्त करता है। जैसे चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, रंगमंच की बात हो गई, लेखन कार्य हो गया, कविता आदि। तो यहाँ पर इस माध्यम से व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, या उस कला को या उस नृत्य को या उस देश को या उस गांव को या उस संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। दूसरा, मीडिया की जो बात करते हैं, ये वो मंच है जो इन विचारों और सूचनाओं को समाज तक पहुंचाता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म, डिजिटल और सोशल मीडिया। तो ये सारे माध्यम हैं अपनी आवाज़ और विचारों को पहुंचाने का। जब कला और मीडिया मिलते हैं, तब जन्म लेता है रचनात्मक संसार, जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि शिक्षा, दीक्षा, जागरूकता और परिवर्तन का माध्यम भी बनता है। तो साथियों, ये दोनों जो है आपके करियर को बेहद सुंदर और बेहतर बनाने के लिए ये रचनात्मक करियर है। देखिए, कला में आप अपनी भावनाओं, अपने शब्द और रचना और साथ में नृत्य, संगीत, इन सभी के साथ में जुड़कर आप अपने कला को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर मीडिया में एक मंच है जहाँ पर आप इन सारी बातों को अलग अलग तरीके से आप लिख के भी बता सकते हैं, या फिर आप सुना सकते हैं, या फिर आप दिखा सकते हैं, या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट करके अपनी बात रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऐसा मंच है मीडिया, जहाँ से आप अपनी संस्कृति, सभ्यता और जो कुछ घट रहा है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो लिखत में हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को अभिव्यक्त कराते हो या बताते हो। जब कला और मीडिया मिलते हैं तो बहुत ही एक सशक्त माध्यम बन जाता है, और ये आप अगर सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपना करियर फ्रेम करने में बहुत आसान हो जाता है और इसमें अच्छा करियर विकल्प बन जाता है। तो आइए कला और मीडिया जगत में करियर का मुख्य जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करूं। तो जैसे कि मैंने कहा, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जर्नलिज्म, जिसमें प्रिंट पत्रकार, टीवी एंकर, रिपोर्टर, डिजिटल जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार, ये सारे जो है इस अलग अलग तरीके के जो पत्रकारिता है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में सत्य, जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशील की मांग करता है। दूसरी ओर रेडियो और पॉडकास्ट, रेडियो जॉकी, प्रोग्राम शेड्यूलर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, पॉडकास्ट होस्ट, और रेडियो आज भी आवाज़ की ताकत से लोगों के दिल तक पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो आइए, इसके और भी कुछ माध्यम हैं अभिव्यक्ति के जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ही पल में, और आपको अभी ले चलता हूं एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

कैसे हम रेडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से, चाहे न्यूज़पेपर से जुड़े, चाहे टेलीविज़न से जुड़े या फिर आप रेडियो से जुड़े, तो किसी भी माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, एक और विकल्प यहाँ पर है, फिल्म और टेलीविज़न, जहाँ पर आप नेता, अभिनेत्री, निर्देशक, पटकथा लेखक, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, ये क्षेत्र मेहनत, धैर्य और निरंतर सीखने की भावना मानता है। जब आप इसको लगातार सीखते रहते हैं तो इसमें आप मास्टरी हासिल करते हैं। चौथी बात आती है यहाँ पर डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की। यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, आज डिजिटल मीडिया ने एक नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। तो ये सारे माध्यम हैं, आज कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल सकता है। पांचवी बात आती है विजुअल आर्ट्स और डिज़ाइन। तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन, डिज़ाइनर, एनिमेटर, UI/UX डिज़ाइनर, फोटोग्राफर, इस क्षेत्र में भी आप तकनीक और कला का सुंदर संगम का उपयोग करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, काम करने के लिए आपको कला और मीडिया में काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, विभाग हैं, जिसमें आपकी रुचि के अनुसार आप उन चीज़ों को सीखिए और उसमें काम करें। कभी कभी ऐसा इस क्षेत्र में आवश्यक योग्यता और कौशल की ज़रूरत होती है, और आप अपनी पढ़ाई और इन सारी चीज़ों को करते जाएंगे तो यहाँ पर रचनात्मक सोच ये बहुत बड़ा काम करता है। अच्छी भाषा और संप्रेषण क्षमता ये भी बहुत बड़ा काम करता है। टेक्नोलॉजी की समझ हो तो ये चार चांद लग जाता है आपके इस करियर में। अनुशासन हो तो फिर बात ही क्या कहना। अनुशासन मतलब समय प्रबंधन, टाइम पर हर चीज हो, निरंतर अभ्यास और सीखने की आदत हमेशा बनाए रखें अपने लिए। डिग्री इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन पोर्टफोलियो, अनुभव और जुनून उससे भी ज़्यादा मायने रखते हैं साथियों। इसलिए आज के समय में डिग्री से ज़्यादा आप कितना अच्छा काम करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, कला और मीडिया जगत में अपने करियर बनाने के लिए बातें हो रही है। तो चलिए, आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है और आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वो उस बात को आप नोट करके रखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हाँ, जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहे तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। इस नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको संपर्क करके बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। करियर की शुरुआत कैसे करें मीडिया और कला जगत में, तो सबसे पहला आप स्कूल स्तर पर ही कला, लेखन, मंच और मीडिया में रुचि विकसित कर लें। दूसरा है संबंधित कोर्स या डिप्लोमा जरूर करें। तीसरा है इंटर्नशिप और फ्रीलांसर में काम करते रहिए। चौथा है अपना ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए। पांचवी बात, नेटवर्किंग और मार्केटिंग के साथ मेंटोरशिप पर भी ध्यान दें, जो आपके करियर की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आपको जो है यहाँ पर करियर शेप करने का मौका मिल सके। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की तरफ, जो मीडिया सेक्टर का ही है और एक सफलता की कहानी एक मीडिया कर्मी की मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों, बात है राजस्थान की। जी हाँ, छोटे शहर में राष्ट्रीय पहचान तक पहचान बनाने वाली की कहानी है, आवाज़ जो पहचान बन गई थी। साथियों, मैं बात कर रहा था राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि। बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन था। उसके पास ना तो महंगे संसाधन थे ना कोई पहचान, लेकिन उसके पास थी आवाज़, आवाज में सच्चाई और दिल में जुनून। हुआ ऐसे कि कॉलेज के दिनों में उसने लोकल एफएम में इंटर्नशिप शुरू की। शुरू में उसे सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने और रिकॉर्डिंग संभालने का काम मिला और वो बड़े चाव से इन चीज़ों को करने लगा क्योंकि रुचि थी। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज़ पर काम किया, बहुत सारे किताबें पढ़ी, समाज को समझ लिया, समाज की ज़रूरतों को समझ लिया, व्यक्ति की सोच को समझ लिया। जब ये तीनों चीज़ें उसके समझ में आ गई और रेडियो के साथ जुड़ने के कारण काफ़ी अच्छे लोगों से उसकी पहचान बनती गई और हर व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुनता, उनकी सेवा, हर रोज कुछ नई बातें लिखना शुरू कर देता था। और ये नई बातें लिखते लिखते उन्होंने समाज को एक नया दिशा देने का मैसेज उसमें उठा, और ये चीज आने वाले समय में रवि के काफी काम आ गया। और अचानक एक दिन जो है बड़े चैनल से उसको रेडियो चैनल पर काम मिला। साथियों, आज वही रवि एक राष्ट्रीय रेडियो चैनल पर प्राइम टाइम शो होस्ट करता है। उसकी सफलता का मंत्र था, कला को साधो प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल रवि का मंत्र सही है। अगर आप इसको समझ लें तो निश्चित तौर पे आपको मुझे किसी कोर्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं। जब आप अपने अंदर के कलाकार को समझ लेंगे, बस उसे आकार देना और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथियों, चलिए जाते जाते मैं एक और कहानी भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये कैमरे के पीछे से पहचान तक की सीनरी है। कहानी कहने वाला कलाकार, कई बार आप देखेंगे फिल्म चलती रहती है लेकिन पीछे से आवाज सुनाई देता है ना। आप देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चेहरे को ना दिखाकर अपनी आवाज के माध्यम से मीडिया जगत में काफी अच्छा करियर बना चुके हैं। तो मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक नेहा जी का जो कहानी है वो याद आ रहा है। नेहा जी को बचपन से ही कहानियाँ पढ़ना लिखने का बड़ा शौक था। लोग कहते थे इसमें करियर नहीं है उन्हें, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उनकी जिसमें रुचि थी उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। उसने मास कम्युनिकेशन किया, डिजिटल मीडिया में कंटेंट राइटर बनी। शुरुआत में काम करते करते वेतन की कोई बात नहीं थी, वेतन के बारे में वो नहीं सोचती थी और लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट फील्ड में लिखना, पढ़ना, कहानियाँ सुनना ये करती रहती, घंटों इन कामों में व्यस्त रहती। लेकिन उसने हर काम को सीखना और पढ़ना जारी रखा। कुछ वर्षों में उसने शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया और यहाँ से नेहा के जीवन में यू टर्न आ गया। आज
नेहा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज लिख रही है। वो कहती है अगर आपकी कला सच्ची है तो मीडिया उसे मंच जरूर देगा। है ना कमाल की बात साथियों। आशा करूंगा नेहा की बातें, नेहा की जीवन करियर के बारे में सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही होगी। वो आइए इस जगत में यानी मीडिया और कला जगत में काम करने के लिए आपको कुछ चुनौतियों का और सच्चाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शुरुआती संघर्ष हर जगह होती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। आर्थिक अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा अधिक है, इसीलिए लगातार मेहनत करने और कंटेंट नया क्रिएट करने की ज़रूरत है, लगातार खुद को अपडेट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन जो लोग धैर्य अनुशासन और जुनून के साथ टिके रहते हैं वही इस फील्ड में आगे भी बढ़ते हैं। ये क्षेत्र केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं देता बल्कि समाज को दिशा देने का अवसर देता है। एक सच्चा कलाकार और मीडिया प्रोफेशनल संवेदनशील, जिम्मेदार और मूल्यनिष्ठ होता है। कला और मीडिया के करियर में उनके लिए है जो नौकरी नहीं पहचान बनाना चाहते हैं। ये राह आसान नहीं लेकिन अर्थपूर्ण जरूर है साथियों। अगर आपके भीतर कहने को कुछ है, दिखाने का हुनर है और बदलने का साहस है तो इस क्षेत्र में आपका इंतज़ार हमेशा रहता है। याद रखिए जहाँ कला होती है वह अवसर खुद रास्ता बना लेते हैं। तो साथियों ये थी कुछ खास बातें कला और मीडिया जगत में अपना करियर बनाने का आप सबके लिए। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून। जुनून हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: दोस्तों को मेरा सलाम और नमस्कार। आपका फेवरेट होस्ट एंड दोस्त फॉर योर रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो, दिस इज शरद त्रिपाठी फॉर योर फेवरेट शो जुनून। तो जुनून में फिर से आज बात करेंगे एक जुनूनी के साथ और जानेंगे कि इंसान तो क्यों पालता है कोई जुनून और क्यों निकल पड़ता है एक नई राह पर जिस पर फिर से मिलते हैं कुछ जुनूनी। तो हमारे साथ हैं जुनून में इस बार सूर्य नगरी देवाराम। सूर्य नगरी से देवाराम जी हमारे बीच में हैं। देवाराम जी के साथ हम बातचीत करेंगे। देवाराम जी एक जुनूनी हैं और मैराथन के जुनूनी हैं। ये उस ट्रैक पे अपना पसीना बहाते हैं जिस पर शायद हम चल भी ना पाए। तो उस ट्रैक पर इनकी क्या जिंदगी है, क्या बात करेंगे। ये ट्रैक पर हैं भी कि नहीं ये भी हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं देवाराम जी से। देवाराम जी आपका स्वागत है हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, रेडियो मधुबन पर।
7: धन्यवाद सर।
6: तो देवाराम जी आपको ये जुनून, हमारा फिर से वही सवाल होता है, बहुत पहला सवाल होता है हम किसी भी जुनूनी से बात करते हैं, ये जुनून आपको कैसे आया?
7: सर ये जुनून मैं स्टार्ट 9th 10th क्लास में जोधपुर आ गया सर, घर गाँव से जोधपुर। और फिर मेरे एक मामा जी का लड़का है वो सर ट्रैक पे दौड़ता था, उसका एक बार उसका अखबार में नाम पढ़ा था मैंने, उसके कोई डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन हुए तो मैंने उसको देख के गेम शुरू किया। मैंने उसको पूछा जाके भाई मैं आप ठीक दौड़ते हो, मुझे भी दौड़ना है। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि तू कर ही नहीं सकता है। तो वहीं से मेरा वो जुनून जगा अंदर और मैं बस वहीं से ठान लिया बस अब मुझे इसे करके दिखाना है, इसे आगे आके दिखाना है और इसी को रेस में एक दिन हराना है। तो सर वो बिल्कुल सर, फिर 6 महीने के अंदर ही सर एक बार हमारा कंपटीशन हो गया भाई के मामा का लड़का और मेरा, तो फिर मैं उससे आगे निकल गया। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं सर। अच्छा हमारे यहाँ जोधपुर में ट्रैक अच्छा है, सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ मैंने कोच ज्वाइन कर लिया, रजाक मोहम्मद है जो प्रैक्टिस करवाते इधर। तो वहाँ पे मैंने मन लगा के अच्छी प्रैक्टिस की, उस स्कूली में मैं स्टेट खेल के आया 1917 में, और बाकी फिर ओपन गेम्स खेलने लगा ये जो एसोसिएशन करवाती है, फिर स्टेट में मेडल आने लगे तो और जुनून जाग गया सर। वो एक ऐसा लगे ना मैं और भी आगे जा सकता हूँ, और भी आगे जा सकता हूँ, ऐसे कर करके मतलब बहुत ही मज़ा आता था सर प्रैक्टिस करने का ट्रैक पे, वो टाइम तोड़ने में। मेरा 5,000 और 10,000 मीटर इवेंट है सर। सर बिल्कुल प्रोफेशन बन गया मेरा, फिर ये ट्रैक के बिना सर एक दिन ग्राउंड नहीं जाते तो भी अजीब लगता है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है बस ट्रैक पे जाना है दौड़ना है। और नेशनल चैंपियन, नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ 2 बार और बाकी राजस्थान को 7 से 8 बार रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर।
6: बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं आप सुन चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन जुनून पर, और जुनून पर हम सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से 107.8 FM पे और हमारे ऐप रेडियो मधुबन पर भी। तो हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी देवाराम। देवाराम कहते हैं कि उनका शरीर जगड़ जाता है कि जब उनका ट्रैक से मिलन नहीं होता, और ट्रैक से उनकी दोस्ती या कहीं की यारी इतनी जोरदार हो गई है कि रोज सुबह उनको ट्रैक चाहिए। अपने प्यारे ट्रैक से जब तक उनका मिलन नहीं होता, उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती, और तमन्ना है देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की, मेडल पा जाने की। और मेडल पोडियम पे जब वो खड़े हों और देश का तिरंगा ऊपर जाए, ये उनकी भावना है। हम उनकी ऐसी भावना और उनकी ऐसी अपेक्षाओं और उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, और उनको आशा करते हैं कि वो जरूर ही अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाएंगे। तो देवाराम, देखिए ना, जब किसी इंसान को कुछ चैलेंज कर दिया जाता है तो वो जिंदगी को अपना जुनून बना लेता है, उस मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कुछ वैसा ही आपके साथ हुआ कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसा हमारे साथ में लाइफ में होता रहता है। तो क्या बात है, तुमने तो धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे अच्छा चैलेंज दिया और आज तुमने मेरा जीवन बदल दिया।
7: जी सर, रोज मिलता हूँ, अब तो मिलते हो, रोज धन्यवाद देता हूँ, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर आप नहीं मिलते भैया, आपको दौड़ते हुए नहीं देखता, और अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं नहीं दौड़ पाता आज।
6: क्या बात है, तो हमें ऐसे लोगों को जरूर जरूर धन्यवाद देना चाहिए जो हमें कोई चैलेंज दे जाए, जाने अनजाने में ही दे जाए, और हम उस चैलेंज को पूरा कर जाए तो उनका धन्यवाद बनता है। तो आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के इवेंट में आप दौड़ते हैं और अब कार्यरत हैं, आप उसमें लगे लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस इवेंट में क्या रेजिलियंस या क्या गुण होने चाहिए एक खिलाड़ी के पास, एक एथलीट के पास जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ वैसा ही है जैसे पान सिंह तोमर फिल्म के अंदर उस हीरो को कहा गया था कि तुम किसी रेस में तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे, है ना? तो तुम्हारा क्या अनुभव है इस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इवेंट की, क्या के लिए क्या होना चाहिए एथलीट के?
7: वो सर, हमारे ऐसे तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन गेम होते हैं, उसमें वो पहले एंट्री होती है डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे होते हैं हमारे टूर्नामेंट, फिर राज्य स्तर, फिर नेशनल लेवल होते हैं। तो जिला स्तर खेलने के लिए पहले एंट्री करानी पड़ती है और जीतने के लिए सब फिक्स करनी पड़ती है, एक साल अच्छे दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, साल डेढ़ साल बाद फिर धीरे धीरे आगे अपना तो समझ में आ जाता है।
6: नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो प्रयास कर रहे हो इस बात को लेकर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि हम क्या वो गुण होने चाहिए, शारीरिक क्षमताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक अलग इवेंट है, इसमें स्टैमिना चाहिए, तो वो स्टैमिना कहाँ से आता है?
7: सर, एथलेटिक्स में सबसे हार्ड गेम एथलेटिक्स है सर, रनिंग, तो इसमें स्टैमिना उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सारी एक्सरसाइज होती है और वर्कआउट होता है, जो वीकली शेड्यूल बना हुआ था वो वर्कआउट करना पड़ता है, वो वर्कआउट करके उसके लिए प्रिपेयर बनना होना पड़ता है पहले पूरा।
6: नहीं नहीं, आप तो लगातार आप तो प्रयास कर रहे हैं, आप में स्टैमिना भी आपका है, क्योंकि मैं लंबी दूरी की दौड़ के लिए आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए, और आपको अफ्रीकन खिलाड़ियों के साथ भिड़ना है, जब आपको इंटरनेशनल खेलों में जाना है तो आपका जो मुकाबला होगा वो अफ्रीकन खिलाड़ियों से होगा, जो कि हमसे ज्यादा स्टैमिना और हमसे ज्यादा उनकी ट्रेनिंग है। क्या खास बातें हैं जो अफ्रीकन खिलाड़ियों से हमारा मुकाबला नहीं हो पाता?
7: सर, एक तो मेन रहता है ट्रेनिंग और डाइट सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, और शूज कंफर्टेबल होने चाहिए अच्छे, जो सभी रनर यूज करते हुए वैसे में। मेन तो एथलीट में तो एथलीट तो डाइट की वजह से कभी कभी इंजरी खा जाता है, जैसे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो कहीं नी पेन, ये एंकल पेन, हैमस्ट्रिंग वगैरह ये इंजरी हो जाती है। तो उसमें सर मेन डाइट, शूज और ट्रेनिंग होता है सर, ये चीजें लेके चलेंगे तो फिर हम भी उनकी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। और एक जुनून होना चाहिए, जो हम गेम करते हैं उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
6: तो अभी तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम क्या करना बाकी है, कौन सा मुकाम तुम देखते हो अपने लिए?
7: सर एक बार इंडिया के लिए खेलना है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, कोई भी।
6: जी जी,
7: इंडिया की जर्सी।
6: हाँ श्रोताओं देखिए ना, इंडिया की जर्सी जो है, अपने वतन की जर्सी पहनना कितना कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे हमारे देवाराम जी के लिए, और मेरे तो हर खिलाड़ी का ये सपना होता है। तो श्रोताओं, इस सपने के लिए ही खिलाड़ी जीता है, और इस सपने के लिए ही वो सुबह जागता है, इस सपने के लिए ही अपना पसीना बहाता है। और हम बात कर रहे हैं देवाराम से, जो कि जोधपुर से आते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर से, और जैसे ही सूरज निकलता है ये भी अपने ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है देवाराम?
7: सर दिन की 4:30 बजे उठता हूँ सुबह सर, आधे घंटे में नाश्ता फ्रेश होके ग्राउंड के लिए 5:30 तक ग्राउंड पहुँच जाता हूँ सर। और फिर हमारा 8:30-9 बजे तक वर्कआउट सेशन रहता है पूरा सर सुबह का। और फिर वापस आके जो भी डाइट होती है हमारी, जूस वगैरह और प्रोटीन डाइट, चने हो गए, दूध देख के, फिर 2 घंटे रेस्ट करके, और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, और उसके बाद शाम को वापस सर 4:30-5 बजे के आसपास ग्राउंड जाते हैं। और शाम को हमारा मेन रहता है एक्सरसाइज सेशन रहता है, सुबह तो वर्कआउट हो जाता है मेन स्पीड वर्कआउट रनिंग, और शाम को जी सर साइंस सेंटर था, अब नहीं है सर, वो हट गया है, अभी जयपुर में है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पहले भी नहीं था, एथलेटिक्स का तो दूसरे गेमों का था सर, इसका नहीं था पहले भी।
6: जी,
7: नाम मात्र का है साइंस सेंटर सर, ऑफ है, बंद कर रखा है इन्होंने, पहले दूसरे गेमों की ट्रेनिंग होती थी तो वो भी बंद कर दी। तो
6: अच्छा,
7: हाँ सर
6: जी, तो क्या चैलेंजेस हैं आज के जमाने में एक एथलीट के सामने, एथलीट कैसे अपना कैसे अपने अपनी ट्रेनिंग को लेके मुकाबला कर रहा है, कैसे एक एथलीट आगे बढ़ता है, क्या चुनौतियाँ हैं एथलीट के सामने?
7: सर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, कभी इंजरी हो जाती है, फिर इनको वापस रिकवर होना पड़ता है, और उसके साथ पूरा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, मेन सर डाइट का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं, जो भी चाहे उस खाने में स्वाद है नहीं है, लेकिन जो हमारी बॉडी को लगे और अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके लिए अच्छी डाइट, और बाकी चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ट्रैक पे पहुंचना है टाइम पर, और अच्छे से ट्रेनिंग करनी, तो यही डिसिप्लिन सालों लगता है सर, एक एथलीट को बनने में 4-5 साल लगते हैं एक नेशनल लेवल प्लेयर बनने में। सर वो रूटीन रहता है सालों, सुबह शाम ग्राउंड एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, अगर सर हम मंडे को मिस कर देते तो पूरा वीक खराब हो जाता है, तो फिर वो पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है।
6: तुम कितने दिन से ट्रेनिंग, तुम कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो?
7: मेरे को सर 8 साल हो गए।
6: अच्छा,
7: हाँ सर,
6: बड़ी लंबी दूरी में मेहनत कर रहे हो, और जीवन में क्या सपना है अभी, क्या प्लान है इंडिया जर्सी के अलावा, और क्या सोचते हो क्योंकि इंडिया जर्सी मिलने के बाद क्या करोगे?
7: वही खेलता रहूंगा सर, जब तक शरीर साथ देगा मेरा तब तक तो दौड़ूंगा सर, और दौड़ते ही रहूंगा, जैसे तो कंपटीशन जब अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है मेरी तो मैं कंपटीशन खेलता रहूंगा सर। सर स्टार्टिंग में थोड़ा वो कोरोना हो गया था, वो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से 1.5 साल खराब हो गया था मेरा, उसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी उस टाइम कोरोना से पहले मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था सर 2018 में, बीच में 1.5 साल वो हो गया, फिर थोड़ा मैन क्या पापा किसान खेती करते हैं तो इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे खर्चा, तो सर मेरा वो ट्रेनिंग तो करता था लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं होता था, साइड में छोटी मोटी जॉब करके अपना जो भी गेम का खर्चा शूज वगैरह वो एडजस्ट करता था, और फिर 3 साल तो ऐसे ही निकल गए, उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी शुरू करी मेरे क्या, जिस स्कूल में पढ़ता था उन्होंने मुझे प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा बहुत स्पॉन्सर किया था, तो मैं साइड का काम छोड़ के प्रॉपर रेस्ट करके अच्छी ट्रेनिंग करता था, तो सर धीरे धीरे परफॉर्मेंस आती गई, ठीक है सर अच्छा फिट है। मेन सर आर्थिक तो वो दिक्कत आती है पैसे की, क्योंकि इसमें कॉस्टली आते सर, हमारे शूज 15,000 से नीचे कोई शूज ही नहीं है सर रनिंग के, और अलग अलग रखना पड़ता है, प्रैक्टिस शूज अलग, और इसमें कॉम्पिटिशन के शूज अलग होते हैं, फिर डाइट प्रोटीन हो गया, ये सर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फिर सर मैंने कहीं से बात करके थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप की वो जुगाड़ किया। उसके बाद फिर सर ये मैराथन खेलनी शुरू की मैंने, तो मैराथन की वजह से थोड़ा बहुत मेरा ये अच्छा होने लगा स्पोर्ट्स।
6: तो कितने कितने दिन चल जाते हैं एक एथलीट के अच्छे वाले जूते?
7: तो सर हमें हर डेढ़ दो महीने तक चलते हैं सर, वो प्रैक्टिस हुई तो डेढ़ महीना लास्ट है, क्योंकि हमारे लॉन्ग वालों को 5-10 किलोमीटर का वो वर्कआउट सेशन होता है सर। वीकली कम से कम 180 किलोमीटर कवर करना पड़ता है वर्कआउट में सारा डिस्टेंस
6: जी।
7: तो लास्ट अगर थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से चले या फिर ट्रैक भी सारा वर्कआउट रोड पे नहीं करे तो फिर सर 2 महीने लास्ट है शूज
6: जी।
7: और सर वो थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे कि खाने से सब कुछ नहीं मिलता, प्रोटीन लेना पड़ता है, जो प्रोटीन पाउडर डब्बा आता है वो अलग से रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर रिकवरी इस खाने में वो डाइजेस्ट फास्ट होना अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते, तो वो प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ता है सर
6: जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से?
7: सर गवर्नमेंट का तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला सर, अभी तक वो मेडल के पैसे आए थे एक दो बार, दो मेडल के आए, बाकी अभी कुछ के आने हैं सर।
6: नेशनल लेवल मेडल के पास?
7: हाँ नेशनल मेडल नहीं है सर मेरा, मैं नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट में मेडल मेरे नेशनल, मैं अभी बीच में अनफिट हो गया तो अभी वापस फिट हुआ, तो अभी नेशनल आने टाइम अप्रैल एंड में नेशनल गेम्स है सर, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मेडल के लिए
6: जी।
7: हाँ सर,
6: अभी आपका मुकाबला राजस्थान का मुकाबला कौन से स्टेट के खिलाड़ियों से ज़्यादा रहता है?
7: सर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हमारे इससे यहाँ से गुजरात हरियाणा पंजाब, ये सर उनके बीच बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है हमारा, इधर के अच्छे हो बहुत अच्छे प्लेयर है गुजरात हरियाणा ये पंजाब से, दिल्ली के भी अच्छे बहुत अच्छे एथलीट है।
6: नॉर्थ ईस्ट?
7: उधर सर स्प्रिंटर है ज़्यादा, लोग शॉर्ट डिस्टेंस जैसे 400, 200, 100 मीटर भी बोले सर, तो उनका इतना पता नहीं क्योंकि मैं लॉन्ग करता हूँ सर।
6: काफ़ी लड़के पश्चिमी राजस्थान में, अभी लड़कियाँ भी अब काफ़ी आगे आ रही हैं मुझे लगता है, तो
7: बिल्कुल सर।
6: अभी कैसा माहौल कैसा हो जाता है ट्रैक पे, शाम कैसी दिखती है ट्रैक पे?
7: सर ट्रैक पे सर सीधा जाते जन्नत दिखता हमें सर, देखते ही हो सुकून वही है सर हमारा, तो वो कर्म भूमि है जो हमारी ट्रैक, वहाँ पे ट्रैक के अंदर घुसते ही बाहर की सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बस वो ट्रैक ही दिखता है सर, प्रैक्टिस
6: बहुत सारे
7: लोग कहीं जाते हैं गार्डन घूमने, हम अगर कहीं मन शांत नहीं है ट्रैक पे चले जाते हैं
6: जी। नहीं खिलाड़ी काफी सारे आते हैं?
7: हाँ सर बहुत आते हैं शाम के टाइम, बॉयज गर्ल्स सारे प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियाँ भी करती है लड़के भी करते हैं, दोनों टाइम वर्कआउट सेशन रहता है सर सभी का।
6: तुम सरकारी सेवाओं के लिए भी ट्राई कर रहे हो क्या?
7: जी सर मैं कर रहा हूँ अभी, वो स्कूल में पीटीआई हो गए कोच के लिए, अभी मेरी वो फाइनल ईयर है बीपीएड चल रही है, तो सर उसके बाद एग्जाम दूंगा सर।
6: बहुत बढ़िया
7: जी सर।
6: तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं एक युवा आवाज़, युवा जुनूनी, और वो आवाज़ जो ट्रैक पे निकालते हैं अपना पसीना और जिनके पैरों में होते हैं जूते और फिर सामने होता है लक्ष्य किलोमीटर का। तो हम ऐसे जुनूनी के साथ हैं जो लंबी दूरी के धावक हैं, और बस कुछ श्रोताओं आपको पता है कि जिंदगी भी एक दौड़ है, लेकिन जिंदगी की एक दौड़ में कुछ छोटी छोटी दौड़ है जो देश के लिए मेडल लाती है और परिवार गांव और स्टेट के लिए एक सम्मान का विषय बन जाती है, कुछ वैसी ही दौड़ को करते हैं हमारे आज के गेस्ट देवाराम और आज के जुनूनी देवाराम। देवाराम और क्या जिंदगी में क्या मसला है, क्या सोचते हो तुम खिलाड़ियों के जीवन को लेकर, क्या सोचते हो अपने आसपास के समाज और अपने अंदर क्या अंतर देखो?
7: सर ये चीज इसमें तो बहुत डिफरेंट है सर, एक खिलाड़ी सर इतना निखरा हुआ होता है कि हर चीज़ वो उसने स्ट्रगल किया है

0: हर रोज कोई ना कोई गेम खेलता है, लेकिन क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और खतरों के खिलाड़ी हैं तो हम हर गेम से पार पा जाते हैं। और वैसे भी हमारा नाम है देवाराम है, हम तो देवों के राम है। तो देवाराम ये बताओ ना, जोधपुर का जीवन कैसा है, जोधपुर कैसा शहर है, कैसा लगता है?
1: सर जोधपुर बहुत अच्छा है। मेरे गेम के टूर ऑल इंडिया हो रखे, हर स्टेट में घुमा हूँ, लेकिन जो जोधपुर में सुकून मिलता है ना सर रहने का, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लोगों का जो एक आवादर है सर, हमारी मेहमान नवाजी है बहुत अच्छी है। जोधपुर का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ
0: जी,
1: कहीं पे भी रहने का मन नहीं करता जोधपुर की सेवा सर।
0: आप जिस स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं अमृत लाल गहलोत, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में?
1: सर हाँ सर बताएंगे सर। वो यहाँ पे जो आसपास है सारे माली समाज रहते हैं सर, माली समाज के एक बुजुर्ग थे जो मतलब उनकी जमीन थी ये, और वो अपने टाइम में वो दान करते थे, जैसे मतलब किसी की हेल्प कर दी, कोई गरीब है तो उसकी हेल्प कर दी, तो लास्ट में उन्होंने जाने से पहले ये जमीन दान कर दी कि ये एक स्टेडियम बना दें। पहले यहाँ पे स्टेडियम था ना सर, वहाँ पे एक नाटी थी जो हमारे मारवाड़ में बोलते हैं ना, जो नाटी होती है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वैसे थी। तो उन्होंने मतलब बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड, जो इसमें बहुत सारे बच्चे आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए वो ये सार्वजनिक करती सर सभी के लिए, तो फिर उनका नाम दे दिया अमृत लाल गहलोत स्टेडियम से।
0: बहुत बढ़िया, तो एक बहुत भामाशाह थे मतलब।
1: बहुत बड़े भामाशाह थे सर, आज हजारों बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके सर, कोई आर्मी में, कोई दिल्ली पुलिस में, किसी में है।
0: सबसे अच्छा मोमेंट तुम्हारे जीवन का क्या अभी तक रहा?
1: सबसे अच्छा मोमेंट सर
0: वो याद है
1: मेडल का है सर, मेडल आता है तो वो पोडियम पे खड़े होते तो वही सबसे अच्छा मोमेंट होता है सर।
0: बिल्कुल, इस पूरे माहौल में तुमने कौन कौन सी मैराथन में भाग लिया अब तक?
1: सर मैंने मैराथन बहुत सारी खेली सर, ऐसे प्रॉपर याद तो नहीं है, लेकिन जो माउंट आबू में मैराथन हुई ना उसको वो सर सबसे अच्छी मैराथन थी, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। और जो रिप्लेसमेंट या वो होते ना सर, सब कुछ बहुत अच्छा था माउंट आबू मैराथन में। ऐसी मैराथन मैंने पार्टिसिपेट पहली बार किया है, बाकी दूसरी जगह मैराथन होती है उसमें प्लेयर्स को जो फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, सभी को इतना सम्मान नहीं मिलता, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में टाइम गुजार देते हैं, खिलाड़ी को लास्ट में प्राइज मिल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ खिलाड़ी के लिए, सबको मोटिवेशन देने के लिए सब कुछ किया तो बहुत अच्छा लगा सर माउंट आबू वाली मैराथन।
0: इसमें कोई प्रचार नहीं था। तो, बिल्कुल, तो जिंदगी का मकसद जब सिर्फ प्रचार रह जाए तो फिर विचार खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा ही विचार आपका है। तो श्रोताओं आपने सुना देवाराम को, और देवाराम ने अपने जीवन की सारी बातें बता रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, और मैं हूं आपका होस्ट शरद, और प्रोग्राम है जुनून, और जुनून में हमारे साथ जुनूनी है जोधपुर से देवाराम, और देवाराम से हम बात कर रहे हैं कि देवाराम की जो जिंदगी है ट्रैक पे है कि नहीं और ये ट्रैक कितना लंबा जाएगा, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। और देवाराम ने बताया है कि वो फिजिकल एजुकेशन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक लंबी दूरी के धावक हैं। तो देवाराम आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं?
1: सर फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद फराज है सर।
0: कौन से देश से खेलते हैं?
1: ये USA की तरफ से खेलते हैं लेकिन केन्या के है सर।
0: जी जी जी, और ये ओलंपिक चैंपियन भी
1: भारतीय फेवरेट खिलाड़ी अविनाश आपले सर मेरे।
0: जी जी, और ये दोनों ही 5000 meters खेलते हैं राइट?
1: हाँ सर, लंबी दूरी के एक ये हमारे भारतीय अविनाश आपले ये स्टीपल चेस करते हैं सर 3 किलोमीटर, और रिकॉर्ड भी अभी पहले इनके ही थे इंडिया रिकॉर्ड ये 5 किलोमीटर का अविनाश आपले, अभी सर गुलवीर सिंह है।
0: लेकिन तुम स्टीपल चेस के खिलाड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे फेवरेट अविनाश सांपले क्यों?
1: वो सर उनका वो मोटिवेशन, उनका जो स्ट्रगल, कंटिन्यू प्रैक्टिस, सब कुछ वो देख के सर फैन हो चुका हूँ।
0: और मोहम्मद फराज क्या खेलते हैं?
1: मोहम्मद फराज 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो मैराथन भी खेलते हैं सर,
0: और वो ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं।
1: हाँ वो ओलंपिक मेडलिस्ट है सर।
0: बहुत बढ़िया, तो जो हमारे श्रोता स्टीपल चेस के बारे में नहीं जानते इस दौड़ के बारे में बताइए हमें।
1: हाँ सर बताइए, स्टीपल चेस 3 किलोमीटर में ये होता है सर 5 हेडल होते हैं, तो हम जो इसको बाधा दौड़ भी बोलते

0: हिंदी में, जैसे इसमें पांच हेडल होते हैं, तो उनको उनके ऊपर से कूद के जाना पड़ता है। पांच में से एक होता है सर वाटर जंप, जिसमें हेडल तो है ही सर, और उसके नीचे पानी गड्ढा कर रखा है पूरा, उसमें पानी भर रखा है, उस पानी के अंदर से कूद के जाना होता है। ऐसे 7.5 लैप होते हैं ग्राउंड के, तो फिर 3 किलोमीटर की उसको बाधा दौड़ कहते सर।
1: जी, तो एक में पानी होता है और हडल क्या क्या हडल होते हैं?
0: एक पानी का होता है, बाकी नॉर्मल हडल होते हैं रखते हुए, उनके ऊपर से कूदना होता
1: जी, मैक्सिमम कितना ऊंचा हडल होता है?
0: है सर। मैक्सिमम होता है सर 2.5 फुट प्लस, मतलब हाँ 2.5 फुट
1: ढाई
0: सर।
1: ढाई फुट
0: हाँ सर, मेरी देखो सर 2.5 फुट होता है सर, और गर्ल्स का थोड़ा कम होता है, बॉयज का ज्यादा होता है।
1: जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे श्रोताओं ने जान लिया कि स्टीपल चेज क्या होता है, बाधा दौड़ होती है, और बाधाओं से पार पा जाना ही तो वाला ही तो इंसान कहलाता है। और कुछ वैसी ही बाधाएं
0: बिल्कुल
1: ट्रैक और वैसी ही कुछ बाधाएं ट्रैक पे होती हैं, और हमारे देवाराम भी ट्रैक पर उन बाधाओं से पार पाते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, माउंट आबू की वादियों से, और उन्हीं माउंट आबू की वादियों में से जहां पर हम हर साल करते हैं मैराथन। और मैराथन होता है एक मनुष्य की ताकत को आजमाने का मौका, एक ऐसा मौका जब अपनी क्षमताओं से बाहर निकल जाना होता है, और उन क्षमताओं को जांचने का अवसर मिलता है एक इंसान को मैराथन। एक लंबी ट्रेनिंग के बाद अपने हुनर और अपनी ताकत को दिखाना, अपनी जंगाओं को ताल देने का मौका कि आ जाओ देखते हैं किसमें है कितना दम। तो कुछ वैसी मैराथन, और हमारी बातचीत में हम उन मैराथन के बारे में भी बात करेंगे जिसमें लग जाता है पूरा दम। तो देवराम हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं दम और खम की और दौड़ की, इसमें मैराथन जिसमें स्टेमिना की भी बात है जो हम पहले कर रहे थे। तो कुछ वैसा ही होता है हमारी मैराथन माउंट आबू में जो हम ब्रह्मा कुमारी करवाते हैं। तो उसी मैराथन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, 21 किलोमीटर का एक लंबी पहाड़ी, ऊंची माउंट की पहाड़ी, वो पहाड़ी जिस पर जिसको जीतने के लिए जिस पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया, और आजादी के बाद अब राज है देवाराम जैसे एथलीट्स का उस पहाड़ी पर, और बता
0: जी
1: देगा कि ये हमने इसको जीता है और हमने इसको पूरा किया है अपनी ताकत और अपने स्टेमिना के तहत। तो देवराम जी, आप थोड़ा बताइए ना, क्या याद है उस मैराथन?
0: सर, वो मोमेंट उस टाइम जो अगस्त का महीना था सर, 17 अगस्त को हुई थी, उसमें सर वो नीचे आबू रोड से माउंट आबू तक पूरी चढ़ाई थी 21 किलोमीटर,
1: जी
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे आगे, क्योंकि पहले मैं इतनी लंबी चढ़ाई कभी नहीं चढ़ा सर, फ्लैट ही दौड़ा हूँ मैराथन, और पहली बार वो चढ़ाई चढ़नी थी सर माउंट आबू वाले। पहले मैं बस गाड़ी से ही गया था और दौड़ के पहली बार गया था अगस्त 2025 में सर, तो
1: जी
0: उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीच में। एक सर हमारे जो मैराथन दौड़ते हैं या फिर कोई भी इवेंट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते हैं, तो एक सेकेंड विंड आती है, जो एक उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे रेस आती कंप्लीट होती है सर, उस टाइम लगता है कि अब छोड़ देते, बॉडी में बहुत पेन होता है, पांव थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, तो वो सेकेंड विंड में अगर खिलाड़ी वहाँ टिका रहता है तो वो पूरी पार कर लेता है अच्छे से, लेकिन उसमें वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है खिलाड़ी को, तो सेकेंड विंड में तो
1: जी
0: वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहता है, दिमाग से चलता है। एक सेकेंड विंड सिर्फ सर 2 या 2.5 मिनट का होता है वो टाइम, वो 2 2.5 मिनट हमने सहन कर लिया ना सर, फिर आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा, आती रेस पूरी तगड़ी हो जाएगी सर। तो उसी हिसाब से मैं माउंट आबू में यहाँ से आबू रोड से वहाँ ऊपर माउंट आबू तक चढ़ा, तो उस चढ़ाई में सर ये चीजें मेरे साथ कुछ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए सर, ठंडी हवा आ रही थी ऊपर से, जैसे वो ठंडा मौसम रहता है सर ऊपर माउंट आबू में, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, आगे बाइक वगैरह सब चल रहे थे, वो होटिंग भी कर रहे थे हमारी, तो मैंने हंसते हंसते वो रनिंग पूरी कंप्लीट की सर। स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर तक तो सारे कुछ एथलीट थे हमारे, मेरे साथ ही भाई जो कोई एक दो साथ में भी ट्रेनिंग करते थे, एक भाई जो सेकंड आया वो गुजरात का था, तो वो मेरे साथ चले 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक, फिर 8 किलोमीटर हमारी कंप्लीट हुई तो धीरे धीरे सब टूटने लगे, हम 4 एथलीट जो कंटिन्यू साथ में चल रहे थे 14 किलोमीटर तक सर।
1: जी
0: फिर उस टाइम मैं उनके साथ ही चल रहा था सर, मैंने सोचा कुछ थोड़ा अलग करते हैं, तो मैंने अपनी सर रफ्तार बढ़ाई, रफ्तार बढ़ाई तो वो साथी खिलाड़ी सारे छूट गए और मैं हो गया अकेला। फिर आगे बाइक चल रही थी, पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी, तो वहाँ का जो बीच का सफर था ना सर, बहुत सुहाना। ऐसे पूरी हरियाली, ऊपर चढ़ते जा रहे, ठंडी हवा आती जा रही, रिकवरी होती जा रही बॉडी की, बिल्कुल पसीना नहीं हो रहा। पानी का जो रिप्लेसमेंट बीच में व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, हर 2-2.5 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था थी। तो सर मैं ऐसे ऐसे करते करते मतलब पूरी रनिंग आराम से 1 घंटा 19 मिनट में कंप्लीट कर ली। और बहुत ऐसे जैसे मैंने मैराथन फिनिश की थी तो उस टाइम हाथों हाथ आगे मेडिकल सुविधा थी, सब कुछ बहुत अच्छे से था, लेकिन मुझे उन सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि थकान हुई नहीं थी सर माउंट आबू रनिंग में, मैराथन में। बाकी मैराथन में बहुत जोर आता है, हालत खराब हो जाती लास्ट तक, लेकिन वो पता नहीं क्या उन पहाड़ियों में था तो अच्छा भी लगा। एक फर्स्ट आने का वो जुनून था सर, जो दर्द भी भूल गया सारा, जो काम बॉडी पेन हो रही है, कितनी थकान है, वो सारी गायब हो गई।
1: वो ब्रह्मा कुमारी की फिजिकिटी की ताकत थी,
0: चमत्कारी है सर बहुत वहां पे तो पास कर गया है।
1: वो ताकत थी फिजिकिटी की, वो ताकत थी एक अंतर्मन की जो शायद तुमको ट्रांसफर की, ऊपर वाली शक्ति तुमको ट्रांसफर की। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक बहुत बड़ी रिस्क ली, तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते तो, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते तो
0: वो नहीं सर, वो इतना भरोसा थोड़ा खुद पे था सर, मैं बस खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी था, कि इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी हालत खराब हो जाए, खिलाड़ी मेरे पीछे दौड़े, वो भी अच्छे प्लेयर थे, 7 ओवर थे वो भी अच्छे थे, मेरे काफी रेसों में हम बराबर के खिलाड़ी है, एक गुजरात का था वो बहुत अच्छा था, एक टाइम मेरे से भी अच्छा था प्लेयर, तो उस टाइम मुझे वो भांप लेते सर पीछे से, जो साथ में चल रहे हैं ना, कि इसमें कितना जोर बच्चा है, इसमें कितना बच्चा है, मेरे में कितना, मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। जब हमें लगता है सर कि हाँ फास्ट करेंगे और नहीं छूटेंगे, हम पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो उस टाइम ही फास्ट करते, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
1: और तुम लोग अच्छा एक दूसरे को भी देख जज करते रहते हो कि सामने वाले में कितना दम बचा है।
0: हाँ वो जज तो सर वो देख के नहीं करते, देखना तो कहाँ सर, आगे वो सीधी रोड दिखती है, बस भागना भागना, स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, वो उसकी सांस से जज करते हैं, उसकी सांस से, उसके पांव की आवाज से, वो ऐसे ऑटोमेटिक गेम करते हैं सर, वो पता चल जाता है उसमें कितना दम बचा पीछे में। जो सांस चलती है ना उसके हिसाब से पता चल जाता है हमें सर, अगर ज्यादा तेज सांस चल रही है
1: जी। लेकिन हमारे श्रोता जो नहीं जानते हैं वो तो ये उनको उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मैराथन सामने वाले से ज्यादा खुद से लड़ाई है।
0: हाँ सर वो मैराथन में खुद से लड़ाई होती है, क्योंकि 21 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है, और लगातार ऐसा नहीं खाली दौड़ना, स्पीड मेंटेन करके दौड़ना होता है सर, किलोमीटर पेस होता है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 3 का पेस पर किलोमीटर 3 मिनट, तो मेंटेन करना पड़ता है, लास्ट में उससे भी फास्ट करनी पड़ती है। मुझे कवर करेगा, और फिर मैं अपने रिदम में चलता रहा, उसी स्पीड को मेंटेन करते हैं। बाकी दूसरी रेसम होता है सर कि सारे प्लेयर, जैसे एक झुंड होता है सर हमारा 10 खिलाड़ी को, वो लास्ट 19-20 किलोमीटर तक सभी साथ में चलते हैं, फिर क्या होता है वहां पे होता है बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि पूरी उठा के चलो, या तो मैं पीछे रहूंगा या फिर ये सारे पीछे रह जाएंगे, उसमें सर 1 किलोमीटर लास्ट वाला इतना फास्ट करना पड़ता है कि वहां गिरना पड़ता फिनिश करते ही, या तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता फर्स्ट कौन आया, मैं आया कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, 10 मिनट बाद पता चलता है।
1: फिर तो वो रिबन टूटता है और हम उस पार होते हैं। तो ये तो है, लेकिन एक बात है कि तुम 5000 मीटर के खिलाड़ी हो और तुमने ये तुम्हारे को लगभग 2100 मीटर की तुम्हारी दौड़ थी, तुमको 4 गुना तुमको डिस्टेंस दे दिया गया और जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो ये स्टैमिना कहाँ से आता है, मतलब इतना स्टैमिना कहाँ से आता है?
0: स्टेमिना सर ट्रेनिंग में होता है हमारा, जैसे कि मैं 5 और 10 किलोमीटर इवेंट है मेरा, तो सर 10 दोनों करता हूँ 5 और 10 किलोमीटर, तो मेन मेरा 10 है, बाकी 5 पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन मेरे 5 में मेडल कम आते हैं, 10 में ज्यादा आते हैं। तो हमारे क्या ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे 10 किलोमीटर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 गुना वर्कआउट ज्यादा होता है, जैसे कि लगभग हमारा वीक में 2 दिन तो 20 किलोमीटर ऐसे ही हो जाता है करना पड़ता है रनिंग।
1: तुमने तुम्हारा तुम्हारा 180 किलोमीटर का लक्ष्य है जो तुमने बताया अभी।
0: हाँ, वीकली 180 किलोमीटर है सर, 180। वो पूरा वर्कआउट सेशन में रहता है, फास्ट स्लो जैसे होता है वो सब। तो मैराथन मैंने पहली बार भागी थी तो सर 10-12 किलोमीटर तक सही चल पाया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिसने मेरे हाथों पाओं ने, मेरी सांस ने, फेफड़ों ने, सब ने जवाब दे दिया कि हम बाहर आ रहे हैं, तू नहीं रुका तो बाहर आ जाएंगे। तो सर
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, श्रोताओं मजा आ रहा है ना बातचीत में जी।
0: तो सर उसके बाद मैंने वो लास्ट तक वो वर्कआउट में भी अपना डिस्टेंस बढ़ाया था फिर। और मैं सर मैं सच बताऊं सर, मैंने मैराथन सिर्फ पैसे के लिए भागी, पहली बार भागना शुरू हुआ सर, क्योंकि मेरा वो साइड इनकम था नहीं और स्पोर्ट्स के शूज ये डाइट वगैरह बहुत महंगी आती थी। तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैराथन भगू, जिससे मेरा वर्कआउट भी हो जाए और पैसे भी आ जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक मैराथन का भी जुनून होता सर, पोडियम पे जा खड़े होते हैं, सब प्राइज मनी भी मिलता है, एक इज्जत मिलती है, वहाँ का अच्छा लगता है सर वो खेल के। तो एक जुनून भी है मैराथन खेलने का और हमारे वो डाइट भी चल जाती है। लेकिन सर जो उन माउंट आबू वाले मैराथन में मिला, जो मतलब वहाँ से आगे और ज्यादा स्ट्रगल करने का मन किया सर, मतलब बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब हमारा आवाजर हुआ प्लेयर्स का, जाते ही मेडल पहनाना, रिप्लेसमेंट, जाते ही वो कोल्ड एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब अवेलेबल था, नाश्ता जो खिलाड़ी को चाहिए वो चीज़ें सारी अवेलेबल थी। तो उसमें सर मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं प्राइज के लिए दौड़ा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो चाहिए ही नहीं था प्राइज, लेकिन वो फर्स्ट आया, वो सम्मान मिला ना मुझे, वो ही बहुत था मेरे लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा था। माउंट आबू मैराथन वो एकमात्र ऐसी मैराथन है जिसमें मैं सारी चीज़ों को छोड़ के मतलब एक इंजॉयमेंट, वहाँ का जो नेचर में वो मोमेंट, वहाँ का वेदर था ना, वेदर भी अच्छा था और लोगों का वो सर बात करने का तरीका, सारे वहाँ के वो थे ना सर, कौन लोग थे उसके मतलब जहाँ जो भी लोग थे, हमारा मेडल पहनाया, स्वागत किया, वो उनके सर बहुत अच्छा था, बात करने का तरीका, एक रेस्पेक्टेड तरीके से बात की थी उनसे, वो अच्छा लगा सर।
1: खिलाड़ी को देखिए सम्मान ही चाहिए होता है, खिलाड़ी और तो कुछ खिलाड़ी और तो कुछ मांगता नहीं है, और खिलाड़ी सम्मान के लिए खेलता है, मेडल के लिए खेलता है। लेकिन एक बात है कि तुमने तुम बता रहे हो कि ये सेकंड विंड उस दिन नहीं आई, तो सेकंड विंड नहीं आई ये साइंटिफिकली तुम्हें मानने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा?
0: वो सर मैं भी नहीं समझ पाया, फिर ऊपर आया जीता, सभी ने बोला ये ब्रह्मा कुमारी, ये इसकी मतलब माउंट आबू की वादियों की कृपा, ये चमत्कार है। मैंने कहा हो सकता, मैंने तो मान लिया है सर, क्योंकि मैं अपने तरीके से सोचूं तो सर सेकेंड विंड नहीं आने का कारण तो ये था कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्पीड थी ना खिलाड़ियों की, सारों की स्पीड स्लो थी क्योंकि चढ़ाई थी सर, ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते, वो रिदम सेट करके चलना पड़ता एक ही स्पीड में। तो मैं स्टार्टिंग वाले 4-5 किलोमीटर उनके साथ चलता रहा, मैंने उन सबको पहचाना कि ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे से अच्छा फिट है या फिर मेरे से आगे लेके चलेगा। तो फिर मैं उनमें से ढूंढ रहा था वो बंदा जो कोई आगे लेके चले, जो सबको पीछे छोड़ के मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूं, लेकिन ऐसा बंदा कोई आया ही नहीं। तो 6-7 बंदे हम 6 किलोमीटर तक साथ चले तो उसमें धीरे धीरे एक एक छूटने लग गया। तो फिर वहां से एक कॉन्फिडेंस आ गया सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे कि बस आज मैं कर सकता हूँ।
1: हाँ, जी।
0: तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे छूटते गए, हम 4 जने लास्ट में बचे थे, 4-7 चल रहे थे सर। तो जिस स्पीड से वो चल रहे थे वो स्पीड मेरे लिए इजी था, एकदम इजी लग रहा था, सांस बिल्कुल भी नहीं फूल रही थी, रिकवरी फुल थी, पसीना भी कम ही आ रहा था और बाकी पानी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, 14 किलोमीटर के बाद ही पड़ी थी हमें पानी की जरूरत। फिर देखा मैंने थोड़ा बस वो रिस्क तो लिया सर, क्योंकि वहां पे मैंने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई, जैसे मैंने झटका दिया रेस में सब छूट गए सर, छूटे। तो मैंने तो अभी अपने पास 14 किलोमीटर हुई है तो 7 किलोमीटर और पड़ी है, तो उसमें सर धीरे धीरे गैप बढ़ाते और बढ़ाते गैप। तो मेरे सेकंड वाला मेरे से 1 किलोमीटर पीछे था सर
1: जी।
0: हाँ, मैं 1 किलोमीटर सबसे आगे था, वो सेकंड बंदा 1 किलोमीटर मतलब 3 मिनट बाद आया मेरे से, और थर्ड वाला तो और भी पीछे था।
1: बहुत बढ़िया।
0: वो उसमें सेकेंड विंड का थकान हुई नहीं सर, थकान जो सेकेंड विंड यही होती है सर, पांव दर्द करने लग जाते हैं, सांस फूल जाती है, उस टाइम ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं, यही छोड़ देते हैं। फिर वो चीज़ उस टाइम कुछ नहीं महसूस हुआ ऐसा कुछ भी, और वो क्यों नहीं हुआ मुझे भी समझ नहीं आया आज तक।
1: मोहम्मद फराद की क्या खास बात है जो आपको आपको उनसे सीखने को मिली?
0: उनकी सर वो कोई रेस छोड़ते नहीं बीच में, और उनका स्ट्रगल मैन ट्रेनिंग सेशन रहता ना बहुत मेहनत से करते हैं सब कुछ, डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है।
1: जी
0: एक बार उनकी रेस थी एक सर 10,000 मीटर, उसमें स्टार्टिंग में क्या किसी खिलाड़ी ने पीछे पांव अटक गया था, तो उसकी वजह से वो गिर गए थे नीचे। नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने वापस हार नहीं मानी, वापस उठ गए और लास्ट में फिनिश फर्स्ट किया था, फर्स्ट हो गए थे वो, गोल्ड था उनका। नीचे गिरने के बाद भी वापस उठकर उन सबको पीछे रखा था, तो वो हार नहीं मानते कभी सर।
1: एथलेटिक्स में खास तौर पे 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में या स्प्रिंट में क्या आपको लगता है एशियन खिलाड़ी मेडल्स ले सकते हैं, अफ्रीकन खिलाड़ियों को हरा सकते हैं? आप ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं?
0: ना सर, हमारे इंडिया में ही है सर इस बार, तो हम ये गुलवीर सिंह है सर, आर्मी से बिलोंग कर रहे, आर्मी में है सर।
1: हाँ,
0: और इन्होंने इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया अभी 27:14 का है सर,
1: 5,000 10 किलोमीटर
0: का, 27:14 सर
1: जी।
0: तो ये बहुत अच्छे फिट है, और ये जाती है सर 27-28 मिनट की रेस जाती है ओलंपिक गेम्स में भी।
1: तो अभी तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक पार्टिसिपेट किया
0: है, कर रहे हैं सर। उनको सर अभी बहुत सपोर्ट है, जैसे कि ये गुलवीर सिंह हो गए, अविनाश साबले, उनको आर्मी सपोर्ट करती है, हमारी भारत सरकार करती है, जो भी है बहुत सपोर्ट, ट्रेनिंग इनको बाहर ट्रेनिंग कराया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। तो आराम से इस बार हमारे इंडिया का गोल्ड आ सकता है इसमें 10,000 मीटर में ओलंपिक में।
1: श्रोताओं जो बाहर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार, युवा एवं खेल मंत्रालय कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का अवसर देता है, और इसके साथ साथ एक अच्छा मानदेय भी उनको मासिक रूप से मिलता है, और फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं कि पूरा सपोर्ट, चाहे कितना भी पैसा लग जाए वो भारत सरकार उनकी ट्रेनिंग में कमी नहीं छोड़ती है। तो इसे कहते हैं टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो उसके बारे में गुलवीर टीवी के बारे में बता रहे हैं हमारे देवराम जी। देवराम जी, मैंने सही बताया देवराम जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बताया सर आपने।
1: जी जी, इसके अलावा और कौन सी मैराथन है जिसमें आपने भाग लिया है, और आपके कोई क्या अनुभव रहे हैं देश विदेश कहीं पर, और अनुभव क्या रहे हैं?
0: सर ऐसे तो मैंने बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मैराथन भागी है, अलवर में होती है, दिल्ली में होती है, लखनऊ गया था मैं, ऐसे मैंने सर काउंट तो नहीं की, याद नहीं है कन्फर्म तो, लेकिन 25-30 मैराथन मैंने खेली है सर, उसमें मैं कम से कम सर 16-17 मैराथन मैंने विन किए।
1: जी जी
0: हाँ सर,
1: बहुत बढ़िया। एक खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे प्रयास करता है, और क्या
0: लेकिन खिलाड़ी जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेलता है ना, रियल सपोर्ट तो उस टाइम चाहिए था सर, वो स्ट्रगल कर रहा होता उस टाइम उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, और बाकी जो स्ट्रगल कर लिया मेडल आ गया जो अचीवमेंट करने के बाद उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उस टाइम सच में जरूरत नहीं होती उस खिलाड़ी को जरूरत, जैसे कि ये फाइट कर रहा है नेशनल स्टेट के बीच में खिलाड़ी। और
1: जी मुख्य बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमको खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की जरूरत है, और उस समय पे उनके लिए एक बैकअप प्लान बनाना,
0: नेशनल मेडल के लिए।
1: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है,
0: और बाकी जो गवर्नमेंट करती होगी पता नहीं सर, मुझे तो कभी सपोर्ट मिला नहीं सर, हमारे ये टीडीए का पैसा मिलता तो आने जाने हम खेलने जाते हैं ना सर, यहाँ से स्टेट नेशनल जो टीडीए वो कुछ मिलता है, वो उसके कोरोना से पहले तो बैंक डायरी की फोटोकॉपी ली जाती थी लेकिन पैसे कभी नहीं आए, और अब तो वो भी नहीं लेते, ये बीच में पता नहीं कौन खाते हैं, सोशल वाले खा जाते हैं पैसे, कौन करते हैं पता ही नहीं चलता सर, आज तक 1 रुपया नहीं आया, बोलते हैं कि आपके आएगा टीडीए लेकिन कभी नहीं आए सर। मेरे 8 साल के गेम के करियर में आज तक गवर्नमेंट ने आने जाने का खर्चा तक नहीं दिया 1 रुपया भी। तो ऐसे न्यूज में पेपरों में कितने सर गवर्नमेंट हेल्प करती है खिलाड़ी को या कुछ नहीं करती सर, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला आज तक, किसी भी खिलाड़ी मेरे साथी को भी नहीं मिला सर।
1: ये बात सही है कि सरकार में कई बार चीजें समन्वय और उसके बिना अटक जाती हैं और कैसे ही
0: हाँ। खिलाड़ी तक जो सरकार की स्कीम निकलती है जैसे कि वो टीडीओटी मिलता है वो खिलाड़ी तक पहुंचता ही नहीं।
1: लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा दुनिया की और कौन कौन से मैराथन ग्राउंड, पुणे का क्या अनुभव है? पुणे का भी काफी बड़ा मैराथन होता है मैंने सुना, उसमें कई सेलिब्रिटीज भी आते हैं दौड़ने।
0: हाँ सर, ये ब्रांड एम्बेसडर वही होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। अभी मैं यहाँ गुजरात गया था सर, गांधीनगर, वहाँ आए थे सुनील शेट्टी आए थे, उन्होंने रेस स्टार्ट किया था हमें। और उससे पहले मैं अहमदाबाद यहाँ अलवर गया था, अलवर टाइगर मैराथन थी, उसमें सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे रेस को। और बाकी ये बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कोई नेता यही आते हैं।
1: निश्चित रूप से काफी सारी चीजें हैं जो आपने
0: कश्मीर गया था, कश्मीर मैराथन में गया था भी
1: जी,
0: 2-3 महीने पहले
1: जी।
0: वहाँ तो सर ठंड बहुत थी, माइनस में था पारा, तो वहाँ कुछ चोट ही नहीं हुआ सर, वो जो सोच के गए वो रेस लगी नहीं थी
1: क्योंकि
0: इतने ऊपर मैंने कभी ना तो ट्रेनिंग की है और जाने का एक्सपीरियंस भी पहला ही था सर, पहली बार ही गया था। बाकी सर हर स्टेट में मैराथन होती है, मैंने खेली भी है सर सब जगह।
1: सबसे हाई कैश प्राइस वाली मैराथन कौन सी है?
0: हाई कैश प्राइस वाली सर लखनऊ में थी, ऐसे अलग अलग रहता है सर। ये अभी जो कश्मीर गया था ना उसमें सबसे हाई प्राइस था सर, 25 लाख था फर्स्ट प्राइस
1: जी।
0: कश्मीर में हुई थी वो इंटरनेशनल मैराथन थी, तो बाहर के प्लेयर नहीं जीता था फर्स्ट, वो केनिया का था सर
1: जी,
0: और अपने इंडिया का सेकेंड हो गया।
1: अच्छा बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनुभव तुम्हारा और एक विस्तार से तुमने अपने मैराथन के बारे में बताया है। और हम तो यही जानना चाह रहे थे कि आपका क्या नया अनुभव रहा मैराथन के साथ में। लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैराथन तो आप दौड़ ही रहे हैं लेकिन अपनी चैंपियनशिप भी नहीं छोड़िएगा, उसकी तरफ भी अपना ट्रेनिंग बनाए रखिएगा।
0: हमारे गेम पे ध्यान, मैराथन तो जब हमारा ऑफ सीजन होता है ना सर, जब कोई कॉम्पिटिशन नजदीक नहीं होते तो मैराथन खेलते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं खेलते
1: जी। तो देवराम चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से कुछ साझा करना चाहें तो हमें बताइए, जो मैं आपसे पूछना भूली लेकिन आप कहना चाहेंगे।
0: एक मैं अपना मेरा टर्निंग पॉइंट बता सकता हूँ मेरी लाइफ का, वहाँ से वापस एक पूरी कहानी है सर, बता सकता हूँ अभी?
1: हाँ हाँ
0: सर, 2020 में कोरोना आया था, पहले मुझे स्टार्टिंग में, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करता था, 2 साल पहले शुरू करते, 18 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी स्पोर्ट में होकर। उसके बाद 2020 में मुझे कोविड हो गया था सर, तो फर्स्ट बार वो बुखार आया और हफ्ते भर में ठीक हो गया मैं, सेकेंड बार मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था सर, 60% इन्फेक्शन हो गया था नीचे इस, फिर पेट में वगैरह सब जगह अंदर इन्फेक्शन हो गया था कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड हुआ था सर। तो फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगा क्योंकि बहुत सारे केस आ रहे थे उस टाइम कोविड के, और फिर मैं यहाँ रूम पे अकेला ही रहता था जोधपुर में, और हॉस्पिटल भी पूरे पेशेंटों से भरे थे, और घर पे मैंने बताया नहीं था सर मुझे ये हो रखता है, मैंने फ़ोन पे ही डॉक्टर से सलाह ले कि वो कोविड की लेके आया था, वो गोले ले रहा था लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ से फिर मैंने सोचा मैं बचूंगा नहीं सर, फिर यहाँ से कैसे भी करके घर चला गया मैं, घर वहाँ अलग ही रूम में सो गया, पापा को बोलते बाहर से आया हूँ तो फिर आप पास मत आना, और रोज दिक्कत होती थी बहुत, सांस की सर सांस ही नहीं आती थी, अंदर जाते हवा बाहर कुछ आता ही नहीं था, ऐसे करके मुझे मैंने बताना पड़ा, पापा ने हालत देखी तो ये क्या हो गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो मुझे वहाँ से फिर डॉक्टर ने वो सब कुछ चेक किया और देखा इसका इन्फेक्शन है बहुत फेफड़ों में, तो फिर वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने, 5-6 दिन बाद वापस देखा तो 2-4% वापस रिकवर हो रहे थे मेरे, तो वहाँ से वापस एक आस जगी जीने की हाँ मरूंगा नहीं, रिकवरी हो रही है मेरी सर। तो वो मुझे टाइम 6 महीने लगे वापस कवर होने में, डॉक्टर ने सर 1.5 साल बोला था कुछ नहीं करना एक्टिविटी वगैरह, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी वापस गेम की, और वहीं से वो मोटिवेशन आया मुझे गेम को, मैं कंटिन्यू करता गया, लेकिन बीच में परेशानियाँ बहुत आई थी सर, पैसों की दिक्कत आई थी क्योंकि ट्रेनिंग पे पैसा भी बहुत खर्च होता, डाइट का, शूज का, पापा खेती करते किसानी करते तो इतने पैसे नहीं दे सकते थे। ये सब कुछ झेलते हुए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है गेम में, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाई सर। ये टर्निंग पॉइंट था मेरा कोविड, उसमें मतलब एक जीने की आशा खत्म हो गई थी, तो वापस दोबारा गेम में अच्छा करके आज यहाँ हूँ, तो बहुत कुछ नहीं सोच के। मैं बस श्रोताओं को सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी, जैसा भी है जिस भी हाल में, बस हम करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, एक दिन वही मुकाम हासिल होगा हमें जरूर। हार नहीं माननी, गेम को कभी छोड़ना नहीं।
1: डर के आगे ही जीत है और मन के हारे हार, तो
0: हाँ, मन के हारे हारे मन की जीत रीत सर।
1: इसलिए श्रोताओं, देवराम ने हमारे वैदिक शिक्षा से जो ज्ञान हमको मिला है, वो ज्ञान फिर से आज हम ज्ञान चर्चा के बीच उस बात पर आ गए, और वो बात का सार, इस बातचीत का सार हमने ले लिया है। जो हमें गुरु ज्ञान मिलना था एक एथलीट से, वो हमने ले लिया है, और हमारे जुनूनी ने हमने बता दिया कि वो कैसे जीवन में वापस जीत कर आए हैं, लड़ कर आए हैं, और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी, ऐसी हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे मैराथन प्लेयर। श्रोताओं, हम विदाई देते हैं हमारे हीरो और आज के जुनूनी देवाराम को, जिन्होंने बहुत ही खुल के अपने जीवन के बारे में बात की, अपने कमबैक के बारे में बताया, अपनी लाइफ की रियल सेकंड विंड के बारे में बताया जो कोरोना में आई थी, और आज वो न केवल एक चैंपियन है और माउंट आबू मैराथन के भी चैंपियन है, और निश्चित रूप से हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि वे एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई करें।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे प्रशासन गाँव के संघ हो, चाहे विद्यार्थी विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, चाहे मनरेगा हो, सभी से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। सरकार का जो मंशा है, आसपास गांव और अंचल में जो प्रतिभा है, जो गतिविधि है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच लेकर आते हैं, जो स्टेज के माध्यम से बच्चों का आवाज को भी रखते जन जन तक पहुंचाते हैं एक जनहित में। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू रोड और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडवा खुद, तो बच्चों का आवाज दोनों विद्यालयों के सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का आवाज को सुनने को मिलेगा। आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में। और बच्चों का आवाज न हो विद्यालय में आए तो बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन बच्चों को वार्म अप कराने के लिए हमारा संस्था के विद्यालय के मुख्य जो कि प्रधान शिक्षक उपस्थित है, वरिष्ठ शिक्षक है, तो उनको स्वागत करते हैं हमारा ईश्वरीय परिवार की तरफ से। सर, आपको बच्चों को वार्म अप कराने के लिए आपका परिचय पहले दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन पिच, और यहाँ का नामांकन का बारे में बताएं और गांव का बारे में बताएं और बच्चों का रुचि पढ़ाई में कितना है वो भी बताइए, आपका परिचय के साथ।
1: मेरा नाम विलाराम चौहान है, मैं प्राथमिक विद्यालय रेबारीवास आवल के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस विद्यालय के अंदर साक्षरता की परीक्षा 4 अक्टूबर को करवानी है, इसलिए कुछ सूचना लेने के लिए यहाँ आया हुआ था।
0: जी सर, और अचानक में आए तो अचानक में आपका साथ हमारा मुलाकात हुई, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों का जो विद्या
1: ने... बच्चों को मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बीके ब्रह्मा कुमारी शांतिमत तलेटी से आए हैं।
0: जी सर।
1: तो इनको ये रेडियो प्रसारण पर काम करते हैं, तो तुमको जो भी बच्चों को बाल गीत आते हो, कविता आती हो, तो वो बोलना है, धीरे धीरे शांति से बोलना है और रिकॉर्डिंग होगा, तुम्हारा प्रसारण होगा, लोग देश दुनिया में सुनेंगे। ठीक है, धन्यवाद
0: सर। बच्चों को वार्म अप कराने के लिए यहाँ का जो बालिका कम संख्या है, बालक ज्यादा है, तो इसका राज क्या है सर? बालिका कम है,
1: बालिका यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के अंदर 7 विद्यालय है।
0: ओके, 7 विद्यालय।
1: 7 विद्यालय
0: कौन सा ग्राम पंचायत सर?
1: ये ग्राम पंचायत आवल है, ये आवली गांव था और पहले क्या कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती के अंदर विद्यालय खोले गए थे, तो प्रत्येक मोहल्ले के अंदर विद्यालय खोले गए। इस मोहल्ले का नाम रेडवा खुर्द था, तो रेडवा खुर्द के अंदर एक स्कूल सरपंच ने खोली पंचायत द्वारा।
0: जी सर।
1: फिर दूसरा जैसे और सबलाफली है तो वहां पर खोली, पूरा वनाफली है तो वहां पर खोली,
0: क्या बात,
1: भगोरा फली है तो वहां पर खोली, डेबारी वास है तो वहां पर खोली।
0: ओ।
1: और तो आवल ग्राम पंचायत के अंदर पुरानी 2 विद्यालय थे, 1962 के अंदर बने थे। एक तो जो अभी सीनियर सेकेंडरी वो भी प्राइमरी विद्यालय था,
0: क्या बात,
1: और आंदलिया के अंदर प्राइमरी विद्यालय है, 2 थे पुराने,
0: अभी भी प्राइमरी है आंदलिया।
1: आंदलिया अभी प्राइमरी विद्यालय है और आवल का जो प्राइमरी विद्यालय था
0: जी,
1: वो सीनियर सेकेंडरी यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल बना बड़ा।
0: जी सर।
1: नहीं तो वहां पर भी पहले मैं पढ़ता था, उस समय एक ही कमरा था।
0: आप पढ़ते थे उस समय?
1: हाँ,
0: यहाँ के ही। आप
1: यहाँ के ही?
0: ओके। और खासकर अभी उच्च प्राथमिक अभी हुआ ना आवल में, कोई
1: आवल में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है,
0: एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
1: तो कई बच्चे यहाँ से आवल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालक बालिकाएं पढ़ती हैं और यहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय कालंद्री सिरोई में भी पढ़ते हैं,
0: क्या बात,
1: और यहाँ के बच्चे हैं एकलव्य विद्यालय दान वाव तलेटी के अंदर भी पढ़ते हैं और कई लड़के प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, मधुसूदन बाल विद्या मंदिर है, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ने जाते हैं बालक बालिकाएं।
0: जी जी।
1: और कई लड़के यहाँ के अंडर ट्रेनिंग में भी है, कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, तो उसमें भी यहाँ के बालक बालिकाएं
0: अच्छा
1: गए हुए हैं।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक वार्म अप बच्चों के लिए करा दिए, बच्चे भी शिक्षक का हमारा HM का आवाज सुनकर वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, वो आवाज में सुनाएंगे आपको ना कुछ गीत। और उस सर को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ का लोकल शिक्षक होने के नाते गांव का हित में हम तो सबके लिए अपना गांव अपना अंचल ये कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा अंचल, और जिस गांव और जिस अंचल में पढ़े बड़े और यहां तक पहुंचे वो गांव को देने के लिए सर का भी जो भावना था उस पोस्टिंग भी उसी गांव में ही अभी तो बहुत अच्छे शुरू से। इसका पहला आप कहां थे सर, पहला पोस्टिंग आपका कहां था पहले?
1: मेरा प्रथम पोस्टिंग राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंदलिया में था।
0: क्या बात, अरे वाह।
1: 1 जुलाई 1995 को मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था और फिर वहां से ट्रांसफर हो गया तो मैंने 9/10/2007 को राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिला आया हुआ है, बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति के अंदर बडलिया गांव था, वहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाबुरपुला के अंदर मैंने कार्य किया। वहां मैंने 14 साल कार्य करके फिर मैं वापस प्राथमिक विद्यालय रबारीवास आवल के अंदर ट्रांसफर होकर मैं इधर आ गया।
0: बहुत अच्छा,
1: अभी यही हूँ।
0: आपका जो व्यक्तित्व पढ़ाने का तरीका, बच्चों के साथ जो धीरे से बात करना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, ये संस्कार बच्चों को प्रेरित करता है, जिसका चलता आपको आप अपना पोस्ट में भी जो सर्विस में भी खुशी राजी होंगे, है ना सर?
1: हाँ।
0: आपका जो पोस्ट मिला है, जो इतना अनुभव है, उसमें आप खुशी राजी रहते हैं?
1: मैं खुशी रहता हूँ, राजी रहता हूँ। मैं हर काम के अंदर एक्टिविट हूँ। मेरे विद्यालय के बच्चे ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खेलने भी जाते हैं।
0: जी, टूर्नामेंट का तो नाम तो सुना है, पहले भी मैंने आवल बड़े स्कूल में बहुत बार आए, बहुत कोऑपरेटिव है और बच्चों का अनुशासन देखना होगा तो सही में खेलकूद में भी, खो खो में भी तो प्राइज लेते मैंने देखा है।
1: परिक्षेत्र के अंदर यहाँ के बच्चे भी आए थे, यहाँ से टूर्नामेंट में कौन कौन आया था, तलवार नाका ऊपर हाथ करो, कौन कौन थे, खड़ा हो गया, क्या नाम है तेरा,
0: अनिश
1: आया था तलवार नाका,
0: तलमल छोटा बच्चा फिफ्थ चौथी क्लास का है,
1: भाग लिया था दौड़ में था। अच्छा,
0: बहुत अच्छा। तो इस तरह गतिविधि आपके पास हम रखें, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद एक प्रार्थना न हो ही नहीं सकते, एक प्रार्थना के लिए हमारा तीन छात्र उपस्थित है और तीन छात्र का साथ सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे और गीत गाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडुआ खुद, जो कि आवल ग्राम पंचायत में आता है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, आज बच्चों का साथ हम भी कुनी कुनी बच्चे बन गए हैं और तोतली तोतली आवाज में अपना आवाज को रखेंगे, क्योंकि इसका पहले हमारा HM सर ने बहुत कुछ सिखाया और छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी अपना अपना नाम बताएंगे, नाम बताओ।
2: मेरा नाम संगीता कुमारी है।
1: संगीता, कौन सा क्लास?
2: पांचवीं में पढ़ती हूँ।
1: और कौन सा कॉलेज है?
2: मेरा गाँव का नाम है आवल।
1: आवल, तुम बताओ।
3: मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में
1: पढ़ती हूँ।
3: पढ़ती हूँ।
1: और तुम्हारे घर में कौन कौन है? सीमा आई
3: है
1: और
3: पप्पा,
1: हाँ?
3: बहन,
1: हाँ?
3: भाई,
1: हाँ?
3: दादी,
1: हाँ?
3: दादा।
1: ओ, सबसे अच्छा कौन, तुमको अच्छा प्यार कौन करते हैं?
3: मम्मी।
1: मम्मी आई, क्या नाम है आई का?
3: पंकू।
1: पंकू पढ़ाती तुमको? मम्मी पढ़ाई किए? अच्छा, कितना तक? दूसरी ना तीसरी? पूछना घर जाकर, पूछना मम्मी आप कहाँ तक पढ़ाई किए, पूछेंगे। कभी बताया नहीं तुमको? पापा भी बताया नहीं? पापा कितने तक पढ़ाई किया?
3: पहली तक।
1: पहली तक, अच्छा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है?
2: संगीता कुमार।
1: संगीता, तुम्हारा दोस्त कौन है?
2: सविता।
1: सविता, अच्छा, तुम बताओ।
4: मेरा नाम है निर्मला कुमारी, मैं कक्षा पासी में बढ़ती हूँ।
1: चलिए एक प्रार्थना शुरू करेंगे।
5: माँ सरस्वती तेरे शरणों में।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए बच्चे रेडी है। संगीता और सीमा एंड पार्टी, छोटे बच्चे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फिफ्थ क्लास तक है, पहली क्लास से फिफ्थ क्लास। और बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे खुशी से आते हैं, पढ़ाई करते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और यहाँ पर जब आते हैं उनको क्या क्या मिलता है वो भी बताएंगे। संगीता, यहाँ पर स्कूल में आते हैं तो क्या क्या मिलता है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक गीत सुनाएंगे भजन के रूप में। चंदन है देश की मिट्टी, देशभक्ति का एक भजन।

0: संगीता और सीमा छोटे बच्चे हैं फिर भी बड़े काम करते हैं, छोटे बच्चे होकर बड़े बड़े काम करते हैं। गीत गाना आकाशवाणी में, रेडियो मधुबन में बढ़ चढ़कर भाग लिए, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। संगीता तुमको डर लग रहा है?
1: नहीं।
0: डर लग रहा है?
1: नहीं
0: नहीं। बुलंद आवाज से तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन था?
1: सविता।
0: सविता कहाँ है? सविता आया आज? सविता आया नहीं? सविता के पास क्या गुण है, क्या अच्छा लगता है? सविता क्या देता है तुमको? पढ़ाई में मदद करता है?
1: बताते
0: स्कूल में, आज मान लीजिए स्कूल में नहीं है तो स्कूल में जो पढ़ाई हुआ उसको जाकर बताते है ना। तुम्हारा घर से नजदीक है ना, दूर है? बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बच्ची है और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, और एक छोटा सा गुड्डा है, तो अपना नाम बताओ। देखिए गुड्डा
1: कमल।
0: कमल कौन सा क्लास कमल तुम?
1: पांचवी।
0: और तुमको क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है?
1: जी।
0: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: हिंदी।
0: हिंदी। और कमल, नाम कमल है, कौन रखा है कमल तुम्हारा नाम?
1: मम्मी।
0: अच्छा, क्या बनेगा बड़े होकर?
1: टीचर।
0: टीचर, वाह, हमारा टीचर भी सुन रहे, टीचर का भावना है। और बड़े होकर टीचर बनेंगे तो सबको पढ़ाएंगे, है ना? टीचर का काम क्या होता है? तुम अभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से? पढ़ाई अच्छा लगता है? किसको किसको अच्छा लगता है, हाथ उठाओ लंबा हाथ। अरे वाह, सभी बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ाई, है ना? पढ़ाई इसलिए हमें विद्यालय में रोज आना चाहिए, विद्यालय में रोज
1: आना चाहिए।
0: कभी भी छुट्टी मारना नहीं, जब भी स्कूल खोलेगा तुरंत आना है। तो कमल, विद्यालय में क्या क्या मिलता है खाने के लिए?
1: दूध।
0: अरे वाह, पीने के लिए दूध?
1: संतरे।
0: संतरे भी मिलते हैं फल? अरे वाह। अभी संगीता बताएगा क्या मिलता है?
1: दूध।
0: हाँ।
1: रोटी।
0: हाँ रोटी। ओके।
1: चावल।
0: चावल भी मिलता है। और कमल और क्या मिलता है? रोटी, चावल, संतरा और
1: केला।
0: और बिस्किट भी मिलता है कभी? और खीर मिलता है?
1: जी।
0: हाँ देखो, स्कूल इसलिए आएंगे तो सब चीज मिलेगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल तुम आओ, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ। कमल।
1: रतन।
0: रतन खड़े हो जाओ। कौन रतन है?
1: आज नहीं आया।
0: ऐसे दोस्त जो कि आता नहीं इसका दोस्त नहीं बनाना चाहिए। रतन आया नहीं उसको दोस्त बनाएगा, ऐसे नहीं। जो आता है उसका दोस्त बनाना, अच्छा दोस्त। जो ठगता है, कभी स्कूल को आता नहीं, उसके साथ दोस्ती बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुमको रोक देगा, बोला तुम भी मत जाओ। क्यों आया नहीं? संगीता का भी दोस्त आया नहीं। संगीता तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया?
1: पता
0: नहीं। इसलिए जो बच्चे स्कूल को नहीं आएंगे उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, जो बच्चे रेगुलर आता है उसके साथ दोस्ती करेंगे तो आपको मिलेगा, है कि नहीं? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल और एक गीत गाएगा, सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद, आदिवासी गीत भी बच्चे थोड़ा रेडी करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम। ये बच्चे को आज मौका मिला है बोलने के लिए, तो आज पहला बार आए, अचानक आए, कोई जानकारी नहीं था, फिर भी बच्चे भाग ले रहे, है कि नहीं? सही बच्चे ताली बजाओ। सीमा लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडवा खुद, जो कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें खुशी है। सभी को चांस मिल रहा है और बच्चों को जब चांस मिलता है चांसलर बन जाते हैं, बड़े होकर तो नाम रोशन करेंगे स्कूल का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पुनः कमल, संगीता, सीमा और रवीना। अभी नया आवाज रवीना का भी सुनने को मिलेगा। पहले कमल से शुरू करेंगे। कमल खिलेगा तो पोखरी में, जल में तो बहुत सुंदर लगेगा। कमल कुछ कविता लेकर आए हैं। कविता का बात सुनाने के बाद फिर संगीता का भी चांस है। तो पहले कमल, छोटा सा लड़का, कहाँ से आए कमल? तुम नाम बता तो फिर से।
1: कमल कुमार मेरा नाम।
0: और कौन सा क्लास?
1: पांचवी क्लास।
0: और कौन सा फली से आते, कौन सा गांव से?
1: आवल।
0: आवल से, आवल का फली है, आवल ग्राम पंचायत छोटा फली से आते हैं। तो चलिए कविता सुनाएंगी। कविता सुनाएगा? सुना, सभी बोलेंगे इनका साथ है, शुरू से।
1: ऊपर पंखा चलता है,
0: ऊपर पंखा चलता है,
1: नीचे बबलू सोता है,
2: नीचे बबलू सोता है,
1: सोते सोते भूख लगी,
2: सोते सोते भूख लगी,
1: खाने बेटा मूंगफली,
0: खाने बेटा मूंगफली,
1: मूंगफली में दाना नहीं,
0: मूंगफली में दाना नहीं,
1: तू मेरा मम्मा नहीं,
0: तू मेरा मम्मा नहीं,
1: मम्मा गया दिल्ली,
0: मम्मा गया दिल्ली,
1: दिल्ली से मारा दो बिल्ली,
0: दिल्ली से लाया दो बिल्ली,
1: दिल्ली से मारा पंजा,
2: पंजा,
1: मामा हो गया गंजा, गंजा पटेल, तारीखो पड़ी में टेल, आगे आई रेल, रेल ने मारी टिक्की, दो दिन की छुट्टी,
0: छुट्टी मिलने से बच्चे तो खुश होते हैं, कि नहीं? छुट्टी होना चाहिए, इसलिए संडे को संडे छुट्टी होता है, रविवार को, है कि नहीं? चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संगीता को देते माइक। संगीता क्या प्रस्तुति करेगी? संगीता, संगीता का साथ हम साथ देंगे। संगीता सुनाएगी? सुना।
3: टीना

0: વન્ને પાપા આવી છી, શિયાળ મોસંબી લાવી છી, પોલીસ કી ચડ્ડી પટ્ટી, પોલીસ બેટા રો ને રોતે રોતે રાત પડી, ઘર પે જાકર માર પડી.
1: इसलिए लेट से घर में जाना नहीं चाहिए, ज्यादा लेट करेंगे तो मार पड़ेगा, है ना. कोई भी हो, पुलिस हो चाहे बच्चा हो, है कि नहीं. समय पर घर में आना चाहिए, समय क्या पहले आ जाना चाहिए. ज्यादा रात में इधर उधर घूमेगा नहीं, घूमेगा तो पुलिस डंडा मारेगा और घर में डांट पड़ेगी. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता को. संगीता का बाद अभी नेक्स्ट कौन आएगा, क्या नाम है?
2: सीमा.
1: सीमा सुनो, करो सीमा का साथ, हम भी साथ देंगे. ओके.
3: मछली जल की रानी है,
4: मछली जल की रानी है,
3: जीवन उसका पानी है,
4: जीवन उसका पानी है,
3: हाथ लगाओ डर जाएंगी, बाल निकालो मर जाएंगी.
1: सही बात है, मछली पानी में रहता है, पानी उनका जीवन है, पानी से निकल देंगे तो वो छटपटाएगी. और जैसे बच्चों को हम स्कूल से निकाल देंगे तो वो भी रोएगी, है ना. जैसे पानी के लिए मछली कितना आवश्यकता है, पानी मछली के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालय अति आवश्यक है. चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक गुड़िया है तो उनको भी देंगे.
5: हाथी राजा बहुत बड़े,
1: हाथी राजा बहुत बड़े,
5: चुंदेला के कहां चले,

0: कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर।
1: अच्छा सीमा आ जाओ, सीमा और संगीता दोनों इसको दोनों बढ़िया से गाएंगे।
0: हाथी राजा बहुत बड़े।

0: कुर्सी बोली चटर पट पट पट चटर पटर।
1: ताली बजाओ। ये अंतिम प्रस्तुति और संगीता, सीमा और कमल और रवीना सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिए इस कार्यक्रम में और सभी को नाम का साथ और उस संस्था के शिक्षक को भी धन्यवाद, हमारा प्रधान आचार्य को भी धन्यवाद, प्रधान शिक्षक को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ बच्चे। बहुत अच्छा। ये था अंतिम प्रस्तुति। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था छोटे छोटे बच्चों का तोतले तोतले आवाज। छोटे बच्चे लेकिन कमाल करके आज पहला बार आए तब भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लिए, सभी ने गीत प्रस्तुत किए, सभी को धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहाँ हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसकी कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपिपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: भी बात पहले ही कर ली। तो राजपीपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपीपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे इसलिए पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा
0: जी
1: व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी,
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ

0: कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं। बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे
1: कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारा एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान रहे
0: हमें
1: हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल, वही
0: करते
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी श्रोताओं जो हमसे
1: और
0: जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए, और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है, और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से। और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ बस।
0: कोई बात नहीं। और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नज़र के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके
0: जी
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल। और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली? आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मेरी मदर।
0: जी, तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
0: जी
1: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
0: जी
1: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं।

0: चलाए गए हैं? आपकी जिला नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं और आज आज जय से मुलाकात हुई है और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े? तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
0: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ, और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा

0: हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की
1: इसमें
0: आवश्यकता है।
1: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल हो गए तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ, और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं, और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है, भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: जी, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधवन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधवन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में, और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया, और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण, शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने किस, क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसी बात की तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पर बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था और मुझे पढ़ाई की तो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाए, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गई, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है, तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने वार्षिक एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए है स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर हैं मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया, तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो
0: जी
1: वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा, मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ, माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं, तो सर मैंने सेवन्थ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में,
0: जी
1: अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर
0: जी
1: वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई, फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी
0: जी
1: जगह मिली, हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे, मैं
0: जी
1: यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की।
0: जी
1: तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी।
0: जी
1: तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था, तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया सर। मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो
0: जी
1: फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं, फिर नाइन्थ क्लास आई, तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि एसएसटी और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका,
0: जी
1: और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो
0: जी
1: मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है,
0: जी
1: तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की, और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, फिर मैंने टेंथ क्लास में पहुंचा मैं। तो
0: जी
1: सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं,
0: जी
1: लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कॉपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा, बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी,
0: जी
1: हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे टेंथ क्लास में जाके, क्योंकि
0: जी
1: केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं, तो थोड़ा थोड़ा
0: जी
1: पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड और ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है टेंथ का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%।
0: जी
1: अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं
0: जी
1: उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था, और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है, तो
0: जी
1: जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी नाइन्थ क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
0: जी
1: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय थर्ड रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में।
0: जी
1: मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं, इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी, फिर
0: आपने अपनी
1: से
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
1: हाँ
0: दे
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दी। जी
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी
1: टीसी भी ले ली, दो तीन
0: जबकि
1: बच्चों की
0: हमारा
1: टीसी जब
0: उद्देश्य
1: चली
0: नहीं
1: गई।
0: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
0: जी
1: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया।

0: और मुझे फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
1: जी
0: अब वो पढ़े मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई इस तरीके से। मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा, फिर हम आ गए 12th में। तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको। और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई, फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका ही हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कॉम्पिटिशन हुए उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में।
1: जी
0: तो सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, एक युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
1: जी
0: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2 2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: कुछ खाएगा
0: जी
1: कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
0: जी
1: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी
1: जी
0: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
1: जी
0: सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
1: जी
0: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
1: जी
0: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के, मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और
1: जी
0: एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी
1: जी
0: इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले आ रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे, और
1: जी नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
0: मैंने
1: चुनौती।
0: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जैसे बायोलॉजी, जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खासतौर पे गणित और तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 में से 100 आप भी ला रहे होते। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आपको मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RIS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RIS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है, इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे, वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस, उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में, उनके मेडल देखिए। तो
1: जी, मुझे तो हंसी आ रही है सकलांग लोगों पर आज।
0: हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा, मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज। आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी। क्योंकि हमको, यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही यदि हम, वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्वगुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन। लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी
0: जी
1: दृष्टिबाधितता में चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो उन
0: जी
1: सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए उनको
0: जी
1: लेके आने के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस गया।
0: यही यही चीज।
1: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवार जन उससे पूछेंगे कि ये चाय
0: जी
1: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता लेकिन
0: जी
1: मैं सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ माँ चाय कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक
1: चलते।
0: बार हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ
1: जी
0: थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
1: जी
0: तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे, मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो
1: जी
0: उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है।
1: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, नहीं, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रैकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग
0: जी
1: विद अस।
0: जी
1: तो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं
0: सर
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया,
0: ठीक।
1: नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: स्वरों की यह खूबसूरत दुनिया है हमारी, फिर से सज चुकी है सुरों की महफिल, और इस महफिल में हम सब तलबगार हैं उन गीतों के, जिन गीतों को सुनकर सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले, और हफ्ते भर की जो थकान है उससे हमें छुट्टी मिल जाए। तो सज रही है गीतों की महफिल, और इन गीतों में आपके लिए है कुछ खास मैसेज भी और तसल्ली भरे शब्द। तो आ जाइए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुलदस्ता। गुलदस्ता फूलों से बनते हैं, तो इन फूलों को देखकर खुशी होती है, चैन मिलता है। ऐसे ही हर गीत एक फूल की तरह है, रंग बिरंगे और हमारे मिजाज को सही करने वाले। आज हम फिर से मिल रहे हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन में हर सप्ताह ठीक रात 9 से 10 शनिवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। स्वरों की यह खूबसूरत दुनिया है हमारी, फिर से सज चुकी है सुरों की महफिल, और इस महफिल में हम सब तलबगार हैं उन गीतों के, जिन गीतों को सुनकर सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले, और हफ्ते भर की जो थकान है उससे हमें छुट्टी मिल जाए। तो सज रही है गीतों की महफिल, और इन गीतों में आपके लिए है कुछ खास मैसेज भी और तसल्ली भरे शब्द। तो आ जाइए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुलदस्ता। गुलदस्ता फूलों से बनते हैं, तो इन फूलों को देखकर खुशी होती है, चैन मिलता है। ऐसे ही हर गीत एक फूल की तरह है, रंग बिरंगे और हमारे मिजाज को सही करने वाले। आज हम फिर से मिल रहे हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन में हर सप्ताह ठीक रात 9 से 10 शनिवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।
2: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
3: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
2: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: महफिल शाम एक बहाना है, आज सुनना है कुछ सुनाना है। आप सभी को पता है कि कार्यक्रम गुलदस्ता में भी फसाने अफसाने गजलों के माध्यम से सुनाए जाते हैं। आप सब बहुत ही चाव से सुनते हैं गजलें, है ना? तो आज की यह जो खूबसूरत रात है, यह सज रही है गजल से। प्रिय साथियों, बावरी हवा बह रही है, अल्फाज उड़ा रहे हैं हमें, वक्त है कार्यक्रम गुलदस्ता का। सुनते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए हम सब आ जाते हैं इस प्रोग्राम में। क्या गजल ऐसे ही ख्वाबों में उड़ाते हैं? जी नहीं, गजल की बयार झूले की तरह झुलाती है, मी टाइम को आबाद करती है और एक वजह देती है खुश रहने की। हमें तो बस साथियों खुशी बांटनी है और खुशी में रहना है, और क्या चाहिए जिंदगी में। बने रहिएगा स्वर्ण लता के साथ, इस खूबसूरत सफर पर आप होते ही हैं हमारे साथ।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आहिस्ता आहिस्ता सफर कट ही जाएगा, दिलों के फासले कम हो जाते हैं, शिकवे शिकायत गायब हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं, उसकी जगह मोहब्बत ले लेती है। संबंधों को एक नए चश्मे से देखिए दोस्तों। हम सब अपने परिधान को बदलते हैं, रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, आईने में निहारते हैं कि हाँ अब तो मैं बदल गई या अब मुझ में बदलाव आ गया। तो यही अगर हम अलग अलग रंग के चश्मे पहन ले तो वही रिश्ता खूबसूरत नजर आएगा। किसी भी रिश्ते को जाने ना दें, पर हाँ सेफ्टी जरूर बरतें। प्रेम की कश्ती है, मौजों की रवानी है, गजल हमें प्रेम करना सिखाती है। तो गजलों के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे कई फनकारों के नाम। आज हम कई ऐसे मशहूर फनकार की आवाजों में गजल सुनेंगे जिनको सुनते ही हमारे दिल में अगर कोई गम है तो वह छू मंतर हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। तो ऐसी ही गजलों को ऐसे ही मोटों के साथ कि आप सब खुशी से झूम उठे और कुछ सीखने को भी मिले। अगर साहित्य में किसी एक विधा ने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की है तो वह है गजल। गजल न सिर्फ मुशायरों के जरिए बल्कि गायकी के सहारे भी खूब फली फूली। एक जमाना था जब फिल्मों में गजलों ने लोगों को खूब आकर्षित किया, पर आज हम सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलें।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हैं कि भारत में गजल सुनी जाती है। गजल एक खुशनुमा कल्पना है कि हमें भी कोई चाहे, हमारा भी कोई इंतजार करे। वैसे यह सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत भी है, यह सपना भी है, यह एक आशा भी है। गजल को हम कई रूपों से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि गजल है प्रेमिका से बातचीत, पर यह बातचीत किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेम हम किसी के साथ भी कर सकते हैं जहां पर कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो। प्रेम वही है जहां पे दुगुना देने की चाहत हो। प्रेम वही है जहां पर कोई मिलने की आस ना हो या मिलने के लिए हम तरस न रहे हो। तो आप सब है ना स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में। दोस्तों, कहते हैं कि एक जमाना था जब फिल्मों में गजलों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। इस तरह गजल ने अरबी, फारसी और उर्दू से

0: होते हुए हिंदी में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इसकी एक लंबी परंपरा विकसित हुई। मगर आज गीत संगीत के फैलते संजाल और युवाओं में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान के बीच गजल की लोकप्रियता कम होती नजर आने लगी है। इसकी क्या वजहें हैं और गजल का क्या भविष्य है? क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ये आप सोचिए और कभी मुलाकात होगी तो सुनेंगे आपकी जुबानी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मां।
1: कार्यक्रम गुलदस्ता पेश कर रही है नामी ग्रामी आर्टिस्ट की वॉइस में बेहतरीन गजलें। क्या आज भी गजलें उतना ही लोकप्रिय है? बिल्कुल है जनाब, तभी तो इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। और भारतवर्ष में जितने भी रेडियो चैनल्स हैं उसमें गजल के प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी मी टाइम को सफल करते हैं। बहुत ही जब मिजाज हल्का फुल्का होता है या फिर हल्का फुल्का बनाना होता है तब गजलें सुनी जाती हैं। दोस्तों, गजल लोकप्रिय है क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वह यह गीत सुनती है। गजल भी गीत का एक प्रकार है जिसमें उर्दू शब्द होते हैं और कई वैरायटी म्यूजिक होती हैं। इसमें हर दौर में खुद को संभालती संवारती आई गजल में समय माहौल के मुताबिक कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में इन बदलावों और नए अंदाज के साथ भी वह दिलों में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही हैं। गजल सिर्फ जो है प्यार की बातचीत ही नहीं करती बल्कि इसमें कई पहलुओं को भी शामिल किया जा चुका है। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ और पेश है अगली गजल। किसकी आवाज में वह हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन एंजॉय कीजिए इस गजल को।
2: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
3: रेडियो मधुबन

0: अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। सुन रहे हैं आप सब कार्यक्रम गुलदस्ता, और इस कार्यक्रम में हमने अक्सर गजलें पेश की हुई हैं जिन्हें आप बहुत ही चाव से सुनते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गजलों के लिए कहा जाता है कि यह फासलों को कम करते हैं। गजल का भाव समझ आए और उस गजल को कब सुनना है यह पता चल जाए तो समझ लीजिए जीवन में खुश रहने की चाबी आपके हाथ है। गजल भी एक जरिया है अपने आप से रूबरू होने का। अपने आप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो गजलें जरूर सुनिए, पर चुनने से पहले इसका जरूर ध्यान रखिए कि इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो, नेगेटिव कंटेंट ना हो। तो हम भी जब भी गजलों को आपके लिए सिलेक्ट करते हैं तो बारंबार चेक करते हैं कि क्या यह गजल पेश करने लायक है, बहुत धूमधड़का वाला तो नहीं है, इस गजल से कोई रॉन्ग मैसेज तो नहीं जा रहा है। जो भी गजलें व्यसन का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें हम बिल्कुल ही इस पे शामिल नहीं करते। तो आप सबके लिए हमेशा से बेहतरीन गजलें हमने पेश की हैं जिन्हें आप बहुत खुशी से सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं अगली गजल जो आपका इंतजार कर रही है।
1: लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

आखिरी मोहब्बत तुम्ही, पहला प्यार मेरा, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हो सकता है। खुदा यानी जो खुद आकर हमारे दिल में बस जाता है, जिन्हें हम सिर्फ मकसद पर याद करते हैं, पर वह हमें बेमकसद याद करता है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन गजलें, जिनको सुनने के लिए लोग जो हैं कई गजलों की महफिल में जाते हैं, टिकट्स बुक करा कर जाते हैं। उन्हीं गजलों को आप घर में बैठे आनंद से सुन रहे हैं स्वर्णलता के साथ। हम सब मिलकर जब इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो चार चांद लग जाता है ना। तो अभी जाने की इजाजत दीजिए। जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारी गजलों के कार्यक्रम हो सकते हैं। किसने गजल के बारे में क्या कहा, गजल की क्या परिभाषा है, और आजकल तो वैरायटी भाषा में गजलें होने लगी हैं, गजलें बनने लगी हैं। तो जाने से पहले आपको हम बता दें कि आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किए थे बहुत सारे ऐसे फनकारों की गजलें जिनके नाम है सलमा आगा जी, तलत अजीज साहब, फिर हमने शामिल किया था चंदन दास जी की आवाज में भी हमने बहुत सारी गजलें सुनी, और मुसर्रत नाजिर की आवाज में हमने सुनी थी चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता, बहुत ही सुंदर गजल थी जो बार बार सुनने लायक है। तो इन सभी आवाजों में हमने सुनी बेहतरीन गजलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन फ्यूचर आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए उम्दा विषय के साथ। तब तक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा, इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक
1: जी मैडम, आ रही
0: यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलिथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था। तो
0: जी,
1: इसकी प्रेरणा संघ से मिली जी।
0: जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेके देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेके भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं अकेला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि तो जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते हैं तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी, बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं।
0: जी
1: कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, एक वृक्ष बनाना, और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके एक वृक्ष बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो इधर उधर
0: जी
1: कान पे फोन लगा के, और वो क्यों नहीं भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर मिलते हैं। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार्य है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे। पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ, तो
0: रैपर, कि किस प्रकार के पॉलीथिन?
1: सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल
0: प्लास्टिक।
1: जो जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, उन सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े इको ब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन घर
0: जी
1: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया, उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे, या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है, मतलब मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे
1: हाँ
0: उपयोग कर
1: बिल्कुल,
0: सकते
1: अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक्स
0: यस
1: की 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको टोस्ट टोस्ट के भर लिया अपन ने, उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बॉटलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने के एक मुड्डा बना सकते हैं। हमने बनाया है अभी एक मुड्डा उसको बैठने के लिए, तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: की दिशा में भी अपन
0: लेकर
1: काम कर
0: के ढक
1: सकते हैं। हाँ
0: के। जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समझ
0: बाद
1: सकते,
0: उसको चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या ऐसे ही ढक के
1: हाँ
0: उसको स्टूल बना सकते हैं।
1: ये कवर बना के उसका बढ़िया, अच्छा है
0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे जो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहां पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई, तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े एक जुनून भी था, तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें, तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में, बढ़िया रहा। पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है पर्यावरण
0: जी
1: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया, जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बोतल से इको वृक्ष बना के इनको अंदर बोतल के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है, तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने, तो
0: जी
1: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
0: जी क्या बात है सर। जी, ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके
1: ये
0: साथ
1: मेरा
0: महिलाएं
1: जी,
0: भी मिल रहे हैं अभी। जी बताइए सर,
1: मतलब
0: आप
1: मैं ऐसा सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
0: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर, आपके साथ महिलाएं भी शामिल है, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
1: जी
0: व्याबरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को, तो उस पल का
1: जी
0: अनुभव कैसा था?
1: अब क्या इतना एक विश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का, वो तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई है उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
1: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
0: जी बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है आप बता सकते हैं?
1: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या, एक मेरी दीदी है, हमारे मोहल्ले में रहती है, पिंकी दीदी करके। तो
0: जी
1: मेरा क्या है, जन्मदिन था इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उनकी भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है। तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कहा बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने किसको क्या, मैंने किसको इको ब्रिक्स बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
0: क्या
1: वो
0: बात है
1: लेके
0: जी,
1: आया, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आया। तो इसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इको ब्रिक्स से बढ़िया निर्माण करने वाले में, तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
0: जी
1: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना है महिलाओं का, तो 15-20 महिला सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है कि लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई, तो उनको अच्छा लगा। फिर तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी है, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है। वो
0: जी
1: अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
0: जी
1: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
0: क्या बात है सर जी,
1: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है।
0: राइट
1: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ती गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
0: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
1: जी
0: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से, तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं ये भी हमारे श्रोताओं को।
1: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवाहा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
0: जी
1: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है।
0: जी
1: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा तो देखा तो है, इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा, तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
0: जी
1: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का, तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की, तो बोला भाई साहब आपके पास
0: जी
1: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकलिंग क्लीन कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा, तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
0: जी
1: इसका
0: सर
1: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
0: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये पेन बॉक्स भी, ये हमने इसका तख्ते का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
0: जी
1: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
0: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
1: बहुत अच्छा
0: वो किस
1: प्रश्न
0: आइडिया कहाँ से
1: था
0: आया?
1: ये, क्या
0: जी
1: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, अब बाटल कहाँ से लेके आए, तो मैंने कहा बाटल को कलेक्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे क्या है, वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं, तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे, पर मैंने कहा रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते, तो मैंने कहा एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। तो लोगों को बताया, वहां के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि ये कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक पर कलेक्ट करते, तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भाई सर ये क्या है बोतल बैंक, मैंने बोला ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है ये, एक अपना वातावरण दूषित रहता है, फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500 1000 वर्षों तक ये धरती पे पड़ी रहती है, अपन
0: जी
1: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया, 3 4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको बोतलों में डालते थे, फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
0: जी
1: और
0: सर ग्रेट
1: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम, और एक अनुमान में बताऊं आपको तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर।
0: ग्रेट सर ग्रेट सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
1: ये हमने बनवाया, मतलब तो बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से एक सेप देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया, तो आप भी
0: जी
1: सब
0: आप
1: लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हैं, कोई नहीं जाता।
0: जी सर बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
1: हाँ वो जो बोतलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया, जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते तो ढक्कनों का भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में, हमने कहा आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को,
0: जी
1: तो अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया हमारी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
0: आपसे इंस्पायर होके।
1: जी
0: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया है कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
1: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम,
0: जी
1: तो धीरे धीरे धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं, मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया हैं काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा, तो फिर इसे विचार चला, काला ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई। तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं, बढ़िया तो ये बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया। तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव ब्यावरा हमारे लिए बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
0: एब्सोल्युटली जी सर,
1: जी
0: बहुत खूब सर। सर आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
1: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है, शादी है या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाए और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाए, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि
0: जी
1: कुछ चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
0: जी सर,
1: इसलिए बर्तन
0: तो
1: बैंक का
0: बर्तन
1: शुभारंभ।
0: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
1: वो क्या है उनको मान लो से 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन इनके ले जाना, जो उनको आवश्यकता है मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच जैसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, तो गिन के ले जा वो ले जाते हैं।

0: हैं, तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे
1: ओके
0: स्तर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इकोवृत्त का एक बढ़िया से मतलब किसी को गांव में करना है तो बढ़िया, जो भी अब गांव में छोटे 50 को परिवारों की बस्ती रहती है तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गांव में।
1: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
0: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, हो सकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
1: जी सर। सर, जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
0: हाँ,
1: करके
0: कर
1: ये
0: सकते
1: कार्य
0: हैं
1: कर सकते हैं?
0: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना MRF प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते, वो नगर पालिका भी
1: जी
0: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
1: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी, तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
1: जी बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़े, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी, जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनवाइटी मेंबर हैं गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज। इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के। साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बहन।
1: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
2: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
1: जी।
2: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में, वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
2: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
2: आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से
1: जी।
2: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
2: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
2: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
2: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी, जी।
2: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
2: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी।
2: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
2: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
2: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते, तो उसका शोषण नहीं करना। जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना, और धरती माता का भी, फिर जो आया वो प्रसाद है। और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
2: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो। और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी। हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा।
2: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है, वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
2: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं ही बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाए कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है, 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
2: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
2: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशाला में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए, आने वाला समय कृषि का है। तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है
2: जी? जब से ये कार्य लिया है तो दिनचर्या का आता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
2: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
2: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
2: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे
1: जी।
2: नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
2: तो 10 रोग है जिनों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं
1: जी।
2: स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
2: उसी का उपयोग हम करके तो गाय का उपयोग, जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं, दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो, दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
2: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाई निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम में और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, घी बनाने की परंपरा
1: जी,
2: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2 चम्मच देशी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी?
2: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना, इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है।
1: जी, धन्यवाद जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
2: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहली एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदीगिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
2: जी, नंदीगिर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
2: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है।
1: अच्छा।
2: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
2: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकता है और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है। हमें 2x-3x तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है किसान मित्रों। आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है। तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
2: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
2: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर तो आपको सम्मान मिलना चाहिए और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
2: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। शनिवार की सुप्रभातम, कैसे हैं सब? बहुत नीक चंगे होंगे और सभी कहीं ना कहीं। अब भाई गणपति जी तो विसर्जन हो गए और शुरू हो गई हमारा पुरखों का कहते हैं वो श्राद्ध। तो सभी अपने अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का श्राद्ध जरूर मनाएंगे, जरूर उनके लिए भोग लगाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और आप सबका स्वागत करती है प्रभा पंडिताइन, आपका अपना प्रोग्राम पंडिताइन में। आज शुरू करते हैं आज की बात। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है, उनके पास सब्जी खरीदे के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार बार आग्रह करे पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोनो कीमत हो तो उसे इस तरह जो परत दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, कहे कि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और कुछ देर सोचे के बाद वो एक थोड़ा मुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिख कर तराजू पर रख देती है। दुकानदार देख कर हंसे लगता है, फिर भी वो थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य, कागज वाला पड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है पर कागज वाला पलरा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार वो कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त आश्चर्य मत करो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो एक घंटे की हो या एक मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, मगर सच तो ये है कि परमात्मा को याद करे का कोनो समय नहीं होता। कोई भी समय आप उनको याद कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना की जाए, जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसे आपका अंदर का अहम नष्ट होता है और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखिए और फिर देखिए प्रार्थना का कैसा असर होता। जैसे वो भोली भाली माई ने भगवान पे डाल दिया तो उसकी तो पेपर ही से वजन कम नहीं हो रहा था। यानी भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। सकारात्मक सोच कोई परिस्थिति नहीं, एक शक्ति है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाती है। परिस्थितियों को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपने विचारों को बदलने की शक्ति हमेशा हमारे पास होती है। वाणी में मधुरता और व्यवहार में नम्रता, ये तो ऐसे गुण हैं जो किसी भी कठिन दिल को जीत सकते हैं। मौन कभी कभी मन को सबसे गहरा उत्तर देता है। क्रोध के एक पल में संयम रख लो, पश्चाताप के हजारों पल बच जाएंगे। जीवन में समय, भरोसा और जुबान बहुत संभल कर इस्तेमाल करिएगा। काहे कि एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। काका,
समय, भरोसा और जुबान। आशा करते हैं आप इन बातों पर गौर करेंगे और इन बातों को जीवन में उतारेंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो बीते हुए कल को बोझ नहीं, सीख बनाकर साथ रखिए। समय बदलने का इंतजार मत कीजिएगा, अपने विचार बदल दीजिए, समय स्वयं सुंदर अनुभव होने लगेगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। लेट गो चलेगा। अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, समाधान खोजने में लगाइए, यहीं से बदलाव शुरू होता है। सकारात्मक सोच हर दिन को विशेष बना देती है। कामयाबी सिर्फ कदम बढ़ाने से नहीं मिलती, सोच के दायरे भी बढ़ाने पड़ते हैं, तब हमें कामयाबी मिलती है। तो देखिए भाई कितनी अच्छी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कन रस के लिए मत सुनिएगा, मन में भी उतारिएगा ताकि ये जीवन में हमारे प्रैक्टिकल नज़र आए जौन बातें हम करते हैं। आशा है इन बातों पे ध्यान रखिएगा। और ये बात पर चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। वापस सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।

सौ ना की ताकत एक सच्ची सीख। कल मेरी बिटिया संस्कृति का फोन आया, जिसे मैं संस भी कहता हूँ, वो आजकल अमेरिका में है। उसने मुझे एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर मैं देर तक सोचता रहा और लगा कि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, हम सबके लिए एक आईना है। संस्कृति एमस्टर्डम में कोस्टको स्टोर गई थी। बाहर हल्की ठंड थी, लोग जल्दी जल्दी अंदर बाहर आ जा रहे थे। गेट के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था, मुश्किल से 5 साल का होगा। हाथ में चिप्स के कुछ पैकेट और गले में एक छोटा सा बोर्ड लटका था। बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, स्काउट चैरिटी के लिए सिर्फ $20 में। लोग उसके बगल से गुजर रहे थे, किसी को जल्दी थी, कोई फोन कर रहा था, कोई देखकर भी।

0: कंधे का कर रहा था, लेकिन वो बच्चा वो हार नहीं मान रहा था। वो हर आने जाने वाले के पास अपनी छोटी छोटी टांगों से चलकर जाता, ऊपर देखता और बड़ी मासूमियत से पूछता, क्या आप एक पैकेट खरीदेंगे? कोई खरीद लेता, कोई मुस्कुरा कर कहता, नहीं बेटा थैंक यू। पापा, मैंने सोचा इतना छोटा बच्चा इतनी बार ना सुनकर से भी रो देगा, उदास हो जाएगा, अपने टीचर के पीछे छिप जाएगा, लेकिन नहीं, वो हर ना के बाद मुस्कुराता, हल्के से सिर हिलाता और अगले व्यक्ति की तरफ मुड़ जाता। उसके चेहरे पर न शर्म थी, न डर था, न निराशा, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। संस से रहा नहीं गया, उसने एक पैकेट खरीद लिया। बच्चे की आंखें चमक उठे, उसने उछलकर कहा, थैंक यू सो मच। फिर पापा, मैंने प्यार से पूछा, तुम्हें और कितने पैकेट बेचने हैं? तुम यहाँ कब तक खड़े रहोगे? बच्चे ने जो जवाब दिया वो संस को अंदर तक हिला गया। उसने कहा, जब तक 100 लोग मुझे नो नहीं कह देते तब तक। संस्कृति हैरान हो गई। उसने बगल में खड़ी टीचर की तरफ देखा। टीचर मुस्कुराई और बोली, हमारा मकसद पैकेट बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये बच्चा इस उम्र में ना सुनना सीखे, ना को सुनकर उसे स्वीकार करना सीखे और फिर भी अगले इंसान से पूछने की हिम्मत रखे। सुनकर संस्कृति चुप हो गई, मैं भी ये सब सुन चुप हो गया। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? खूब पढ़ो, फर्स्ट आओ, कंपटीशन जीतो, सिलेक्ट हो जाओ, सबसे आगे निकलो। हम उन्हें जीतना सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें हारना नहीं सिखाते। हम उन्हें सफलता का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असफलता से गुजरने की हिम्मत नहीं देते। जबकि जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी हिम्मत की पड़ती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हाँ नहीं कहेगी। कुछ एग्जाम छूट जाएंगे, कुछ इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे, कुछ बिजनेस फेल होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने देर से पूरे होंगे। उस दिन जो ना मिलेगा वो हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमने बचपन में ना से दोस्ती की है या दुश्मनी। वो 5 साल का बच्चा कोस्टको के बाहर चिप्स नहीं बेच रहा था, वो हिम्मत बेच रहा था, वो ना इकट्ठा कर रहा था, वो रिजर्वेशन को गले लगाना सीख रहा था, वो जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, गिरकर उठने की परीक्षा। हम अपने बच्चों को ऐसा, हेलो
1: हेलो,
0: हाँ
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए ना,
1: हेलो।
0: उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। तो हम अपने बच्चों को कितना समय ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं, और जब बचपन से ये प्रैक्टिस पड़ जाती है, हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी,
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग भैया, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जीवन में हार भी स्वीकारना बहुत
0: जरूरी है,
1: ना बोलना, ना सहन करना, वो भी बहुत जरूरी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपको, और अच्छे गीत सुनाने के लिए शुभाजी और रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति दीदी।
0: नमस्कार। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू। तो भाई हम कह रहे हैं कहानी सिर्फ कनरस के लिए नहीं है, कहानी मनरस के लिए है, कहानी जीवन में उतारने के, अपने बच्चों के आगे बढ़ने के लिए, हेलो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है। बचपन में ऐसी प्रैक्टिस दीजिए कि 100 बार भी कोई ना बोले तो भी तुम्हारा आत्मविश्वास ना डोले, तो भी तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए। आज हम बच्चों को नहीं देते हैं ऐसी ट्रेनिंग करके आज हताशा, निराशा, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। छोटी सी कोई परीक्षा में फेल हो गए, बस सुसाइड करना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, अनबन हो गई, सुसाइड करना या तो डिप्रेशन में चले जाना, क्योंकि हमने बचपन से उनको ना सुनने की या छोटी छोटी हार में भी अपने आत्मबल को बनाए रखने की वो प्रैक्टिस ही नहीं कराई होती है। अपने बच्चों को कराइए। वो 5 साल का बच्चा कहता है जब तक 100 लोग मुझे ना नहीं बोलेंगे तब तक मैं खड़ा रहूंगा, पॉकेट बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, 100 लोगों की ना सुनना और उसके बाद फिर मुस्कुराना। हमारे को भी आज आवश्यकता है अपनी नई पीढ़ी में ये आत्मबल, ये सच्चाई डालने की कि जिंदगी है परीक्षा, पेपर कब किससे आ जाए, कब कौन क्या कर जाए, कुछ कह नहीं सकते, हर परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल ले। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। शिकायत करने वाला कभी कमी देखता है, शुक्रगुजार इंसान कृपा देखता है कि परमात्मा की इसमें भी कुछ कृपा है, ये काम नहीं हो रहा है इसमें भी। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: ओम शांति।
0: कैसे हो? एकदम ठीक है। आप कैसे भैया?
2: हम भी अच्छे हैं।
0: हाँ बिल्कुल अच्छे ही रहना चाहिए, रेडियो मधुबन सुन रहते हो और जरूर अच्छे हो जाएंगे।
2: नहीं काफी दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है।
0: जी जी जी। नहीं वैसे तो मैं सैटरडे संडे आती हूँ,
2: कभी सैटरडे संडे आते हैं मगर रेडियो बंद था ना इसलिए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज चालू है?
2: हाँ आज चालू है और आपकी बहुत ही मधुर, मोर से भी मीठी आवाज, कोयल से भी मीठी आवाज सुनाई दी।
0: ओह थैंक यू भैया, परमात्मा की देन है।
2: परमात्मा की देन तो है ही है
0: जी,
2: जो खास खास को मधुर आवाज दी है
0: जी।
2: और रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: थैंक यू थैंक यू।
2: सुरेश भाई पिंडवाड़ा बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी जी।
2: और बस आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं
0: जी,
2: तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा दीदी को बता देता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है
0: जी। थैंक यू भैया थैंक यू।
2: इसी तरह बताते रहिए, हमारे दोस्तों के जीवन में उजाला करते रहिए।
0: श्योर, करता तो परमात्मा है, हम नियमित है।
2: नहीं मगर आपको, हमको तो नियमित बनाया है ना।
0: हाँ जी हाँ जी जी जी।
2: तो बस प्रसाद उनकी है, बाकी बांटने का काम तो अपन को सौंपा है ना।
0: जी जी जी।
2: तो आप प्रसाद बांटते रहिए।
0: जरूर जरूर, जब तक है दम तब तक ये आपसे है प्रण कि हम रेडियो मधुबन में हर सैटरडे संडे आते रहेंगे।
2: हाँ वही तो प्रभु शिव बाबा का तो प्रसाद है।
0: हाँ जी।
2: बाकी बांटने का काम तो हमको सौंपा हुआ है ना, वो थोड़ी बांटेंगे।
0: जी जी जी जी।
2: बस आप बांटते रहिए बस।
0: जरूर जरूर जरूर, आप सबकी दुआएं हैं तो जरूर बांटते रहेंगे।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति भैया। मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और कर्म श्रेष्ठ हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखे के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। दो चीजें कभी मत छोड़ना, उम्मीद और प्रयास। एक रास्ता दिखाती है, दूसरा मंजिल तक पहुंचाती है। कीचड़ का कारण भी जल है। हेलो
3: नमस्कार दीदी, पालन करके फिरोज भाई बोल रहा हूँ। शांति।
0: ओम शांति। नमस्कार भैया।

0: कदम बढ़ा के हमारी मदद करते हैं।
1: तो सही बात है
0: जी।
1: और नवरात्रि जो अभी आ रही है, नवरात्रि की भी
0: हाँ 11 तारीख से नवरात्रि आ रही है जी, उसकी भी आपको एडवांस में सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत
1: शुभकामनाएं।
0: ओम शांति भैया। तो देखिए भाई, कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। उसी तरह मन को हेलो
2: हेलो दीदी, नमस्ते, ओम शांति।
0: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हैं आप?
2: अभी तो बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छे ही रहे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो थोड़ा सा मन ऐसा लगता है कि बाबा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे।
2: अभी भाई जी ने बताया, भाई जी
0: जी,
2: उन्होंने बताया आपकी आवाज बहुत मीठी है, बोल है ना। तो हमारे बाप ही सीट का पहाड़ है
0: जी,
2: है ना?
0: बिल्कुल,
2: हमारे बाबा सीट का पहाड़ है, तो उनके बच्चे तो ऐसे ही
0: मीठे ही होंगे। और फिर मुरली शुरू करता है तब भी मीठे बच्चे कहता है, अंत में भी मीठे बच्चे कहता है, रोज मीठे मीठे बोल के मीठे बना ही देता है।
2: हम तो दीदी कितने कड़वे थे।
0: हाँ, कोई करेले के जैसा कड़वा था, कोई नीम के जैसे कड़वा था, लेकिन उसने मीठा मीठा बोल के अपने बच्चों को मीठा बना दिया।
2: नीम तो देखो कड़वा होता है, लेकिन वो दवाई में कुछ
0: काम आता है,
2: दवाई में उपयोग करते हैं तो बहुत असर अच्छी करता है
0: जी।
2: लेकिन हमारा तो जीवन ऐसा था, कड़वा एकदम, तो जैसे किसी को दो शब्द बोले तो उनका भी जीवन
0: दुखी हो जाए।
2: और अभी उसने, बाबा ने आके हमको ऐसा मीठा बनाया है, स्वीट का पहाड़, बाबा कहते हैं मैं हूँ और आप भी मेरे जेब से बनाओ।
0: बिल्कुल,
2: बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है। देखो सब लिस्टनर में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे भाई ने भी जुड़े थे
0: जी,
2: तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू,
2: ऐसे सुनाते रहिएगा, आते रहिएगा।
0: जरूर जरूर,
2: ओम
0: शांति। तो हम कह रहे थे कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। उसी तरह मन को दूषित करने वाला भी मन है, ध्यान से सुनिएगा, मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। समझ गए, वो पार हो गए। प्यार सम्मान और अपमान, प्यार सम्मान और अपमान तीनों एक प्रकार का निवेश है। जितना आप दूसरों को दीजिएगा, आपको उससे कई गुना अधिक वापस मिलेगा। समझ गए, का चाहिए, जो चाहिए वो देते रहिए, कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए भाई, इस बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, फिर आपसे बताएंगे। बहन जी, कौन एक वैसा गीत सुना दीजिए। तो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो श्राद्ध के ऊपर से बताते हैं कि श्रद्धा ही श्राद्ध है। अपने पूर्वजों अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने की क्रिया का नाम ही श्राद्ध है। हमारे पूर्वज अपने माता पिता में अपने बड़ों में अथवा पारिवारिक जनों में इतनी श्रद्धा रखते थे कि उनके मरने के बाद भी उनकी स्मृति और सम्मान में यथा योग्य दान पुण्य भोजन पंचबली क्रिया करते थे, सत्कर्म क्रिया करते थे। अपने पितरों के प्रति यही श्रद्धांजलि ही कालांतर में श्राद्ध कर्म के रूप में मनाई जाने लगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा मृत जो हमारे पूर्वज गए हैं मृत हो गए हैं माता पिता में तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि मूर्त माता पिता में भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वही फलदायी होती है जो जीवित माँ बाप के प्रति हो, अन्यथा उनके मरने के बाद किया जाने वाला श्राद्ध एक आत्म प्रवंचना से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो मूर्त माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखता है वही मृत माँ बाप के प्रति श्राद्ध कर्म करने का सच्चा अधिकारी भी बन जाता है। श्राद्ध के इन दिवसों में हम अपने पूर्वजों का तो स्मरण करें ही, साथ ही आजीवन अपने घर में जो माता पिता हैं वह बड़े हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। मरे के बाद कौन देखता है आए कि नहीं, जियत दे न चौरा मरे बनाए चौरा, जान जीते जी तो दो का रोटी नहीं दी, मरने के बाद बड़ी समाधि बनाते काहे कि दे, समाज को दिखाना है कि हमका हमारा कितना प्यार था, जबकि जीते जी नहीं की तो वो कोई श्राद्ध या श्रद्धा नहीं कहलाते। चलिए एक और कहानी सुना देते हैं। एक शादी में किशोर ने देखा कि दो बुजुर्ग भाई साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अधिक वृद्ध था इसलिए छोटा भाई बड़े लाड़ से उसे अपने हाथों से निवाला खिला रहा था। ये मंजर देखते ही किशोर का दिल भर आया। उसे अपने बड़े भाई की याद आ गई जिनसे पिछले 10 सालों से जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। किशोर ने तुरंत भाई को फोन मिलाया। उधर से कड़क आवाज आई, फोन क्यों किया, जो कहना है परसों कोर्ट की पेशी में कहना। किशोर अपने आंसू रोकते हुए बोला, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज ही अपना केस वापस ले रहा हूँ। जमीन दुकान सब आप रख लो, मुझे बस मेरा वो भाई लौटा दो जो बचपन में मेरी एक खरोंच पर दुनिया से लड़ जाता था। इतना कहकर वो फफक फफक के रो पड़ा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बड़े भाई की सिसकियों की आवाज आई। उभरे गले से बोले, पगले इतने प्यार से पहले बोल देता तो मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता। चल सब छोड़ और अभी घर आ जा, मैं तेरी भाभी से तेरा पसंदीदा खाना बनवाता हूँ। 10 साल की कड़वाहट एक ही पल में घुल गई। कहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, कहाँ हम अपने दिल को ऐसा बना सकते हैं। आजकल ईगो क्लैश चलता है। अरे वो अपने आप को का समझता है, हम कम है का, और इस ईगो के चक्कर में ही हमारे संबंधों में कितनी कड़वाहट आ रही है और बाद में हम पछताते हैं कि काश हमने सॉरी बोल दिया होता, काश उस समय हमने ये नहीं बोला होता, लेकिन अब पछताए का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए आज भी आपके पास समय है, अगर किसी से आपकी अनबन हुई है उससे आप बोल नहीं रहे लेकिन मन में हर बार करता है कि काश उनसे बातें कर लिया होता तो अच्छा था, उनसे सलाह ले ली होती तो अच्छा था, लेकिन उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा। किशोर भाई के जैसे आपको अपने भाई से दिल से सॉरी बोलना होगा और बोलना होगा हमको कुछ नहीं चाहिए, वो पहले वाला सिर्फ प्यार चाहिए। और कौन ऐसा पत्थर हृदय होगा जो नहीं मानेगा।
तो इसलिए बीता हुआ समय सीख है और आने वाला समय नई संभावना। ये बात याद रखिए, जिंदगी में जो है उसकी कद्र करना सीखो। काहे कि वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। जो स्वयं को जीत लेता है वो जीवन की हर चुनौती जीत सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर पल को संयम, सत्य और आत्म कल्याण में लगाओ। सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर व्यवहार करो। एक व्यवहार से हमारे संबंधों में कहीं कड़वाहट तो नहीं आ जाएगी, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। अपने आप को रख के देख लीजिए ना, ये शब्द हम जो बोल रहे हैं, हमको कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा, हमारा दिल टूट जाएगा। हम उस कभी भी बात नहीं करेंगे तो सामने वाला भी तो वही करेगा। भाई जौन दिल आपको भगवान दिए हैं, वो सामने वाले को भी दिए हैं। परमात्मा का सच्चा प्यार वही महसूस कर सकता है जिसका दिल आईने की तरह साफ और हर प्रकार के छल कपट से दूर हो। हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती, हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती। कभी कभी वही हमें मिली हुई खुशियों की कीमत समझाती है कि हमारे पास जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, वरना इंसान इसी उधेड़बुन में पूरी जिंदगी गुजार देता। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हम तो ये चाहते थे, हम वो चाहते थे। तो इच्छा जवान होते जाती है, इंसान बूढ़ा होते जाता है, लेकिन कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो समय रहते जो है उसको एंजॉय करिए, उसके लिए परमात्मा जी का शुक्राना अदा करिए कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिया वो तो कई लोगों के पास नहीं है जितना हमारे पास है। फिर देखिए जीवन कितना आपका अच्छा होता। चलिए फिर एक गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे और बताएंगे। सुनेगा गीत

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हे अंजनी पुत्र, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। रोज अपने हनुमान बाबा से ऐसी प्रार्थना करिएगा। देखिए वो आप सुने होंगे ना, वो पायलट को मारा, वो भी है उस समय हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसलिए बच गया, और बच गया और पूरी दुनिया का हीरो बन गया। कहे हनुमान बाबा हम बचा लेते हैं, लेकिन मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। जब हमारी अपनी आत्मा हमको सम्मानित करती, यानी हमें गर्व महसूस होता, घमंड नहीं, गर्व और घमंड में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन गर्व सकारात्मक शब्द है और घमंड नेगेटिव है। रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जोड़ने से पहले दो बार सोचे और तोड़ने से पहले 100 बार। किसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, 2 बार सोचिए, लेकिन किसी से तोड़ना है तो 100 बार सोचिए। जब कुछ ना हो तो धैर्य की धैर्यता, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। सब कुछ है, वेल टू डू है, भगवान सब कुछ दिया, उस समय कहीं आपका अभिमान तो नहीं आ जाता है, तो उस समय आपकी व्यवहार की परीक्षा होती है। जब कुछ नहीं हो तो धैर्य कि भगवान ने जो हमने शुरुआत में पहली कहानी कही, 100 बार ना सुनने की आदत पड़ जाए। हमारे पास का है ये महत्वपूर्ण ही ना है, लेकिन हमारे साथ कौन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात पर विचार करते हैं कभी? व्यर्थ का खर्चा, जीवन की व्यवस्था को और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों चीजों के कारण आई है लोगों में गिरावट। समझ गए? तो बनावट, सजावट और दिखावट, इससे आती है गिरावट। जो है वो है, ओवर दिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सजने की जरूरत नहीं है, फिर देख रहे हैं बहुत कुछ होता है। पैसा उधार लेकर अमीर बनने का दिखावा करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि जमाने वाले उसकी असलियत पहले से ही जानते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश करिए, कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए उधार लेके कुछ नहीं करिए। जो आपके जेब में है उसमें संतुष्ट रहिए। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ तन करीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। मन को गरीब तो मत बनाइए भाई, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मन तो अच्छा रखिए, मन से प्रेम से 4 बोल लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हर एक के पास रोटी कपड़ा मकान है, मत सोचिए कि हम कुछ किसी को दे रहे हैं। अरे नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है ना भाई, मेन तो होता है आपका व्यवहार। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए। कहे कि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है कि नहीं? सही बात। इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना, कौनों भी परिस्थिति में। काहे कि परिस्थिति तो कभी भी कैसी भी आती जाती रह सकती है, लेकिन आप मन को शांत रखें। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालत चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है। दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं, और सुझाव सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, का पता। तो इन चीज को ध्यान रखिए। मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस उम्मीद में इंसान पूरी जिंदगी बहुत प्रयास करता है। कोई उपवास करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कुछ लोग भगवान से मन्नतें मांगते हैं। स्वर्ग जैसे कोई नई हाउसिंग सोसाइटी जैसा लगता है, जहाँ एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य के अंक पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। लेकिन एक पल ठहर कर ये भी सोचिए, का पता शायद हम पहले से ही स्वर्ग में ही जी रहे हों। सुबह उठते ही एक बार अपने आसपास ध्यान दीजिए। एक बटन दबाओ तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, दूसरा बटन दबाओ तो पंखा घूमने लगता है, तीसरा बटन दबाओ तो ठंडी हवा पूरे कमरे में भर जाती है, नल खोलो तो पानी बह लगता है, गैस जलाओ तो कुछ ही मिनटों में खाना तैयार, जेब से मोबाइल निकालो तो पूरी दुनिया आपकी हथेली में आ जाती है, हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले आपके प्रिय लोग भी कुछ ही सेकंड में आपके सामने दिखाई देते हैं। इतनी सारी अद्भुत सुविधाएं, लेकिन हम इसे बहुत सामान्य समझते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। एक बार कल्पना कीजिए, 200 साल पहले का कोई राजा आपके घर आए तो शायद वो अपने राजमहल में वापस भी न जाना चाहे। वो आश्चर्य से पूछेगा, ये कहाँ गर्म पानी और ये कहाँ ठंडी हवा, ये कहाँ पूरी दुनिया की जानकारी, ये कहाँ 10 मिनट में घर आने वाला खाना। तब वो हंसकर कहेगा, मैंने पूरी जिंदगी राज किया, युद्ध जीते, बेहिसाब संपत्ति हासिल की, लेकिन ऐसी सुविधाएं मुझे कभी नहीं मिली। बिल्कुल सच है। आज एक आम इंसान की कई सुविधाओं के मामले में पुराने जमाने के सबसे शक्तिशाली राजाओं से भी ज्यादा अमीर है, फिर भी हम खुश नहीं है। काहे? काहे कि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती। एसी चालू है आनंद नहीं है, बंद होता है तभी तकलीफ होती है, मोबाइल वहाँ है आनंद नहीं है, नेटवर्क चला जाए तो लगता पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अपना घर है, अपना घर है संतोष नहीं है, पड़ोसी का घर बड़ा है इसका दुख है, अपनी गाड़ी है तृप्ति नहीं है, दूसरे की गाड़ी बड़ी है उसकी चिंता है। यानी इंसान अपने स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करके दुखी होता। लेकिन यही पृथ्वी पर एक दूसरी दुनिया भी है। आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: वाह दीदी वाह, आपने तो हमारे बुद्धि का ताला ही खोल दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है, और हम भी सफर करके आए थे।
0: जी, मैं भी सफर करके आई रात को।
1: कर दिया आपने ये सब बातें कह के, और ये सब बातें हम पूरे देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा आपको।
0: जी,
1: थैंक यू दीदी, सुनाते रहिए, हम सुनते जाएंगे।
0: जी,
1: और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक्स है आपको, आपका स्वागत अच्छा रहे, और हमारे सब दोस्त खुश हो रहे हैं
0: जी।
1: और भी सुनने वाले खुश हो रहे हैं, और रेडियो मधुबन को और आपको सलाम करते हैं, नमस्कार, लाखों लाखों
0: नमस्कार, ओम शांति। तो आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। लाखों परिवारों के पास पक्का मकान तक नहीं है, दिन में 2 वक्त का खाना भी तय नहीं है, बच्चों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं, शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। हम जिसे सामान्य समझते हैं, वे सुविधाएं ही दूसरों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। हमें एसी का रिमोट ना मिले तो गुस्सा आता है, उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव तक नहीं मिलती। हम डाइट चार्ट ढूंढते हैं, वो लोग अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा ये सोचते सोचते सो जाते हैं। तब समझ आता है, स्वर्ग और नरक मौत के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, ये यही है, इस पृथ्वी पर, इसी शहर में, इसी सड़क पर कभी कभी एक ही दीवार की दो तरफ एक घर का बच्चा अपना नया मोबाइल थोड़ा स्लो होने पर चिड़चिड़ाता है, सामने के घर का बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल ना होने पर रोता है, एक आदमी गर्म पानी 5 मिनट देर से आने पर शिकायत करता है, दूसरा आदमी आज पानी मिल गया बस यही काफी है कहकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। फर्क सिर्फ परिस्थिति में नहीं, फर्क दृष्टिकोण में भी है। कुछ लोग खराब परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख गए हैं तो कुछ लोग तमाम सुविधाएं होने के बावजूद शिकायतों से बाहर नहीं निकल पाते। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि उसके पास जो नहीं है उसका हिसाब वो रोज करता है, लेकिन उसके पास जो है उसका हिसाब वो कभी नहीं करता। आशा करते हैं आप इन बातों पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते, चाहे प्रशासन गाँव के संघ हो, चाहे विद्यार्थी विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, चाहे मनरेगा हो, सभी से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। सरकार का जो मंशा है, आसपास गांव और अंचल में जो प्रतिभा है, जो गतिविधि है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच लेकर आते हैं, जो स्टेज के माध्यम से बच्चों का आवाज को भी रखते जन जन तक पहुंचाते हैं एक जनहित में। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू आबू रोड और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडवा खुद, तो बच्चों का आवाज दोनों विद्यालयों के सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का आवाज को सुनने को मिलेगा। आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में। और बच्चों का आवाज न हो विद्यालय में आए तो बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन बच्चों को वार्म अप कराने के लिए हमारा संस्था के विद्यालय के मुख्य जो कि प्रधान शिक्षक उपस्थित है, वरिष्ठ शिक्षक है, तो उनको स्वागत करते हैं हमारा ईश्वरीय परिवार की तरफ से। सर, आपको बच्चों को वार्म अप कराने के लिए आपका परिचय पहले दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन पिच, और यहाँ का नामांकन का बारे में बताएं और गांव का बारे में बताएं और बच्चों का रुचि पढ़ाई में कितना है वो भी बताइए आपका परिचय का साथ।
1: मेरा नाम विलाराम चौहान है। मैं प्राथमिक विद्यालय रेबारीवास आवल के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस विद्यालय के अंदर साक्षरता की परीक्षा 4 अक्टूबर को करवानी है, इसलिए कुछ सूचना लेने के लिए यहाँ आया हुआ था।
0: जी सर, और अचानक में आए तो अचानक में आपका साथ हमारा मुलाकात हुई, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों का जो विद्या
1: मैंने बच्चों को मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बीके ब्रह्मा कुमारी शांतिमत तलेटी से आए हैं।
0: जी सर,
1: तो इनको ये रेडियो प्रसारण पर काम करते हैं तो तुमको जो भी बच्चों को बाल गीत आते हो, कविता आती हो, तो वो बोलना है, धीरे धीरे शांति से बोलना है और रिकॉर्डिंग होगा, तुम्हारा प्रसारण होगा, लोग देश दुनिया में सुनेंगे। ठीक है, धन्यवाद
0: सर। बच्चों को वार्म अप कराने के लिए यहाँ का जो बालिका कम संख्या है, बालक ज्यादा है, तो इसका राज क्या है सर? बालिका कम है,
1: बालिका यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के अंदर 7 विद्यालय है।
0: ओके, 7 विद्यालय
1: 7 विद्यालय है।
0: ग्राम पंचायत सर
1: ये ग्राम पंचायत आवल है। ये आवली गांव था और पहले क्या कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती के अंदर विद्यालय खोले गए थे, तो प्रत्येक मोहल्ले के अंदर विद्यालय खोले गए। इस मोहल्ले का नाम रेडवा खुर्द था, तो रेडवा खुर्द के अंदर एक स्कूल सरपंच ने खोली पंचायत द्वारा।
0: जी सर,
1: फिर दूसरा जैसे और सबलाफली है तो वहां पर खोली, पूरा वनाफली है तो वहां पर खोली,
0: क्या बात,
1: पगोरा फली है तो वहां पर खोली, रेबारी वास है तो वहां पर खोली। और तो आवल ग्राम पंचायत के अंदर पुरानी 2 विद्यालय थे, 1962 के अंदर बने थे। एक तो जो अभी सीनियर सेकेंडरी वो भी प्राइमरी विद्यालय था,
0: क्या बात,
1: और आंदलिया के अंदर प्राइमरी विद्यालय है, 2 थे पुराने,
0: अभी भी प्राइमरी है आंदलिया।
1: आंदलिया अभी प्राइमरी विद्यालय है और आवल का जो प्राइमरी विद्यालय था
0: जी
1: वो सीनियर सेकेंडरी यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल बना बड़ा।
0: जी सर,
1: नहीं तो वहां पर भी पहले मैं पढ़ता था, उस समय एक ही कमरा था।
0: आप पढ़ते थे उस समय?
1: हाँ,
0: यहाँ के ही आप?
1: यहाँ के ही।
0: ओके, और खासकर अभी उच्च प्राथमिक अभी हुआ ना आवल में? कोई
1: आवल में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
0: एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय,
1: तो कई बच्चे यहाँ से आवल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालक बालिकाएं पढ़ती हैं और यहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय कालंद्री सिरोई में भी पढ़ते हैं।
0: क्या बात,
1: और यहाँ के बच्चे हैं एकलव्य विद्यालय दान वाव तलेटी के अंदर भी पढ़ते हैं और कई लड़के प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, मधुसूदन बाल विद्या मंदिर है, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ने जाते हैं बालक बालिकाएं।
0: जी जी,
1: और कई लड़के यहाँ के अंडर ट्रेनिंग में भी है, कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, तो उसमें भी यहाँ के बालक बालिकाएं
0: अच्छा
1: गए हुए हैं।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक वार्म अप बच्चों के लिए करा दे, बच्चे भी शिक्षक का हमारा HM का आवाज सुनकर वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, वो आवाज में सुनाएंगे अपना कुछ गीत। और उस सर को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ का लोकल शिक्षक होने के नाते गांव का हित में हम तो सबके लिए अपना गांव अपना अंचल ये कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा अंचल, और जिस गांव और जिस अंचल में पढ़े बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव को देने के लिए सर का भी जो भावना था, उस पोस्टिंग भी उसी गांव में ही अभी, तो बहुत अच्छा शुरू से। इसका पहला आप कहाँ थे सर, पहला पोस्टिंग आपका कहाँ था पहले?
1: मेरा प्रथम पोस्टिंग राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंदलिया में था।
0: क्या बात है, अरे वाह।
1: 1 जुलाई 1995 को मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, और फिर वहाँ से ट्रांसफर हो गया। तो मैंने 9/10/2007 को राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिला आया हुआ है, बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति के अंदर बड़लिया गांव था, वहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाबोरपुला के अंदर मैंने कार्य किया। वहाँ मैंने 14 साल कार्य करके फिर मैं वापस प्राथमिक विद्यालय रबारीवास आवल के अंदर ट्रांसफर होकर मैं इधर आ गया।
0: बहुत अच्छा,
1: अभी यही हूँ।
0: आपका जो व्यक्तित्व पढ़ाने का तरीका, बच्चों के साथ जो धीरे से बात करना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, ये संस्कार बच्चों को प्रेरित करता है, जिसका चलता आपको आप अपना पोस्ट में भी जो सर्विस में भी खुशी राजी होंगे, है ना सर?
1: हाँ,
0: आपका जो पोस्ट जो मिला है, जो हाँ, इतना अनुभव है, उसमें आप खुशी राजी रहते हैं?
1: मैं खुशी रहता हूँ, राजी रहता हूँ। मैं हर काम के अंदर एक्टिविट हूँ। मेरे विद्यालय के बच्चे ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खेलने भी जाते हैं।
0: जी, आवल का तो नाम तो सुना है पहले भी मैंने, आवल बड़े स्कूल में बहुत बार आए, बहुत कोऑपरेटिव है, और बच्चों का अनुशासन देखना होगा तो सही में खेलकूद में भी, खो खो में भी तो प्राइज लेते मैंने देखा है।
1: परिक्षेत्र के अंदर यहाँ के बच्चे भी आए थे, यहाँ से टूर्नामेंट में कौन कौन आया था, तलवार नाका ऊपर हाथ करो, कौन कौन थे, खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा,
0: हनी
1: आया था तलवार नाका,
0: तलमन छोटा बच्चा, फिफ्थ चौथी क्लास का है,
1: भाग लिया था, दौड़ में था। अच्छा,
0: बहुत अच्छा। तो इस तरह गतिविधि आपके पास हम रखें, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक प्रार्थना न हो ही नहीं सकते, एक प्रार्थना के लिए हमारा तीन छात्र उपस्थित है, और तीन छात्र का शास्त्र, सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे और गीत गाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सब सुन पा रहे, खासकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडुआ खुद जो कि आवल ग्राम पंचायत में आता है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, आज बच्चों का साथ हम भी कुनी कुनी बच्चे बन गए हैं और तोतली तोतली आवाज में अपना आवाज को रखेंगे, क्योंकि इसका पहले हमारा एचएम सर ने बहुत कुछ सिखाया और छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी अपना अपना नाम बताएंगे, नाम बताओ।
2: मेरा नाम संगीता कुमारी है।
1: संगीता, कौन सा क्लास?
2: पांचवी में पढ़ती हूँ।
1: और कौन सा फॉलेज है?
2: मेरा गाँव का नाम है आवल।
1: आवल, तुम बताओ।
3: मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में
1: पढ़ती हूँ।
3: पढ़ती हूँ।
1: और तुम्हारे घर में कौन कौन है? सीमा आई
3: है
1: और
3: पप्पा,
1: हाँ?
3: बहन,
1: हाँ?
3: भाई,
1: हाँ?
3: दादी,
1: हाँ?
3: दादा।
1: ओ, सबसे अच्छा कौन, तुमको अच्छा प्यार कौन करते हैं?
3: मम्मी।
1: आई, क्या नाम है आई का?
3: पंकू।
1: पंकू पढ़ाती तुमको? मम्मी पढ़ाई किए? अच्छा, कितना तक? दूसरी ना तीसरी? पूछना घर जाकर, पूछना मम्मी आप कहाँ तक पढ़ाई किए, पूछेंगे। कभी बताया नहीं तुमको? पापा भी बताया नहीं? पापा कितना तक पढ़ाई किया?
3: पहली तक।
1: पहली तक, अच्छा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, चलिए एक प्रश्न सुनेंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है?
2: संगीता कुमार।
1: संगीता, तुम्हारे दोस्त कौन है?
2: सविता।
1: सविता, अच्छा, तुम बताओ।
4: मेरा नाम है निर्मला कुमारी, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
1: चलिए एक प्रार्थना शुरू करेंगे।

नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए बच्चे रेडी है। संगीता और सीमा एंड पार्टी, छोटे बच्चे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फिफ्थ क्लास तक है, पहली क्लास से फिफ्थ क्लास। और बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे खुशी से आते हैं, पढ़ाई करते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और यहाँ पर जब आते हैं उनको क्या क्या मिलता है वो भी बताएंगे। संगीता, यहाँ पर स्कूल में आते हैं तो क्या क्या मिलता है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक गीत सुनाएंगे भजन के रूप में। चंदन है देश की मिट्टी, देशभक्ति का एक भजन।

Abby.

0: संगीता और सीमा छोटे बच्चे हैं फिर भी बड़े काम करते हैं, छोटे बच्चे होकर बड़े बड़े काम करते हैं, गीत गाना आकाशवाणी में, रेडियो मधुबन में बढ़ चढ़कर भाग लिए, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। संगीता तुमको डर लग रहा है?
1: नहीं।
0: डर लग रहा है?
1: नहीं
0: नहीं। बुलंद आवाज से तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन था?
1: सविता।
0: सविता कहाँ है? सविता आया आज? सविता आया नहीं। सविता के पास क्या गुण है, क्या अच्छा लगता है? सविता क्या देता है तुमको? पढ़ाई में मदद करता है?
1: बताते
0: स्कूल में, आज मान लीजिए स्कूल में नहीं है तो स्कूल में जो पढ़ाई हुआ उसको जाकर बताते हैं, है ना? तुम्हारा घर से नजदीक है ना, दूर है? बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी।

0: जी है और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, और एक छोटा सा गुड्डा है, तो अपना नाम बता दे कि गुड्डा
1: कमल।
0: कमल कौन सा क्लास कमल तुम?
1: पांचवी।
0: और तुमको क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है?
1: जी।
0: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: हिंदी।
0: हिंदी। और कमल, नाम कमल है, कौन रखा है कमल तुम्हारा नाम?
1: मम्मी ने।
0: मम्मी, अच्छा। क्या बनेगा बड़े होकर?
1: टीचर।
0: टीचर, वाह, हमारा टीचर भी सुन रहे, टीचर का भावना है। और बड़े होकर टीचर बनेंगे तो सबको पढ़ाएंगे, है ना? टीचर का काम क्या होता है? तुम अभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से? पढ़ाई अच्छा लगता है? किसको किसको अच्छा लगता है, हाथ उठाओ लंबा हाथ। अरे वाह, सभी बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ाई, है ना? पढ़ाई इसलिए हमें विद्यालय में रोज आना चाहिए, विद्यालय में रोज
2: आना चाहिए,
0: कभी भी छुट्टी मारना नहीं, जब भी स्कूल खोलेगा तुरंत आना है। तो कमल, विद्यालय में क्या क्या मिलता है खाने के लिए?
1: दूध।
0: अरे वाह, पीने के लिए दूध?
1: संतरे।
0: संतरे भी मिलते फल? अरे वाह। अभी संगीता बताएगा क्या मिलता है?
1: दूध।
0: हाँ।
1: रोटी।
0: हाँ रोटी, ओके।
1: चावल।
0: चावल भी मिलता है। और कमल, और क्या मिलता है? रोटी, चावल, संतरा और
1: केला।
0: और बिस्किट भी मिलता है कभी? और खीर मिलता है?
1: जी।
0: हाँ देखो, स्कूल इसलिए आएंगे तो सब चीज मिलेगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल तुम आओ, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ। कमल।
1: रतन।
0: रतन, खड़े हो जाओ। कौन रतन है?
1: आज नहीं आया।
0: ऐसे दोस्त जो कि आता नहीं, इसका दोस्त नहीं बनाना चाहिए। रतन आया नहीं, उसको दोस्त बनाएगा, ऐसे नहीं। जो आता है उसका दोस्त बनाना, अच्छा दोस्त। जो ठगता है, कभी स्कूल को आता नहीं, उसके साथ दोस्ती बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुमको रोक देगा, बोला तुम भी मत जाओ। क्यों आया नहीं? संगीता का भी दोस्त आया नहीं। संगीता, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया?
1: पता
0: नहीं। इसलिए जो बच्चे स्कूल को नहीं आएंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। जो बच्चे रेगुलर आता है, उसके साथ दोस्ती करेंगे तो आपको मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल, और एक गीत गाएगा, सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद आदिवासी गीत भी बच्चे थोड़ा रेडी करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम। ये बच्चे को आज मौका मिला है बोलने के लिए, तो आज पहला बार आए, अचानक आए, कोई जानकारी नहीं था, फिर भी बच्चे भाग ले रहे, है कि नहीं? सभी बच्चे ताली बजाओ। सीमा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेडवा खुद, जो कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें खुशी है। सभी को चांस मिल रहा है और बच्चों को जब चांस मिलता है चांसलर बन जाते हैं, बड़े होकर तो नाम रोशन करेंगे स्कूल का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पुनः कमल, संगीता, सीमा और रवीना। अभी नया आवाज रवीना का भी सुनने को मिलेगा। पहले कमल से शुरू करेंगे। कमल खिलेगा तो पोखरी में, जल में तो बहुत सुंदर लगेगा। कमल कुछ कविता लेकर आए हैं, कविता का बात सुनाने के बाद फिर संगीता का भी चांस है। तो पहले कमल, छोटा सा लड़का, कहाँ से आए कमल? तुम नाम बता तो फिर से।
1: कमल कुमार मेरा नाम।
0: और कौन सा क्लास?
1: पांचवी क्लास।
0: और कौन सा फली से आते, कौन सा गांव से?
1: आवल।
0: आवल से, आवल का फली है, आवल ग्राम पंचायत छोटा फली से आते हैं। तो चलिए कविता सुनाएंगी। कविता सुनाएगा? सुना, सभी बोलेंगे इनका साथ है, शुरू से।
1: ऊपर पंखा चलता है,
0: ऊपर पंखा चलता है,
1: नीचे बबलू सोता है,
2: नीचे बबलू सोता है,
1: सोते सोते भूख लगी,
2: सोते सोते भूख लगी,
1: खाने बेटा मूंगफली,
0: खाने बेटा मूंगफली,
1: मूंगफली में दाना नहीं,
0: मूंगफली में दाना नहीं,
1: तू मेरा मम्मा नहीं,
0: तू मेरा मम्मा नहीं,
1: मम्मा गया दिल्ली,
0: मम्मा गया दिल्ली,
1: दिल्ली से मारा दो बिल्ली,
0: दिल्ली से लाया दो बिल्ली,
1: दिल्ली से मारा पंजा, मामा हो गया गंजा, गंजा पटेल, तारीखों पड़ी में टेल, आगे आई रेल, रेल ने मारी टिक्की, दो दिन की छुट्टी,
0: छुट्टी मिलने से बच्चे तो खुश होते हैं, है कि नहीं? छुट्टी होना चाहिए, इसलिए संडे को संडे छुट्टी होता है, रविवार को, है कि नहीं? चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संगीता को देते माइक। संगीता क्या प्रस्तुति करेगी? संगीता का साथ हम साथ देंगे। संगीता सुनाएगी? सुना।

0: सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर।
1: कुर्सी बोली चटर पटर।
2: अच्छा सीमा आ जाओ, सीमा और संगीता दोनों इसको दोनों बढ़िया से गाएंगे।
0: हाथी राजा बहुत बड़े,
1: हाथी राजा बहुत बड़े।

0: कुर्सी बोली चटर पटर पर भाई चटर पटर।
1: ताली बजाओ। ये अंतिम प्रस्तुति और संगीता, सीमा और कमल और रवीना सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिए इस कार्यक्रम में और सभी को नाम का साथ और उस संस्था के शिक्षक को भी धन्यवाद, हमारा प्रधान आचार्य को भी धन्यवाद, प्रधान शिक्षक को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ बच्चे। बहुत अच्छा। ये था अंतिम प्रस्तुति। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था छोटे छोटे बच्चों का तोतली तोतली आवाज। छोटे बच्चे लेकिन कमाल करके आज पहला बार आए तब भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लिए। सभी ने गीत प्रस्तुति किए। सभी को धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद आभार।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी। मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752। ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहाँ हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: राम राम रतन भाई, राम राम।
1: अरे राम राम भाई कंचन, आओ भाई राम राम।
0: तो आज तो तू मिश्री को बाग लगवा की बात कह रही है।
1: अरे भाई अब कई करा, नीम की निम्बोली खारी लागे तो पचे मिश्री को बाग लगावा और कई वे।
0: देख क्यान क्यान के गीत बने रहा अपने राजस्थान में भी है।
1: सही बात है। तो पहले तो अपना सगला श्रोता बंधु और स्वागत करा है गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो यो गीत केड़ो अजीब है ना कंचन।
0: हाँ, सुना मैं तो अजीब लागे। पर देख साथ साथ राजस्थान की सौम्यता, राजस्थान को अदब इमें झलके।
1: हाँ बिल्कुल भाई, हस्बैंड वाइफ में बात वेरी भाई। तो भाई क्यों भाई, नीम की निम्बोली तो मने खारी लागे, मैं तो कौन ही खाऊं। क्योंकि देखो आपने तो राजस्थान का महीने चैत्र महीना में यूं कहवे भाई, लीमड़ा को पानी पियो, जूस पियो, कहीं नहीं तो लीमड़ा का पत्ता खाओ। हाँ चैत्र महीना में अच्छो रहे लीमड़ो, कहते चैत्र महीना में आप खा लो तो साल भर आप
0: बीमार नहीं,
1: बीमार को नहीं, बुखार को नहीं आवे। हाँ तो बुखार को नहीं आई जो ले लो भाई। तो पचे वाइफ क्यों देखो भाई, मने तो नीम की निम्बोली तो खारी लागे। तो पचे वे क्यों जदि कहीं मिस्त्री को बाग लगावा कही तो यो गीत बन गयो।
0: और देख पुरानो गीत है।
1: हाँ
0: है? और कतरो अदब है,
1: कतरो अदब है।
0: तो इन्हें कही है कि साहित्य हो यो, संगीत हो यो, ज्ञान की रिश्ता हो, संबंध हो, तो बड़े में ललित भाव हो गए।
1: हाँ
0: बड़ो ही मिठास सुहापनी बात कह बाकी भावना हुआ है।
1: बिल्कुल। तो देखो आनी वास्ते आनी वजह भी जोड़ियो के भाई वा पहली नीम की निम्बोली को मतलब है, निम्बोली को तो नाम ली दो भाई। निम्बोली तो देखो पाक्या बात तो अच्छी लागे,
0: अच्छी लागे,
1: याद आवे था ना कभी आप बचपन में खाई।
0: अभी थोड़े दिन में देख अभी बरसात में।
1: हाँ
0: नीम की निम्बोली पक जावे,
1: पीली पीली हो जासी, अच्छी लाग सी,
0: अच्छी लाग सी। और एक कैरी के जाना पचूसन।
1: हाँ अरे कदी कदी तो गुटलियो एडो अच्छो लाग तो मैं तो पेट में उतार देती। बचपन केड़ा हुए है कंचन,
0: हर चीज डाइजेस्ट हो जावे।
1: हाँ, अपन ये चीजा को नॉलेज ही नहीं हो। हाँ, तो भाई बीज नहीं खानो, अरे बीज गणो अच्छो लागतो तो बीज नहीं उतार देता,
0: बीज नहीं खा लेता,
1: बोर खाता आपा, बोर का बीज ही उतार देता कतरी बार गुटलिया। तो नीम की निम्बोली के मने याद आवे, कोई कोई तो एडो अच्छे लागतो मिठो उतार देते।
0: और देखो बचपन में हर चीज पच जावे।
1: हाँ पच जावे, देखो आज तो यो उतार दे दो तो था गए, पत्री वे जाए, यो वे जाए, वो वे जाए। बचपन में कभी सुने आप पत्री?
0: सही बात है।
1: कई भी
0: और चीजा खावा की भी पच जावे और बाता भी पच जावे,
1: बाता भी पच जावे। बिल्कुल बात आज थाने क्यों वो तो थारा तक ही रहे।
0: हाँ
1: बात पची कटी लीक नहीं वे,
0: लीक नहीं होवे। और कोई माइंड करे कई
1: नहीं करे,
0: पेट में कोई उथल पुथल मचावे कई
1: नहीं, बिल्कुल नहीं मचावे।
0: मान ले भी तू और मैं देख लारा लारा पड़िया साथ साथ रहा बचपन से, कतरी बार एक दूसरे ने कह देता पागली।
1: हाँ है? बिल्कुल
0: बड़बोली।
1: हाँ
0: कतरी बार आपा यहाँ नहीं छटपट छटपट।
1: हाँ
0: कह देता
1: वेंडी
0: है। हाँ पर कते एक दूसरे बुरी मानिया।
1: अरे कई मानो बुरो
0: है,
1: ये तो एक नॉर्मल शब्द है ना,
0: नॉर्मल शब्द है। हाँ। क्योंकि वो बचपन है।
1: हाँ
0: तो वही है कि बचपन में बातें भी पच जावे, खावो पीवो भी पच जावे। तो
1: सही बात
0: तो
1: है। और यही बड़ा व्या बात कह दो।
0: हाँ
1: पागल है कई।
0: हाँ
1: भाई मैंने पागल कह दी दो
0: बस, ईगो हट हो जावे,
1: ईगो हट हो जावे। तो कंचन अटे याद आ रही जैसे अपने चैत्र महीना में जूस पावे लीमड़ा को, ठीक है। तो भाई अब कड़ो कड़ो मुंडो तो हो जावे। तो बचे वाको पति देव क्यों भाई मुंडो कड़वो हो गयो भाई, तो ये थोड़ी मिश्री ले लो और मिश्री ने चूस लो तो मुंडो पाचो मीठो हो जाए।
0: मीठो
1: तो ये यो गीत बन गयो, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निम्बोली
0: मने खारी लागे। और देख राजस्थानी भाषा को मिठास कड़वी नहीं बोलियो है।
1: हाँ बिल्कुल नहीं बोलियो, सही है।
0: अठे कही है खारो बोलियो है।
1: हाँ सही है।
0: तो
1: ये निम्बोली ने भी कड़वा नहीं बोली।
0: हाँ अठे तो देख मोटी मोटी बात यह है अके एक लोक कथा है यान की अके राजस्थान में भी तो कोई लड़ाई भी हो जावे नहीं तो कई करे थे यान क्यों करो सा।
1: हाँ
0: है सा सा सा कह
1: लगा। देखे कंचन अटे भी कैटेगरी वाइज भाषा होवे, गणा जना साई लगावे, गणा जना तू तड़ाका पे भी आ जावे।
0: हाँ वो तो देखो वो हर जगह
1: आप आपका संस्कार है।
0: हाँ।
1: पर बाकी आज आप राजा रजवाड़ा की बात करा, आज भी है रावला है, राजा रजवाड़ा तो है ही है, भली वो प्रजा को राज्य हो गयो, लेकिन राजा रजवाड़ा तो आज भी है,
0: आज भी है।
1: तो आज भी बाकी बोला की शैली वही है।
0: सही बात है।
1: हुकम पधारो सा, हुकम
0: पधारो सा,
1: आज भी अत्री उच्च भाषा। और वाका साथ में जो भी रहे बाकी भी भाषा तो देखो संको रंग तो लागे ही लागे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज वाके दास दासिया आज भी है, अबे आज भी अधीनता नहीं है, अधीनता में नहीं रहे,
0: अधीनता में नहीं रहे,
1: अधीनता में नहीं रहे, पर वे रिस्पेक्ट देवे माका राजा सा, माका ठाकर सा, ये ठुकरानी सा
0: बस। और वही फिर कहिए कि धीरे धीरे करके संस्कार बने जा,
1: कवर सा और कोवरानी सा। तो आज ही सम्मान वो ही देवे, तो आज भी बाकी भी भाषा देख लो, घनी खमासा, हुकम पधारो सा, वही भाषा तू घड़े अच्छी लागे, एडी उच्च भाषा सुन मन एडो हो जावे के सचमुच भाषा। वो तो क्या इंसान आप तो इंसान की भाषा तो हमेशा उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
0: सही बात
1: है ना, कोई जानवर तो हाँ नहीं, जानवर बेचारा बोली को नहीं,
0: जो चाहे बोल दे माँ।
1: हाँ, और भगवान आपने इंसान बनाए तो अच्छा बोलो नी, यो ही आपा हल्को शब्द बोलो और यो ही आपा रिस्पेक्टफुली भाषा बोलना।
0: प्राणियों में है? सर्वोच्च है मनुष्य।
1: हाँ, मनुष्य है
0: क्योंकि वो भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सोच समझने कर सके।
1: बिल्कुल विवेकशील है,
0: विवेकशील है, और शब्द को प्रयोग और भाषा पर अधिकार है वाको।
1: हाँ, वही तो आज एक या भाषा सुनो और ए काय कर रही तू, ए रे कटे गयो रे मतलब वह भाषा सुना खेड़ो लागे। देख मने एक बात याद आ रही कंचन। हाँ। मारी एक सहेली है तो वह मतलब सहेलिया तो आपने देखो शादी के बाद भी कतरी सहेलिया हुए, पहली भी कतरी सहेलिया हुए, तो वह भी घनी पुरानी सखी है, घनी पुरानी सखी है। और वह एड़ा गांव में बड़ी हुई जटे रावलो,
0: रावलो
1: तो भाषा अच्छी सीखोड़ी ही, अबे बिना पढ़ नहीं ससुराल भी को एडी जी गया है जटे भाषाओं की लेनो देनो ही कोनी।
0: ओ
1: मतलब यू तुच्छ भाषा।
0: हाँ, तुच्छ भाषा,
1: तोतड़ी भाषा।
0: हाँ,
1: आप केनो भी बटे
0: भारी पड़,
1: हाँ सीधो सपाट, तो भी वही लागे मैंने कट्टे दे दी, दे
0: कट्टे दे दी।
1: जटे एक तो भाषा हूँ अपना संस्कार झलके,
0: बस वही मैं कहूँ कि मुख कदी कदी कही है कि आदमी परिधान वगैरह जब पैर बैठा हो ना तो यहाँ लागे भी बहुत रॉयल, बहुत उच्च कोटि को, बहुत ही हाँ। संस्कारवान और बहुत ही परिष्कृत परिवार को। पण कही है जब वो मुख खोले नी
1: हाँ।
0: तब जो बाटा पड़े हाँ। तब अपने ठा पड़े
1: वो कंचन भाषा ऊंच इंसान की पहचान हो गए तो यह कणी खानदान का है।
0: बस बस बस
1: आपने
0: बस।
1: बड़ा बुजुर्ग क्या पहचान करता
0: हाँ।
1: यार ऐसा नहीं करता ना।
0: सही बात,
1: तो भाई वहां का कतरा भी सूटेड बुटेड वो
0: हाँ।
1: लेकिन आपकी भाषा कटे इन कटे वो शब्द पकड़ में आ जावे, ठा पड़ी जावे,
0: ठा पड़ जावे,
1: ये सब दिखा हुआ है।
0: सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वाह, अभी का माँ बाप ने क्यों मने तो भले आप थोड़े पैसा वालों घर
0: में दे दे,
1: पैसा वालों घर है वाकई, पर अब पैसा वालों घर है पर पूरा गांव की भाषा ऐसी तो घर वाले की भाषा एडी है।
0: सही बात,
1: अब वाह सबने हुकम पधारो सा, तो वे समझी को नहीं ये कई हुकम हुकम लगा रखे,
0: कई लगा रखियो।
1: देख कंचन मने वन टाइम पे यू लागे सच में के तो थोड़ा बहुत लोग ही समझता वे भाषा ने और एडे अच्छी भाषा वाले घड़ी घर में परी जावे तो विकी वेल्यू है। सभी एडा हो वाका बच्चे जो एडी इंसान आ जावे ना तो बेचारे विको तो कचरो ही हो जावे,
0: कचरो ही हो जावे और मजाक को पात्र और
1: मजाक को पात्र हो जाए। खास तो यार अरे कई बोले का जाना कई बोले, अब आपका हस्बैंड समझे कि भाई हाँ यहाँ के भाषा ऊंची है,
0: ऊंची है।
1: अबे वो बोले तो देखो देखो ये तो लुगाई का पक्ष भर रहे हो, देखो ये तो बाइलो हो
0: वो तो बेचारो बोल ही नहीं सके,
1: बोल ही नहीं सके,
0: अपनी संस्कृति नहीं।
1: हाँ एडी अपनी संस्कृति नहीं क्योंकि वो देखियो
0: बड़ा के बीच में बोलवा की।
1: हाँ अब भाई छोरी ने देखवा वाला आवे जदी भले ससुर जी जेठ जी कुटुंब वाला सभी आवे पर शादी का बात तो वो जो दामाद ही जाए ना सासरी में।
0: सही बात,
1: घड़ी घड़ी के सब थोड़ जाए,
0: कई बार तो भी वो कोई वास्तव पड़े वो ही हिले मिले वो ही अच्छी तरह से परिवार हाँ। जाड़े
1: अबे पत्नी ने लेन जानो ससुराल में कटे चाचा ससुर के कटे मामिया ससुर के बुआ सास के कटे भी शादी ब्याह तो पूरा खानदान उठन थोड़ जाए।
0: सही बात,
1: तो लड़को ही जावे तो इन्हें ठा पड़ेगा अच्छा अटा की भाषा ही अड़ी है, ऊंची भाषा है। लेकिन वह मजाक का पात्र वेगी बोले हस्बैंड मजाक नहीं करते पर परिवार का अन्य सदस्य फिर भी वो समझावा की कोशिश की देख भाई इन्हें एक अपना हंसो मत बटा की भाषा ऊंची है, अपनी भाषा ओछी है,
0: अपनी
1: तो पढ़ने बाद ओछी लाग रही भाषा बेचारे। विकी टांग खींच ली थी।
0: विकी टांग खींच ली।
1: हाँ, वो तंदा पढ़ने बाद ओछी लाग रही चुप रहे तो जन्मे ही अटीज है। जो भी सुने वो चुप कर दे।
0: बात है, सही बात है। कई बार प्रैक्टिकल में कई ज्ञान का उदाहरण आपने देखवा नहीं मिले।
1: मिले कंचन और वंटे में जिके बुढ़ारिया वे ना वे ना पूछो वे के कई
0: स्थिति हो गए।
1: हाँ, सही बात
0: है, बिल्कुल। आपा हास रहा है पर वो दर्द कम नहीं है,
1: वो दर्द कम थोड़ा है।
0: और क्योंकि जी में जो गुण है वो वाकी गुण की महानता तो आपा करा नहीं, और बल्कि वो हंसी को पात्र बने रह जावे तो भी वो बहुत दर्दनाक बात है।
1: होई तो
0: पर कोई बात नहीं, मैं तो ज्ञान कहूँ कठे ज्ञान को भी जावे तो वो आने थोड़ी देर रखे तो कही आगली तो पीढ़ी वाकई हाथ में बनानी
1: वो तो है ही है, पर सेन की दो धीरे धीरे थोड़ा शब्द वाका लिदा थोड़ा खुद का रखा धीरे धीरे परिवार वाला भी समझवा लग गया कि भाई यहाँ की भाषा ही एडी है, पाछो झावा को काम तो पड़े ही है। और वाका हस्बैंड भी समझदार हो तो वे मतलब पानी घाव निकल गया धीरे धीरे। दो तीन साल तो रहा पाछे बाहर ने जॉब करवा पड़ा गया, पहली महीना दो महीना अकेली रही या पियरन ससुराल आती जाती रहती पाछे ले गया पाछे खुद ही सास ससुरन क्यों भाई तू एकलो रेवे ले जा भाई ने भी तो एडो काम है। तो आपा कतरी बार समझ नहीं पावा कि भाई देखो ये तो यो ही गयो बहु नहीं ले गयो देखो पहली तो जॉब नहीं करतो। देखो समय का अनुसार परिवर्तन जरूरी है
0: बिल्कुल। और पत्नी और कई भाई है मान लो भाई यहाँ माता पिता ने संभाल बाकी वास्ते वो बैठे रह रहे हो तो
1: बिल्कुल
0: इतनी मोटी बात भी नहीं है।
1: हाँ वो निकल रहा अच्छा अच्छा ही निकल रहा। पर चलो कंचन टाइम हो गयो एक गीत सुनवा को तो यो ही गीत सुना आपा मिस्त्री को बागे लगा दे रसिया नीम की निमोली मने
0: खारी लागे।
1: तो सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 एफएम।
2: प्यार में हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है। यही तो प्यार है।

0: कलकत्ता करस्या में राजस्थानी भाषा है, देखो केड़ी आछी है। चाल कंचन चाल आपी गाव गाव में चालाहा, गाव गावरी बाता देखो सगला ने बताशा। गाव गावरी भाषा देखो सगला ने बताशा में। तो कंचन आपा बात कर रहा है देखो भाषा की।
1: हाँ
0: तो वो थन ठावे चार कोस में पानी बदले आठ कोस में
1: आठ
0: वाणी।
1: कोस में वाणी।
0: तो भाई आप एक दूसरा गांव जाओ तो थोड़ा तो आपने भाषा में भिन्नता लागी।
1: बिल्कुल
0: पर
1: सही है।
0: आपा कई थोड़ी भाषा की यू बात कर रहा, कोई अदब वाली भाषा वे अच्छी वे उच्च क्वालिटी की, कोई मध्यम भी होवे, कोई लो कैटेगरी की भी होवे।
1: सही बात। लेकिन देखो हर भाषा की और हर बोली की जान अपनी राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा में कतरी बोलियां है, ढूंढाड़ी है जो जयपुर
0: अरे
1: में, जयपुर कोटा बूंदी अठे बोली जावे ना ढूंढाड़ी।
0: कोटा की पाची थोड़ी अलग है,
1: हाँ
0: जयपुर की पाची अलग है, जोधपुर की अलग है,
1: हाँ
0: तो नागौर।
1: मेवाती
0: हाँ
1: मालवी हर एक भाषा अलग।
0: नागौर में जाए तो वटा की थोड़ी भिन्नता नजर आई।
1: बिल्कुल
0: उदयपुर चित्तौड़ थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े शब्द में फर्क ही है।
1: हाँ
0: खेर एक को दूसरा गांव में भी परी जाए ना, भले एक ही तहसील में गांव है तो गांव की भाषा देख और कस्बा की भाषा देख और सिटी की भाषा देख।
1: सही बात है। देखो और भाई बोली का ही है, एक बहुत बड़े समुदाय की नहीं हो जान भाषा तो कई राजस्थानी भाषा में कई बोलियां हैं,
0: बिल्कुल। तो
1: तो फिर
0: कंचन
1: बोली बदली जावे।
0: हाँ तो कंचन अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा है गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो।
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो बिल्कुल कंचन बोलिया तो बदला भी है,
1: हाँ
0: पर जदी भिन्नता नजर आवे तो थोड़े एडजस्ट हुए में टाइम लागे,
1: वो तो है। खैर
0: बाकी एडजस्ट तो सब हो गई है।
1: वो वही है। और देखो
0: अरे
1: भाई भाषा में एडजस्ट होना घणो मुश्किल है। बोली एक बोली वालों तो दूसरी बोली ने समझ ही लिया करे।
0: हाँ
1: जाने आपने भाई जोधपुर में जो बोली बोली जावे वो जयपुर की भाषा समझ ही ली,
0: हाँ समझ ले,
1: बोली ने
0: भाषा
1: समझ ही
0: समझ में
1: ली।
0: आ जाए पर अमुक चीज की ठानी पड़े। अब मैं एक जगह पे देखी एक बहू आई, ठीक है। अब बहू ने क्यों जा बेटा हंजवारी लेना।
1: हंजवारी।
0: हाँ अबे
1: ओ
0: वह तो बेचारी होते एक हंजवारी गई हो।
1: हंजवारी कही वो सही
0: हाँ
1: बात, मैं भी पूछती।
0: हाँ तो अबे वह के अबे अटिन उटिन मुंडो देखे, तो घर वाला समझ गया कि समझ नहीं आ रहे। तो कह अरे आपा ये कचरो नहीं काढ़ा गई,
1: अच्छा
0: हंजवारी हंजवारी बचवा समझ
1: बुहारी।
0: गई। हाँ कि भैया बुहारी का लिए कह रहा, तो बचवा बुहारी लान दी दी या। तो क्या हाँ पाचे के थूक ही बिलाए, तू आई कही जो अपनी ये भाषा नहीं समझ रही। पाचा बड़ा पाचा टोकता भाई, पहला तो टोकता और छोटा सेन भी कर लेता, आज तो
1: सेन
0: बड़ा
1: भी
0: भी
1: कर
0: सोच
1: लेता।
0: समझन टोके टोकी को नहीं कहा कि छोटा तपाक देन जवाब देवे।
1: सही बात है। और देख भी वो भी मध्यम ही बीच की जो वो
0: हाँ
1: बुआरी भी समझ गई।
0: हाँ
1: नहीं तो
0: बिल्कुल
1: आजकल के टाबरा ने तू देख बुआरी कहने देख कोई समझे
0: हाँ।
1: कहीं।
0: सही है, आज तो फिर भी झाड़ू ही कहवे, झाड़ू ही
1: झाड़ू
0: कहवे। पहले तो झाड़ू के ना कहता जो कांडी वाला झाड़ू के पचे वे आता ना वहां का बनियोड़ा कनी पेड़ का।
1: हाँ जो आपा चलता फिरता कठे उससे भी तोड़ लिया टहनी और कठे बैठना पड़ गयो तो आपा थोड़े
0: हाँ
1: झाड़े जुड़ कर बैठ जाता।
0: बैठ जाता,
1: हाँ
0: मैंने झाड़ू कहता
1: बिना झाड़ू
0: और
1: कहता
0: इन्हें पा बुहारी कहता।
1: बुहारी कहता।
0: अबे
1: हाँ
0: तो सब
1: सब
0: एक
1: एक
0: ही
1: हो
0: चीज
1: गया।
0: हो गया।
1: बुहारी कोई समझे को नहीं।
0: हाँ अरे गामड़ा की भाषा ही वाही कस्बा
1: हाँ
0: तो कई बात निकले तो क्या। और तो दांत कई काढ़ी रही, उभी उभी दांत कई काढ़ी रही। अवा विचार के दांत कई काढ़ी रही कई होवे भाई, देखो फर्क पड़े कंचन। एक दूसरा गांव जावा भाषा में घणो फर्क पड़े,
1: घणो फर्क
0: वह कतरी
1: पड़े।
0: चीजा नहीं समझते। आज सब समझा लागी पर वाके हो आई जती तो मारे दिमाग खराब है गयो, कभी कई करू बेंडा की न्यान देखना पड़े मुंडो।
1: सही
0: पचे यू
1: बात।
0: के वो इन्हें तो ठाई नहीं पड़े।
1: ठाई नहीं पड़ा।
0: हाँ
1: और देख भाई अठे जो है एडजस्ट हुआ मैं कतरी तकलीफ हो जाए।
0: कतरी तकलीफ हो
1: एक तो
0: जाए,
1: विने यानी नहीं ठा पड़ रहे हो है और एक वाक को ठा नहीं पड़वा को मजाक को रो रही हो।
0: मजाक और हो रहे हो। अब मुंडा आगे चीज है पर अभी भी ने कई बोले बटे या ठाको नहीं।
1: अठे काई है कि एक आधा रिश्ता तो फालतू का जो बड़ा जना चलो भैया अधिकार सो या प्यार सो जो भी मजाक कर दिया, पर जो भी इधर उधर का जो रिश्ता हुआ ना वो भी मजाक बनावा लाग जावे,
0: मजाक बनावा
1: वाला
0: लाग
1: भी मौको
0: जावे।
1: मिल जावे।
0: हाँ तो वह घनी चीजा नहीं समझते भाई, खूब शब्द जदि सुनिया ही नहीं, जदि
1: सही
0: भाई
1: बात।
0: जटा तक बड़ी हुई वे शब्द सुनवा ही नहीं आया तो क्या ठा पड़ते। तो कई भी चीज मंगाता जब इंदिया लेना अब घूम घमेन पाचे आ जाती, अब चीज है पर लादी
1: हाँ
0: को नहीं,
1: लादी को नहीं।
0: वो शब्द के ठाई को नहीं।
1: सही बात है।
0: पाचे आओ जी अतरे अकराते हो या तुम्हारे भली आई भाई काम ही जो भराओ जो काम ही इन्हें
1: कोई काम नहीं
0: चीज मुंडा आगे पड़ी हुई तो इन्हें दिखे को नहीं। तो कंचन या स्थिति एडी होवे के ससुराल वाला की नजर में योग अनी ना तो कहीं आवी को नहीं।
1: बेवकूफ कहलावे।
0: हाँ, बेवकूफ कहलावे।
1: और मैं बतायो नहीं भी बड़ा जना बेवकूफ समझे तो चलो वो माने आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ तो देसी भी नहीं तो वो सहन भी कर लेवे।
0: बिल्कुल
1: है ना, दुआ भी देवे प्यार भी देवे तो थोड़ी हल्की फुल्की फटकार भी लगा दे तो वो तो पछे भी सहन कर लेवे।
0: हाँ।
1: जद अठे बैठे का जो आजू बाजू का जो रिश्तेदार हुआ है वो भी ज्ञान के माहौल से फायदे उठान उन्हें बिल्कुल ही पागल सिद्ध कर देवे तो वो बड़ी दर्दनाक
0: बात। हाँ। और घर वाला नहीं समझना चाहे भाई अपनो गांव छोटो है या थोड़ा बड़ा शहरों आई है।
1: हाँ।
0: वाका सामने एक तो तहसील और एक पंचायत फर्क तो पड़े ही है ना।
1: फर्क तो थोड़ा पड़े ही है।
0: और अणी जी गया पे हस्बैंड समझदार होना चाहिए। थोड़ा सा आप बता दो कि भाई ये चीजा नहीं हो के वे तो एड़ा काम है वाकई वो अत्री होशियार हो तुम्हारे पियर में सब तारीफ करे पर आटा असी डफर के बहू की ये सब यूज के इन तो कहीं आवी को नहीं तो छाप ही अड़ी जमगी
1: क्योंकि
0: पहली बहू है घर में। और अबे जो चलो एक दो वे तो भाई थोड़ा एक दूसरा को सपोर्ट मिल जावे।
1: हाँ।
0: और पहलू यू कहते इन्हें तो ठाई पड़ी कोई नहीं जा मेनू थू जा तो दूसरा नहीं भरावे अब एक तुम्हें नहीं भरावा को रेवे।
1: सही
0: और बिना हर चीज गामड़ा की भाषा अलग कस्बा की भाषा अलग जो सुने को नहीं वे भाषा सुनवा में आवे तो अबे वो मुंडो ही देखे
1: और कतरी बार इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए।
0: एक आधी बार क्यों भी हो कि भाई आप मने एक बार चीजा को बता दो पचे दूसरी बार में याद रखू खूब चीजा
1: तो बेचारे ने वर्ड मीनिंग याद करने वाली बात होगी मैं दूसरी भाषा ने समझ लो पर मने पहले वर्ड मीनिंग तो आवे।
0: बिल्कुल हिंदी बोला वाला अंग्रेजी बोला वाला घर में परे जाओ तो विकी कई हालत है वह हालत होगी विकी तो वहां के अभी यू कहवा तो समझदार देखो एक तो एज डिफरेंस वे ना तो लोग बाकी भावना न समझ सके तो बस आंखो दिन बड़बड़ करते हैं तो कहीं आवी कोई नहीं ना तो कहीं भी काम भराओ तो मुंडा देखे तो एडी इमेज होगी वह क्यों मैंने आप एक बार बता दो माने ये शब्द की ठाकुर तो थोके विदेश आई गई। अरे भाई विदेश नहीं पर आप जान देखो सेरा में भाषा थोड़ी चेंज है कि नहीं है पर कटे कटे यह हालत वे जावे
1: यह हालत तो हो जावे और देख जटे थोड़ी शिक्षा की अभाव है बट और
0: ज्यादा हालत क्योंकि शिक्षा का अभाव तो है बट ज्यादा पढ़ियोड़े है ही कोई नहीं
1: बस
0: सासू जी अनपढ़ ससुरा जी अनपढ़ और छोटा छोटा एक दो एक आधा देवर तो पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई करवा वाला तो ध्यान देवी को नहीं घर में कई
1: हो ध्यान देवी को नहीं और वे भी कई है टाबर तो टाबर ही हुआ है
0: टाबर हो
1: बड़ा लाइट लेवा बाता ने।
0: हाँ।
1: अठे कई गुजर रही है वो थोड़ी समझे।
0: हाँ, सही बात है। और एडो हो कंचन के गामड़ा में तो कही है कि हस्बैंड वाइफ है ना तो आप बोल नहीं सको बात नहीं कर सको नहीं तो परिवार वाला कहते हुए वो देखो ये तो मका हम ही बात कर रहा तो आप बात नहीं कर सको
1: बात नहीं कर सका
0: तो अब आको दिन आप बात ही नहीं कर सको तो किने पूछो।
1: सही
0: आका दिन बचे कतरी समस्या आवे किने पूछो
1: किने पूछो।
0: तो कटे कटे यह हालत भी भेजा वे पर चलो भाई ये गांववारी बात तो वो कहे कि भाई थोड़े सोला करला संपूर्ण तो कोई होवे को नहीं।
1: सही बात
0: कहीं कहीं तो
1: कमी रह भाई
0: कमी रह भाई है तो गांव में अच्छा ही भी है और कटे कटे एड़ी रही तो समझदारी नहीं वे तो थोड़ा बुराई भी है। पर चलो भाई कंचन चला आओ जे राम राम
1: राम राम भाई राम राम
0: खूब बता कर कड़ी आपा
1: पड़े
0: मिश्री का बाग लगाता लगाता आपा तो ठेठ अटीना आ गया पर चलो बात में ही बात निकले
1: बात में बात निकले और एक दूसरा ने समाधान भी मिले
0: समाधान भी मिले तो वाह भाई राम राम
1: राम राम भाई राम।
2: ओम शांति। मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पे बातें की थी, तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है। कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह, और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं?
1: जी, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं, वो हमारे संस्कार ही हैं, वो हमारी आदतें ही हैं। और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही,
2: माइक थोड़ा आगे ले लो,
1: एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आदतों के आधार से ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं, और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं। लेकिन आदतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे, या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे। तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, जितनी भी साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, तो उसका तो यही आधार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी, आनंद, शांति, प्यार, आराम। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति को पानी पीना, प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है, वो ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, ठंडा पानी के लिए क्या किया, बर्फ का आविष्कार हुआ। बर्फ पहले कारखानों में बनती थी, फिर मुश्किल लगा कि नहीं, कारखाने में जाना पड़ता है। फिर साइंसदान ने कहा नहीं, आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए, तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, फ्रिज खोल के अभी बर्फ डालनी पड़नी है, इसके लिए क्या बना दो, कूलर बना दो। तो अभी पानी डालो तो बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें हमारी आवश्यकता हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारी फिजिकल बॉडी भी है ना। तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। वी हैव फिजिकल नीड्स, वी हैव मेंटल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स, वी हैव स्पिरिचुअल नीड्स, वी हैव सोशल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फिजिकल नीड्स क्या हैं, हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं, हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। हमारी सोशल नीड्स क्या हैं, हमें समाज से क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं, हमें अपनी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ वापस जाना है, ये मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत हमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर पड़ती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन सुख शांति की बात तो बाद में आती है ना, पहले हमें रोटी, कपड़ा, मकान मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। जब ये चीज़ें हमारे हमें मिल जाती हैं, फिर व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे समाज में इज्जत भी चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है, अरे इज्जत तो मिली लेकिन सच्ची सुख शांति नहीं मिली। फिर वो सोचता है, मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सच्ची सुख शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया, इज्जत भी मुझे समाज से मिल गई, लेकिन वो केवल बाहर से है, लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले। तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को बनाने का।
0: जी राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है, जैसे हमें नीड हो जाती है, किसी चीज़ की चाहत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं। शायद आज से 50 या 100-200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे। तो यह सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पर बदलती है क्या?
1: हाँ, ह्यूमन नेचर भी बदलती है, क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम
0: मोल्ड नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है।
1: चेंज, हाँ, ऐसी कुछ होते जो अपने आप, जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं। उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए, लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सुबह उठने की आदत है, अमृत वेला उठने की आदत है, तो अमृत वेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सुबह आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा। तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए। माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो, लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस चीज़ की उस एज पर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा, तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं। दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं भी होती, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संस्कार कई में होते हो नेचुरली, जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने बीटेक में टॉप किया था, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गांव में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, उनके गांव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था, लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था, इंटरेस्ट था, और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं। तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा, ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर, वो एक विधि है, वो एक तरीका है। लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के सम अपने आप सॉल्व तो करेंगे, ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे, क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन उसको बोलो कि, और वो मैथ में अच्छा नहीं है, उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ हमारे में होते हैं। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं, कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं, और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया तो मान लीजिए पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इस जन्म में अगर वो नॉन वेज फैमिली में बाई चांस चले गए तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बनाए होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं, उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाई चांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना है। और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपने आदतों में परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं और जब टीचर शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है, हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है, समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं, मना नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं। जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रायोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया कि 90% लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो ज़बरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स माना वापस आ जाते हैं अपने घर में, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पर?
1: देखिए, जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है, पहली बात तो ये कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसका कारण क्या है, क्यों वो ड्रग्स में गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहां पे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें, उनके साथ वो मिल सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए, अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज नहीं है। उनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, ताना मार दिया है, दुख हो गया है, किसी को गम पहुंचा है, या कोई किसी का हक मार लेता है, तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी चिंता को भूल जाएंगे, परेशानी को भूल जाएंगे। तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं। जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है, जिस मुश्किल का, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं, को उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें, उनका मन टूट गया। जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो दोस्त हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग। तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं। तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसिल करें, उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया ये आपने सही नहीं अपनाया था, कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती, चिंता को दूर नहीं करती, परेशानी को दूर नहीं करती, बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे। तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी, जिस विधि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा, देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। जिस

0: रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन प्यार तो अंदर से आता है, खुशी तो अंदर से आती है। तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, खुशी मेरे अंदर है, अगर किसी को गम है, दुख है, तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब का एक, जो हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, एक मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, राजयोग एक ऐसी विधि है, जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम राजयोग मेडिटेशन भी, हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर है, वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं, उनके ऊपर विजिलेशन होती है, ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं, और उसके बाद उनको वो दवाइयां भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविजन छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनको लगता है कि मैं ड्रग लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अपने अंदर से वो खुशी, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर से ड्रग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें, ध्यान सिखा दें, योग सिखा दें, रिलैक्सेशन सिखा दें, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जाकर के उस खुशी को, आनंद को, प्यार को ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी
1: जी
0: कि हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं, वो राजयोग को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स, काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज करेंगे, तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से, जब उनके जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं, तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो सकता है, और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे। और ये अगर उनको वहीं पे सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने रास्ते पे द्वारा वापस आ सकते हैं।
1: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है, और जैसे कि आखिरी में आपने डी एडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया, और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है, कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जातीं हैं, ये भी आपने बताया। और साथ में राजयोग का अगर प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं, तो उनका जो वापस गिव अप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा, एक एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

शांति। आज है 4 अक्टूबर 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2011 को सुनाए थे। 2 वर्ष का संगम का दिन है। एक तरफ पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो आज बाप दादा ब्राह्मण परिवार के रचता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। बाबा देखते हैं छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है, क्योंकि कोटों में कोई है। और बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है। ये देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं और यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा कहते आज का दिन है संगम का दिन, विदाई भी है और बधाई भी है। वैसे भी संगम का महत्व है, सागर और नदी का संगम। तो बाप दादा कहते आज के दिन सभी के दिलों में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है, क्या छोड़ना है और क्या बनना है। बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। ये बाबा की भावना है। बाबा कहते अब तो समय भी साथ दे रहा है। तो बाबा ने क्या देखा कि अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो बाप दादा की चाहना यही है कि आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करना है। क्यों? क्योंकि बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालता है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ उस संस्कार को भी विदाई दे दो। लेकिन कई बच्चे सोचते हमारे में तो दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छी बात तो दृढ़ संकल्प ही है। संकल्प में तीव्रता चाहिए, ये नहीं कि संकल्प में दृढ़ता नहीं है। बाबा कहते जैसे ब्राह्मण जन्म लेते ही ये प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है, ऐसे ही बाबा कहते हैं मन के लिए यह दृढ़ संकल्प करना कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सर्कमस्टेंस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है और हरेक के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में रखना है। आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस दृष्टि और वृत्ति को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। बाबा कहते हैं समय का अटेंशन रखिए, सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। कितने समय की? 21 जन्म की। तो इस एक जन्म में भी काफी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है वह कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के साथी बनके राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। बाप और दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हैं, तो जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी भी टाली नहीं जाती है। बाप दादा तो आज भी सब बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है, लेकिन आ जाता है, लेकिन कभी कभी नटखट हो जाते हैं
और बाप देख देख विशेष शक्ति भी देता है। फिर बाबा ने देखा अमृत वेले। बाबा कहते अमृत वेले चारों ओर देश विदेश में चक्कर लगाने गए तो क्या देखा बाबा ने, अमृत वेले स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं, परंतु अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है, तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। बाबा कहते ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़ने ही है, तो अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी और अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वह भी भस्म होने हैं। अभी आपके बाबा कहे एडवांस पार्टी के साथी ये भी चाहते हैं कि अभी समाप्ति के समय को सामने लाओ, अब रिटर्न जर्नी याद रखो। एडवांस पार्टी की आत्माएं दादियां विशेष कहती है अब समाप्ति के समय को सामने लाओ, अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते एडवांस पार्टी की आत्मा भी कह रही थी, क्या कह रही थी कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई है सब मिलके कह रही थी कि अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए और समय को समीप लाने के लिए। निमित्त बने तीन कार्य एक साथ करना है, शक्ति भी देना है, ब्राह्मण परिवार को संपन्न भी बनाना है और समय को भी समीप लाना है। तो बाबा कहते आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक के प्रति अटेंशन रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो, एक दूसरे को ब्राह्मण परिवार को सहयोग दो। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है चाहे कोई तीव्र पुरुषार्थी है, सबको तीन मुबारकें दे रहे हैं। कौन सी तीन मुबारक, एक नव जीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं कि अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने दो बातें पहले भी अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है तो समय और संकल्प के प्रति पे अटेंशन है ही है, और बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे में क्या दिखाई दे, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, फरिश्ता अनुभव में आए। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं, लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ और समर्थ फरिश्ता नजर आए। अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, ये स्वमान लेना। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया तीव्र पुरुषार्थी भव, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। और इस वर्ष का होमवर्क है फरिश्ता स्वरूप में रहना, इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है नव वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के
वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्ति का दान दो। आज ब्राह्मण परिवार के रचता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। है छोटा सा परिवार, बाबा कहते है छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है। भगवान को भी ये ब्राह्मणों का संसार कितना प्यारा लगता है, क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि बाप दादा को पहचाना है, बाप से वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो जैसे बाप प्यारे हैं, वैसे ये ब्राह्मण परिवार भी प्यारा है। बाप दादा ने जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है। बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे का जन्मते ही भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकाया है। इसीलिए बाबा को सब बच्चे बहुत प्यारे हैं। इसलिए यह छोटा सा संसार अति प्यारा है। आप सभी भी अपना इतना स्वमान जानते हो ना कि हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो भगवान को भी ये छोटा सा संसार बहुत प्यारा है, कोटों में कोई है, और हर एक बच्चे के जन्मते ही उनको भाग्य का सितारा मस्तक पर चमका दिया। और बाप दादा एक एक ब्राह्मण को देख खुश होकर गीत गाते, वाह बच्चे वाह, क्योंकि यही बच्चे हैं जिसने बाप को पहचाना और वर्षे के अधिकारी बने हैं। आज तो सभी इस श्रेष्ठ दिन पर बाप से मिलने आए हैं। कौन सा श्रेष्ठ दिन है? संगम। दो वर्षों का संगम, पुराना वर्ष बीत रहा है, नया वर्ष आ रहा है। तो बाबा कहते आज का दिन है संगम का दिन, विदाई भी है और बधाई भी है। वैसे भी संगम का महत्व है। जहां भी सागर और नदी का संगम होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन का भी महत्व बहुत गायन योग्य है। बाबा कहते आज के दिन का महत्व भी बहुत गायन योग्य है। पुराना वर्ष समाप्त और नया वर्ष आरंभ होना है। आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। बाबा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है, क्या छोड़ना है और क्या बनना है। ये बाबा ने बच्चों के दिल में देखा उमंग, कि हर एक ने अपने दिल में प्लान बनाया, क्या छोड़ना है क्या बनना है। दोनों ही प्लान बनाया है पूछता है बाबा। जिसने आने वाले वर्ष के लिए अपने आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है वह हाथ उठाना। बाबा ने देखा, फिर बाबा कहते हैं बनाया है मुबारक हो, क्योंकि सब जानते हैं कि बाप दादा हर बच्चे के लिए क्या चाहता है। क्या चाहता है? अभी बाबा अपने मन की बात बताते हैं। बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और सम

पूर्ण बन जाए, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अब तो समय भी साथ दे रहा है, समय भी बहुत सारे नजारे दिखाते हुए समय भी साथ दे रहा है। तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है। बाबा पूछते हैं कि हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है ना, कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। तो छोड़ना क्या है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन है। एक बात जो छोड़ने भी चाहते हैं, लेकिन अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। बाकी सब कुछ तो सहजता से छूट जाता है, लेकिन पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार कर ले, अर्थात आत्मा के जो सात गुणों के ओरिजिनल संस्कार है उसको अपना वास्तविक संस्कार बना ले। आप सब भी इस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं ना, क्योंकि पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है, भाव नहीं है लेकिन नेचर है। तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की तो नहीं है लेकिन पुराने है, द्वापर युग से चली आ रही है। तो बाबा कहे वो नेचर ब्राह्मण की तो नहीं है, पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार व नेचर को आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हो? पूछते बाबा, तो उस पुराने संस्कार व नेचर को क्या आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं? हर एक अपने को तो जानते हैं, तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ क्या चाहना है बाबा की? वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो? फिर पूछते बाबा, कर सकते हो? चाहते भी है, ऐसे नहीं कि चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालता है। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि उस संस्कार को वर्ष की विदाई के साथ साथ विदाई दे दो, क्योंकि बार बार वही पुरुषार्थ में तीव्रता लाने नहीं देता और विघ्न रूप बनता है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको भी विदाई दे दो, उस संस्कार को भी विदाई दे दो। इसके लिए तैयार है? पूछते बाबा, इसके लिए तैयार है? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी सोचा है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करो, संकल्प है होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। संकल्प में दृढ़ता, कई बार कई बच्चे समझते हैं हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है, तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। तो बाप दादा ने देखा इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास है, तो ये तो नहीं कि दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते हैं। कितनी सारी बातों की प्रतिज्ञा की है,
अमृत वेला उठते हैं, बाहर का अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, और भी दिनचर्या में ऐसी कई बातें हैं। तो बाबा ने देखा कि इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास है। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए यह दृढ़ संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सर्कमस्टेंस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है। बाबा कहते यह दृढ़ संकल्प करना है कभी भी किसी के प्रति किसी भी सर्कमस्टेंस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है। मन का भोजन है संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते हैं? हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते हैं? तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति व दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। ये बाबा की चाहना है कि वर्ष की विदाई के साथ साथ बाबा कहते इस दृष्टि व वृत्ति को भी विदाई दो। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हो? पूछते बाबा। कर सकते हैं बोलो, माताएं टीचर्स सब भाई भी चाहते हैं ना? हाँ, हाथ उठाओ। कल से किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ भावना व व्यर्थ भाव, उसका आज समाप्ति समारोह मनाना चाहते हैं। बोलो टीचर्स सब तैयार है? पूछते बाबा। बोलो टीचर्स सब तैयार है? टीचर्स दो दो हाथ उठाओ। बाबा कहते अगर चाहते हैं तो टीचर्स दो दो हाथ उठाओ। उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह उठाओ, जिन्होंने नहीं उठाया वो थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाओ। बाबा उनको खड़ा करते हैं। अच्छा है जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं? मन संकल्प है, दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता, ऐसे हैं? जो उठे हैं वह लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे तो हाथ उठाओ। मन लक्ष्य रखेंगे और पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे, बाबा कहते वो हाथ उठाओ। क्योंकि समय का अटेंशन रख ये सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। समय का अटेंशन देते हुए बाबा कहते ये सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। 21 जन्म का वर्षा लेना है तो कहां यह एक जन्म और कहां 21 जन्म, तो इस एक जन्म में भी काफी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है वह कर सकेंगे। बाप से प्यार है ना तो साथ रहना है ना, नजदीक रहना है ना, हर जन्म में बाबा के नजदीक रहना है ना। ब्रह्मा बाप के साथी बनके राज्य अधिकारी बनना है ना, तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है वह तो जानते ही हो। हरेक कहता है, हरेक बच्चा कहता है, क्या कहता है, बाबा का जितना मेरे से प्यार है उतना किससे नहीं है। मेरे से प्यार है
तो यह प्यार

चाहे दिखा नहीं सकते हैं लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है, नंबर वार है लेकिन प्यार है। इसमें बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है। कम ज्यादा होगा, नंबर वार होगा, लेकिन हर बच्चे का प्यार जरूर बाप दादा दोनों से है। प्यार तो है लेकिन बाप ने देखा, क्या देखा, कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो बाप उस समय क्या करते हैं जब बच्चे नटखट हो जाते हैं? तो बाप क्या करते हैं? बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता है। बाबा देखते हैं बच्चे नटखट हो रहे हैं तो बाबा देख देख विशेष शक्ति देता रहता, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं। होता राजा नहीं है लेकिन कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन आप सभी बाप दादा के अब भी राजा बच्चे हो और भविष्य में भी राजा बच्चे हो। अब भी राजा बच्चा हो और भविष्य में भी राजा बच्चा हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है। अभी बाबा कहते स्वमान भी है कि मैं राजा बच्चा हूं और स्वराज्य भी है। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर है तो राजा तो है। तो स्वराज्यधारी अभी हो और विश्व राज्यधारी भविष्य में हो तो राजा बच्चा हो ना, है तो कांध हिलाओ। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्कर लगाने गए। फिर क्या देखा बाबा ने? तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी अमृत वेले बैठते मिस नहीं करते, लेकिन स्नेह में बैठते हैं। बाबा के स्नेह में बैठते बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं। अमृत वेले भी नवीनता चाहते, खाली स्नेह में बैठो, बाबा से बातें करो, आत्मिक स्मृति में रहो, शक्ति लेते रहो, ये नहीं। बाबा नए वर्ष में अमृत वेले नवीनता चाहते। क्या चाहते? क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है, तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। ये नवीनता चाहते हैं, ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है, वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात क्या? बाबा उसको भी क्लैरिफाई करते हैं। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, वो साल टॉपिक रखी थी वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड फैमिली। तो बाबा कहते आपने इस समय जो टॉपिक रखी है एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे।
इसलिए बाप दादा अगला